सफर फिल्म से ये गीत था पन्नाटे का गाया हुआ। इंदिवर की रचना थी और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। सही में दोस्तों हमें चलना तो पड़ेगा ही, मंजिल तभी तो मिलती है।

दोस्तों सच में जो मेहनत करता है उसे फल तो मिलता ही है, और उसकी मेहनत के पीछे बहुत से त्याग होते हैं। इंसाफ फिल्म से रचना आपने सुनी अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, फारूक कैसर की रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अगली रचना आप सुनेंगे गुमनाम फिल्म से, लता मंगेशकर की गाई हुई है, हंसराज जयपुरी की रचना है और शंकर जयकिशन का संगीत।

दोस्तों, हमें केवल वही बातें याद रह जाती हैं जो हमारे संगीत साथी होते हैं, और उनसे भोलेपन का साथ और जो सच्चा रिश्ता उनके साथ होता है, बचपन की यादें हर किसी के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, चाहते हुए भी हम उन लम्हों को बटोर नहीं पाते।

सच में दोस्तों, बच्चे तो मन के सच्चे होते ही हैं और इसके साथ ही भोर सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आपने ट्यून किया है एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और अब प्रस्तुत है वंदे मातरम।

नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 और 45 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

छह बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण होगा, जिसे आपके लिए पेश करेंगी शीतल। छह बजकर 44 से 6:55 पर श्री रामचरित मानस कान होगा। आज अयोध्या कांड का भाग 17 सुनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में भी आपके साथ होंगी शीतल। 6:55 से 7 तक संस्कृत में समाचार होंगे और 7 हिंदी में समाचार होंगे।

0: गोल्ड सुप्रभात ये कार्यक्रम होगा 7:10 पर। और इस कार्यक्रम में भी आपके साथ होंगे शीतल। 7:30 पर आज सवेरे कार्यक्रम होगा, हिंदी में समाचारों का समय रहेगा 8:00। पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और 8:30 पर उर्दू में। पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और 9:00 हिंदी में समाचार होंगे। कर 10 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी कार्यक्रम, कुसुम लता आपके लिए कार्यक्रम को लेकर आएंगी। और ये था झरोखा आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों का। दोस्तों अब 6:00 में कुछ ही पल बाकी हैं, आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वेन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेन्स और सेकंड लेडी उषा वेन्स को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी उटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह 2 दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है।

जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम अपने अंदर स्थित अपने बनाने वाले को नहीं जानते, तब तक विश्वास नहीं होगा। बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता और प्रेम के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती। पहले ज्ञान, फिर विश्वास और फिर प्रेम, यही क्रम है। क्या हम इस क्रम को ऐसा ही जान रहे हैं या अपने जीवन में ऐसा ही मान रहे हैं? यदि नहीं मान रहे हैं तो पुनः विचार करने की आवश्यकता है। 6:12 और 45 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम गोल्ड पर। ये समय है अर्पण का। अर्पण में आज आपके साथ हूं मैं शीतल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।

अगर हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद को देखना होगा, क्योंकि दया हमारे अंदर से ही शुरू होती है। जब भी हम प्रभु भक्ति के ध्यान की बात करते हैं या जब भी हम प्रभु की दया की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भीतर प्रकट होती है। जब हम उसे आगे ले जाते हैं तब हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो पूरा होता हुआ नजर आता है।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है अर्पण और आज अर्पण में आपके साथ हूं मैं शीतल। अपने जीवन में हमें एक ऐसे मित्र की आवश्यकता होती है जो हमारे कठिन और अच्छे सभी लम्हों में हमारा साथ देने के लिए तैयार होता है, और अक्सर हम इस मित्र की तलाश बाहर करते हैं, दुनिया में करते हैं। लेकिन अगर हम अपने मित्र की तलाश अपने भीतर करें तो हम जान पाएंगे कि वो परम मित्र जो हमारा हितैषी है, हमारा हितकारी है, वो खुद हमारे भीतर बैठा हुआ है। तो क्यों ना करें स्वयं से मुलाकात, क्यों ना बन जाएं स्वयं के परम मित्र।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: हमारे जीवन का आधार हमारे विचार होते हैं। किसी भी घटना को प्रभावित करने में वक्त लगता है, लेकिन विचार तुरंत ही हमारे मन को, हमारे शरीर को बदलने की क्षमता रखते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने विचारों को किस दिशा में ले जा रहे हैं। जीवन में हम सकारात्मकता की ओर हैं या नकारात्मकता की ओर। जीवन के हर क्षण में हम खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बीते हुए लम्हों से और पुरानी और कुटिल यादों को हम कुरेद रहे हैं जो हमें दुख के सिवा कुछ नहीं देती। तो जीवन का आधार, इस जीवन के सुख दुख का आधार हमारे विचार हैं, और विचारों में यदि प्रभु नाम हो जाए, उन पर हमारा पूर्ण विश्वास हो जाए, तो फिर दुख की कोई बात ही नहीं होगी।

पुत्र वियोग की कल्पना ने महाराज दशरथ से मानो उनकी वाक शक्ति छीन ली है। उनके मन में एक ही विचार उमड़ घुमड़ रहा है कि जगत में चाहे उनका सुयश नष्ट हो जाए, पूर्व पुण्यों द्वारा अर्जित स्वर्ग भले ही ना मिले, बस राम किसी भी तरह उनकी आंखों से दूर ना हो। किंतु श्री राम को पिता के वचन के मर्यादा का पालन करने के लिए अपने वन गमन की बात अत्यंत तुच्छ सी लगती है। पिता से उनका अनुरोध है कि वे पुत्र स्नेह के कारण दुखी ना हों। इस पृथ्वी पर उस पुत्र का जीवन धन्य है जिसके आचरण से पिता को आनंद की प्राप्ति हो। वे पिता को धीरज बंधाते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लौट आवेंगे। उधर राम वन गमन के समाचार से अयोध्या नगरी में विषाद छा गया है। उसकी दशा ऐसी हो गई है जो जंगल की आग में झुलस गए पेड़ पौधों की होती है। जो भी ये समाचार सुनता है सिर धुनने लगता है। लोग कैकई के लिए अपशब्द कह रहे हैं जिसने भरे पूरे घर में आग लगा दी है, जिसने पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला है। कभी शायद सत्य ही कहते हैं कि स्त्री के मन की गति पकड़ में नहीं आती। जैसे आग सब कुछ भस्म कर सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, उसी प्रकार अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस से पाठ, जिसमें आज आपने सुने अयोध्या कांड के कुछ अंश। ठीक 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, और उसके बाद ठीक 7 बजे हिंदी में समाचार, और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 7:10 में होगा गोल्ड सुप्रभात, जिसमें मैं यानी शीतल रहूंगी एक बार फिर आपके साथ। आप सुने संस्कृत में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः आईआईटी दिल्ली इति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य विद्यार्थिनः समाकारिताः यत्ते स्वनिर्णयेषु राष्ट्रहितं सर्वोपरि स्थापयन्तु। आईआईटी दिल्ली इत्यस्य 57वें दीक्षांत समारोहं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् प्रत्येकं संततिः तात्कालिकं विशिष्टं समाह्वानं सम्मुखीकरोति, स्वस्य राष्ट्रीय दायित्वं च निर्वहति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् देशे नूतनानां क्षेत्राणां विकासेन युवभ्यः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, ड्रोन इत्यादीनां क्षेत्राणां उदाहरणानि उद्धृत्य सः अवदत् यत् भारतं सर्वेषु क्षेत्रेषु आत्मनिर्भरता प्राप्तये कार्यं कुर्वन्नस्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् आत्मनिर्भरतायाः अयम् उपक्रमः विकसित भारतस्य निर्माणार्थं दृढाधारस्य कार्यं करिष्यति। अर्धचालक क्षेत्रम् अपि उदाहरणम् अस्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा आईआईटी दिल्ली इत्यत्र परम प्रज्ञा इति उच्चदक्षतायुक्तस्य संगण सौविध्यस्य उद्घाटनमपि कृतम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः अमेरिकादेशस्य उपराष्ट्रपतिना जेडी वेन्स इत्यनेन सह दूरभाषमाध्यमेन वार्ता कृता। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय लेखे श्रीमोदी अवदत् यत् तौ प्रमुखेषु क्षेत्रेषु भारत अमेरिका समग्र वैश्विक सामरिक सहभागिताम् इतोपि सुदृढं कर्तुम् उपायेषु चर्चितवन्तौ। उभौ उच्चस्तरीय कार्येषु निरन्तरगतिं दृष्टवन्तौ, अपि च व्यापारस्य, रक्षायाः, महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीनाम्, ऊर्जा सुरक्षायाः, महत्वपूर्ण खनिजानां च क्षेत्रेषु सहकारं इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्पर हितस्य, क्षेत्रीयस्य, वैश्विकस्य च विकास विषये अपि विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। हर घर तिरंगा इत्यभियानम् अद्य आरभ्य अस्मिन् मासे 17 दिनांक पर्यन्तं च प्रचलिष्यति। राष्ट्रध्वजारोहणार्थं नागरिकान् प्रोत्साहयितुं देशभक्तिं, राष्ट्र ऐक्यं, भारतस्य सांस्कृतिक परम्परां च आचरितुं कार्यक्रमेषु भागग्रहीतुं च अस्य उपक्रमस्य उद्देश्यः अस्ति। 2020-तमे वर्षे आजादी का अमृत महोत्सवस्य अंशरूपेण आरब्धम् एतत् अभियानं ततः परं देशस्य बृहत्तमेषु जनसहभागित्व आन्दोलनेषु अन्यतमम् अभवत्। वर्षानुवर्षेषु एतत् यथार्थ जनान्दोलनत्वेन परिवर्तितम्, यत् भारतस्य एकतायाः, सम्मानस्य, सामूहिक राष्ट्रिय अस्मितायाः च प्रतीकरूपेण त्रिवर्णध्वजम् आचरितुं प्रदेशेषु, समुदायेषु च नागरिकान् प्रेरयति। अस्य वर्षस्य अभियानस्य विशिष्टं महत्वं वर्तते यत् एतत् भारतस्य राष्ट्रियगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य 125वें वार्षिकोत्सवस्य संयोगेन भवति, यत् राष्ट्रध्वजं, राष्ट्रगीतं च देशभक्तिविशेषस्य उत्सवे संगृह्यति। उत्सवस्यांशरूपेण सम्पूर्णे देशे वन्दे मातरम् इत्यस्य सामूहिकगायनस्य आयोजनं भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्य श्रीविजयपुरम् नगरस्य फ्लैग पॉइंट इत्यत्र हरघर तिरंगा अभियाने भागं स्वीकृत्य राष्ट्रध्वजम् उत्तोलयिष्यति। उपराष्ट्रपति ह्यः अंडमान निकोबार द्वीपानां द्विदिवसीय यात्रायै श्रीविजयपुरम् नगरे सम्प्राप्तवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति राष्ट्रपति आरक्षक वर्ण प्रदान समारोहे भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इसका विशेष महत्व है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोट डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोट डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। श्री सिंह ने अफ्रीका के साथ मजबूत और व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोट डी आइवर के लंबे समय से चली आ रही मित्रता को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुदुचेरी के गोरी मेडू के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। श्री शाह मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी की है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ले रखी है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया है। कल जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1,202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों के काफिले में जम्मू के लिए रवाना किया गया। कल श्री अमरनाथ जी गुफा में 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। चीन के हिफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया के एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। मैच दक्षिण कोरिया के आसन में कुछ देर बाद 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US Comprehensive Global Strategic Partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defence, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr. Modi congratulated Mr. Vance and the second lady Usha on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. This year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. As part of the celebrations, mass singing of Vande Mataram will be organized across the country. More than 200 Indian embassies, high commissions and consulates will organize a series of events to mark the campaign. In Jammu and Kashmir, the annual Amarnath Yatra will remain suspended on both Pahalgam and Baltal routes from today. The decision to temporarily halt the Yatra has been taken due to recent rains, repair work of pilgrimage tracks and forecast of adverse weather conditions over the next few days. No fresh Yatra convoy was allowed to leave the Bhagwati Nagar base camp in Jammu yesterday as precautionary measure amid rains and inclement weather conditions prevailing in Ramban district and parts of Kashmir. The United States has rejected China's move to establish what it called a national nature reserve at Scarborough Reef, saying the measure could restrict Filipino fishermen's access to their traditional fishing grounds, as reflected in the 2016 arbitral award. In a press release, U.S. State Department said this is yet another unilateral attempt by China to use dubious environmental and legal pretexts, backed by coercion, to advance its sweeping territorial and maritime claims in the South China Sea at the expense of its neighbors. The United States stands with its ally, the Philippines, in support of a free and open Indo-Pacific, the statement further said. The United States is considering ending a provision that gives certain foreign workers up to 60 days to find a new job after losing their employment. The proposal is currently under review by the White House Office of Management and Budget and has not yet become a rule, with the details of the proposed changes not publicly available in full. A move like this could require affected H-1B skilled workers and their dependents to leave the country almost immediately. If the regulation is finalized, it would remove the existing 60-day grace period for certain workers and their dependents when the employment on which their immigration status is based ends before their authorized period of stay expires. The change could have particular significance for the Indian expat community in the U.S. Indian nationals have long been the

आप मैं और ये भीगी भोर, खिड़की पर बूंदों का शोर, सौंधी सी मिट्टी की खुशबू में उलझी है बातों की डोर। काले बादलों के चिलमन से जब जब कोई बूंद टपकती है, तुम्हारी हंसी की गूंज में जैसे बारिश और भी निखरती है। एक कुल्हड़ से उठती भाप और तुम्हारी नजरों की तपिश इस ठंडी भीगी सुबह में जैसे पूरी कोई कहानी ख्वाहिश करती है। हाथों में हो तुम्हारा हाथ और वो चाय की पहली चुस्की, थम जाए लम्हा, दुआ बस इतनी सी है मेरी। आओ इस बरखा की भोर में हर फासले को बहा दें, एक दूसरे की खामोशी में हम आओ प्यार से गोल्ड सुप्रभात में गुनगुना दें। 7:11 और 42 सेकंड हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। गोल्ड सुप्रभात को लेकर के आज मैं शीतल हूँ आपके साथ, और जब आपका साथ हो तो सुबह क्यों ना होगी बेहतरीन से भी बेहतरीन है।

कितना खूबसूरत होता है ना जब आपका इंतजार फूल करें, बाहर करें, दिए करें, और ऐसे में आप खुली बाहों से उन्हें स्वीकार करें। और बात करते हैं मौसम की, तो मौसम का हाल आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप चाहते हैं। आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है, और कहा यह जा रहा है 30 डिग्री की ये गर्म भोर है पर एहसास में 39 का जोर है। यानी गर्मी आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, बेशक से उतनी हो या ना हो, हवा में है नमी का पहरा, चढ़ रहा है धूप का रंग गहरा, और 35 तक जाएगा दिन का ये पारा, ढूंढेगा मन शीतल छाया का सहारा, जो कि एफएम गोल्ड में आपको मिल जाएगी। और यहीं हम देखेंगे कि पूरा दिन आपको पसीने भी आते रहेंगे, आपको लगेगा बारिश भी हो रही है, और ये खूबसूरती जो है मौसम की वो एक अलग तरीके से आपको एक अलग एहसास करने का मौका देगी। तो इस नए दिन को, इस नई सुबह को अपने जीवन में रंग भरने दीजिए।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

7:20 और 37 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर घर तिरंगा 2026 अभियान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज से यानी 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक देश भर में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष का कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ही 150वीं वर्षगांठ से जुड़े विशेष उत्सवों के साथ मनाया जा रहा है। क्या क्या किया जा सकता है, घर घर हम ध्वजारोहण कर सकते हैं। 9 से लेकर 17 अगस्त के बीच सभी नागरिक अपने घरों, दुकानों और संस्थानों में सम्मान पूर्वक तिरंगा फहराते हैं। तिरंगा यात्राएं और रैलियां निकाली जा सकती हैं। साथ में वंदे मातरम का सामूहिक गायन रैलियों और सांस्कृतिक आयोजनों में जो है वो किया जाएगा। साथ ही विभिन्न स्थलों पर विशाल तिरंगा कैनवस लगाए गए हैं जहां लोग अपनी भाषा में जय हिंद या संदेश लिख सकते हैं। और साथ ही 14 अगस्त को विशेष स्मरण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा जिसमें विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में जो है अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ ही सभी नागरिक harghartiranga.com पर अपने जो है अपनी सेल्फी को तिरंगे के साथ इस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं जिससे आपको डिजिटल प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा। और ये जिम्मेदारी हम सभी की है कि जिस मान सम्मान के साथ इस तिरंगे को हमने अपनाया है इसके सम्मान को बनाए रखें।

0: हमें अपनी जिंदगी में एक लाइन को पकड़ के रखना चाहिए कि हमें खुश रहना है, और अक्सर जीवन की व्यस्तताओं में हम अपनी इस महत्वपूर्ण चीज को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, कहीं छोड़ देते हैं, कहीं रख देते हैं और फिर उसे बहुत सारी जिम्मेदारियों के नीचे दबा देते हैं। तो क्यों ना आज रविवार के दिन इसे वापस निकाला जाए, खुद से मुलाकात की जाए, आज थोड़े से वो काम किए जाएं तो बहुत दिनों से नहीं किए गए हैं, खुद से मुलाकात की जाए, अपने साथ बैठा जाए, अपनी पसंद की किसी भी एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व किया जाए जो बहुत दिनों से आपने नहीं किया। सबसे पहले तो आराम से उठने वाली बात है। यहां बात ये नहीं है कि आप 10 बजे तक सोएं या 9 बजे तक सोएं, बात यह है कि जब आप उठें तो आपके मन में ये तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आज कहीं भाग दौड़ के लिए हमें भागना है। और जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को किन खुशियों के साथ सजा रहे हैं।
1: जब दिन हंसी
2: दिल हो जवान,
1: क्यों ना मनाए पिकनिक

जी हाँ, थोड़ा सा वक्त निकालिए और आज के दिन छोटी सी ही सही पर पिकनिक जरूर मनाइए। इस दिन की खुशियों को सेलिब्रेट करके हम अपने जिंदगी का आज का इस दिन को हम बेहतरीन दिन बना सकते हैं। लेकिन वक्त हो चला है कि अब हम गोल्ड सुप्रभात से ले इजाजत। तो आप सुनिए समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। मुझे यानी शीतल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हमारा तिरंगा हमारे अतीत के गौरव को, हमारे वर्तमान की कर्तव्य निष्ठा को और भविष्य के सपनों का भी एक प्रतिबिंब है।

0: सुप्रभात। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और मेरे साथ हैं सायरा मुश्तबा। आज पूरा हिंदुस्तान एक ही रंग में रंगा है, केसर सफेद और हरा रंग, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को इस अभियान की शुरुआत की थी और तब से ये दिन हर वर्ष मनाया जाने लगा।
1: नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वेरी वेरी special episode of Aaj Saveri, and special of course because from today the Har Ghar Tiranga campaign is starting, and this year Farhat it's even more special because we all know that Vande Mataram, our national song, has completed 150 years. So obviously everywhere where the Tiranga would be unfurled, it will be accompanied by our national song Vande Mataram.
0: Ji, aur bilkul Tiranga sirf ek jhanda hi nahi, ye hamare shahidon ka samman hai, hamari pehchan hai, aur shayad isi liye vatan par mitne walon ke liye Firaq गोरखपुरी ने लिखा था, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नामे आजादी।
1: क्या बात है, एंड दैट्स वेरी ट्रू बिकॉज यू नो फरहत, समटाइम्स व्हेन वी आर लिविंग इन आवर ओन कंट्री देन वी गेट यूज्ड टू सीइंग द नेशनल फ्लैग एवरीवेयर, बट द मोमेंट वी स्टेप आउट ऑफ आवर कंट्री और कहीं भी हम लोग को अपना फ्लैग दिखता है, कहीं भी हम लोग को हिंदी सुनाई देती है, अपनी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं वो सुनाई देती है, देन इट जस्ट फिल्स अप योर हार्ट विद सो मच ऑफ जॉय एंड प्राइड, एंड दैट इज व्हेन यू रियलाइज दैट इंडीड इट्स नॉट जस्ट अ फ्लैग एज यू राइटली सेड, इट इज आवर आइडेंटिटी। सो ऑन दैट नोट फरहत, लेट्स start today's Aaj Saveri, where we bring an amalgamation of news, and of course since you know this is the first show news magazine of the day, तो हम लोग जो है आपके अपने शहरों की भी खबर दे देंगे ताकि आपको पता हो कि हाँ हमारे शहर में आजकल क्या चल रहा है in our metro news section, and yes the last section for which every listener and even we wait for is when we pay tributes to some of the personalities who either have their birthdays or birth anniversaries or death anniversaries.
0: बिल्कुल।
1: Let's start with the headlines first.
0: जी, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी खबर से। इसके बारे में और हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ ही मनाया जा रहा है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी इस अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन केंद्र हिस्सा लेंगे।

0: ये रिले 15 अगस्त को फिजी के शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा और ये अभियान चलेगा 17 तारीख तक।
1: That's right. And Prime Minister Narendra Modi received a phone call from US Vice President J.D. Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. They noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both the leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest.
0: और सर आपको बता दें कि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने यह भी कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है।
1: The centre has notified the appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka, with Madras High Court receiving the largest share of new appointees. According to a notification issued by the Ministry of Law and Justice, the appointments include 20 advocates and 10 judicial officers. Of the total, 15 judges have been appointed to the Madras High Court, 8 to the Calcutta High Court, 6 to the Karnataka High Court and 1 to the Madhya Pradesh High Court.
0: जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई बारिश के कारण पहलगाम और बालटल दोनों मार्गों पर अमरनाथ यात्रा आज से स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से किसी भी नए यात्रा जत्थे को रवाना नहीं किया गया।
1: The flood situation in Assam remained grim, with the toll reaching 99 as one more death was reported and over 1.47 lakh people are still affected. The Assam Disaster Management Authority bulletin said the latest fatality was reported from Golaghat district. Bulletin said that 12 districts of Shonitpur, Nagaon, Golaghat, Shivasagar, Hojai, Darang, Jorhat, Dhemaji, Charaideo, Korbi, Onglong, Lakhimpur and Bishwanath remained affected by the deluge. The state administration is operating 53 relief camps, sheltering more than 8,000 displaced people. Another 41 relief distribution centers are also functional.
0: और सारा वहीं मौसम विभाग ने भी आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश पूर्वोत्तर क्षेत्र में आज तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी आज तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। कल नई दिल्ली में तेज बारिश हुई और आज भी राष्ट्रीय राजधानी में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है।
1: The United States is considering ending a provision that gives certain foreign workers up to 60 days to find a new job after losing their employment. The proposal is currently under review by the White House Office of Management and Budget and has not yet become a rule, with details of the proposed changes not publicly available in full. A move like this could require affected H-1B skilled workers and their dependents to leave the country almost immediately. If the regulation is finalized, it would remove the existing 60-day grace period for certain workers and their dependents when the employment on which their immigration status is based ends before the authorized period of stay expires. And Goa should be portrayed on the big screen not just through its beaches and tourism but also through its rich history, culture and traditions. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has made this appeal to filmmakers.
2: Speaking at the inauguration of the 15th Goa Marathi Film Festival in Panji, Dr. Sawant urged filmmakers to showcase Goa's temples, heritage and folk culture through cinema. He said films can play an important role in taking the stories of Goa's freedom fighters, including Hira Guruji Purushottam Kakorkar and T.B. Kunha, to the younger generation. The chief minister said the state government is providing various incentives to promote Marathi and Konkani cinema, while the Entertainment Society of Goa is extending support to filmmakers. Senior actor Mohan Joshi was honored with Lifetime Achievement Award for his contribution to cinema. The three-day festival being held from August 7 to 9 features 25 Marathi feature films along with documentaries and short films. For Aaj Savere, Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
0: और सारा खेलों के बात कर लेते हैं। चीन के हेफई में आयोजित 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत सांगनिक राय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने अंडर 31 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। और श्रोताओं, अब हम बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुख करेंगे महानगरों की खबरों का। सबसे पहले जानेंगे चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़ी खबरें और फिर आएंगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता पर।
1: सो लेट्स स्टार्ट विद शहरी चेन्नई। द कंसल्टेटिव मीटिंग ऑन डीलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज कन्वीन्ड बाय द टीवीके लेड गवर्नमेंट डिस्कस द प्रपोज डीलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज एट चेन्नई ऑन सैटरडे। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डीएमके, एआईएडीएमके, एमएनएम, डीएमडीके एंड पीएमके डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। एमपीज फ्रॉम कांग्रेस, CPI, CPM, VCK, MDMK and IUML attended the meeting, chaired by Chief Minister C. Joseph Vijay. In his remarks at the meeting, Chief Minister Vijay said that the present ratio representation from the states should not be changed and should continue in the same manner. He said that it is imperative that Tamil Nadu MPs should stand together and protect the rights of the state. It was decided to pass a resolution demanding the cancellation of delimitation in the state assembly. Congress MP Praveen Chakrabarty said that the demand is clear that presently there is no change needed in delimitation and expressed a disappointment about the boycott of the meeting by the DMK and the AIADMK. DMK MP Kani Moy in her reaction blamed the ruling state government for being ignorant of the Kaveri issue and diverted the attention to delimitation, which will not be taken up in the current session of the parliament. Out of the 57 MPs from the state, only 20 of them attended. Moving on to Bengaluru, the Food Safety Wing under the Food Safety and Drug Administration Unit of Health and Family Welfare Department in Karnataka carried out a special inspection drive at the food storage facilities in Bengaluru. These facilities, visited by the inspection team, supply food items, meat and fish to national and international level hotels in the city. During the inspection at Coldman Logistics Private Limited and Radha Krishna Foodland Limited, the food safety team found around 70 kgs of soy sauce and various types of sauces that were nearing their expiry date. All such products nearing expiry dates were seized and confiscated by the team. The team also collected samples of 5 meat and 13 other food items for analysis. Around 10 liters of various beverages, including strawberry flavored beverages and other beverages nearing expiry dates, were also seized and confiscated. Notices were served to the facilities for violating food safety and quality requirements under the Food Safety and Standards Act and relevant rules. Moving on to Hyderabad, Hyderabad District in Charge Minister Poonam Prabhakar has launched a special IEC awareness program as part of GHMC's monsoon drive to prevent mosquito-borne diseases, to run from 11th August to 21st. He inaugurated the program at the minister's quarters and reviewed anti-larva equipment used by the entomology department. The minister said GHMC will hold a Friday dry day campaign every Friday, along with door-to-door awareness, anti-larva operations, fogging and pamphlet distribution across the city. He urged citizens to take personal responsibility for keeping their homes and surroundings clean and to remove stagnant water to stop mosquito breeding, especially after recent rains. He said prevention is better than treatment and Hyderabad can stay healthy only if people cooperate with the government's efforts. And Farhat, I think this holds true not just for Hyderabad. I think monsoons to pure desh mein aaye hue hain. So it's very important that all of us probably take care ki kahin bhi pani jo jama na ho, you know, because this is the season where infections and viruses, they are in abundance. So one has to be very, very careful. So Farhat, this was the buzz that I had from these three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest you have from Mumbai, Delhi and Kolkata?
0: जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली सरकार के सभी 13 जिलों में बाल भिक्षुक मुक्त दिल्ली, चाइल्ड बेगर फ्री अभियान शुरू करने जा रही है और इस अभियान का उद्देश्य है भीख मांगते पाए जाने वाले बच्चों की सुरक्षा करना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने भी बताया कि यह अभियान उन संगठित गिरोहों की भी पहचान करेगा और उनका पर्दाफाश करेगा जो बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं। और स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कल से 12 अगस्त तक वंदे मातरम अ टाइमलेस ट्रिब्यूट टू द मदरलैंड कार्यक्रम आयोजित करेगा। वंदे मातरम पर कल विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई है जिसमें दुर्लभ दस्तावेज और तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई। आज बहुभाषी सुलेख प्रदर्शन और 11 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के करीब 20 विद्यालयों के बीच समूह गायन प्रतियोगिता होगी। कार्यक्रम का समापन 12 अगस्त को विजेता स्कूल, संग्रहालय के अधिकारियों और CISF बैंड द्वारा सामूहिक गायन के साथ होगा और यह आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने और स्वतंत्रता संग्राम में इसके योगदान को समर्पित है। और अब मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई के यशवंतराव चौहान केंद्र में कल आयोजित वान रंग कार्यक्रम को भरपूर उत्साह मिला, जिसमें स्कूली और कॉलेज के छात्रों ने वारली और गोंड कला पर कार्यशालाओं में भाग लिया। वारली कला कार्यशाला में छात्रों को रचना, प्रतीकवाद, गति और कहानी कहने का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ। और बात अब पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ शहर के दो स्थानों पर आधिकारिक राजकीय समारोह के माध्यम से मनाएगी। पहला समारोह राइटर्स बिल्डिंग पोकमेंट में होगा सुबह 11:30 बजे से, और इसके बाद दूसरा समारोह होगा कोलकाता मैदान में मातंगिनी हाजरा प्रतिमा के आधार पर 11:45 पर। सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों और पर्यटन विभागों के माननीय राज्य मंत्री श्रीमती पूर्णिमा चक्रवर्ती राज्य सरकार की ओर से दोनों आधिकारिक कार्यक्रमों में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और अब आइए महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं। तो सबसे पहले सारा, हमने शुरुआत में बता ही दिया है कि राजधानी दिल्ली में आज भी बारिश हो सकती है, लेकिन आइए तापमान के बारे में हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं। न्यूनतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी बारिश का दौर रहेगा, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है, अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।
1: सो फरहत, अब तो सावन का महीना शुरू हो गया है, तो अब नहीं तो कब होगी बारिश? आई थिंक इन द एंटायर कंट्री इज यू नो हैविंग रेन्स एंड ऑलमोस्ट सिमिलर वेदर, एंड चेन्नई विल ऑफ कोर्स विल हैव सम रेन टुडे एंड द स्काई वुड रिमेन जनरली क्लाउडी थ्रू आउट द डे। टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज फ्रॉम 27 to 36 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे, इट्स गोइंग टू बी क्वाइट humid also in Chennai. Bengaluru looks a bit more pleasant with a generally cloudy sky with light rain or drizzle. Temperatures likely to stay between 20 and 29 degrees Celsius. While Hyderabad will have rain, thunder showers, even a dust storm is expected there. Temperatures will likely range between 24 and 31 degrees Celsius. So it's set to be another warm day there as well, but with some light showers. And now when we come to that section, when we remember some of the important days that happened, important events that happened on this day. So let's take our listeners to the year 1173. Way back then on this day, construction started on the Leaning Tower of Pisa. Also on this day in 1810, Napoleon annexed Westphalia as part of the first French Empire. In 1831, the first U.S. steam engine train ran from Albany in New York. And in 1898, Rudolf Diesel of Germany obtained the patent for his internal combustion engine that was later known as the diesel engine.
0: और सारा 1925 में आज ही के दिन काकोरी कांड की घटना जो है वो घटित हुई थी।
1: That's right, government treasury from the postal train was looted near काकोरी स्टेशन। तो इसके बाद जो है काकोरी बहुत ज्यादा नुमाया हो गया। ऑफ कोर्स अगर आप लखनऊ और अवध वालों से पूछे तो काकोरी के कबाब भी बहुत मशहूर हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, द काकोरी कांड एज इट केम टू बी नोन इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री, दैट हैपेंड टुडे। एंड काकोरी इज अ स्मॉल टाउन दैट इज अराउंड 22 kilometers away from Lucknow, and the loot was actually by the members of Hindustan Socialist Republic Association. Also on this day 1942, the August Kranti Divas that commemorated the mass civil disobedience movement against British rule in India was observed.
0: Aur 1945 mein aaj hi ke din America ne Japan ke Nagasaki par dusra parmanu bomb giraya tha.
1: Yes, indeed, a very sad day, and in fact, a day that should not be forgotten in history. Because agar hum log bhool jate hain, to hum log dohrate hain itihas ko. But we should remember that on this day, 1945, a U.S. B-29 bomber dropped an atomic bomb on Nagasaki, Japan. Jiske aaj tak uske jo effects hain,
0: wo dekhne ko mil jata hai.
1: Yes, absolutely. Also on this day, 1966, the heroes of the 1942 Quit India movement, they were officially honored at a special public rally that was held at the historic Red Fort.
0: सन 2007 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मरम्मत के महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम लेकर अंतरिक्ष यान एंडेवर ने अपने अभियान पर निकला। और इसके अलावा सन 2012 में भारतीय सेना ने परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का आज ही के दिन सफल परीक्षण किया था।
1: And now, Farhat, when we remember some of the personalities who either have their birthdays, birth anniversaries or death anniversaries, तो इस फेहरिस्त में सबसे पहला नाम मेरे पास है आचार्य शिव पूजन सहाय का. It's his birth anniversary. A very noted Hindi and Bhojpuri novelist, editor and prose writer. He contributed in pioneering modern trends. His autobiographical story, Mata Ka Aachal, also featured in NCERT Hindi textbook Kritika for the 10th grade. He was also conferred with the

0: Now to join the editorial department of Dulare Lal Bhargav's Madhuri, and where that is where he worked with Munshi Premchand and edited his Rang Bhumi and some of his other stories. In 1925, though, he returned to Calcutta and engaged in editing short-lived journals such as Samanvay, Mauji, Golmaal and Upanyas Tarang. Finally, he moved to Varanasi in 1926 to work as a freelance editor.
1: और अब आइए याद कर लेते हैं विख्यात गणितज्ञ, पुस्तकालय अध्यक्ष और शिक्षा शास्त्री शियाली राम अमृता रंगनाथन को, जिन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का अध्यक्ष का जनक माना जाता है। ऐसा रंगनाथन ने कोलन वर्गीकरण और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बनाया। पुस्तकालय विज्ञान को महत्व प्रदान करने और भारत में इसका प्रचार प्रसार करने में उनका सक्रिय योगदान रहा। और अब हम याद कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, जनवादी विचारक, फिल्म पटकथा लेखक, उच्च कोटि के संपादक, कुशल प्रवक्ता और स्तंभ लेखक मनोहर श्याम जोशी को। दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिकों बुनियाद, नेताजी कहें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग के कारण वो भारत के घर घर में प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने धारावाहिक और फिल्म लेखन से संबंधित पटकथा लेखन नामक पुस्तक की भी रचना की। और 1987 में जब टेलीविजन पर बुनियाद सीरियल का प्रसारण हुआ, तब ये भारत में टेलीविजन धारावाहिकों के लिए कसौटी बन गया। उंगली पर गिने जा सकने वाले चंद धारावाहिकों को छोड़ दें तो तब से लेकर अब तक कोई भी धारावाहिक इस ऊंचाई को नहीं छू सकता। तो क्यों ना इसको फिर से एक बार याद किया जाए। सारा
2: कहीं

0: भूषण पुत्र, तुम लोग जाना चाहो तो जाओ, तुम्हें मैंने कभी नहीं रोका।
1: आप कैसी बात करते हो माता जी, जब भी जाएंगे सब इकट्ठे जाएंगे।
2: यही सुनते सुनते तो जुलाई से सितंबर आ गया, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं। 15 अगस्त को ही पता चल गया था कि ससु जी।
0: कुछ नहीं पता चला था, अगर पता चल गया होता तो मैं यहाँ इंतजार करने को तो नहीं ना कहती।
2: तहखाने में ससुर जी की छड़ी मिल गई, टूटा चश्मा मिल गया, खून के धब्बे दिख गए। अब और इसका मतलब ये तो नहीं कि वो
0: नहीं, वो जिंदा है, वो जरूर आएंगे।
2: और इसी उम्मीद में हम सब यहाँ मर जाएंगे।
0: शुभ शुभ बोलो बीबी रानी।
3: तो बुनियाद के बनने और टीवी पर आने की कहानी जो है वो शुरू होती है 1984 में सारा,
4: और बहुत ही नॉस्टैल्जिक लगा ये सुन के। स्पेशली आई डोंट थिंक सो द जनरेशन वुड नो दिस, बट दीज वर द सीरियल्स जिन्होंने यू कैन से एंटरटेनमेंट की बुनियाद भी डाली हमारी कंट्री में।
3: आज भी इस तरह के सीरियल्स को अगर हम याद करते तो मुझे लगता है अभी जो है इस तरह के सीरियल्स नहीं बन रहे।
4: यस, एंड थैंकफुली थैंक्स टू द वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म, इट इज आर्काइव्ड, एंड आपको कोई भी अगर आज कभी भी जनरेशन का पहले आज की कोई भी वो सीरियल्स को फिर से देख सकता है। And they're worth watching.
3: हाँ, बिल्कुल सारा। और अगर आप सपने देखती हैं तो मुझे लगता है आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो जरूर याद होगा।
4: बिल्कुल।
3: तो आइए सुन लेते हैं।

0: छाप वाला
1: गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी।
2: अरे बंद कीजिए ना गाना गाना, हम कुछ भूल जाएंगी तो माई बाबूजी को तकलीफ हो जाएगा। अपना से तो आप कुछ याद रखते नहीं। अरे आप तो यहाँ तक बिसर जाइएगा कि रात की ट्रेन से माई बाबूजी आने वाले हैं धनबाद से।
3: अरे तुम्हारे माई बाबूजी हमारा गाना टाना बंद कर दिए, नहीं तो आज हम लता मंगेशकर होते।
2: अरे लता मंगेशकर और रफीक मोहम्मद तो आप बाद में होते, पहले यहाँ बेकारी और भूखमरी से परान निकल जाता। अरे वो तो धन है हमारे बाबूजी जे राम खिलावन मामा मंत्री जी का पैरवी लगाकर
4: आपको नौकरी दिला दिए, नहीं तो हो गई होती छुट्टी।
5: तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने यही थे।
6: राइट, टुडे इज ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावन कुमार टाक, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड लिरिसिस्ट। ही डायरेक्टेड मेनी हिंदी फिल्म्स इंक्लूडिंग सक्सेसफुल फिल्म्स लाइक साजन बिना सुहागन, सौतन, सौतन की बेटी, और सबको याद होगा सनम बेवफा। ऑफकोर्स ही इज क्रेडिट विद गिविंग ब्रेक टू एक्टर्स सच एज संजीव कुमार एंड महमूद जूनियर। हिज मोस्ट फेमस

0: Directorial venture was Rajesh Khanna's Star Swatan, which was the first Indian film to be shot in Mauritius. In fact, Sawan Kumar ne hi Sanjeev Kumar ko unka naam diya tha. It was, sab log jante unka real name Hari Bhai Jariwala tha.
1: जी.
0: तो एक हीरो जैसा नाम तो कहीं नहीं लगता. तो इट वॉज सावन कुमार हु सेड दैट ही शुड यू नो स्टिक टू द नेम संजीव कुमार. एंड नौनिहाल ऑफकोर्स रिसीव प्रेजिडेंशियल मैंशन एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स देन. उसके अलावा सनम बेवफा का जब जिक्र हुआ है तो इस मूवी में बहुत ही खूबसूरत गाने थे. Why not listen to one of them?

0: और सारा ये प्यारी सी आवाज़ जो आप सुन रही हैं, इसमें ये गीत गाया था अनुराधा पौडवाल ने और अमित कुमार ने, और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने.
1: And he was also a prolific lyricist and wrote songs for most of his produced and directed films. And apart from this, he also wrote lyrics for songs for movies that were produced and directed by other filmmakers. Among those were Sabak, the 1973 movie starring Shatrughan Sinha, and Poonam, featuring the popular song Barkha Rani Zara Jamke Barso. और आजकल के मौसम पे सही है ये गाना, लेकिन अब हमारे पास वक्त कम है इसलिए दूसरी पर्सनालिटीज की भी बात कर लेते हैं. टुडे इज द बर्थडे ऑफ महेश बाबू, ऑफ कोर्स अ वेरी वेरी अकॉम्प्लिश्ड एक्टर, प्रोड्यूसर, फिलैंथ्रोपिस्ट, वॉइस एक्टर हु वर्क्स प्रेडोमिनेंटली इन तेलुगु सिनेमा, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स इन इंडियन सिनेमा एंड हैज बीन फीचर्ड इन फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट from 2012 to 2025. Referred to in the media as the superstar, he has appeared in over 30 films and has been a recipient of several accolades, including 9 Nandi Awards, 5 Filmfare Awards South, and 4 Seema Awards. Let's listen to this song.

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
5: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
6: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविन्द्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
4: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के KJ हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल न पूछें, समाधान भी खोजें, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को पीएम ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल, क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कांवड़िए जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज, न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, AI ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 एआई से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर-31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस डिस्कस वेज टू फर्दर स्ट्रेंथन कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन की एरियाज। हर घर तिरंगा कैंपेन बिगिंस टुडे, कोइंसाइडिंग विद 150th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। अपॉइंटमेंट ऑफ 30 जजेस फॉर हाई कोर्ट्स ऑफ मद्रास, कैलकटा, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका नोटिफाइड। Amarnath Yatra to remain suspended from both Pahalgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Saagnik Roy and Sayantan Kushari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US Comprehensive Global Strategic Partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defence, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi, yesterday, the Prime Minister cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
7: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi Viksit Bharat ki majboot neev ka saboot hai. Is majboot neev par आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
6: He further urged the students to keep the national interest at the center of their decisions.
7: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
6: The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. Over the years, it has emerged a true people's movement that inspires citizens across regions and communities to celebrate the tricolour as a symbol of India's unity, honour and collective national identity. A report.
8: This year's campaign holds a special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song, Vande Mataram, bringing together national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. As part of the celebrations, mass singing of Vande Mataram will be organized across the country. As part of the Independence Day commemorations, the government will also observe Partition Horrors Remembrance Day on August 14th across the country.

0: Pradesh and parts of northeast India today. The meteorological department has issued a warning of heavy to very heavy rainfall in several districts of Uttarakhand over the next 48 hours. Our correspondent has more details.
1: According to the Met Department, heavy rainfall is likely in the hilly districts of the state today. A warning of heavy to very heavy rainfall has been issued for today for Dehradun, Bageshwar, Nainital and Champawat today and tomorrow. A yellow alert for heavy rainfall at isolated places has been issued for Uttarkashi, Rudraprayag, Chamoli, Tehri, Pauri, Pithoragarh and Udham Singh Nagar. In view of the weather conditions, Secretary of Disaster Management and Rehabilitation, Vinod Kumar Suman, has directed all concerned districts to remain on alert mode around the clock. Departments have been instructed to keep necessary resources and equipment ready and to take immediate action to clear roads in case of disruption. Mr. Suman has appealed to residents and tourists to exercise caution in viewing of the weather department's warning. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
0: Odisha is witnessing another spell of widespread rain with a fresh low-pressure system over the Bay of Bengal triggering heavy to very heavy rainfall in several parts of the state. More from our correspondent.
2: Odisha is witnessing another spell of widespread rain with the IMD warning of heavy rainfall in several districts. Four districts, Sundargarh, Sambalpur, Jharsuguda and Bargarh are under orange warning, while the rest of the state remains under yellow warning. The rising Baitarani and Salandhi rivers have added to the concern in Bhadrak, where people in vulnerable and low-lying areas are apprehensive of renewed inundation. After the recent floods, many families are still struggling to restore normal life with damaged roads and communication links, waterlogging and crop losses adding to their difficulties. Authorities are closely monitoring the situation and maintaining preparedness in vulnerable areas. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: India's Sagnik Roy and Sayantan Kushari clinched the gold medal in the under 31 pairs at the 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships in Hefei, China. In the first elimination round, 34 pairs competed and the top 14 advanced to Flight A, including the Indian duo. They then competed in the round-robin format with Sagnik and Sayantan finishing on top with 377.67 match points. M. Ferenca and F. Katusic of Croatia finished second, while China's Jay Han and Zi Wang took the third spot. Bridge is a trick-taking card game played in partnerships. Union Home Minister Amit Shah has paid tribute to the immortal revolutionaries at the Kakori train action. In a social media post, Mr. Shah said that the Kakori train action was an unforgettable chapter of India's freedom struggle, which gave fresh impetus to the armed revolution against the injustice and oppression of the British rule. He said that under the leadership of Chandrasekhar Azad and Ram Prasad Bismil, the brave freedom fighters, through their indomitable courage and dedication, conveyed to the British regime that the resources of the country belonged to its people. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
3: Thank you, Shagun. You will power Viksit Bharat journey, says Modi to Gen Z at IIT, headlines the Asian Age. PM asks students to put nation's interests over personal gains, leads Hindustan Times. Meta told to give plan to revamp algorithms, writes the Tribune. CBI charge sheet names three NTA experts as key links in NEET UG 2026 paper leak, informs the Statesman. Ladakh logs 56.15% surge in July footfall of tourists, reads a top story in the Asian Age. The paper adds, PM push gave domestic tourism boost. Ladakh's tourism sector is experiencing one of its strongest phases in recent years, with visitor numbers climbing sharply and consistently throughout 2026. The Financial Express writes, no charges for UPI users, small merchants, clarifies the government. In a piece titled Growing Old, the Statesman argues, for generations, aging was associated with restraint. People slowed down, spent less, took fewer risks and gradually ceded social and economic space to younger generations. That understanding is being overturned. Longer life expectancy, better health care and rising wealth have transformed retirement from a brief closing chapter into a life state that can last three decades. And finally, Hilsa fish spotted in Ganga near Ghazipur in UP decades after barrage cut off migration route, informs Hindustan Times. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discuss ways to further strengthen comprehensive global strategic partnership in key areas. Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song, Vande Mataram. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pahalgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Sagnik Roy and Sayantan Koshari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
4: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस ने अहम शोबों में जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है। ये मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर शुरू की जा रही है। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट्स के लिए 30 जजों की तकरीरी को नोटिफाई किया गया है। रास्तों की मरम्मत और खराब मौसम की पेशगोई के बाइस पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रहेगी। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और सगनिक रॉय और सयांतन कुशारी ने नवें आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में 31 बरस की उम्र वाली जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कल अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस की जानिब से फोन कॉल मौसूल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने अहम शोबों में भारत और अमरीका के दरमियान जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद वसत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने आला सतही रवाबित में मुसलसल पेशरफ्त का जिक्र किया और तिजारत, दिफा, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, तवानाई की यकीनी फराहमी और अहम मादनियात के शोबों में तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने जनाब वैंस और उनकी अहलिया उषा वैंस को बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी और पूरे खानदान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में नए शोबे उभर रहे हैं जो नौजवानों के लिए नए मौके फराहम कर रहे हैं। कल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली के 57वें जलसे तकसीम असनास से खिताब करते हुए उन्होंने सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन्स जैसे शोबों का जिक्र किया और कहा कि भारत तमाम शोबों में खुद कफील बनने की समत में काम कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि खुद किफालत की यह कोशिश विकसित भारत बनाने के लिए एक मजबूत बुनियाद साबित होगी।
5: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है।
4: उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो कौमी मफाद को अपने फैसलों के मरकज में रखें।
5: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
4: हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक जारी रहेगी। इस पहल का मकसद शहरियों को हुब्बुल वतनी, कौमी इत्तेहाद और भारत के मालामाल विरसे का जश्न मनाने की सरगर्मियों में शिरकत करने और कौमी परचम लहराने के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करना है। इस मुहिम का आगाज आजादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के हिस्से के तौर पर 2022 में किया गया था। उस वक्त से अब तक ये मुल्क की सबसे बड़ी अवामी शिरकत की तहरीक के तौर पर उभरी है। گزشتہ برسوں میں یہ حقیقی طور پر لوگوں کی تحریک بن گئی ہے جو ملک کے سبھی خطوں اور برادریوں کو بھارت کے اتحاد، وقار اور مجموعی قومی شناخت کا جشن منانے کے لیے تحریک دیتی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
6: اس سال کی ہر گھر ترنگا مہم خصوصی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس سال بھارت کے قومی گیت وندے ماترم کی بھی 150ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ قومی گیت اور قومی پرچم کا ایک ساتھ ہونا حب الوطنی کا منفرد جشن ہے۔ تقریبات کے حصے کے طور پر پورے ملک میں ایک ساتھ مل کر وندے ماترم گائے جانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یوم آزادی کی یادگار کے طور پر 14 اگست کو ملک کی تقسیم کی ہولناکیوں کو یاد کیا جائے گا، تاکہ ملک کی تقسیم کے باعث ہونے والی تکلیفوں، مصائب اور بے گھر ہونے جیسے ہولناک واقعات کو یاد رکھا جا سکے۔ اس سلسلے میں پورے ملک میں خاموش مارچ نکالے جائیں گے، ملک کی تقسیم سے متعلق نمائشوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ثقافت کی وزارت نے لوگوں سے قومی پرچم پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے اسے لہرانے اور قومی گیت وندے ماترم کو سیکھنے اور گانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ بیرون ملک بھارت کے 200 سے زیادہ سفارت خانے، ہائی کمشنر اور قونسل خانے اس مہم کے تحت مختلف تقاریب کا انعقاد کریں گے۔ اس سال کی اہم تقریب سوری پتھ ترنگا ڈیجیٹل ریلے ہے، جس میں 54 بھارتی مشنز شرکت کریں گے۔ یہ ریلے 15 اگست کو فیجی سے شروع ہوگی اور سین فرانسسکو میں بھارت کے قونسل جنرل پر ختم ہوگی۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
4: مرکزی وزیر داخلہ جناب امیت شاہ 2 روزہ سرکاری دورے پر کل رات پدوچیری پہنچے، جہاں لوک نواس میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس وقت جناب شاہ گوری میدو کے پولیس ٹریننگ سکول کے میدان میں پدوچیری پولیس کو پریزیڈنٹس پولیس کلر عطا کیے جانے کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ پیش ایک رپورٹ۔
7: مرکزی وزیر داخلہ جناب امیت شاہ باوقار پریزیڈنٹس پولیس کلر عطا کیے جانے کی تقریب میں پدوچیری پولیس کو خصوصی پرچم پیش کریں گے۔ صدر جمہوریہ نے 8 مئی کو پدوچیری پولیس کو ان کی غیر معمولی خدمات، نظم و ضبط اور ممتاز حصولیابیوں کے اعتراف میں پولیس کلر عطا کیے جانے کا اعلان کیا تھا۔ اس موقع پر پولیس کی مختلف شاخوں کے جوان خصوصی پریڈ میں حصہ لے رہے ہیں۔ تقریب میں پدوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر کے کیلاش ناتھن، وزیر اعلی این رنگا سامی اور امور داخلہ کے وزیر اے نمشوام بھی موجود ہیں۔ دوپہر کو جناب شاہ پدوچیری کے مروگا تھیٹر سگنل سے ہر گھر ترنگا یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ پدوچیری سے بیبن اسناد کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
4: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کاکوری ٹرین ایکشن کے عظیم مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب شاہ نے کہا کہ کاکوری ٹرین ایکشن بھارت کی آزادی کی جدوجہد کا ایک ناقابل فراموش باب ہے، جس نے برطانوی حکومت کے ظلم و جبر اور ناانصافی کے خلاف مسلح انقلابی تحریک کو نئی رفتار دی۔ انہوں نے کہا کہ چندر شیکھر آزاد اور رام پرساد بسمل کی قیادت میں بہادر مجاہدین آزادی نے اپنی بے مثال جرات اور عزم کے ذریعے برطانوی حکومت کو یہ پیغام دیا کہ ملک کے وسائل اس کے عوام کی ملکیت ہیں۔ جناب شاہ نے کہا کہ ملک کاکوری ٹرین ایکشن کے تمام عظیم مجاہدین آزادی کی ہمیشہ احسان مند رہے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکز نے مدراس، کلکتہ، مدھیہ پردیش اور کرناٹک ہائی کورٹس کے لیے 30 ججوں کی تقرری کو نوٹیفائی کیا ہے۔ ان تقرریوں میں سب سے زیادہ 15 جج مدراس ہائی کورٹ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ قانون اور انصاف کی وزارت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ان تقرریوں میں 20 وکیل اور 10 عدالتی افسران شامل ہیں۔ مدراس ہائی کورٹ میں مجموعی طور پر 15، کلکتہ ہائی کورٹ میں 8، کرناٹک ہائی کورٹ میں 6 اور مدھیہ پردیش ہائی کورٹ میں 1 جج کی تقرری عمل میں آئی ہے۔ یہ تقرریاں صدر جمہوریہ نے بھارت کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کالیجیم سے مشاورت کے بعد کی ہیں۔ نئے تقرر کردہ ججوں سے توقع ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اپنے عہدے کا حلف لے کر ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ ان تقرریوں سے 4 ہائی کورٹس میں ججوں کی خالی آسامیوں کو پر کرنے اور زیر التوا مقدمات کے جلد نمٹانے میں مدد ملنے کی توقع ہے۔ جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی کی بھرتی کے امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے جھارکھنڈ کے طلبہ آج رانچی میں ریاستی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ ایک اور دور کی بات چیت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
6: جھارکھنڈ حکومت اور احتجاج کرنے والے طلبہ کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کا اگلا دور آج دوپہر کے قریب ہونے والا ہے۔ हुकूमत की कमेटी ने वजीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात की और तलबा के साथ पहले दौर की बातचीत में होने वाली पेशरफ से उन्हें आगाह किया। हुकूमत और एहतजाज करने वाले तलबा के मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान आला सतह की बातचीत का पहला दौर कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में खुशगवार माहौल में हुआ। हुकूमत के नुमाइंदों ने कहा कि वो इम्तिहान के निजाम में जामे इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। इसी दौरान तलबा रहनुमा रविन्द्र पासवान ने कहा कि तलबा गुज़श्ता 15 दिनों से गैर मुअय्यना मुद्दत के धरने पर बैठे हैं और उन्होंने अपने मुतालबात तफसील के साथ हुकूमत के सामने रख दिए हैं। तलबा का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती उनकी तहरीक जारी रहेगी। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
4: भारत के महकमा मौसमियात ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में तेज से बहुत तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जजायर में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान अब्र आलूद रहेगा और यहां हल्की बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड के कई जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश की वार्निंग जारी की है। आज बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली के लिए तेज से बहुत तेज बारिश के इम्कान के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत जिलों के लिए बाज मकामात पर शदीद बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को गरज चमक और आसमानी बिजली गिरने के इम्कान के बायस येलो अलर्ट के तहत रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
7: मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज रियासत के पहाड़ी जिलों में तेज बारिश का इम्कान है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में भी तेज से बहुत तेज बारिश की वार्निंग जारी की गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टेहरी, पावड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में बाज मकामात पर तेज बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के हालात के पेश नजर कुदरती आफात से निपटने और बाद आबादकारी के महकमे के सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन ने तमाम मुतालिका अजला को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत दी है। महकमों को जरूरी वसायल और आलात तैयार रखने और सड़कों पर रुकावट पैदा होने की सूरत में उन्हें फौरी तौर पर साफ करने की हिदायत भी दी गई है। देहरादून से साक्षी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
4: जम्मू कश्मीर में हालिया बारिश, रास्तों की मरम्मत के काम और आइंदा चंद दिनों में खराब मौसम की पेशगोई के बायस आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। यह फैसला यात्रियों की हिफाजत के पेश नजर एहतियाती इकदाम के तौर पर किया गया है। रामबन जिले समेत कश्मीर के बाज इलाकों में बारिश और खराब मौसम के हालात के पेश नजर एहतियाती तौर पर कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों के किसी नए काफिले को रवाना होने की इजाजत नहीं दी गई। 3,336 यात्रियों ने कल पवित्र गुफा के दर्शन किए और सरहदी सड़क तंजीम बीआरओ खराब रास्तों की मरम्मत और देखभाल का काम अंजाम दे रही है। हुक्काम ने यात्रियों को मशवरा दिया है कि वो सरकारी हिदायत और एडवाइजरी पर अमल करें। चीन के हेफई में मुनक़िदा 9वीं आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सियानतन कुशारी ने 31 साल तक की जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। पहले मरहले के आखिरी राउंड में 34 जोड़ियों ने हिस्सा लिया और सरफहरिस्त 14 जोड़ियां जिनमें भारतीय जोड़ी भी शामिल है फ्लाइट ए में पहुंच गईं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
6: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के आईआईटी दिल्ली के 57वें सालाना जलसे तकसीम असनाद तकरीब से खिताब की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तलबा से कहा कि नौजवान बाख्तियार होंगे तो भारत भी मजबूत होगा। दुनिया तेजी से बदल रही है, कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि आइंदा 20 से 30 साल बाद दुनिया कैसी होगी। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को शाये करते हुए सुर्खी बनाया है, गैर रुकाजी ईंधन साफ सुथरी तवानाई की ताकत और अजाइम की अलामत है। रोजनामा इनकलाब ने एक और अहम खबर को सुर्खी बनाया है, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन को मजबूत बनाने के लिए 187 उम्मीदवारों को तकर्रुनामे सौंपी।
4: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के नायब सदर जे डी वेंस ने अहम शोबों में जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है। ये मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर शुरू की जा रही है। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट्स के लिए 30 जजों की तकरीरी को नोटिफाई किया गया है। रास्तों की मरम्मत और खराब मौसम की पेशगोई के 22 पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रहेगी। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और सगनीक रॉय और सयातिन कुशारी ने नवे आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में 31 बरस की उम्र वाली जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: We bring you a talk on strengthening access to justice for senior citizens, from constitutional values to classroom learning, by Professor Vageshwari Deswal, University of Delhi. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
1: भारत में एक बहुत ही स्पीड से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। हमारी जो जनसंख्या है उसमें जो हम एल्डर पॉपुलेशन की बात करें तो वो 2011 में जो 100 मिलियन के करीब थी वो 2036 तक जाते जाते 230 मिलियन हो जाएंगी, अर्थात कि वो डबल से भी ज्यादा हो जाएंगी। और हमें ये समझना होगा कि आने वाले समय में हर 7 भारतीयों में से एक भारतीय इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, मतलब वो 60 या उससे ज्यादा उम्र का होगा। तो हम जब इस टॉपिक पे बात करें तो पहले ये समझें कि सीनियर सिटीजन कौन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो भी 60 या उससे बड़ी उम्र के हैं उन्हें हम एल्डरली मानेंगे। इंडिया में भी नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से जो भी 60 साल से ऊपर की आयु के हैं वो सब सीनियर सिटीजन्स हैं। यही डेफिनेशन हमने अपने सीनियर सिटीजन्स एक्ट में भी डाली है। तो आप देखिए, कानून ने तो एज बेस्ड हमको बता दिया है कि एल्डरली लोग कौन हैं, लेकिन जनरली हम लोग कैसे मानते हैं कि जो 80 से ऊपर हैं उनको हम एक एल्डरली कैटेगरी में शामिल करते हैं। इंडिया में हमेशा से जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें बुजुर्गों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। वो हमेशा से बहुत आदरणीय रहे हैं, देव स्वरूप हैं। तो हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां हम अपने बुजुर्गों को इतना मान सम्मान देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एल्डर एब्यूज, ये जो ऐसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमारे यहाँ थे ही नहीं, वो क्यों यहाँ पर आ गए, जिसके लिए कि अब उन्हें एड्रेस करने के लिए हमें कानून की सहायता लेनी पड़ रही है। अगर हम बात करें, शहरीकरण होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमारा जो जॉइंट फैमिली सेटअप था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। जॉइंट फैमिलीज में जब तक हम लोग रहते थे तो एक पर्सनलाइज्ड होम केयर, हर इंसान के परिवार में उसको किस चीज की आवश्यकता है उस चीज का ध्यान रखा जाता था। लोनलीनेस की तो कोई बात थी ही नहीं, अगर हम कहें इमोशनल आइसोलेशन, डिप्रेशन, इन सब चीजों के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता था, क्योंकि एक भरा पूरा परिवार होता था जिसमें बुजुर्गों को भी कंपनी मिल रही है, बच्चों को भी कंपनी मिल रही है, जो लोग जॉब करते हैं, जो कमाने वाली आयु के लोग हैं उसमें, उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता था क्योंकि परिवार की तरफ से वो निश्चिंत रहते थे। तो एक अच्छी मेंटल हेल्थ थी, इमोशनली सब लोग स्टेबल थे, सब घर का जो भी चोर्स, जो डोमेस्टिक चोर्स की हम बात करें, काम काज आपस में बढ़ जाता था। पेरेंट्स जो थे, एल्डरली थे, उनको भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस रहता था कि हम किसी तरीके से परिवार के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम पैसा नहीं भी कमा रहे हैं तो हम बच्चों की देखभाल करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, हमारा योगदान है कि किस तरीके से हम उन्हें अपने कल्चर, अपने वैल्यूज, कस्टम्स, ये सब उन्हें हम पास ऑन कर रहे हैं। तो एक कल्चरल कॉन्टिन्यूटी भी बिलोंग थी और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी था। लेकिन जैसे जैसे फैमिली, जॉइंट फैमिली सेटअप का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो समझ में आने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को, एल्डरली लोगों को भी, क्योंकि ये तीनों ऐसे वर्ग थे जिनके हाथ में कोई भी फाइनेंशियल या अर्निंग कैपेसिटी नहीं थी, तो कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी नहीं थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 जो कि एक इतना इलास्टिक प्रोविजन है कि हर तरीके के जो मानव अधिकार हैं उन्हें हम आर्टिकल 21 के तहत कवर कर लेते हैं। और आर्टिकल 21 वैसे तो उसको कानूनी भाषा में कहें, वो कहता है नो वन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन इसमें जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो जो राइट टू लाइफ है उसके डायमेंशंस बहुत ज्यादा हैं, और राइट टू लाइफ सिर्फ एक पशु के समान जीवन की नहीं, हम एक डिग्निफाइड

0: सारे जजमेंट्स हैं. आर्टिकल 41, स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ ओल्ड एज. एंड आर्टिकल 46 जो कि मैंडेट करता है कि स्टेट हमारे जितने भी कमजोर वर्ग हैं उन सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें. उन कमजोर वर्गों में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी आते हैं. तो आर्टिकल 41 और 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे देश को, हमारे स्टेट को एक गोल देते हैं कि उस हिसाब से हमको कानून बनाने हैं, उस हिसाब से हमें पॉलिसीज बनानी है जिसमें कि हम अपने बुजुर्गों की को सुरक्षित रख सके. हमारे पास अन्य कानून भी हैं जैसे कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है जहां कि ये एक पर्सनल लॉ है जो कि केवल हिंदुओं पे लागू होता है. तो इस कानून के हिसाब से बेटों और बेटियों दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माता और पिता को संभालने की. देखिए पहले हम कहते थे बेटी को ये जब शादी कर दी गई तो उसे दूसरे परिवार का हिस्सा मानते थे, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी. लेकिन अब कानून क्या कहता है, न दहेज न महंगी शादी, बेटी को दीजिए संपत्ति आधी. और जब हम उसको अधिकार दे रहे हैं तो साथ में हम उस पर जिम्मेदारी भी डालेंगे. तो ये जिम्मेदारी है कि अब केवल ये नहीं कि बेटे ही संभालेंगे, बेटियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखें. उसी तरीके से मुस्लिम लॉ जो है उसमें भी बेटियों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी है. पारसी लॉ और क्रिश्चियन लॉ में कोई इस तरीके की बात नहीं कही गई है कि बच्चों की जिम्मेदारी है बड़ों को संभालने के लिए. इसीलिए हमारे पास सेक्युलर लॉ है. पहले हम CRPC कहते थे उसे, अब हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. तो ये जो कानून है ये भी प्रोवाइड करता है एक सेक्युलर रेमेडी जिसमें कि हर धर्म के लोग जाकर के वहां पर जो बच्चे हैं उनसे माता पिता अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं. उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर वो संभालने में सक्षम हैं अपने माता पिता को और माता पिता खुद को ध्यान रखने में सक्षम नहीं है तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है. उसके अलावा 2005 में हमें कानून मिला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्योंकि देखा गया है कि अगर हम हमारे से पहली पीढ़ी की महिलाओं की बात करें तो बहुत ऐसी महिलाएं बहुत कम थी जो कि बाहर जाती थी, कमाती थी, उनका कोई सोशल सर्कल था या उनकी कोई इनकम थी ओल्ड एज में. तो ऐसी जो औरतें हैं जो परिवारों में है लेकिन अगर उनका किसी भी तरीके से अब्यूज हो रहा है तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में क्योंकि वो रह रही हैं तो उनके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, उनके लिए रेजिडेंस ऑर्डर्स, उनके लिए मेंटेनेंस ऑर्डर्स, इन सब तरीके के रिलीफ का प्रावधान है कानून में.
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर सीनियर सिटीजंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज टू क्लासरूम लर्निंग. वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक.

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning.
2: मेजर एरियाज जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, इनकम सिक्योरिटी, क्योंकि अगर हम किसी तरीके से ये इंश्योर कर सकें कि बुजुर्गों के पास अपने लायक एक इनकम है तो उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर उनके हेल्थ केयर एक बहुत ही मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जैसे वो बड़े होते जाते हैं फंक्शनल कैपेसिटी उनकी इम्पेयर हो जाती है। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हेल्पलाइंस बनाई जानी चाहिए जो कि हमारे स्टेट में बना भी रखी हैं। हाउसिंग लोन्स मिलने चाहिए। एक हमें प्रोडक्टिव एजिंग, मतलब जब तक उनको किसी न किसी काम में अगर हम लगा सकते हैं तो उनको री एम्प्लॉयमेंट किसी तरीके से ऐसे उनको एंगेज करा जा सके ताकि मेंटल उनकी फैकल्टीज काम करती रहे, उनके लिए वेलफेयर फंड्स सेटअप करें। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडिया को हम इन्वॉल्व करें, अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए। मीडिया आजकल भी आप देखेंगे बुजुर्गों के हाथ में भी अगर स्मार्टफोन्स हैं वो भी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे वो रील देखते हैं, तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव हम रील्स बना सकते हैं बिकॉज वी आर ऑल हुक्ड ऑन टू दोज रील्स ना, कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो किस तरीके से वो कानून को अप्रोच कर सकती हैं, उनके लिए क्या क्या कानून में अलग अलग प्रावधान हैं। एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत जो हमारे देश में की गई 2005 में, उससे पहले यूएन ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें अपने ओल्डर पर्सन के लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करना है। इंडिया में भी 2005 से हमने ये एक ओल्ड पर्सन डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है, जो कि हर एक स्कूल में अगर आप देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें क्या है, जरूरी है कि बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट को, दादा दादी नाना नानी को साथ में स्कूल लेके जाए, तो जहां वो साथ में नहीं भी रहते थे फिर भी उनको बुलाया जाता है, ग्रुप एक्टिविटीज दी जाती हैं बच्चे

0: मिलके उनके साथ कोई प्रोग्राम्स अपने प्रिपेयर करते हैं, आइटम्स प्रेजेंटेशंस, वहां पर अलग अलग कॉम्पिटिशन किए जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का और ग्रैंड पेरेंट्स का एक इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो फिर इस तरीके के इवेंट्स के लिए दे लुक फॉरवर्ड टू दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नैतिक पतम एक गेम डिजाइन किया है कि जिससे कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस में हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि सारे के सारा परिवार मिलकर के साथ में इस गेम को खेलता है। हमें जरूरत है इस समय कि हम एल्डरली केयर को एजुकेशन में इंटीग्रेट करें। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है। कानून तो हमारे पास बहुत हैं, लीगल अवेयरनेस के लिए लीगल एड भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता है ना, हमने वो हेल्पलाइंस भी इंस्टीट्यूट करी हैं, हमने कोशिश करी है किसी की तरीके से हम डिजिटलाइज कर दें सिस्टम्स ताकि वो इजीली एक्सेस कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी एल्डर एब्यूज तो रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस तरीके के इंटर जनरेशनल प्रोग्राम्स बनाने हैं, हमें अपने करिकुलम को रिवाइज करना है ताकि जेरियाट्रिक हेल्थ, कॉग्निटिव डिक्लाइन, फिजिकल फंक्शनैलिटी, न्यूट्रिशनल नीड्स, ये सारी की सारी जो चीजें हैं बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई जाए। हम मॉड्यूल डाल दें स्कूल्स नहीं, बच्चे समझे, वो देखें घर में ये सब ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। यही बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे, कल को उनके पेरेंट्स भी अपना देखभाल करने में सक्षम होंगे, अपने बुजुर्गों की भी देखभाल कर पाएंगे, और ये बच्चे भी कल को जब बड़े होंगे इनके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में उन चीजों का असर रहेगा। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मली स्कूल्स कॉलेजेस में मेडिकल मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करें, CPR किस तरीके से वाइटल्स को चेक करना है, मेडिकेशन शेड्यूल्स को हम कैसे कर सकते हैं, मोबिलिटी एड्स, हियरिंग एड्स, इन सबको किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर चाहे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं चाहे सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, एजिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन है कि बड़े होते होते क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार क्या होता है कि हम रियलाइज ही नहीं करते, सडनली हमें लगता है कि इनको तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो हम शुरू से ही अगर उस चीज को समझ सके, अगर हमारे बच्चों में हम वो सेंसिटिविटी डाल सके, उनको एजुकेट कर सके, तो वो चीज बहुत अच्छी होगी चाहे स्कूल्स में कॉलेजेस में। और जो एडल्ट्स के लिए हमने इतने डिजिटल प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें उनको डिजिटली उनको लिटरेट करना भी जरूरी है, क्योंकि प्रोग्राम्स है लेकिन वो एक्सेस कैसे कर पाएंगे जब तक वो डिजिटली अवेयर नहीं होंगे। तो उसमें फिर यही जो स्कूल्स कॉलेजेस में अगर हम कम्युनिटी आउटरीच कोई एक्टिविटीज रखें, बच्चों को कहें कि आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, आप जाकर के उनके साथ ये आप उनको एजुकेट कीजिए, आप ओल्ड एज होम्स में जाइए या आपके घर में आपकी कम्युनिटी में जो एल्डर लोग हैं आप उनको अवेयर कीजिए, आप उनके साथ मिल करके ये क्विज सॉल्व कीजिए, या इस तरीके से अगर हम प्रोग्राम्स इंटीग्रेट कर पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। बैरियर्स जो हैं जस्टिस के लिए, कानून है सारे के सारे हमारे पास, पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे लीगल प्रोसीजर्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जो बुजुर्ग हैं उनके अपने मोबिलिटी के इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, बहुत जगह पर उन्हें पता भी नहीं है कानून का। उसके अलावा जो एक सोशल स्टिग्मा है, कोई क्या कहेगा कि आपने अपने ही बच्चों के खिलाफ शिकायत कर दी, परिवार उससे टूट जाएगा, वो ये नहीं समझते परिवार तो तब टूट गया जब आपके बच्चों ने आपके साथ इस तरीके की हरकत करी, आप तो केवल उस हरकत की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्टिग्मा है जिसमें कि हम कहते हैं नहीं बड़ों को ही समझदार होना चाहिए, बच्चों ने तो गलती की थी आप तो समझ सकते थे, लेकिन अब देखिए इतने अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए हैं जिसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं ना, आप उन्हें अपने घर से एविक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं अपने घर में अब्यूजिव बच्चों का बोझ ढूंढूं, या फिर मैंने प्रेम में आकर के अपने बच्चों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी कर दी थी, कल को वो मेरा ध्यान नहीं रखते हैं तो मैं उस ट्रांसफर को भी वॉइड कर सकती हूँ। तो वी गॉट सच गुड जजमेंट्स, बट द थिंग इज कि लोगों को पता नहीं है जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं। एक्सेस बढ़ाने के लिए हमें ई कोर्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा, ऑनलाइन फाइलिंग, टेली लॉ सर्विसेज, जैसे अगर हम टेली मेडिसिन की बात करते हैं वैसे ही हमें टेलीफोन पे भी कंसल्टेशंस की बात करनी पड़ेगी। सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल है जो एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बस जरूरी है अवेयरनेस की। हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम्स हैं अवेयरनेस, जिसमें कि हर एक वर्ग की ये जिम्मेदारी है, बच्चा बूढ़ा जवान सब मिल करके जब इस पे काबू करने की कोशिश करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर सीनियर सिटीजंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज टू क्लासरूम लर्निंग बाय प्रोफेसर वागेश्वरी देसवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने काकोरी रेल घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि काकोरी रेल घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है। इसने ब्रिटिश शासन के अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को नई गति प्रदान की। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में इस साहसी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अदम्य साहस और समर्पण से ब्रिटिश शासन को यह संदेश दिया कि देश के संसाधन उसकी जनता के हैं। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर पुदुचेरी में है। श्री शाह गोरमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर बढ़ता दिख रहा है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गिरने और आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा के कई क्षेत्रों में भी तेज वर्षा हो रही है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव वाले क्षेत्र का असर राज्य में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया के एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान हासिल किया। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान शियांशी को 14-21, 21-14, 21-14 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said, they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security, and critical minerals. Both the leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. Addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, yesterday, the Prime Minister cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said, this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
2: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi Viksit Bharat ki majboot neev ka saboot hai. Is majboot neev par आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: He further urged the students to keep national interests at the center of their decisions. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through the 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity, and India's cultural heritage. This year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song, Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. As part of the celebrations, mass singing of Vande Mataram will be organized across the country. More than 200 Indian embassies, high commissions and consulates will organize a series of events to mark the campaign. Union Home Minister Amit Shah will flag off the Har Ghar Tiranga Yatra at Muruga Theatre Signal in Puducherry today. Mr. Shah, who is on a two-day official visit, arrived in the Union Territory last night. The Centre has notified the appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka, with Madras High Court receiving the largest share of new appointees. According to a notification issued by the Ministry of Law and Justice, the appointments include 20 advocates, 10 judicial officers. Of the total, 15 judges have been appointed to the Madras High Court, 8 to Calcutta High Court, 6 to the Karnataka High Court and 1 to the Madhya Pradesh High Court. Jharkhand students protesting against alleged irregularities in JPSC and JSSC recruitment exams will hold another round of talks with the representatives of state government in Ranchi today. The next round of talks between Jharkhand government and representatives of protesting students is scheduled around noon today. In Jammu and Kashmir, the annual Amarnath Yatra will remain suspended on both Pahalgam and Baltal roads from today due to recent rains, repair work of pilgrimage tracks and forecast of adverse weather conditions over the next few days. The decision to temporarily halt the Yatra has been taken, keeping in view the condition of the tracks as well as the weather forecast issued by IMD. An IMD has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh today. The IMD forecast heavy rainfall over Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Jharkhand, Madhya Pradesh and parts of northeast India today. The Met Department has issued a warning of heavy to very heavy rainfall in several districts of Uttarakhand over the next 48 hours. Odisha is witnessing another spell of widespread rain with a fresh low pressure system over the Bay of Bengal, triggering heavy to very heavy rainfall in several parts of the state. And India's Agnik Roy and Sayantan Koshari clinched the gold in the under 31 pairs at the 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships in China. In the first elimination round, 34 pairs competed and top 14 advanced to Flight A, including the Indian duo. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। म्यूजिकल दिल्ली के सफर पर मैं हूं आपके साथ कुसुम। चलो जिंदगी के आसमां पर एक नया सूरज उगाते हैं, उम्मीदों की एक सहर फिर आवाज देती है। कार्यक्रम का पहला गीत लिया है हमने फिल्म मशाल से किशोर कुमार की आवाज में, आइए सुनें।

जी हाँ, जो एक हिम्मत और हौसले के साथ उठ खड़े होते हैं ना, फिर उनके कदमों को न पर्वत रोक सकते हैं और ना ही सागर। आजादी के गुमनाम नायकों की लड़ी में आज हम याद कर रहे हैं मातंगिनी हाजरा को। वो कोई रानी नहीं थी, वो कोई सैनिक नहीं थी, वो थी गांव की एक साधारण महिला, स्वतंत्रता सेनानी, वीरांगना, जिन्हें गांधी बूढ़ी भी कहा जाता है। 29 सितंबर 1942 को भारत छोड़े आंदोलन के दौरान तामलुक पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने के लिए निकाले गए एक विशाल जुलूस का नेतृत्व कर रही थी 73 साल की मातंगिनी हाजरा। ब्रिटिश पुलिस ने जुलूस को रोकने के लिए गोलियां चलाई, एक गोली एक हाथ में, दूसरी दूसरे हाथ में और तीसरी सीधे उनके माथे पर लगी। गोलियों से छलनी हो गई, गिर गई मातंगिनी हाजरा, लेकिन तिरंगे को मजबूती से थामे रही, अंतिम सांस तक थामे रही, झुकने नहीं दिया। मातंगिनी हाजरा वंदे मातरम का नारा लगाती हुई देश की आजादी के लिए शहीद हो गई। हम नमन करते हैं मातंगिनी हाजरा के अदम्य साहस और उनके देश के लिए, आजादी के लिए दिए गए बलिदान को।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
0: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
5: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है मेरे कल दिल लगी और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ कुसुम। साथियों, अब हम बात करते हैं मेरा युवा भारत की। तो ये भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एक अनूठी पहल है, जिसे 31 अक्टूबर साल 2023 को लॉन्च किया गया था। ये डिजिटल और भौतिक मंचों का एक मिश्रण है, जो 15 से 29 साल की उम्र के युवाओं को सशक्त बनाने, नेतृत्व कौशल विकसित करने और राष्ट्र निर्माण को जोड़ने का ये काम करता है। इसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है, और साथ ही युवाओं में कौशल विकास, सेवा भाव और कर्तव्य बोध के मूल्यों को बढ़ावा देना है। तो है ना, ये एक अनूठी पहल खेल मंत्रालय की, युवा भारत की, मेरे युवा भारत की। फिलहाल एक बहुत प्यारा गीत नया दौर फिल्म का है आपके लिए।

में इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में चमकते हैं। आज का ये दिन याद दिला रहा है काकोरी नायकों की। आज काकोरी कांड की बरसी है। भारत देश कैसे भूल सकता है 9 अगस्त साल 1925 की वो घटना जो लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर हुई। शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को क्रांतिकारियों ने रोका और अंग्रेजी सरकार के खजाने को लूट लिया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इस घटना से बौखलाई ब्रिटिश सरकार ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दे दी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की यह महत्वपूर्ण घटना भारत कभी नहीं भूल सकता और ना ही भूल सकता है देश के उन वीर सपूतों के प्रेम को, देश प्रेम को, उनके अदम्य साहस को जो आजादी के खातिर फांसी के फंदे पर झूल गए। हम नमन करते हैं भारत देश के उन वीर सपूतों के साहस को, उनके कुर्बानी को।

इस गीत के साथ ही मेज़ कल दिल लगी यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम इस चैनल पर अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का अरा।

0: राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है मणिलाल मूलाशंकर पंड्या। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और दमोह से खुशी हुर्रा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

कभी कभी शब्द केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होते, वो समय की स्मृति बन जाते हैं, वो पीढ़ियों के बीच संवाद का सेतु बनते हैं, संस्कृति की चेतना को अक्षुण्ण रखते हैं और मनुष्य के भीतर सोई हुई संवेदना को जगाते हैं। एक ऐसे ही महान शब्द साधक थे आचार्य शिवपूजन सहाय। उन्होंने कलम को यश पाने का साधन नहीं, समाज का ऋण चुकाने का माध्यम बनाया। उनकी लेखनी में गांव की पगडंडियां बोलती हैं, किसानों की पीड़ा स्वर पाती है, मानवीय रिश्तों की ऊष्मा स्पंदित होती है और भारतीय जीवन दर्शन अपनी सरलता और संपूर्ण गरिमा के साथ आकार लेता है। उन्होंने भाषा को अलंकारों से नहीं, आत्मीयता से सजाया, शब्दों को वैभव से नहीं, संवेदना का सौंदर्य दिया। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका स्थान एक युग प्रवर्तक, गद्यकार, संपादक और भाषा संस्कारक के रूप में अमर है। वो एक उच्च कोटि के उपन्यासकार, कहानीकार और संपादक होने के साथ साथ प्रखर पत्रकार भी थे। उन्हें हिंदी गद्य का अनुपम शिल्पकार और भाषा का जादूगर कहा जाता है। हिंदी साहित्य में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए सन 1960 में उन्हें पद्मभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। आचार्य शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त सन 1893 को बिहार के शाहबाद जिले के उनवास नामक गांव में हुआ था। उनके पिता एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। बचपन में पिता से सुनी रामकथा और ग्रामीण जीवन ने उनके भीतर लोक संस्कृति और बोली भाषा के संस्कार बो दिए। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, जहां उन्होंने कैथी लिपि, हिंदी और फारसी की बुनियादी शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने आरा के जिला स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो औपचारिक उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके और बनारस की अदालत में क्लर्क की नौकरी कर ली, लेकिन कुछ समय बाद ही आरा में हिंदी शिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य आरंभ किया। देश की पराधीनता उन्हें भीतर ही भीतर कचोटती रहती, यूं भारत भूमि की आजादी का स्वप्न उनके भीतर जागने लगा।

इसी बीच साल आया सन 1921। महात्मा गांधी की अगुवाई में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। गांधी जी की पुकार पर आचार्य शिव पूजन सहाय ने सरकारी नौकरी छोड़ दी तथा पत्रकारिता के माध्यम से इस लड़ाई में शामिल होने का निश्चय किया। इस तरह अब उनका जीवन पत्रकारिता

और साहित्य को पूर्णतः समर्पित हो गया। वो केवल संपादक नहीं बल्कि संपादन संस्था के रूप में स्थापित हुए। सन 1921 में कलकत्ता से प्रकाशित मारवाड़ी सुधार नामक पत्रिका से उनकी संपादकीय यात्रा आरंभ हुई। सन 1923 में वो ऐतिहासिक मतवाला मंडल के सदस्य बने। कलकत्ता से निकलने वाले राष्ट्रीय पत्र मतवाला के संपादकीय मंडल में वो निराला जी के साथ शामिल थे। मतवाला के नामकरण और इसके जुझारू तेवर में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव प्रसाद सेठ के साथ मिलकर उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को तीखा स्वर दिया। लखनऊ से प्रकाशित माधुरी पत्रिका के संपादन विभाग से भी वो जुड़े और यहीं मुंशी प्रेमचंद के निकट सहयोगी बने। मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि की भाषा को तराशने और उसके संपादन का श्रेय शिवपूजन सहाय जी को ही जाता है। उन्होंने इसमें उर्दू प्रभावित वाक्य विन्यास का परिष्कार किया तथा देवनागरी मानकीकरण के साथ कथा गद्य को प्रवाह देने में योगदान दिया। सन 1926 से 1936 के बीच अपने काशी प्रवास के दौरान वो जयशंकर प्रसाद के मित्र मंडल में शामिल हुए और जागरण पत्रिका का संपादन किया। प्रसाद जी की कालजयी कृति कामायनी की पांडुलिपि के संशोधन का ऐतिहासिक गौरव भी शिवपूजन सहाय जी को प्राप्त है। उन्होंने इसमें क्लिष्ट तत्सम भाषा की व्याकरणगत संगति, छंद सुधार और मुद्रण योग्य पांडुलिपि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने निराला जी की अनेक बिखरी हुई पांडुलिपियों के संपादन और मतवाला के लिए अनेक अनगढ़ गद्य को निखारने का कार्य किया। इस तरह उन्होंने हिंदी के तीन युग पुरुषों की कृतियों को संवारा लेकिन स्वयं सदैव नेपथ्य में रहे। लेकिन सच यही है कि यदि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि इतना प्रांजल हुआ, यदि निराला जी का काव्य शिल्प मतवाला के माध्यम से स्थापित हुआ और यदि कामायनी जैसी अमर कृति इस रूप में सामने आई, तो इसमें शिवपूजन सहाय जी की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है। प्रसिद्ध साहित्यकार श्री रमण ने श्रद्धा के फूल में लिखा है, आचार्य शिव जी ने लिखा कम लेकिन कामायनी की पांडुलिपि में संशोधन करने का गौरव उन्हें ही प्राप्त है। उनकी संपादन कला के विषय में एक बार द्विवेदी जी ने कहा था, संपादक के रूप में शिवपूजन सहाय एक माली थे, उसी तरह नए पौधों को रोपते थे। उनकी बेतरतीब झाड़ियों को काट छांट कर सुरम्य बना देते। उनके द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाएं केवल सामयिक दृष्टि से ही नहीं, साहित्य की स्थायी दृष्टि से भी ग्रंथों की तरह महत्वपूर्ण हैं। इस तरह हिंदी साहित्य की सेवा के क्षेत्र में शिवपूजन सहाय नेपथ्य के महानायक के रूप में स्थापित होते हैं।

1934 से 1939 तक दरभंगा के लहरिया सराय स्थित पुस्तक भंडार से जुड़कर शिव पूजन सहाय ने संपादन का कार्य किया तथा बाल पत्रिका बालक को नई ऊंचाइयां प्रदान की। सन 1939 से 1949 तक वो राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक रहे। यहाँ वो 10 साल तक हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। इस दौरान उनकी कई रचनाएं प्रकाशित होती रहीं। उनके लिखे आरंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। शिव पूजन जी का मानना था कि साहित्य केवल बुद्धि का विलास नहीं बल्कि आत्मा की पुकार तथा समाज का दर्पण है। उन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है। वो ठेठ देहाती मुहावरों, कहावतों और आंचलिक शब्दों का प्रयोग इतनी चतुराई से करते थे कि भाषा में अलौकिक तरलता आ जाती थी। उनकी लेखन शैली में दृश्य रचने की अद्भुत क्षमता है। वो शब्दों के माध्यम से ऐसा जीवंत चित्र खींचते हैं कि पाठक स्वयं को उस परिवेश का हिस्सा महसूस करने लगता है। आचार्य शिव पूजन सहाय के लेखन की एक विशेषता ये भी है कि वो गंभीर से गंभीर विषयों में भी सूक्ष्म हास्य और व्यंग्य का पुट मिलाकर भाषा को बोझिल होने से बचा लेते हैं। वो भाषा के प्रति अत्यंत सतर्क थे। उनका गद्य न तो संस्कृत की जटिलता से दबा हुआ था और न ही उर्दू फारसी का अतिशय प्रभाव उसमें दिखाई देता है। ये हिंदी का अत्यंत परिमार्जित और प्रांजल रूप था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं देहाती दुनिया, विभूति, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, मेरा जीवन, स्मृतिशेष, हिंदी भाषा और साहित्य आदि। सन 1926 में प्रकाशित उनकी कृति देहाती दुनिया को हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास स्वीकार किया जाता है। इसमें गांव केवल पृष्ठभूमि नहीं बल्कि स्वयं जीवंत पात्र सा सामने आता है। खेत, मेले, लोकगीत, रिश्तों की ऊष्मा और बाल मन की सहजता, सब कुछ इतनी आत्मीयता से चित्रित है कि पाठक स्वयं उस गांव का निवासी बन जाता है। इसमें एक जगह वो लिखते हैं, रहस्य ये है कि जब हम लोग रामायण पाठ की कथा सुनते सुनते ऊंघने लगते तब बाबूजी मुस्कुराकर पोथी बंद कर देते और हमें दुलार कर सुला देते। माता

दस्तावेज है। इसमें उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों का चित्रण अत्यंत आत्मीयता से किया है। निराला जी के विषय में वो लिखते हैं, निराला जी के पास जब जेब में पैसे होते थे तो वे किसी भूखे नंगे को अपनी कुर्ती तक उतार कर दे देते थे, और जब शाम को उनके पास दिया जलाने के लिए माचिस भी नहीं बचती थी तब वे अपनी कालजयी कविताओं की पंक्तियां गुनगुनाते हुए अंधेरे कमरे में बैठकर हंसते थे। ऐसे थे हमारे निराला। इस छोटे से संस्मरण में केवल निराला जी का व्यक्तित्व ही नहीं, शिवपूजन जी की संवेदनशील दृष्टि भी झलकती है। देश की आजादी के बाद सन 1950 से 1959 तक वो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक रहे तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक पत्र के संपादक भी रहे। पटना विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की तथा भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। आजीवन साहित्य सेवा करते हुए 21 जनवरी सन 1963 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान साहित्य सेवी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन ले, आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गेरिमुइडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लिया। उन्होंने पुदुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर मिलने पर बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर

0: पुदुचेरी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेन्स और उनकी पत्नी उषा वेन्स को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। सरकार ने 4 उच्च न्यायालय में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह ने काकोरी रेल घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि काकोरी रेल घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है जिसने ब्रिटिश शासन के अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को नई गति प्रदान की। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं ओडिशा के कई क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी ऊपर वाले निम्न दबाव क्षेत्र का असर राज्य में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बैतरणी और सालंदी नदियों के जलस्तर बढ़ने से भद्रक जिले के कई लोगों की चिंता और बढ़ गई है। बड़े स्तर पर फसल नुकसान की भी आशंका बताई जा रही है। चीन के हेफई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सांगनिक रॉय और सायंतम कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। क्रोएशिया के एम फिरेनेका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जेहान और जेरे वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। भारत की अश्मिता चलेहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। वहीं फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान चियानशी को 14-21, 21-14, 21-14 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security, and critical minerals. Both the leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through the 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity, and India's cultural heritage. This year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. As part of the celebrations, mass singing of Vande Mataram will be organized across the country. More than 200 Indian embassies, high commissions and consulates will organize a series of events to mark the campaign. Union Home Minister Amit Shah will flag off the Har Ghar Tiranga Yatra at Muruga Theatre Signal in Puducherry today. Mr. Shah, who is on a two-day official visit, arrived in the Union Territory last night. Prime Minister Narendra Modi today paid tribute to all those who participated in the Quit India movement. In a social media post, Mr. Modi said their courage will always remain an inspiration for every Indian. The Prime Minister said, inspired by the leadership of Mahatma Gandhi, the clarion call of Quit India infused new energy into India's freedom struggle and reflected the unwavering determination of the people to break free from colonial rule. The centre has notified the appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka, with Madras High Court receiving the largest share of new appointees. According to a notification issued by the Ministry of Law and Justice, the appointments include 20 advocates, 10 judicial officers. Of the total, 15 judges have been appointed to the Madras High Court, 8 to Calcutta High Court, 6 to the Karnataka High Court and 1 to Madhya Pradesh High Court. The appointments were made by the President in consultation with the Chief Justice of India and the Supreme Court Collegium. Jharkhand students protesting against alleged irregularities in JPSC and JSSC recruitment examinations will hold another round of talks with the representatives of state government in Ranchi today. The next round of talks between the Jharkhand government and representatives of protesting students is scheduled for around noon today. The government panel held a meeting with Chief Minister Hemant Soren and briefed him on the progress made during the first round of dialogue with the students. The students have said that the movement will continue until concrete action is taken on their demands. In Jammu and Kashmir, annual Amarnath Yatra will remain suspended on both Pahalgam and Baltal routes from today due to recent rains, repair work of pilgrimage tracks and forecast of adverse weather conditions over the next few days. The decision to temporarily halt the Yatra has been taken, keeping in view the condition of the tracks as well as the weather forecast issued by IMD. IMD has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh today. IMD forecast heavy rainfall over Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Jharkhand, Madhya Pradesh and parts of Northeast India today. The Met Department has issued a warning of heavy to very heavy rainfall in several districts of Uttarakhand over the next 48 hours. Odisha is witnessing another spell of widespread rain, with a fresh lower pressure system over the Bay of Bengal triggering heavy to very heavy rainfall in several parts of the state. Indian shuttler Ashmita Chaliha produced a superb comeback to win the Korea Masters 2026, beating China's Han Chian Ki in the women's singles final this morning. The Assam shuttler recovered from losing the opening game to prevail in 53 minutes and claim her first BWF title. And India's Sagnik Roy and Sayanthan Koshari clinched the gold in the under-31 pairs at the 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships in China. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो रीफ को राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण क्षेत्र बनाने के चीन के फैसले को रद्द किया। अमेरिका में नए नियम के अंतर्गत H-1B वीजा धारकों पर नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन की समय सीमा समाप्त होने का खतरा। यूक्रेन और अमेरिका के बीच मिसाइल रोधी प्रणाली की नियमित आपूर्ति के लिए समझौता। और भारत की अश्मिता चलिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो रीफ को राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण क्षेत्र बनाने के चीन के फैसले पर आपत्ति व्यक्त की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि चीन का ये कदम फिलीपींस के मछुआरों को उनके पारंपरिक मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में जाने से रोक सकता है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका ने कहा है कि वह स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के फिलीपींस के साथ खड़ा है। चीन ने 1 अगस्त को स्कारबोरो रीफ के प्रबंधन के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों में संबंधित एजेंसियों के बीच सहयोग और निगरानी बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। वहीं 2016 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत गठित न्यायाधीशों की समिति ने कहा था कि फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में समुद्री संसाधनों पर चीन के ऐतिहासिक अधिकारों का कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि चीन ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं टीना।
0: अमेरिकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस की प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी संख्या है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन और अमेरिका के बीच पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की नियमित आपूर्ति को लेकर एक समझौता हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में पत्रकारों से बातचीत में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका अब यूक्रेन को हर महीने इंटरसेप्टर मिसाइलों की आपूर्ति करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि यह आपूर्ति देश की वायु रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन को 2026 में मिलने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों की संख्या 2025 की तुलना में कम होगी। श्री ज़ेलेंस्की ने कल सर्बिया की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की। बेलग्रेड में ज़ेलेंस्की और उनके सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के साथ बैठक के बाद दोनों नेताओं ने बताया कि दोनों देश यूरोपीय संघ में शामिल होने के साझा लक्ष्य पर मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो वर्ष के अंत तक एक पारस्परिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का भी प्रयास करेंगे। सर्बिया की सरकार ने यूक्रेन को अतिरिक्त मानवीय सहायता, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा उपकरण उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
0: अमेरिका ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी हथियारों के भंडार पर दबाव बढ़ गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों को हथियारों का उत्पादन और उनकी आपूर्ति तेज करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा उद्योग के अधिकारियों को 21 दिन के भीतर उत्पादन बढ़ाने और हथियारों की जल्द आपूर्ति के लिए योजना तैयार करके देने को कहा गया है। पेंटागन पैट्रियट और थार जैसी मिसाइल प्रणालियों के भंडार को फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बाद अमेरिका के पैट्रियट मिसाइलों के भंडार में बड़ी कमी आई है। हालांकि हथियारों का उत्पादन बढ़ाने की इन योजनाओं के लिए अमेरिकी कांग्रेस से धनराशि मिलना जरूरी है। कांग्रेस में करीब 1.15 ट्रिलियन डॉलर का रक्षा बजट विधेयक अभी अटका हुआ है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियान ने कहा है कि अमरीका के साथ शांति और बातचीत जारी रखी जाएगी। हालांकि इसके लिए अमरीका

0: को दोनों देशों के बीच भरोसे का माहौल बनाना होगा। श्री पेजुश्किन ने कहा कि समझौते का ये सही समय है। उन्होंने साफ किया कि ईरान अमरीका के कदमों के अनुसार ही अपनी प्रतिबद्धताएं निभाएगा। इससे पहले भी पेजुश्किन ने कहा था कि ईरान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बातचीत जारी रखेगा, लेकिन किसी भी दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। जून में ईरान और अमरीका ने युद्ध समाप्त करने को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों के बीच 60 दिन के भीतर अंतिम समझौते के लिए बातचीत होनी थी। हालांकि क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इन वार्ताओं का भविष्य फिलहाल अनिश्चित है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा ने आज शानदार वापसी करते हुए विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में असम की अश्मिता ने चीन की हान चियानशी को 3 गेमों के मुकाबले में 14-21, 21-14 से हराया। पहला गेम गंवाने के बाद अश्मिता ने जोरदार वापसी की और 53 मिनट में मुकाबला अपने नाम कर लिया। ये अश्मिता का पहला BWF खिताब है। इससे पहले अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21, 21-13 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं हान चियानशी ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को 22-20, 18-21 और 21-14 से मात दी थी। अश्मिता ने इससे पहले 2024 एशिया टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 2019 के दक्षिण एशियाई खेलों में भी उन्होंने महिला सिंगल्स और टीम स्पर्धा दोनों में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। उधर चीन के हेफेई में आयोजित 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने भी कल अंडर 31 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पहले चरण के खेले गए मुकाबले में 34 जोड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से शीर्ष 14 जोड़ियां फ्लाइट ए में पहुंच गईं। भारतीय जोड़ी भी इसमें शामिल रही। इसके बाद राउंड रॉबिन में साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने शीर्ष स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। क्रोएशिया के एम फेरेनेका और एस कटुसिचिक ने दूसरा स्थान और चीन के जेहान और जेड वांग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
0: पश्चिमी कनाडा के ओकानागन में तेजी से फैल रही जंगल की आग से कई लोग प्रभावित हुए हैं। इससे लगभग 20,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। तेज हवाओं और शुष्क मौसम के कारण आग बेकाबू हो गई थी। ब्रिटिश कोलंबिया के मुख्यमंत्री डेविड एबे ने आपातकाल की घोषणा की है। लगभग 12,000 लोगों की आबादी वाले समरलैंड को रातोंरात खाली करने का आदेश दिया गया। साथ ही पास के पीचलैंड और उसके आसपास के लगभग 8,000 लोगों को भी जगह खाली करने को कहा गया है। इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े आतंकियों ने युगांडा की सीमा से लगे पूर्वी कांगो के एक गांव पर हमला करके 13 लोगों की हत्या कर दी। यह हमला मामबासा के पास बनाना इकोले गांव में हुआ और इसे एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस ADF ने अंजाम दिया। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई निवासियों से अभी बातचीत नहीं हो पाई है। यमन में मारेब और हदर मौत प्रांतों में हाल ही में हुए हौसी विद्रोहियों के हमलों के जवाब में सशस्त्र बलों ने उनके खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। ये घटनाक्रम क्षेत्रीय तनाव के बढ़ते हुए बीच के कारण आया है। इसमें ईरान समर्थित हौसी समूह यमन के अंदर सैन्य गतिविधियों को तेज कर रहा है और सऊदी अरब से जुड़े समुद्री ठिकानों पर हमले कर रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो रीफ को राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण क्षेत्र बनाने की चीन के फैसले को रद्द किया। अमेरिका में नए नियम के अंतर्गत H-1B वीजा धारकों पर नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन की समय सीमा समाप्त होने का खतरा। यूक्रेन और अमेरिका के बीच मिसाइल रोधी प्रणाली की नियमित आपूर्ति के लिए समझौता। और भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर दिल का मेल बॉक्स आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आप अपने मेल और संदेश के जरिए पहुंचाते हैं हम तक अपनी पसंद और हम सुनवाने की कोशिश करते हैं आपकी पसंद के गाने। तो चलिए जल्दी से आप हमारा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। फिलहाल पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं नीतेश जी की पसंद पर, फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत ये रहा।

सभी भारत देशवासी अपने भारत देश से बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं एक दूसरे से। देखिए कितने सारे संदेश आप सबके हम तक पहुंच रहे हैं और मैं कोशिश करूंगी कि सभी के नाम कम से कम शामिल कर लिया जाए। और आज हमारे बहुत सारे साथियों का जन्मदिवस भी है। आज है दिव्या प्रसाद जी का बर्थडे। दिव्या जी, आपको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस महीने हमारे बहुत सारे साथियों का और भी बर्थडे है, जैसे किरण जी का बर्थडे 5 अगस्त को था, कल कुमार पाल का बर्थडे है, इनको हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं इनकी बहनें हेमा, मीनू और नीतू और परिवार के सभी सदस्य, राजू, मुकेश, राममूर्ति इनकी मम्मी जी, भाई सुनील, भाभी अनीता और साथ में हैं बच्चे, भूमि, सौरव, दक्ष, लक्ष, तानिया, तानिश, रिया, तेजल, पुनीत, सानिया और सिमरन, आप सबकी तरफ से किरण जी और कुमार पाल जी को हैप्पी हैप्पी बर्थडे जी। और तानिया जी का भी बर्थडे इसी महीने आता है, तो तानिया जी को भी हैप्पी बर्थडे। तो सभी बर्थडे बॉयज और गर्ल्स को ये गीत, बहुत प्यारा सा गीत आप सबको।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है दिल का मेल बॉक्स और आप सभी के संदेश मैं शामिल करने की कोशिश कर रही हूँ। हितेंद्र दास जी का असम से हमारे पास संदेश पहुंचा है। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप का संदेश हम तक पहुंचा है। और सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर हमें संदेश भेज रहे हैं और सुनना चाहते हैं फिल्म आशा का गीत। हम जरूर सुनवाएंगे लेकिन अभी कुछ और संदेश शामिल करने के बाद। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल का भी संदेश हम तक पहुंचा है। ये संदेश आया है कुमार हेड़ा सहारनपुर से, लिखने वाले हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीम, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम। और अगला संदेश शामिल करते हैं कृष्णा पार्क के दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना का भी हम तक पहुंचा है। मजनू कटिल्ला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंगम मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक भी हमें संदेश भेजते हैं। शाहजी नगर देगलूर जिला नादेन महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे भी हमें संदेश भेजते हैं। आपका भी संदेश हम तक पहुंचा है। पद्मा टाकी नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह भी हमें अपना संदेश भेजते हैं। मरहरा दरवाजा एटा से नवी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशब अब्बासी, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा से टाउन से जुबैर अली, सबिहा अंजुम खान का भी संदेश हम तक पहुंचा है। कोपर गांव से सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे, शेव गांव से श्रीराम गोदली, उषा गोदली का भी संदेश हम तक पहुंचा है। नीतेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन, पलारी छत्तीसगढ़ से हमें संदेश भेजते हैं। और राजपुरा ब्लॉक से हमें संदेश भेजते हैं, कौन है नाम, नवदीप कुमार गोयल का भी संदेश हम तक पहुंचा है। कोपर गांव से सुरेश मालूदे, इनका संदेश हम पहले भी शामिल कर चुके हैं। बसमत रोड परभणी महाराज से रणजीत कारेगांवकर, कांचन कारेगांवकर, सृष्टि कारेगांवकर, समरजीत कारेगांव का भी संदेश हम तक पहुंचा है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार भी हमें संदेश भेजते हैं। गंगादीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी का भी हमें संदेश मिला है। गांव टोरोवाल नवा शहर पंजाब से।

कृष्णा पार्क की दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना भी हमें संदेश भेजते हैं, और मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, आबान अब्बासी, समस्त अब्बासी परिवार, ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हमें ये संदेश भेजते हैं। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुरेश कश्यप, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रीतिक, बलवीर सिंह हमें जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से ये संदेश भेजते हैं। और ये संदेश हमारे पास आया है कस्बा गुन्नौर यूपी से, फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरीन, फारिया, फरहान, ताहिरा बुलंद शहर से संदेश हमें ये भेजते हैं। मलियान सरदना से अनिल जैन, जैन साहब, जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन का भी संदेश हम तक पहुंचा है। जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, रतलाम यूपी से हमें ये संदेश भेज रहे हैं। और अगला संदेश है, ये है शबाना भारती, नवाब अहमद, अरहान अहमद, सूफिया नवाब, बल्ली मारान से हमें संदेश भेजते हैं। और अगला गीत, जैसा कि हमने कहा था कि ये महाराष्ट्र पुणे से सुनील सुषमा, अनन्या राजवीर की पसंद पर, आइए सुनते हैं आशा फिल्म का गीत।

जल्दी से सभी के नाम पढ़ने की कोशिश मैं कर रही हूँ। सहारनपुर से ये संदेश आया है आशा नारंग, सुरेश नारंग का। और अगला संदेश है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बाड़ी से खुदा बख्श खलीफा का संदेश हम तक पहुंचा है। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगा वाला गोराया जालंधर से भी संदेश भेजते हैं। रुद्रांश प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू और ये हमें संदेश भेजते हैं। सागरा सोमानी जिला राजनाद गांव छत्तीसगढ़ से और संदेश आया है नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा भी हमें संदेश भेजते हैं। दाऊसराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शनो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी, जरीफ अंसारी का भी हमें संदेश मिला है। रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान का भी हमें संदेश राजस्थान से, हनुमानगढ़ राजस्थान से मिला है। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, जिनका संदेश मैं शामिल कर चुकी हूँ। राम नरेश चिक, रेखा चिक, करण चिक, अल्पेश चिक, सृष्टि यादव, साबी यादव, संगम विहार, हनुमान मंदिर दिल्ली से ये संदेश भेजते हैं। और ये अगला संदेश है शबाना भारती, नवाब अहमद, अरहान अहमद का, अनवर साबरी, शन्नू साबरी, इनका संदेश मैं शामिल कर चुकी हूँ। श्री सुधाकर राजी जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राधे जाधव देशमुख, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख, कुमारी हर्षिता देशमुख का संदेश हमें मिला है मक्काम पोस्ट कालेगांव महाराष्ट्र से। गोविंदपुरा से ये संदेश आया है राजस्थान से, लिखने वाले हैं दादा सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। और अगला जो संदेश है ये है कुमार हिड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीम, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम का। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया का भी संदेश हम तक पहुंचा है। दतरंगी डब भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा का भी संदेश हमें मिला है। आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान, कस्बा अग्रवाल, मंडी बागपत यूपी से हमें संदेश भेजते हैं। और कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का भी संदेश हमें मिला है। नवाब अहमद भारती, बल्लू कश्यप, महेश अग्रवाल, आसफ अली, सिराज मिथुन का भी संदेश हमें मिला है। नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नरेंद्र अब्बासी, सुहेल, अनम यशफ, रसीद वारसी का भी संदेश हमें मिला है। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष, वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से हमें संदेश भेजते हैं। और ये संदेश उग्रसेन यादव जी, शकुंतला यादव जी, गरिमा नई दिल्ली से हमें संदेश भेजते हैं। अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमें ये संदेश भेजते हैं। पारस मणि रेडियो श्रोता संघ क्लब से गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हैं ये बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, ये इनका संदेश पहले भी मैं शामिल कर चुकी हूँ। बड़ाबंग चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू का संदेश हम तक पहुंचा है। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तनवी और अंकित कांगड़ा का भी संदेश हमें मिला है। आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का शेरवानी स्कूल गंजडंडवारा में संदेश मिला है। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत का भी संदेश हम तक पहुंचा। अनवर साबरी, शन्नू साबरी, इनका भी संदेश हमें मिला है। दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और वर्मा परिवार का संदेश हमें मिला है। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा का पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हमें संदेश मिला है। और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब का संदेश भी हम तक पहुंचा है। अतर सिंह, अनुज

श्रद्धांजलि डॉक्टर पायरुल आद्विक समयपुर दिल्ली से हमें संदेश भेजते हैं, और ये संदेश है किनका है, ये उत्तराखंड से, ये हमें टिहरी गढ़वाल से संदेश भेजते हैं। किशोर कुमार जी का ये प्रोग्राम गाना सुनना चाहते हैं, और बलवंत सिंह चौहान है ये हमें जो संदेश भेजते हैं। आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का भी संदेश हम तक पहुंचा है, और अब हम सुनवाने वाले हैं ये गाना जिसे पसंद किया है रेखा देवी सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, वसंत लाल साव जी ने। ये ससुराल फिल्म का ही गीत आपके लिए। इससे पहले मैं एक और संदेश शामिल करूं, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़ भी हमें संदेश भेजते हैं, पिंगा वाला चौक गुराया जालंधर से हमें संदेश भेजते हैं ये मक्कड़ परिवार। आइए सुनते हैं फिल्म ससुराल का एक गीत।

0: इस गीत के साथ ही दिल का मेल बॉक्स यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में इस चैनल पर आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए तीन नए आपराधिक कानून तीन महत्वपूर्ण स्तंभों प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास पर आधारित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर तीन भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने काकोरी रेल घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि काकोरी रेल घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है, जिसने ब्रिटिश शासन के अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को नई गति प्रदान की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया। इस बीच नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान क्यांशी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defence, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity, and India's cultural heritage.

0: आपने ट्यून किया एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आज पायल की झनकार हमारे स्टूडियो में यूं कह सकते हैं कि घुंघरू बज रहे हैं और हम सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें खो रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में शालीना चतुर्वेदी। शालीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम गोल्ड के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति।
0: जैसे हमने कहा कि घुंघरू की आवाज आ रही है, पायल की झनकार है, तो ये जो स्वर है ना, ये कानों को तो सुकून देते हैं, दिल को भी सुकून देते हैं, और जब आप मंच पर होती है तो एक अलग सी आभा होती है। तो जिंदगी यूं ही प्यार से चलती रहती है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात प्रीति आप बता रही हैं। तो जिंदगी बस प्यार से चलने का नाम है, और इस प्यार को जीने के लिए कहीं ना कहीं हमें आश्रित होना पड़ता है अपने पैशन की ओर। तो बचपन से एक शौक और जुनून रहा कि नृत्य को साथ में लेना है, क्योंकि नृत्य में भगवान शिव का वरदान है, और नर्तक तभी सार्थक होता है जब शिव और माँ गौरी का आशीर्वाद मिले। तो बस उनकी कृपा है और हम लोग कुछ काम कर रहे हैं समाज के लिए।
0: बहुत खूब कहा आपने। अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, शालीना चतुर्वेदी हमारे साथ आज स्टूडियो में कथक नृत्यांगना और साथ ही साथ डांस थेरेपिस्ट और भी बहुत कुछ है, प्रोफेसर है, शिक्षिका है, पढ़ाती है, बहुत सारा ज्ञान बांटती है। जब हम एफएम गोल्ड पे साथ साथ चलते हैं तो गीत संगीत साथ साथ होता है, तो एक गीत आपकी पसंद पे सुनना चाहेंगे, कौन सा सुनेंगी?
1: प्रीति मुझे ये गाना बहुत पसंद है, पिया तो से नैना लागे रे,
0: गाइड फिल्म का।
1: जी जी,
0: वहीदा जी का पूरा नृत्य मुझे याद आ गया
1: जी,
0: और आपके पायल की झनकार भी मेरे कानों में आ रही है। तो ये गीत सुन लेते हैं, फिर बातें करते हैं।
1: जी जी।

0: की मुद्राएं हैं और जो भाव भंगिमा है वो अभूतपूर्व है।
1: जी जी, हम एक कथक नृत्यांगना से बात कर रहे हैं। अगर हम नन्ही सी शालीना के बारे में सोचे तो पांव कब थिरकने लगे और कब ये एहसास आया कि जिंदगी इसी में खुशी से गुजरेगी?
0: जब मैं 2.5 वर्ष की थी शायद, तो मम्मी बताती हैं कि 2.5 वर्ष से जब कोई गायन होता था ना, तो मैं हिलती थी, हिलने डुलने लगती थी और बिल्कुल कहते ना कि सम और विषम का शायद उस वक्त ज्ञान हो रहा था मुझे। और मम्मी ने उसी वक्त मुझे चाईबासा में, एक सरोजा मैम थी उनके पास डाल दिया, वहां से मेरी शिक्षा शुरू हो गई। और एक था ना कि जैसे हमारे घर में है या सबके घर में होता है कि शिक्षा को साथ लेकर चलना है, नृत्य और दोनों को बैलेंस करके चलना है, तो दोनों चीजें साथ साथ चली। सीखने की जो ख्वाहिश है वो कब मेरे प्रारब्ध हो गई और कब मेरे साथ मेरे जीवन का अंग बन गई पता ही नहीं चला।
1: तो मम्मा आपकी चाहती थी कि आप नृत्यांगना बने?
0: जी बिल्कुल, और उस वक्त चाहती थी जब लोग कहते थे कि नृत्य में क्या होगा, उस वक्त मम्मी ने आगे बढ़ के मुझे गुरुजी के पास भेजा और मेरी शिक्षा शुरू हो गई। तो मेरी शुरुआती शिक्षा सरोजा मैम के साथ हुई, फिर मैंने शारदा महाराज उनके साथ मैंने शिक्षा ग्रहण की बनारस घराने में, फिर पद्मभूषण उमा शर्मा जी दिल्ली से मैंने शिक्षा ग्रहण की।
1: बहुत सही कहा आपने, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं होता है नहीं। और गुरु को याद ना करें जब कोई बातचीत हो तो कार्यक्रम अधूरा सा हो जाता है। आप भी शिक्षिका हैं और हिंदी साहित्य पढ़ाती हैं, तो ये उस तरफ कहाँ चली गई आप?
0: ये ऐसा हुआ ना कि जैसे साहित्य कहते ना कि साहित्य और नृत्य एक दूसरे के पूरक हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप जब साहित्य से जुड़ जाती हैं तो आपके अंदर, जैसे अभी मैंने राम की शक्ति पूजा पे नृत्य नाटिका में, तो उसमें है कि इतनी सुंदर बात है, आज मैं आपको थोड़ा सा उसे शेयर करना चाहूंगी कि उसमें इतनी हमारे अंदर जो आत्मशक्ति बढ़ती है उसको पढ़कर, और वही होता नृत्य करके। तो जो आप मंच पे जाते हैं तो आपकी जो आत्मशक्ति वो बढ़ती है, उसी प्रकार साहित्य हमें अंदर से ज्योति देता है, हमें प्रकाशित करता है। तो शब्द और जो भंगिमा दोनों जब मिल जाते हैं तो एक सकारात्मक नृत्य आता है सामने। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो नर्तक है उसे थोड़ा साहित्य तो आना ही चाहिए, और हमारे घर में साहित्य की धारा बहती रही शुरू से, तो मैं उसमें डूबती रही। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि राम की शक्ति पूजा निराला जी की रचना है, और उसमें एक जगह कहा गया है कि जब रामचंद्र जी बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि माँ सीता को कैसे लाएं, क्योंकि रावण जीत रहा है, तब उनको जामवान आके कहते हैं कि करो शक्ति की, करो आराधना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि न हो रघुनंदन। और रामचंद्र जी उनकी बात मान करके शक्ति की उपासना करते हैं, और रामचंद्र जी चूंकि युद्ध भूमि में है तो उन्होंने एक प्रस्तर, मतलब एक पहाड़ पर एक इमेजिन किया कि माँ दुर्गा इस रूप में आएंगी और इसी रूप में शिव आएंगे, शक्ति आएंगी और ब्रह्मा विष्णु महेश सभी इसी रूप में प्रकट होंगे और मैं विजयी बनूंगा, क्योंकि वहां तो कोई था नहीं साधन। और उन्होंने आंख बंद करके एक कल्पना की, और जब माँ साकार होती है तो वाम पद असुर स्कंद पर रहा, दक्षिण हरि पर ज्योतिर्मय रुख, हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री रज्जित है, दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग राग, मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। बिल्कुल यही परिकल्पना श्री रामचंद्र जी ने की थी कि माँ ऐसे ही अवतरित होंगी और मुझे आशीर्वाद देंगी, और जब उनकी पूजा संपन्न हुई तो माँ बिल्कुल उसी रूप में थी। तो मुझे एक बात और याद आती है कि यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, ये कहा गया है दुर्गा सप्तशती में, कहा गया है कि आपकी प्रबल इच्छा होगी और आप उस क्षेत्र में काम करिएगा तो सारी सृष्टि आपको उस ओर लेकर जाती है। तो यही प्रीति मेरे साथ हुआ।
1: इतनी प्यारी बातें और इतना धारा प्रवाह आप बिल्कुल उसको कह रही है, तो ये अंदर में शक्ति मिलती है आपको,
0: बिल्कुल,
1: तभी आप एक्सप्रेस कर पाते हैं।
0: ये शक्ति मिलती है प्रीति तभी हम अपनी संस्कृति को लेकर, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी महान है ना, मैं कहूँ कि महानतम संस्कृति भारतवर्ष की है, तो उसी को हमारे जितने कविगण हैं वो दे रहे हैं, दिनकर जी दे रहे हैं, रामचरितमानस में मिला हमें शुरू से, नाट्य शास्त्र हमारा ग्रंथ रहा, तो उनसे हम लोग शक्ति अर्जित करते हैं, हम नर्तक या एक आम इंसान भी, और उस शक्ति को फिर हम आप तक लेकर जाते हैं, दर्शक तक लेकर जाते हैं,
1: तो वो शक्ति उन तक भी पहुंचती है, क्योंकि सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और थोड़ी देर को आपको ऐसा लगेगा, बहुत बार ऐसा होता है शालीना कि आपने अपना परफॉर्मेंस दिया और उसके बाद बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, न तालियां बजी ना कुछ हुआ, तो आप सोचने लगते हैं क्या कुछ गलती हो गई, पता चलता है कि सब खो गए
0: हो गए। ये यही कह, एकदम प्रीति सही आप कह रही हैं, क्योंकि हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम नृत्य करें तो भगवान को आह्वान करें और कहें कि आप मेरे अंदर समा जाइए, मेरी इतनी शक्ति कहाँ कि मैं इतनी बड़ी चीजों को आप तक ले आऊं, तो आप मेरे अंदर आ जाइए और तभी नृत्य संपन्न होता है।
1: क्या बात है, एक गीत सुन लेते हैं। हालांकि इतनी प्यारी बातें हो रही है बट गाना तो बनता है,
0: एकदम गाना
1: बनता है। कौन सा गीत सुनेंगे?
0: एक शिव जी का कोई सुंदर सा गीत,
1: ये गीत सुन लेते हैं।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे साथ कथक नृत्यांगना शालिना चतुर्वेदी, मैं आपके साथ प्रीति। और शालिना, अब मुझे क्यों ये प्रोग्राम का नाम आज के मेहमान कहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, हम ये कहेंगे कि दो सखियां बात कर रही हैं। और कुछ ऐसा ही लग रहा है आपको देखकर कि बहुत पुराना सा रिश्ता है आपसे और आज मुलाकात हो गई तो दो बातें कर लेते हैं, कुछ ऐसी ही बात है।
1: ऐसी बातें क्योंकि प्रीति मैं कहना चाहूंगी आपसे मैं पहली बार मिल रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात मैं दोहरा रही हूँ। और आपके लिए एक बात मैं कहूंगी, एक मीठी सी मुस्कुराहट जो आपकी है ना, वो मुझे बहुत तरोताजा करती जा रही है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ एक वही सही में एक बातचीत हमारे बीच में हो रही है।
0: जी। हमने आपको कहा था कि आप डांस थेरेपिस्ट हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं तक वो बातें भी पहुंचनी चाहिए। तो ये ख्याल कैसे आया दिल में?
1: ये आपको मैं बताती हूँ प्रीति, जब मुझे डॉक्टर्स ने एक बार कहा कि आपको नृत्य नहीं करना है,
0: अच्छा,
1: कुछ शारीरिक परेशानियां हुई कि आपको नृत्य नहीं करना है और करना भी है तो थोड़ा संभल संभल के करना है, तो मैं तो बहुत परेशान हो गई, ये क्या बात हुई भाई,
0: आपकी तो लाइफ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसके बिना तो जीना मुश्किल है। तभी उन्होंने कहा कि नहीं, ये परेशानी। हमने कहा कि ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। उन्होंने कहा सीढ़ी पर मत चढ़िए, सीढ़ी से मत उतरिए, बड़ी सारी बातें। मैंने कहा कि ठीक है, अब मैंने सुन लिया क्योंकि बात सही था, डॉक्टर तो भाई हमारे चिकित्सक का एक भगवान का ही रूप है। पर मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने से इसमें हार नहीं मानने वाली। और मैंने 12 एक्सरसाइज बनाए,
0: अच्छा,
1: अपने कथक नृत्य से ही लेकर के, और उसमें इस तरीके से मैंने उसको ग्रूम किया, इस तरीके से मैंने उसको बढ़ाया ताकि महिलाओं की जितनी भी शारीरिक परेशानियां जो कि एज आने पर थोड़ी थोड़ी शुरू होने लगती हैं, उनसे निजात पाया जा सके। और मैंने सबसे पहले अपने ऊपर किया और मैंने 12वां एक्सरसाइज को रेगुलर किया। और हाँ, जरूर ये ध्यान रखा कि पहले थोड़ी शुरुआती मेरी धीमे धीमे करूं। तो उसको जब मैं शुरू की, प्रीति आपको विश्वास नहीं होगा, 6 महीने बाद मैं उन्हीं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा कि आपकी तो परेशानी आधी हो गई है। और फिर जब गैप 1 साल का हुआ, फिर मैं गई, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल फिट हैं। तो ये एक अंदर से आया कि नहीं, ये तो आदमी है तो इंसान है तो चलेगा ही, और जो चल सकता है वो नाच सकता है, और मैंने उसी को किया। अब मेरे पास में प्रीति ऐसी महिलाएं आती हैं जिनकी की बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि ओवरी में सिस्ट ठीक हुआ है, हो रहा है, ये कोई चमत्कार नहीं है, आपके अंदर का विश्वास है और एक विधि है जिसके हिसाब से हम चलते हैं। और कथक में एक बेसिक होता है तत्कार, हमने उसको इस तरीके से ट्यून किया है कि वो इतने देर के बाद में उसको बढ़ाना है लय को,
0: अच्छा,
1: या इतने दिन में थोड़ा और बढ़ाना है, टाइम सेट कर दिया, सो दैट कि वो, जैसे मान लीजिए एक हमारी सबसे सीनियर स्टूडेंट है 75 साल की,
0: 75 ईयर्स,
1: एंड वो सबसे बड़ी बात है कि मेरी गुरु रह चुकी थी कभी, तो वो जब आती हैं तो क्या उनके लिए संभव है बहुत तेज चक्कर लेना? संभव नहीं है। लेकिन मैंने उनके लिए फिर इसको कथक को योग में और सहज नृत्य में किया ताकि वो कर सके, और डिप्रेशन दूर हो रहा है, जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम था वो ठीक हो रहा है, और स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो रहा है, ये जितने पैरों के जोड़ है वो ठीक हो रहे हैं।
0: एज के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स आती है और महिलाओं को खासकर ज्यादा आती है।
1: और महिलाओं के लिए एक और बात, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले परिवार को देख लिया हमने और फिर अपने बारे में सोचते हैं, ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है कि फाइनली जब हम एक एज पे आते हैं, बच्चे सेटल हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमने अपने लिए क्या किया। तो फिर वो मैं कहती हूँ आ जाओ मेरे पास, अब हम लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। तो 1.5 घंटे 2 घंटे जो हमारी कक्षा होती है उसमें सिर्फ आप हैं।
0: तो ये ऑनलाइन भी होती है?
1: जी, ऑनलाइन भी होती है, कोविड टाइम से ऑनलाइन शुरू हो गई है। और ऑनलाइन में हमारे साथ में देश के बाहर घाना, यूके से भी बहुत सारे भारतीय ही हैं जो जुड़ चुके हैं।
0: तो मैं भी अब उसमें अपना नाम ऐड कर लेती हूँ।
1: आपका स्वागत है प्रीति, आपकी मुस्कुराहट से आधी बीमारी दूर हो जाएगी हमारे जितने भी लोग होंगे उनकी।
0: जी। और ये मुझे लगता है सभी जितने हमारे श्रोता सुन रहे हैं, लक है उनका कि आज आप हमारे साथ हैं और वो भी जुड़ सकते हैं जिन्हें भी कोई ऐसी दिक्कत हो। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कहते हैं ना कि कहते हैं आप सुबह योग कर लीजिएगा, फिर आप ये कर लीजिएगा, तो आपको धीरे धीरे प्राणायाम कीजिए ठीक होगा, लेकिन वो करते करते लोग मोनोटोनस सा फील करते हैं तो नहीं कर पाते। लेकिन नृत्य के साथ जो जोड़ दिया तो इंटरेस्टिंग भी हो गया और मजा भी आएगा।
1: मजा भी आता है, और हमने नटराज आसन लिया, बहुत सारे आसन को भी जोड़ दिया, तो वो अच्छा भी होता है, मजा भी आता है, और थोड़ा सरल कर दिया कि सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं। तो ये एक बस कोशिश है हमारी, चाह रहे हैं कि पूरे भारत वर्ष में जो है ना स्वस्थ और निरोग काया सबके पास रहे,
0: होनी भी चाहिए,
1: होनी भी चाहिए।
0: जी, जी। और मैं सोच रही थी एक म्यूजिकल ब्रेक बनता है जी, क्योंकि म्यूजिक थेरेपी है ये।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम सोचते हैं कुछ अच्छा सा गाना जिसमें कि जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए उनके अंदर
0: झूमने लगे, झनक झनक पायल बाजे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: ये गीत सुन लेते हैं।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ शालिना जी. और शालिना जी, बहुत सी बातें हो रही हैं. आपने बीच में परिवार का जिक्र किया था कि बच्चे बड़े हो गए, तो हमने ऐसा सोचा, तो हमने सोचा आप यहाँ हैं तो परिवार से तो एक मुलाकात बनती है. कौन कौन है परिवार में? आपने मदर का भी जिक्र किया, तो सबके बारे में जानना चाहेंगे.
1: बिल्कुल. हमारे घर में पहले मैं बताती हूँ कि मम्मी, क्योंकि मम्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा जहाँ भी आज मैं हूँ, और मेरे दोनों बच्चे. तो ये दोनों ही बच्चे हमें हमेशा एक कहते हैं ना कि मम्मा तुम काम करो, मैं देख लेता हूँ, ये सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ.
0: सपोर्ट होता है.
1: जी जी बिल्कुल. और हस्बैंड, उनका फुल सपोर्ट है. क्योंकि शादी के बाद में थोड़ा डांस को लेकर के लगता था कि डांस एज अ करियर कैसे होगा, तो उसमें भी पूरे मेरे जो हमारी मदर इन लॉ हुई उनका बहुत सपोर्ट रहा और सबका सपोर्ट रहा. तो एक कहते हैं ना कि जैसे एक पुरुष के लिए स्त्री का पीछे खड़ा होना जरूरी है, वैसे ही कोई स्त्री अगर आगे बढ़ती है तो पुरुष का सहयोग बहुत आवश्यक है. तो शिव शक्ति के मिलाप से ही सब कुछ संभव है. तो ईश्वर के दया से मेरे साथ हमेशा होता रहा. गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, अपने घर से सबका सहयोग मिला, और माता पिता पिता का भी पूरा सहयोग मिला. छोटी बहन है, सभी है, तो जितने घर वाले हैं उनको पता है कि ये मम्मी का टाइम डांस के लिए है, तो वो मैं उसको मैनेज कर लेती हूँ कि 1.5 घंटे मुझे इसमें देना ही है.
0: काम ही पूजा है.
1: काम ही पूजा.
0: ये मम्मा ने सिखाया.
1: मम्मी ने सिखाया.
0: एक गीत यहाँ सुन लेते हैं. कौन सा गीत सुनना चाहेंगी शालिना जी?
1: तो नया दौर का सुनते हैं, उड़ी जब जब जुल्फ़.

0: बहुत आनंद आ रहा है आपसे बातें करके। अच्छा, ये आपका नाम किसने रखा शालिना? बहुत प्यारा सा नाम है।
1: तो ये मैं आपको बताती हूँ, ये नाम शालिना एक्चुअली आपने जहाँ भी सुना होगा शालिनी,
0: शालिनी
1: तो ये शालिनी नाम है कॉमन, और ये फिर मम्मी ने रखा। इसमें एक बात आती, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती थी लोग कहते थे ये क्या नाम है, ये कौन सा नाम है, और पहले तो बच्चे भी मेरे फ्रेंड्स भी कहते थे क्या नाम है शालिना, शालिनी एक नाम है। पर वो धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ा। इसमें संस्कृत ये वर्ड है, जो कि शालीन एक नाम होता है जिसका स्त्रीलिंग हो गया शालिनी, और उसी में एक कहते हैं संस्कृत का प्रत्यय आता है जो पीछे लगता है शब्द के पीछे टाप प्रत्यय, तो उसको जब जोड़ दिया गया तो ये बिल्कुल संस्कृत निष्ठ शब्द हो गया शालिना, मतलब शांत सौम्य जो हो मृदु हो उसको शालिना, तो ये एक संस्कृत निष्ठ शब्द हो गया। तो थोड़ा सा प्रचलित नहीं है, पर अब मम्मी है तो मम्मी ने ब्लेसिंग दी है इस नाम के लिए। बस
0: आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं और नाम भी बहुत प्यारा है, तभी आप काफी ऊंचाइयों पर पहुंच गई हैं।
1: धन्यवाद।
0: मेरा बड़ा मन कर रहा है जब हम कथक की बात करते हैं तो एक टुकड़ा या कुछ आप सुनाना चाहे तो अच्छा लगेगा।
1: जी, मैं आपको सुनाती हूँ। उसके पहले मैं बताती हूँ, मेरा एक संस्थान है रांची में, तो यहाँ के जितने भी बच्चे हैं ना, सब वहाँ के बच्चे हैं और सभी मेरे परिवार जैसे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक परिवार तो ये है, दूसरा परिवार वहाँ है, तो मैं उनको भी शुक्रिया देती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल, और जितने गार्जियन है सबने बिल्कुल कहा कि नहीं, मैम के एक विश्वास के साथ मेरे पास भेजा, और मुझे अच्छा लग रहा है कि उस विश्वास पर हम लोग खड़े उतरे और आज हमारे बच्चे देश विदेश में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब मैं आपको एक गणेश परण सुनाने की कोशिश करती हूँ। परण होता है गणेश जी की वंदना
0: जी।
1: और उसमें जैसे कि परण मतलब गणेश जी के विविध रूपों का मैं वर्णन करने की कोशिश कर रही हूँ। तीन ताल में है तो धा धिन धिन धा धा धिन धिन।

0: Da, da, din, din, da, da, din, din, da, garna, garna, garna, patti, gaja, mukh, mangal, gitta, tira, thun, thun, tat, tat, te, jay, jag, vandan, vakra, tund, dhani, dha, dha, vighan, haran, sukh, karan, dhagina, tit, te, thudunga, thudunga, tat, tat, te, Thudunga thudunga tat tat thay Thudunga thudunga tat tat
1: क्या बात
0: इसमें गणेश जी की वंदना की जा रही है कि गणेश जी एक बहुत अच्छे वादक भी हैं, बहुत अच्छे नर्तक भी हैं और गणेश जी के पास बुद्धि भी है
1: जी।
0: तो तीनों रूपों में भगवान श्री गणेश जी को हम नमन कर रहे हैं। तो किसी भी कार्य की शुरुआत में हम गणेश वंदना करते हैं, तो वहां से हमने आपको ये गणेश वंदना छोटी सी सुनाई।
1: क्या बात है, बहुत कुछ। मुझे लगता है मुझे शुरू में ही से सुन लेना चाहिए था, बट मैं बातों में ऐसी खो गई थी
0: जी, जी, जी।
1: लेकिन मुझे लगा आप हैं तो कुछ तो सुनना बनता है
0: जी।
1: क्योंकि नृत्य तो नहीं दिखा पाएंगे अपने श्रोताओं को, वो तो वो देख ही लेंगे आपका, लेकिन कम अज कम बातों में, स्वर में कहीं ना कहीं वो चीज तो झलकनी चाहिए जी। शालिना, देश विदेश में आपने परफॉर्मेंस दिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया है, तो कोई अनुभव अगर आप साझा करना चाहें। अपने देश में तो लोग जाने पहचाने से लगते हैं, जब आप विदेश जाते हैं तो वहां पर उनके बीच में जा करके परफॉर्म करना, कोई बात अगर आप शेयर करना चाहें।
0: इसमें प्रीति, हमारा जो विदेश का जो हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था क्योंकि कोविड टाइम में चल रहा था, पर फिर भी मैं आपको एक बात बताऊंगी कि उसमें हमने किया था कृष्ण का विराट स्वरूप।
1: अच्छा।
0: दिनकर की रचना है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है।
1: क्या बात।
0: तो ये पूरी तृतीय सर्ग है रामधारी से दिनकर की, कृष्ण का विराट स्वरूप, उसमें हमने डांस ड्रामा किया। जब वो लाइव चल रहा था, टेलीकास्ट जब हो रहा था, तो मुझे इतने बाहर से कमेंट इतने अच्छे अच्छे आए, जो भारतीय लोग तो करते ही हैं क्योंकि उन्होंने इसको पढ़ा है, जानते हैं। और जो विदेशी हमारे पास में जितने यहाँ के लवर्स हैं, जो मतलब भारतीय संस्कृति को चाहते हैं, पूछते हैं, वाराणसी में मैंने देखा कि जितना हमारे पूजनीय है माँ गंगा, उतनी जितने विदेशी आते हैं वो भी उसको उसी तरीके से पूछते हैं। तो यहाँ जब विदेशी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम आपकी मुद्रा या आप इसमें वीर रस प्रधान है, तो आपके जो नेत्र हैं, जब वीर होता तो वीर हैं, जब शांत होता तो शांत हैं, इतने जल्दी आप लोग बदल रहे हैं अपने, क्योंकि लाइफ चल रहा है तो हमारे पास ड्रेस चेंज करने का समय है नहीं, नहीं कट हो रहा है, वो सब लाइव है। और उनको इतनी अच्छी लगी सारी चीजें, और उनके बाद उनका ये था कि मैम हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं।
1: क्या बात।
0: हमारी भाषा नहीं आती, हमारी बोली नहीं आती, लेकिन वो सिर्फ भाव से हम जुड़ गए। तो यही तो है,
1: भाव भंगिमाई होती है कथक में, क्योंकि जब हम देखते हैं ना मंच पर आपको, तो वो चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: वो आईज, ऐसे लगता है कि फेस का हर एक अंग बोल रहा है,
0: बिल्कुल
1: कुछ कह रहा
0: सही
1: है।
0: सही बात है। देखिए, हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को, जब नाट्य शास्त्र में मैं लेक्चर लेती हूँ, तो कहते हैं कि शरीर के जितने अंग उपांग हैं, मतलब आपके यहाँ से ये भ्रिकुटी तो ये हो गया, आईब्रो हो गया, और यहाँ से सिर के जो बाल है वहां से लेकर पैर के जो नाखून वहां तक नृत्य होता है। हमारे पास तो ज्ञान का भंडार है,
1: बस उसे समझना है
0: समझना है। और जो लोग आज दिखा रहे हैं, हमें लगता है कि आप एक बार हमारी किताबों को पढ़ो, सब कुछ उसमें। तो ये सारी चीजें हमारे पास में।
1: आज तो मैं बिल्कुल आपकी बातों में खो सी जा रही हूँ। एक गाना सुन लेते हैं।
0: जी जी। लता जी का एक सुंदर सा गाना है, हम उसे सुने क्या
1: जी।

0: झारखंड में एक कहते ना कि एक जो भोलापन है ना, एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है ना, वो मुझे बहुत पसंद है
1: जी। और भविष्य में क्या सोच रहे हैं, क्या करना है?
0: प्रीति, भविष्य में मेरा एकमात्र मकसद है कि मैं अपनी संस्कृति को पूरे विश्व में लेकर जाऊं।
1: बहुत खूब।
0: जो हमारी संस्कृति है, जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे पास में कहते 15-16 साल के बच्चे, लोग कहते हैं कि आज का युवा वर्ग विमुख हो रहा है अपनी सभ्यता से। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का युवा वर्ग बिल्कुल हमारी सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। आपको उनको सिर्फ थोड़ा सा मार्गदर्शन देना है। हमारे युवा बहुत सजग हैं और मैं अपनी संस्कृति को पूरे विश्व में लेकर के जाऊं। जैसे कहते हैं कि फिर से हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बने, यही मेरी इच्छा है।
1: बिल्कुल, आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा।
0: धन्यवाद।
1: थोड़ी थोड़ी सी कोशिश हम सबको करनी है
0: जी,
1: और एक बहुत खूबसूरत भारत की कल्पना जो हमने की है वो बिल्कुल साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शालिना जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी बातें आपने की। चलते चलते जो मुझे एक गीत आपके लिए याद आ रहा है वो ये कि फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो।
0: बिल्कुल पक्का प्रीति, आपसे मुलाकात क्या, आपसे तो मिलने का मन इतना कर रहा है, वापस हम लोग मिलेंगे और आपकी मुस्कुराहट ऐसी ही बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए।
1: थैंक यू सो मच। और अब प्रीति को दे इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे।

0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया। इस बीच नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराया। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news are read by Abhishek Mukhopadhyay. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through the 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. In Jammu and Kashmir, the spirit of patriotism will resonate across the Union Territory from today as all 20 districts launch a week-long series of programs under Har Ghar Tiranga campaign 2026. Akashvani Jammu correspondent reports that this year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi today paid tributes to all those who participated in the Quit India movement. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that they united the nation in the struggle for freedom, taking inspiration from Mahatma Gandhi's clarion call of do or die. In a social media post, the Prime Minister said, inspired by the leadership of Mahatma Gandhi, the clarion call of Quit India infused new energy into India's freedom struggle and reflected the unwavering determination of the people to break free from colonial rule. Union and Home Minister Amit Shah says that the three new criminal laws introduced by the Modi government, replacing the colonial era laws, are based on three important pillars: technology, timeline and trust. He said this while participating in the presentation ceremony of the President's Police Colour to the Puducherry Police at the Police Training School ground at Garimendu.
2: Narendra Modi ji ke netrutva mein,
3: under the leadership of Narendra Modi, the government of India has replaced the colonial era penal code with three new Bhartiya Nyaya Sanhitas. Rather than being punishment oriented, these new legal codes are designed to deliver justice to citizens while remaining technologically capable, efficient and time bound. Ultimately, these three codes rest upon three core pillars: technology, timeline and trust.
2: Technology, timeline and trust, ye teen pillar par khadi ki gayi.
1: Later today, we'll flag off Har Ghar Tiranga Yatra at Muruga Theatre Signal in Puducherry. Jharkhand students protesting against alleged irregularities in JPSC and JSSC recruitment examinations will hold another round of talks with the representatives of state governments in Ranchi today. The next round of talks between the Jharkhand government and representatives of protesting students is scheduled for around noon today. The government panel held a meeting with Chief Minister Hemant Soren and briefed him on the progress made during the first round of dialogue with the students. The students have said that the movement will continue until concrete action is taken on the demands. The centre has agreed to lift 18 lakh metric tons LMT of old grain stock lying in Punjab mandis by the 20th of next month to clear storage space for the state's expected bumper paddy crop. A correspondent reports that Punjab is expected to supply 170 lakh metric tons of good quality rice in the central pool this year. In Jammu and Kashmir, annual Amarnath Yatra will remain suspended on both Pahalgam and Baltal routes from today due to recent rains, repair work of pilgrimage tracks and forecast of adverse weather conditions over the next few days. The decision to temporarily halt the Yatra has been taken keeping in view the condition of the tracks as well as weather forecasts issued by India Meteorological Department. In China, Shanghai's two airports cancelled more than 1,300 flights and authorities relocated over 3 lakh people in surrounding regions as the country prepared for Typhoon Dolphin. The outer bands of the storm hit northern Taiwan yesterday, including the capital Taipei, bringing rain. Some Taiwanese airlines also cancelled their flights to China. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh today. The IMD forecast heavy rainfall over Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Jharkhand, Madhya Pradesh and parts of Northeast India today. Indian shuttler Ashmita Chaliha has clinched the Korea Masters 2026, defeating China's Hang Chan Shi in the women's singles final this morning. And that is the end of this news bulletin.

12:11 आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार, जो आता है केवल और केवल रविवार। कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी और आज आपके साथ हूं मैं आशीष। नमस्कार। 1970 में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी पृष्ठभूमि पर आधारित एक ऐसी फिल्म दिख आई जिसमें यह कहा गया कि अगर आप भारतीय होने पर हैं और भारतीयता पर गर्व नहीं करते हैं तो भाई फिर जो हमने अंग्रेजों से लोहा लिया, आजादी हासिल की, उसका कोई फायदा नहीं। और फिल्म इस कदर मकबूल हुई, इस कदर मशहूर हुई, इस कदर लोगों के दिलों में बस गई कि आज भी लोग इसे बार बार देखना पसंद करते हैं, इसके गीतों को सुनना पसंद करते हैं। देशभक्ति का कोई भी मौका हो, इस फिल्म के गीतों के बिना वो अधूरा माना जाता है। फिल्म 1970 में आई पूरब और पश्चिम। निर्माण, निर्देशन और मुख्य भूमिका में थे मनोज कुमार। शशि गोस्वामी और मनोज कुमार ने इसको लिखा और साथ में साथी कलाकार थे अशोक कुमार, सायरा बानो, प्राण, निरूपा रॉय, प्रेम चोपड़ा, विनोद खन्ना। कैमरा पक्षभार संभाला इस फिल्म का VN रेड्डी ने और एडिटर थे इस फिल्म के BS ग्लाड। यादगार संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने और गीत लिखे इंदिवर, प्रेम धवन, संतोष आनंद, शारदा राम फिलौरी और ये सभी गीत आज भी लोगों की जबान पर हैं। भारतीयता के संस्कृति जो है, भारतीय की संस्कृति, उसे ओतप्रोत ये फिल्म, लबरेज फिल्म, लोगों को ये बताती गई कि भारतीय होने पर आप गर्व करो क्योंकि भारत के जो संस्कार हैं वो पूरी दुनिया उसके आगे नतमस्तक है। ये ऋषियों की पावन धरती है, लिहाजा इसी बात को लेकर फिल्म बनी थी पूरब और पश्चिम।

फिल्म पूर्व और पश्चिम में मनोज कुमार ने किरदार निभाया भारत का। सायरा बानो थी प्रीति के रोल में, अशोक कुमार थे गुरुजी के किरदार में और कामिनी कौशल थी गंगा यानी भारत की माँ के किरदार में। प्राण थे हरनाम के रूप में। प्रेम चोपड़ा ओपी यानी ओमकार के किरदार में थे, हरनाम की पत्नी कौशल्या के रूप में थी निरूपा रॉय। विनोद खन्ना थे श्यामू के रोल में। भारती गोपी के किरदार में, मदनपुरी जेपी शर्मा के रोल में थे और इसके अलावा शम्मी, राजेंद्रनाथ, ओम प्रकाश, मनमोहन ये सभी अपनी अपनी भूमिकाओं में थे और सभी ने यादगार अभिनय किया। फिल्म की कहानी शुरू होती है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। हरनाम एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ विश्वासघात करता है, अंग्रेजी हुकूमत से इनाम इकराम लेने के लिए, और चाहता है कि वो पैसा कमाए और इस देश को छोड़कर चला जाए क्योंकि उसकी नजर में इस देश में कुछ रखा नहीं है, ये भूखों का देश है, यहां भूख है सिर्फ। इसके साथ ही जब वो विश्वासघात करता है तो उसे अंग्रेजी हुकूमत इनाम और इकराम से नवाजती है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी जो है जिसके साथ वो विश्वासघात करता है वो उस हाथापाई में मारा जाता है अंग्रेजी सिपाहियों के हाथों, जिससे उसकी पत्नी गंगा और उसका परिवार बेसहारा हो जाता है। बरसों बाद स्वतंत्रता के बाद उसी स्वतंत्रता सेनानी का बेटा भारत बड़ा होता है, अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करता है, गुरुजी का आशीर्वाद लेता है, पूरे जिले का पूरे गांव का चहेता है भारत, और अब आज वो अपने दोस्तों के साथ भारत की आजादी का जश्न मनाने के लिए गया है।

सबसे पहले हैं भारतवासी, यही भारत का एक आवाहन है सभी देशवासियों के साथ। अब आंखों में बड़े बड़े सपने हैं भारत के और आगे बढ़ने की चाह है, और लिहाजा अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए वो लंदन जाना चाहता है। गुरुजी का आशीर्वाद देकर पहुंच जाता है ब्रिटेन, वहां पर अपने पिता के कॉलेज के दोस्त शर्मा जी से मिलता है। शर्मा जी जो आ तो गए थे यहां पर रोजी रोटी की तलाश में, लेकिन आज भी वो अपने देश भारत को बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं। वहां जाके भारत देखता है कि उनकी पत्नी रीता, बेटी प्रीति और हिप्पी बेटा शंकर, ये वो परिवार है जो कि अपनी पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को भूल चुके हैं और पश्चिमी तौर तरीकों में ढल चुके हैं। वहां के पहनावे में वो अपने आप को ये सोचते हैं कि वो वहां की पाश्चात्य संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन शर्मा जी हमेशा अपने भारत को याद करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से उनका परिवार वापस उनके साथ चलकर भारत में बस जाए, उसी गांव की मिट्टी में जहां पर वो पले बड़े हैं। लेकिन पत्नी रीता, बेटी प्रीति और हिप्पी बेटा शंकर किसी भी हालत में वापस नहीं जाना चाहते। हालांकि शंकर जो है कुछ हद तक वो भारत की भारतीयता को देखकर कासा खासा प्रभावित हुआ है और वो चाहता है कि वो भी भारत के नक्शे कदम पर चले। अब भारत वहां पे ये देखता है कि लोग जो हैं तरह तरह के व्यसन करते हैं, उनको ऐब है और भारतीय मूल्यों का कोई ज्ञान नहीं, यहां तक कि वो भारत से प्रीति भी नहीं मिलती है। भारत ये देखकर हैरान भी रहता है कि लंदन में कई भारतीय अपनी जड़ों से शर्मिंदा है और उन्होंने अपने नाम तक को बदलकर वेस्टर्न कल्चर वाला यानी पश्चिमी नाम रख लिया है। तब एहसास होता है भारत को कि ये लोग अपनी संस्कृति से किस कदर दूर होते जा रहे हैं। हालांकि एक पार्टी में उसका मजाक भी उड़ाया जाता है, तब भारत अपने देश भारत की बात कुछ यूं रखता है।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं।

0: रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

12:38 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी, और आज की फिल्म है पूरब और पश्चिम। शर्मा जी के कहने पर भारत प्रीति से मेलजोल बढ़ाने लगता है। शर्मा जी चाहते हैं कि किसी तरह से प्रीति भारत को चाहने लगे और उसकी उसके कहे हुए संस्कारों पर, उसके बताए हुए रास्ते पर वो चले और वापस अपने देश भारत चले। प्रीति भी भारत की अच्छाइयां देखकर उसकी तरफ खींची चली आती है। होता वही है जो शर्मा जी चाहते हैं। प्रीति लेकिन शर्त ये रख देती है कि मैं शादी करने को तैयार हूं भारत से, लेकिन भारत को यहीं लंदन में रहना होगा। तब भारत भी कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन एक बार तुम्हें मेरे साथ मेरे देश चलना होगा, मेरे गुरु जी से, मेरी मां से, सबसे मिलना होगा। और अगर उसके बाद भी तुम्हें वो देश, मेरा भारत पसंद नहीं आता, तो जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूंगा। क्योंकि वो जानता है कि एक बार भारत की मिट्टी से जो जुड़ गया, वो अपने आप को भारतीय कहने से गुरेज कर नहीं सकता। इसी बीच लंदन में हरनाम से भी मुलाकात होती है। वहां पर वो भारत उन्हें चाचा जी कहकर पुकारता और कहता है कि आप भी वापस देश चलिए अपने, आपकी बेटी गोपी जिसे आप छोड़ गए थे वो आपका इंतजार करती है। तब वो कहते हैं मेरा कोई नहीं है, क्योंकि वो अपने साथ वहां से आते हुए ले आए थे अपने बेटे को साथ में, जो ओमकार था, यहां पर आकर वो ओपी बन गया है। कोशिश करता है भारत, लेकिन वो नहीं मानते। वो आज भी उस मुल्क से करते हैं नफरत जिस मुल्क ने उनको सब कुछ दिया। शर्मा जी, उनकी बेटी, उनका बेटा शंकर और प्रीति, ये सभी आते हैं भारत। वहां के संस्कार, वहां का कल्चर देखकर, वहां के लोगों की आवभगत देखकर वो खुश होते हैं। प्रीति खास तौर से वहां पर देखती है गोपी को, गोपी जो मन ही मन भारत को चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती। और दूसरी तरफ शामू है जो गोपी को चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। लेकिन भारत इन दोनों के अंदर छिपे हुए भावों को, रिश्तों को पहचानता है। और यहीं से कहानी शुरू होती है प्रीति की और भारत की।

प्रीति भी खासी प्रभावित होती है भारत के गांव का परिवेश देखकर। सभी लोग उसे कितना अपने मन से मिल रहे हैं, कितना प्यार दे रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत भी यही चाहता है कि यहाँ के रंग में रंग जाए प्रीति। लेकिन प्रीति कभी भी यहाँ के रंग में रंगना नहीं चाहती। हालांकि वो भारत को पसंद करती है, लेकिन वो ये कहती है कि तुम मेरे साथ वापस लंदन चलो। क्या है यहाँ पर जो यहाँ पर तुम रहना चाहते हो? जो कुछ बाहर है वो हम यहाँ कभी हासिल नहीं कर सकते। तब भारत उसकी नादानी पर हंसता है और उसको समझाता है।

हंसी मजाक की बात, भारत को ये नहीं पता कि संजीदा तौर पर नहीं ले रही है प्रीति, क्योंकि भारत अब वाकई में प्रीति से करने लग गया है प्यार। दूसरी तरफ गोपी और श्यामू को समझाता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। दोनों की शादी तय होती है और इसी बीच हरनाम अपने बेटे ओपी को लेकर भारत आता है। ओपी जो शुरू से ही प्रीति को चाहता है, लेकिन अब भारत को प्यार करने लग गई है प्रीति, लिहाजा ओपी की आंख का कांटा बन चुका है भारत, उसे रास्ते

अब प्रीति को भी ये एहसास हो गया है कि वो भारत के बिना नहीं जी सकती, और दूसरी तरफ ओपी इस रिश्ते से कतई खुश नहीं है। हालांकि गुरुजी का आशीर्वाद लेने के बाद भारत और प्रीति की शादी तय हो जाती है, लेकिन ओपी जबरदस्ती प्रीति को हासिल करना चाहता है। तब गुरुजी बीच बचाव करते हैं, प्रीति की रक्षा करते हैं, और गुरुजी को और कोई नहीं बल्कि हरनाम के पिता और ओपी के दादा हैं। लेकिन ओपी पे तो मानो भूत सवार है प्रीति के प्यार का, वो किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता है, लिहाजा अपने दादा का भी लिहाज नहीं करता, उन पर भी हाथ उठाता है। हाथापाई में गोली चलती है और दादा को लगती है, यानी गुरुजी चल बसते हैं इस दुनिया से। ये देख हरनाम का गुस्सा सातवें आसमान पर है, वो ओपी को जान से मारने के लिए उसके पीछे जाता है। तब भारत पहुंचता है और वहां पर ओपी को बचाता है हरनाम के हाथों। तब हरनाम को यह एहसास होता है कि जिस देश को, जिस भारत को वो ठुकरा रहा था, उसी ने आखिर उसको शरण दी है। अपने पछतावे किए पर पछतावा होता है हरनाम को, और वो सबसे माफी मांगता है। इसके बाद प्रीति भारत का हाथ थाम लेती है और इसी देश यानी भारत की ही होकर रह जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म पूरब और पश्चिम की कहानी और गीत। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार और 1:10 पर फिर आपसे भेंट होगी कार्यक्रम दिल ढूंढता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और ये 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस दौरान सामूहिक वंदे मातरम गायन, तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। गृहमंत्री अमित शाह पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृहमंत्री ने आज गोरीमेदू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए

0: केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं, टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने चार उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश की जा रही है। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. In Delhi, as part of the campaign, Lok Sabha BJP MP Basuri Swaraj paid floral tributes at the memorial of Pandit Madan Mohan Malviya in Malviya Nagar, followed by Tiranga Yatra from Pilanchi village to Greater Kailash. Speaking to the media, Ms. Swaraj said the BJP has launched a week-long campaign starting today, during which party office bearers and workers will visit the memorials of national heroes and martyrs. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to the freedom fighters who participated in the Quit India movement. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said, "They united the nation in the struggle for freedom, taking inspiration from Mahatma Gandhi's clarion call of do or die." In a social media post, the Prime Minister said, "Their courage will always remain an inspiration for every Indian." Union Home Minister Amit Shah said the 3 new criminal laws introduced by the Modi government, replacing the colonial era laws, are based on the 3 important pillars, that is technology, timeline and trust. He said this at the presentation ceremony of the President's Police Colour to the Puducherry Police at the Police Training School Ground in Garimendu.
0: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
3: अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिप्लेस द कॉलोनियल एरा पिनल कोड विद 3 न्यू भारतीय न्याय संहिताज रादर देन बीइंग पनिशमेंट ओरिएंटेड दिस न्यू लीगल कोड्स आर डिजाइन टू डिलीवर जस्टिस टू सिटीजंस व्हाइल रिमेनिंग टेक्नोलॉजिकली कैपेबल एफिशिएंट

1:10 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ कार्यक्रम दिल ढूंढता है। मधुर गीतों का गुलदस्ता लिए हाजिर हूं मैं आशीष, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म हंसते जख्म के उस गीत से जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, संगीत से सवारा मदन मोहन ने और गीतकार कैफी आजमी।

जब हाथ में किसी अपने का हाथ आ गया, दिल की बात दिल तक पहुंच गई, तो भाई आंखों के जज्बात भी तो पढ़ने बेहद जरूरी हो जाते हैं। जैसा कि कहा गया है फिल्म घर के इस गीत में, जिसे गाया है किशोर कुमार, लता मंगेशकर ने, और संगीत से सवारा आर डी बर्मन और गीतकार गुलजार।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
6: एक बजकर 24 मिनट और 31 सेकंड, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ढूंढता है और अब इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आपकी नजर करते हैं। फिल्म है सितारा, गायक कलाकार भूपेंद्र और लता मंगेशकर, संगीतकार आरडी बर्मन और गीतकार गुलजार। और दोस्तों, इस गीत के बाद आप सुनेंगे संस्कृत साप्ताहिकी।

0: नमः श्रोतृवृन्देभ्यः स्वागतमस्ति भवतां संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे यत्र वयं संस्कृत जगतः नानाविधान् ज्ञान संप्रिक्तान् हर्षाभिवर्धकान् घटनाक्रमान् वार्ताश्च शृण्मः। अहमस्मि कार्यक्रमस्य समुद्घोषकः कृष्णप्रसादो उपाध्यायः। मान्याः, अस्मत् संस्कृत शास्त्रेषु नीतिपरकाणां उपदेशानां महत्तमः संग्रहः अस्ति। तस्मादेव संग्रहात् शृणुमस्तावत् अद्यतनं सुभाषितं मधुरस्वरेण च प्रस्तौति श्री पुनीत त्रिपाठीवर्यः।
1: सर्वमन्यत् परित्यज्य शरीरमनुपालयेत् तद्भावे हि भावानां सर्वाभाव शरीरिणां। अर्थात संसार से हमें जो भी पुरुषार्थ या कार्य करना है वह हम अपने स्वस्थ शरीर से ही कर सकते हैं। इसके अभाव में हर वस्तु का अभाव हो जाता है। इस प्रकार यह एक सर्वोत्तम धन है, अतः इसकी देखरेख सर्वोच्च प्राथमिकता से करनी चाहिए।
0: श्रीमते पुनीताय साधुवादाः। मित्राणि, मन्येहं स्मरन्ति भवन्तः प्रसङ्गः इति अस्ति अग्रिमा प्रस्तुतिः। चलामस्तावत् सुरेश शर्मणं प्रति, यो हि इदानीं सन्नद्धोऽस्ति प्रसङ्गस्य प्रस्तावनाय। सुमधुरस्वरेण च प्रस्तौति प्रसङ्गमेकम्।

0: भारतस्य वैशिष्ट्यम्। एतासु एव विशेषतासु भाषागतापि अस्ति एका अन्यतमा विशिष्टता। नाना भाषा भाषिणः सन्तोऽपि वयं स्मः एकात्मभूताः भारतीयाः। इदानीम् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति प्रभागविशिष्टं प्रति चलामः, यत्र मुदिता वेतालः संस्कृत हिंदी बंगालीति भाषात्रये पञ्चवाक्यानि उपस्थापयति। त्रिवर्णध्वज विषये
1: प्रथमं वाक्यमस्ति, त्रिवर्णध्वजः भारतस्य राष्ट्रियध्वजः अस्ति। पहला वाक्य है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है, बंगाली में भारतेर जातियों पोता का तिरंगा पोता का। द्वितीयं वाक्यमस्ति, राष्ट्रीय ध्वजस्य मध्ये नील वर्णस्य चक्रः अस्ति। दूसरा वाक्य है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में नीले रंग का चक्र है, बंगाली में जातियों पोताकार माझखाने एकटी नील वृत्त रयचे। तृतीयं वाक्यमस्ति, ध्वज मध्ये चक्रे चतुर्विंशति ही अराह संति। तीसरा वाक्य है, ध्वज के मध्य में स्थित चक्र में 24 तीलियां हैं, बंगाली में जातियों पोताकार माझखाने अवस्थित चक्रे 24 मुख पात्र रयचे। चतुर्थं वाक्यमस्ति, एते अराह अहोरात्रं परिश्रमस्य परिचायकाः सन्ति। चौथा वाक्य है, यह तीलियां अहर्निश परिश्रम करने का परिचायक हैं, बंगाली में एई मुख पात्र किंबा अहर्निश दिन रात्र परिश्रमेर लक्षण। पंचमं वाक्यमस्ति, देशे राष्ट्रीय उत्सवेषु त्रिवर्ण ध्वजस्य ससम्मानं उत्तोलनं भवति। पांचवा वाक्य है, पूरे देश में राष्ट्रीय उत्सवों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है, बंगाली में सारा देशी जातीय उत्सवे तिरंगा पोता का उत्तोलन करा हुए। धन्यवादाः।
0: धन्यवादाः मुदिताये। अयभो सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः, कार्यक्रम विषये भवतां भवतीनां च प्रतिक्रियाः अस्मान् सुतरां सम्प्रेरयन्ति। सततं भवन्तः भूरि सन्देशान् सम्प्रेषयन्तु इति कामयामहे च वयम्। संस्कृत साप्ताहिकीति विषये निजविचारान् ईमेल माध्यमेन सम्प्रेषयन्तु भवन्तः इति अपि निवेद्यन्ते। अस्माकम् ईमेल संकेतोऽस्ति samskritasaptahiki@gmail.com इति। इदानीम् अत्रैव अवसानं सङ्घोषयामः। अग्रिमे सप्ताहे अभिनवांकं एकं आदाय पुनरागमिष्यामः। तापदस्तु समेषां शुभं मंगलं च।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। हुब्बुल वतनी और कौमी इत्तेहाद का जश्न मनाने के लिए पूरे मुल्क में कई तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हो रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने जो 3 नए फौजदारी कवानीन मुरतब किए हैं, उनका मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी तरीक़ेकार के जरिए मुकर्रर वक्त के अंदर इंसाफ फराहम करना है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने केरलम में मल्लापुरम में गैर कानूनी धमाका खेज मादों की बड़ी खेप जब्त किए जाने के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। चीन में शदीद तूफान डॉल्फिन के इम्कान के तनाजुर में 1300 से ज्यादा परवाजें मनसूख की गई हैं और 3,00,000 से ज्यादा लोगों को दीगर मुकामात पर पहुंचाया गया है। और बैडमिंटन में अश्मिता चलिया ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। अब खबरें तफसील से। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है और ये इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगी। इसका मकसद कौमी परचम लहराने और हुब्बुल वतनी कौमी इत्तेहाद और भारत के सकाफती वर्से का जश्न मनाते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल होने के लिए लोगों की हौसला अफजाई करना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव तकरीबात के हिस्से के तौर पर साल 2022 में हर घर तिरंगा मुहिम का सिलसिला शुरू हुआ था और इसके बाद से ये अवामी शमूलियत की मुल्क की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक बन गई है। इस तरह यह मुहिम हकीकी माना में आवाम की तहरीक बन गई है, जिससे मुख्तलिफ खित्तों और तबकों के लोगों को भारत के इत्तेहाद, अजमत और इज्तिमाई कौमी शनाख्त

0: श्री सुराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के मेमोरियल पर अकीदत के फूल नजर किए और इसके बाद पिलांजी विलेज से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहतरमा बांसुरी सुराज ने कहा कि इस बार का यौम आज़ादी खास तौर पर अहमियत का हामिल है क्योंकि ये भारत का 80वां यौम आज़ादी होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आज से एक हफ्ता तवील मुहिम का आगाज किया है जिसके दौरान पार्टी के ओहदेदार और कारकुन मुल्क के जाबाजों और शहीदों के मेमोरियल पर जाएंगे।
1: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहाँ पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
0: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने उन मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इन जांबाजों ने करो या मरो की महात्मा गांधी की अपील से तरगीब हासिल करते हुए जद्दोजहद आज़ादी में मुल्क को मुत्तहिद करने में अहम रोल अदा किया। जनाब राधा कृष्णन ने कहा कि उनकी दिलेरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी से आने वाली नस्लों को तहरीक मिलती रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने वालों को खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी और दिलेरी हर भारतीय शहरी के लिए हमेशा बाईस तहरीक रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि महात्मा गांधी की क़यादत से तरगीब हासिल करते हुए भारत छोड़ो की अपील से मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ और इससे नौ आबादियाती राज से छुटकारा हासिल करने के अवाम के पुख्ता अज़्म की अक्कासी होती है। यौम आज़ादी के मौके पर मध्य प्रदेश में 124 कैदियों की सज़ा में नरमी की जाएगी। इनमें से उम्र कैद की सज़ा काटने वाले 118 कैदियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा जबकि 6 दीगर कैदियों को खसूसी रियायत दी जाएगी। इन कैदियों के अच्छे तर्ज अमल और जाब्तों के मुताबिक काम करने के उनके रवैये की बुनियाद पर ये रियायत दी जा रही है। सरकार ने कहा है कि इस कदम से अच्छा तर्ज अमल इख्तियार करने के लिए दीगर कैदियों की भी हौसला अफजाई होगी। इसके अलावा रिहा किए गए कैदियों को मुआशरे के असल धारे में वापस आने का मौका मिलेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नौआबादियाती दौर के कवानीन की जगह मोदी सरकार ने जो 3 नए फौजदारी कवानीन मुरतब किए हैं वो 3 अहम सुतूनों टेक्नोलॉजी, वक्त की हद और भरोसे पर मबनी हैं। उन्होंने गौर रेमिडो में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड पर पुदुचेरी पुलिस के अहलकारों को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम पेश करने की तकरीब में शिरकत करते हुए ये बात कही।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: जनाब अमित शाह पुदुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा का आगाज भी कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौमी जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मल्लापुरम में गैर कानूनी धमाका खेज मादों की एक बड़ी खेप जब्त किए जाने के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने बताया है कि मजकूरा मुलजिम साजिश रचने वाला असल कारिंदा है और वो इस केस में जब्त किए गए धमाका खेज मादों को गैर कानूनी तरीके से हासिल करने में मुलविस था। इस गिरफ्तारी से एक दिन पहले NIA ने जुमे को कर्नाटक में विजयपुरा से 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। इस तरह इस केस में अब तक 10 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। उड़ीसा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में फिर से पानी की सतह में इजाफा हो रहा है जबकि सैलाब की गुज़िश्ता लहर से कई इलाके अभी पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाए थे। बालासोर में, जलाका और भद्रक में बैतरानी और सलांदी दरियाओं में पानी चढ़ रहा है जबकि संबलपुर में हीराकुंड डैम के 12 फाटकों से सैलाब का पानी छोड़ा जा रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट

0: burned across the province. Nearly half of them were out of control. Ebi said that some residents were trapped and had to be rescued. The entire community of Summerland, home to about 12,000 people, was ordered evacuated overnight, along with about 8,000 people in and around nearby Peachland. In badminton, India's Ashmita Chalia has clinched the women's singles champion at the Korea Masters tournament today. Ashmita defeated China's Han Qianxi. The shuttler recovered from losing the opening game to prevail 14-21, 21-14, 21-14 in 53 minutes. With this win, she claimed her first BWF title. She has also become the first Indian to win the Korea Masters, and it's the second consecutive women's singles title for India after Tanvi Sharma's victory at the Taipei Open last week. India's medals tally rises to 3 at the World Athletics Under-20 Championship in the United States. Basant Kumar Meghwal won a silver in high jump, while Shahnawaz Khan wins a bronze in the long jump today. In men's high jump, 19-year-old Meghwal cleared his personal best of 2.21 meter to win a silver medal. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country to celebrate patriotism and national unity. Home Minister Amit Shah says three new criminal laws introduced by government are aimed at providing time-bound justice through technology-driven mechanism. NIA arrests one more accused in connection with seizure of huge consignment of illegal explosives in Mallappuram, Kerala. Fresh rains revive floods concerns in Odisha, with water level rising in several rivers. Alert issued for very heavy rainfall of Uttarakhand and Chhattisgarh today. In China, more than 1,300 flights cancelled and over 3 lakh people relocated ahead of Typhoon Dolphin. And in badminton, Ashmita Chalia clinches her first BWF World Tour title at the Korea Masters 2026. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा।

0: समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ बीआर आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
2: इट इज इंडीड टू प्लेजर टू लॉन्च दिस कैंपेन टुडे ऑन द ऑगस्ट क्रांति दिवस एस वी कमेमोरेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। मिलियंस ऑफ इंडियंस रिस्पॉन्डेड टू दिस कॉल एंड रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश विद अनवावरिंग रिजॉल्व ऑफ डू ऑर डाई ऑन दिस डे। इट इज देयरफॉर डीपली सिग्निफिकेंट दैट वी लॉन्च द हर घर तिरंगा कैंपेन फ्रॉम द हिस्टोरिक आइलैंड्स ऑन दिस हिस्टोरिक डे।
1: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
3: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
4: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
5: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
6: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है, जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार

0: नजर रख रहा है।
1: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

भारत सिर्फ एक देश ही नहीं, एक दर्शन है। इतिहास साक्षी है कि हजारों साल की सभ्यता को अपने आंचल में संभाले हुए है भारत। इस महान देश ने पूरी दुनिया को एक सुर में पिरोने के लिए वासुदेव कुटुंबकम जैसा नारा बुलंद किया। इंसान का इंसान से भाईचारा बना रहे, इसीलिए अतिथि को देवों के समान आदर सत्कार दिया। अतिथि देवो भव जैसे विचार इसी धरती पर उपजे, जियो और जीने दो जैसे विचार हमारी उत्पत्ति का हिस्सा है। हम आदतन भी प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और शांति की बात करते हैं। इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि पूरी दुनिया को प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और शांति का पाठ पढ़ाने वाले इस देश की आन, बान और शान की ओर जब कभी किसी ने बुरी नजर डाली, तो इस देश के सपूतों ने, इस देश के जांबाज सिपाहियों ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर भी इस देश की इस्मत पर आंच

शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, अशफाकुल्लाह, मंगल पांडे जैसे हजारों देशभक्तों ने अपनी जान की कुर्बानियां देकर इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाया। मगर सन 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भी कुछ मौका परस्त दुश्मनों ने इस देश की ओर बुरी नजर डालना बंद नहीं किया। सन 1965 में एक बार फिर एक दुश्मन देश ने इस देश की शांति को ललकारा और भारत की सीमाओं को लांघने का प्रयास किया और भारत पर फौजी हमला बोल दिया। बारूदों और गोलियों की बरसात थी। बड़ा ही सख्त पहरा था, कहर था। जहां चली थी ये सन 1965 की जंग, वो पंजाब का अमृतसर शहर था। दुश्मन नापाक इरादे ले अमृतसर के इलाके खेमकरन तक घुस आया था। अमृतसर हिंदुस्तान के दिल का एक टुकड़ा, जो पंजाब का सरमाया था। दुश्मन की तादाद बहुत थी, लेकिन दुश्मन इस बात से बेखबर था। हजारों जांबाज हिंदुस्तानी सिपाहियों के बीच परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद का साया था। शहीद अब्दुल हमीद सन 1965 की जंग का जांबाज सिपाही, जिसने अकेले दुश्मन की आर्मी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 पैटर्न टैंक नेस्तो नाबूद कर दिए। याद रहे, यही पैटर्न टैंक्स बनाने वाले एक बड़े देश ने इस बात का दावा किया था कि ये टैंक्स किसी भी तरह नष्ट नहीं किए जा सकते, मगर अब्दुल हमीद ने दुश्मन के 7 टैंक्स नष्ट कर इस बात को झुठला दिया। तो चलिए, इससे पहले कि हम अब्दुल हमीद के सन 1965 की जंग के कारनामों के बारे में सुने और जाने, आइए चलते हैं सन 1954 के करीब। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर के एक गांव धामपुर में जनाब मोहम्मद उस्मान के घर के बार

0: अब्बू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
1: जानता हूं बेटे, तुम्हारा फौज से खत आ गया है।
0: तो अब्बू, मैं आपसे और अम्मी से इजाजत चाहता हूं आर्मी में जाने के वास्ते।
1: देखो बेटा, सच पूछो तो बाप का मन तो कहता है कि तुम्हें रोक लूं। फौज में हमेशा जान हथेली पे रखनी पड़ती है, मगर जब तुम्हारे जज्बे को देखता हूं मुझे तुम पर बहुत फक्र होता है।
0: शुक्रिया अब्बू। अम्मी।
2: हाँ बेटा।
0: आप देंगी इजाजत मुझे?
2: अब्दुल बेटा, एक माँ अपने बेटे को 9 महीने पेट में जो रखती है, दुख दर्द सहती है, कीली जगह पर खुद सोती है और अपने हिस्से का निवाला अपने बच्चे के मुंह में डालती है, मगर फिर भी उफ तक नहीं करती और बदले में कभी कुछ नहीं चाहती। लेकिन मैं ऐसी मां नहीं हूं। मेरे बेटे, मुझे अपने दूध की कीमत चाहिए।
0: अम्मी, आप सिर्फ एक मर्तबा कहें तो मैं फौज में जाने का इरादा एकदम छोड़ सकता हूं।
2: नहीं अब्दुल, मैं तुम्हें फौज का इरादा छोड़ने के लिए नहीं कह रही, बल्कि मैं ये कह रही हूं कि जी जान से अपने मुल्क की खिदमत करना। अल्लाह नसीब वालों को यह मौका देता है, और हाँ, कभी ऐसी नौबत आए, अपनी जान भी देनी पड़े, तो मेरा और अपने अब्बू का सर मत झुकने देना बेटा।
0: अम्मी, मेरी रगों में तेरा दूध खून बनकर दौड़ता है। तेरे कदमों की खाक माथे पे लगाकर तेरे आंचल की जन्नत को छोड़कर जा रहा हूं।

0: कसम उस परवरदिगार की, कभी मेरे मुल्क पर बुरा वक्त आया तो दुश्मन को दोजख तक पहुंचाकर दम लेगा तेरा बेटा।
1: आमीन
2: सुम्मा आमीन।
0: वाह, सदके ऐसी माताओं के जो ऐसा जज्बा रखती हैं। दोस्तों, वीर शहीद अब्दुल हमीद की पैदाइश 1 जुलाई सन 1933 को उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर के गांव धामपुर में हुई। अब्दुल के वालिद यानी पिता पेशे से दर्जी थे और मां एक घरेलू औरत। बचपन से ही हमीद अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर शहीदों के किस्से बड़ी दिलचस्पी से पढ़ता और सुनता था। शायद यही वो वक्त था जब उसके दिल के किसी कोने में मुल्क की खिदमत करने का जज्बा पैदा हुआ था। लिहाजा 27 दिसंबर सन 1954 में अब्दुल हमीद ने ग्रेनेडियर्स इन्फेंट्री रेजिमेंट ज्वाइन कर ली। अब्दुल हमीद का आर्मी नंबर था 239885 और उसके बाद वो इसी रेजिमेंट की 4th बटालियन में नियुक्त हुए और फिर अपनी नौकरी के आखिर तक वहीं कार्यरत रहे। और फिर अपनी सर्विस के दौरान अब्दुल हमीद आगरा, अमृतसर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नेफा और रामगढ़ में कार्यरत रहे। अरे अरे, लेकिन ये बैलगाड़ी पर कौन सवार है? ओ, ये तो अपने अब्दुल हमीद ही हैं। शायद कुछ दिन की छुट्टी पर घर आए हैं। ये वक्त सन 1962 का है। आइए सुनते हैं किससे बात कर रहे हैं।
1: इस बार इतना वक्त काहे लगा दिया आने में? याद नहीं आई का हमारी?
0: तुम्हारी फोटो हमेशा सीने से चिपकाए रहते थे हम। कई बार डांट खाई है तुम्हारे चक्कर में।
1: अब हमें क्या मालूम, ऐसे झूठ मूठ बहला रहे हो तो।
0: अच्छा, हम झूठे हैं? अभी बताते हैं तुमको। अरे रुक ना, अरे कहाँ भाग रही है?
1: छोड़िए हमारा हाथ। देखिए, हमारी कलाई बहुत नाजुक है, आपका हथौड़े जैसा फौजी हाथ नहीं है। छोड़िए।
0: अच्छा तो चलो ना, तुमको भी फौज में दाखिल करवा देते हैं।
1: हटिए पीछे, बहुत नटखट हैं आप।
0: ए बेगम सुन ना, अरे हमारी आंखों में देखो ना एक बार।
1: क्या है? हमें शर्माते हैं।
0: लो तो हम तुम्हारी शर्म मिटा देते हैं। अरे सुनो ना, अरे भाग, अरे रुक ना, अरे भागती कहाँ हो?
1: छोड़िए हमें।
0: कौन आ गया?
3: अरे इधर आओ, तुम्हारा तार आया है।
0: अरे हम आते हैं जरा। हाँ, कहाँ से आया है चाचा?
3: लो भाई तुम्हारा तार।
0: लाओ
1: पढ़िए, क्या लिखा है इसमें?
0: जंग छिड़ गई है, हमें तुरंत बुलाया है।
1: लेकिन लेकिन आप अभी अभी तो आए हैं और अभी इतनी जल्दी चले भी जाएंगे?
0: हमारे इम्तिहान की घड़ी आ गई है बेगम।
1: लेकिन और भी तो कितने सिपाही हैंगे फौज में, थोड़ा रुक कर नहीं जा सकते का आप?
0: अरे हर फौजी अगर ऐसे ही सोचेगा कि और सिपाही हैं, तो फिर दुश्मन हमारे घर की दीवारें लांघकर हमारे घरों में आन घुसेगा। मुझे जाना होगा बेगम, जिंदा रहा तो फिर।
1: जिंदा तो आपको आना ही पड़ेगा, हमारी खातिर ना सही, अपनी अपनी होने वाली औलाद की खातिर ही सही।
0: अरे हमें बता ही नहीं तुम, रो काहे रही हो? तो खुशी की बात है। अरे अरे आंसू पोंछो,

20 अक्टूबर 1962 को 3,225 किलोमीटर लंबे हिमालयन बॉर्डर पर हिंदुस्तान और चीन के बीच जंग छिड़ गई। दोनों मुल्कों के बीच हिमालयन बॉर्डर का ये झगड़ा पहले से ही चलता आ रहा था। जब दोनों मुल्क सियासी तौर पर इस झगड़े का कोई हल ना निकाल पाए तो चीन ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। और ये जंग तभी थमी जब 20 नवंबर 1962 को चीन ने सीज फायर का ऐलान किया। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने भी भारत की ओर से इस जंग में हिस्सा लिया। 1962 की इस लड़ाई के दौरान अब्दुल हमीद की बटालियन 7th

0: नीटू सिंह भी कमाल बात करते हैं। अब्दुल पाजी अब तो तुसी क्वार्टर मास्टर स्टोरेज दे इंचार्ज बना देते गए हो।
1: क्या बात है।
0: मुबारका मुबारका। वैसे तुसी 106 mm राइफल चलान विच हो भी तो उस्ताद।
1: हाँ भाई ये बात तो है, ये बात तो है
0: पाजी। कोई पार्टी शार्टी होनी चाहिए थी।
2: ओए नीटू सिंह, ओए तुझको सिवाय पार्टी के कुछ और कभी ध्यान नहीं आता है।
0: ले भाई,
1: जब देखो खाने पीने की बात
0: है। सही बोला है, एकदम सही बोला है भाई। हम कोई सिविल की नौकरी में तो है नहीं जो हर चाचे ताए मामे के मुंडे कुड़ियों के ब्याह की पार्टियां उड़ाते फिरे। ओए ओए साड़ी तो मजबूरी है भाई जान कि 24 घंटे तुम लोगों के मुंह देखना।
1: भाई ये क्या बोल रहा है भाई,
0: क्या बात कर रहे। खैर तुम बताओ अब्दुल हमीद भाई, कोई पार्टी शार्टी दोगे कि नहीं?
3: देखो भाई नीटू सिंह, तुम जितनी चाहे पार्टियां लो,
0: अच्छा,
3: पर जहां तक राइफल चलाने की बात है उसका सबूत तो दुश्मन के सीने में लोहा दाग कर मिलता है।
1: ये बात करी ना, ये बात
3: से याद आया है।
1: इरशाद करो, इरशाद करो, दिल्ली करो या गाजियाबाद करो, मगर हमीद भाई तुम इरशाद करो।
3: वाह वाह वाह। तो अर्ज किया है,
0: है? कर्ज लिया? वो किधर को लो कर्ज लिया अब्दुल भाई?
1: चुप ओ चुप।
3: ओहो सुन तो लो। तो अर्ज किया है कि अव्वल तो हमें जंग पसंद नहीं, कि अव्वल तो हमें जंग पसंद नहीं,
0: हाँ,
3: और अगर जंग हुई तो जीत यकीनन हमारी होगी।
1: सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह।
3: शुक्रिया शुक्रिया।
0: और अगर जंग हुई तो जीत यकीनन
1: हमारी होगी।

अब्दुल हमीद को नौकरी में अभी 5 साल ही हुए थे कि आर्मी ने अब्दुल हमीद को क्वार्टर मास्टर स्टोर्स का चार्ज दे दिया। तभी एक दिन 8 सितंबर 1965 को अब्दुल हमीद अपने बटालियन 4th ग्रेनेडियर्स के साथ अमृतसर के खेमकरण भीकेविंड रोड के गांव चीमा में अपनी चौकी मतलब पोस्ट पर अपनी बटालियन के साथ मौजूद थे कि तभी दुश्मन देश ने अब्दुल की बटालियन पर गोलीबारी शुरू कर दी। 4th बटालियन ने दुश्मन की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अब्दुल की बटालियन चीमा गांव में उत्तर की तरफ मौजूद थी और दूसरी बटालियन यानी 7th ग्रेनेडियर्स गांव असल उत्तर में दक्षिण में मोर्चा संभाले हुए थी। दुश्मन की गोलीबारी लगातार बढ़ती जा रही थी और अब्दुल हमीद की बटालियन को दुश्मन का मुकाबला करते हुए 24 घंटे हो चुके थे कि तभी दुश्मन की बढ़त को देखकर 4th ग्रेनेडियर्स को अपनी पोस्ट से पीछे हटने का हुक्म मिला। लेकिन अपनी पोस्ट से पीछे हटने से पहले अब्दुल हमीद ने दुश्मन की आर्मी के 2 पैटर्न टैंक्स को नष्ट कर दिया। इस वक्त अब्दुल के ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट H.R. जानू और दूसरे लेफ्टिनेंट थे V.K. वैद।

0: शाबाश मेरे शेरों, टैंकों के गोलों की बौछार बंद नहीं होनी चाहिए। नेस्ना नाबूद कर दो जो भी सामने आए। अब तो बस दिल्ली पहुंचकर इनके लाल किले में बैठकर ही नाश्ता करेंगे,
1: यकीनन
0: चिकन बिरयानी और नमकीन चाय के साथ।
1: बशीर साहब, टैंकों के गोलों की बौछार तो नहीं रुकेगी, मगर दुश्मन के ठिकाने का तो कुछ पता नहीं चल रहा।
0: ओ, दुश्मन जिस भी बिल में छुप जाए, बिलों से निकाल निकाल कर मारो इन काफिरों को।
1: ऐसा ही होगा,
0: ऐसा ही होगा,
1: ऐसा ही होगा।
2: दुश्मन के साथ जंग अभी भी जारी थी कि तभी 10 सितंबर 1965 को दुश्मन की फौज ने भारी फौज और पैटर्न टैंक्स के साथ सुबह के 8 बजे हमला बोल दिया। दुश्मन के पैटर्न टैंक्स की गोलाबारी जारी थी, मगर दुश्मन अब्दुल हमीद की बटालियन के एक भी सिपाही को ढूंढने में नाकाम था। चूंकि अब्दुल हमीद और उसके साथी कॉटन और गन्ने के खेतों में छुपे हुए थे, अब्दुल हमीद की बटालियन का पता लगाने के लिए दुश्मन ने बमबारी और भी तेज कर दी।

0: अब्दुल, अब्दुल दोस्त, दुश्मन की गोलाबारी बमबारी तो और भी तेज होती जा रही है।
1: हाँ हाँ।
0: और ऊपर से ये पैटन टैंक।
1: अरे फिक्र मत कर दोस्त, एक बार इनको इस देश की मिट्टी पर कदम रखने दे बस। मेहमान नवाजी की रिवायतें हमसे बेहतर कौन जानता है। वैसे भी बच्चे तो हमारे ही हैं, थोड़े बिगड़ैल हैं बस,
0: तो
1: सिखा देंगे।
2: दस सितंबर 1965 सुबह के 9 बजे थे कि
3: देखा कैसे कल दुम दबा के भागे थे वो लोग।
1: चूहे की तरह।
2: खामोश, चुप चुप चुप चुप, कोई आवाज नहीं करेगा। आ रहे हैं कमबख्त अपने पैटर्न टैंकों को लेकर।
1: आने दो,
2: आने दो, इन गन्ने के खेतों में वो हमें देख भी नहीं पाएंगे। चुप, खामोश,
1: बैठो बैठो, बैठ जाओ,
2: कोई आवाज नहीं।
3: हम भी तैयार हैं अब्दुल भाई, आज इनको नाक से चने नहीं चबा दिए तो।
2: रुको रुको रुको, वो रेंज में आ रहे हैं, मुझे जाना होगा जीप पर।
3: लेकिन लेकिन अब्दुल भाई, इनके पैटर्न टैंक।
1: अरे इनके टैंकों की ऐसी की तैसी, जा रहा हूं मैं।
3: जाओ जाओ।
2: दुश्मन को करारा जवाब देते हुए अब्दुल हमीद ने दुश्मन के 3 टैंक नष्ट कर डाले। दुश्मन के बहुत से फौजी ये देखकर घबरा गए कि आखिर ये पैटर्न टैंक्स कैसे नष्ट हो सकते हैं। याद रहे कि 106 एमएम गन जीप पर लगी होती है और एक बार दुश्मन पर वार करने के बाद 1 मिनट से पहले उसकी पोजीशन बदलनी पड़ती है, वरना दुश्मन को उस जीप का पता लग जाएगा और वो उसे नष्ट कर देगा। अब्दुल हमीद ने दुश्मन की तेज गोलाबारी की परवाह किए बगैर दुश्मन पर जवाबी हमला बोल दिया। लेकिन जरा सुने ये अब्दुल हमीद अपने साथी से क्या कह रहा है।
4: वो देखा नीटू सिंह, वो मैं ना कहता था कि गोली दागने का असली मजा दुश्मन के सीने में आता है।
5: भले शेरा।
4: मैंने तो इन नाशुकरों के पैटर्न टैंक भी उड़ा दिए। वो बड़े उछलते फिरते थे, वो हमारे टैंक्स को उड़ा नहीं सकता। अब क्या मुंह लेकर जाएंगे वापस।
5: क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, बल्ले शेरा, तेरी ये अदा देता ऐसी कायम है।
1: क्या भैया,
0: फिर से आ रहे हैं हमारी तरफ।
2: फिक्र मत कर नीटू, अभी इनका भी इंतजाम करते हैं। रुको, तुम यहीं से फायरिंग जारी रखो और मुझे जीप लेकर दूसरी तरफ जाना होगा। मैं आता हूँ।
5: आंधे ना।

जोर दिया था कि ये टैंक्स किसी भी हाल में नष्ट नहीं हो सकते, मगर अब्दुल हमीद शायद किसी और ही मिट्टी का बना था। उसने बहादुरी से न केवल दुश्मन का मुकाबला किया बल्कि दुश्मन के हौसले भी पस्त कर दिए। एक मिनट रुकिए, ये अब्दुल हमीद शायद फिर से अपनी आरसीएल गन से गोला दागने की फिराक में है।

0: जांबाज अब्दुल हमीद 8वें टैंक को उड़ाने की सोच ही रहा था कि दुश्मन ने उसको देख लिया और उस पर लगातार गोलीबारी शुरू कर दी। अब्दुल हमीद अब बुरी तरह घायल हो चुका था, पूरे शरीर में गोलियां ही गोलियां थी।
1: तेनू कुछ नहीं होएगा मेरे शेरा, कुछ नहीं होएगा,
2: तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
1: अब्दुल कोई कोई अब्दुल लोई को ले जान, बंदोबस्त करो, कोई कोई छेती
2: कोई है, कोई कोई कोई
3: नहीं नहीं तो बस अब तो सीधे अल्लाह के घर जाने का वक्त है।
2: नहीं अब्दुल ऐसे नहीं बोलते अब्दुल,
3: एक एक ही इल्तिजा है दोस्त, अगर पूरी कर सको तो।
1: हुक्म कर मेरे शेरा, हुक्म कर।
3: बस बस मेरी अम्मी मिले तो उससे कहना कि उसके बेटे ने उसके दूध की लाज रख ली।
1: ओए मेरे शेरा, ओए मैं क्या, मेरे शेर पूरा देश सीना ठोक के कहेगा कि अब्दुल हमीद ने ना सिर्फ अपनी माँ दी बल्कि पूरे देश की लाज रखी है। तेरे कुछ नहीं होएगा, तेरे कुछ नहीं होएगा मेरे शेरा,
2: तुझे कुछ नहीं होगा।
3: बस पानी
1: अब्दुल।

और इस तरह भारत के इस जांबाज सिपाही ने अपनी जान पर खेलते हुए दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। अब्दुल ने दुश्मन की आर्मी के 7 टैंक नेस्तोनाबूद कर दिए। ये M48 टैंक्स 1965 की लड़ाई में बुरी तरह विफल हुए और इसे बनाने वाले एक बड़े देश को इस टैंक को रद्द कर एक नए टैंक यानी M60 का निर्माण करना पड़ा। अब्दुल हमीद को उसकी बहादुरी और जांबाजी के लिए मरणोपरांत भारतीय फौज के सर्वोत्तम सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा अब्दुल हमीद की बेवा रसूलन बीबी को 1966 की रिपब्लिक परेड के दौरान दिया गया। परमवीर चक्र के अलावा अब्दुल हमीद को समर सेवा स्टार, रक्षा मेडल और सैन्य सेवा मेडल से भी नवाजा गया। अब्दुल हमीद अपनी बहादुरी और जांबाजी के लिए सदियों तक भारतीयों के दिलों पर राज करता रहेगा। इस महान सिपाही की शानो शौकत में तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा।

अभी आप सुन रहे थे नाटक अब्दुल हमीद, जिसके लेखक थे वीरेंद्र बांगरू, निर्देशन एवं प्रस्तुति काजल सूरी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार: अनुराग अरोड़ा, शाहनवाज, निखिल दीवान, अरुणा कपूर, मदन डोगरा और सविता शर्मा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही। श्री शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
1: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। केंद्र सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति जताई है ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। नागासाकी के पीस पार्क में आयोजित स्मृति समारोह में 90 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सुबह 11:02 पर मौन रखा। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंकाएं बढ़ गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्यभर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बास्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है।

0: राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर देश में शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्रों से 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान के कुछ एयरलाइनों ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। अधिकारियों ने जेचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी की है। शंघाई के हांगचाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानें रद्द की हैं। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेनशी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: न्यूज पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है, इसका श्रेय आप किसे देंगी?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
3: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने, 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है। तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा, चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी।
2: इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
3: डर।
2: हाँ, मन में डर जो होता है,
3: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
2: क्या बात है,
3: वायलिन हाथ में।

0: ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने की, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो हम आकर के भाग जाते रहे। तो इस तरह का एटमोसफियर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।
1: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
0: बिल्कुल सहज रूप।
1: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी। ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
0: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था। 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह। तो जब मैंने SSLC पास किया 10th, तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े ही वॉज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल, वो भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
1: अच्छा।
0: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
1: जी।
0: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट। तो ले लिया मैंने, और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई, और पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
1: अच्छा।
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
1: जी।
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी।
1: हाँ।
0: तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से यानी जिस तरह कंठ से
1: जी
0: आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा
1: जी।
0: तो उस तरह, और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। तो इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओमकार नाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
1: जी,
0: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वायलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है
1: जी।
0: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
1: हाँ जी।
0: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो 1-2 फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी, पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
1: जी जी
0: है, उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया।

0: और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है, कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता तो नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
1: जी, जी।
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा। एक आपका चूंकि संगीतकारों का कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सवाल ऐसा है,
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
1: अच्छा।
0: मेरे पेरेंट्स के तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं।
1: जी, जी।
0: तो इसीलिए उनका वो, हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वायलिन में, इंस्ट्रूमेंट में,
1: जब
0: मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
1: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में, और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका, किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
0: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह, वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
1: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं अम्मा जी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर हुई।
0: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
1: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी,
0: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की। तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता था। बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे। हाँ। तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
1: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें?
0: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी। अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गमक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
1: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन आपका, क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो

0: दोनों शैलियों में जो समप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
1: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है।
0: जी, जी।
1: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है। पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की। जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है। तो नया कुछ मैंने नहीं बना।
0: वाह, बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
1: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
0: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपके साथ ज्योति भारती और इस वक्त स्टूडियो में वक्त हुआ है 3:26 और आइए सुनते हैं फिल्म म्यूजिक में पहला गीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म म्यूजिक, जिसमें आपने गीत सुना फिल्म आरजू से मोहम्मद रफी की आवाज में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। सबसे कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: नमस्कार, रेडियो किड्स में मैं सुरति आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। 15th of August यानी कि इंडिपेंडेंस डे हम सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं अपने अपने घरों में। बच्चों की एक्साइटमेंट देखिए, आपने फ्लैग्स लेकर अपने हाथ में घूमते हैं, कितना अच्छा लगता है ना बच्चों को। आज के रेडियो किड्स, आज के जो बच्चे हैं ना, वो काफी स्मार्ट है, काफी इंटेलिजेंट है। और ऐसे ही स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो अपनी प्यारी प्यारी सी बातों से आपको बताएंगे कि कैसे वो सभी मिलकर इंडिपेंडेंस डे एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, कितनी खासियत जानते हैं वो इंडिपेंडेंस डे की और कैसे उसको मनाते हैं, सब जानेंगे। क्योंकि आज मेरे साथ कौन मौजूद है स्टूडियो में?
1: रेडियो किड्स।
0: अमेजिंग, तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही स्वीट, बहुत ही अडोरेबल रेडियो किड्स यहाँ पर हैं।

0: सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे से क्यूट बच्चे से जो ठीक मेरे पास है। सबसे पहले इसका नाम जानेंगे, उसके बाद जितने प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे यहाँ पर बैठे हैं वो सब अपना नाम बताएंगे और अपनी क्लास बताएंगे। तो हमारे साथ सबसे पहले कौन है?
1: MP पार्थिव प्रियन, क्लास 5th।
2: मेरा नाम उमर सुल्तान है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ।
3: मैं हूँ आस्था अदलखा, कक्षा 10 की छात्रा।
4: मैं शनाया कटारिया, कक्षा 8 की छात्र हूँ।
0: क्या बात है, सबसे पहले शुरू करते हैं हम 5th स्टैंडर्ड के बच्चे से, सबसे छोटा है ये MB पार्थिव प्रियान। पार्थिव, ये बताओ इंडिपेंडेंस डे के बारे में आप क्या जानते हो और हमारे

0: बिजनेस को आप क्या बताना चाहते हो इंडिपेंडेंस डे के बारे में?
1: 15 अगस्त हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किला पर तिरंगा झंडा लहराते हैं। इस दिन 1947 में हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी।
0: क्या बात है, वेरी गुड, तालियां प्लीज, जोरदार तालियां। तो पार्थिव प्रियान ने तो हमें बता दिया 15 अगस्त जो है हम हर साल क्यों मनाते हैं। अब हम पूछते हैं उमर सुल्तान से। उमर, आप क्या बताना चाहते हो?
2: मैं एक कविता बोलूंगा 15 अगस्त पे। देखो बच्चों ये झंडा प्यारा, तीनों रंगों का मेल सहारा, रहे सदा ये झंडा ऊंचा, आकाश को रहे ये छूता, सदा करो तुम इसका मान, कभी ना करना इसका अपमान, झंडा ही है देश की शान, बना रहे ये सदा महान।
0: जय हिंद,
2: जय हिंद।
0: क्या बात है, तालियां प्लीज, जोरदार तालियां। पार्थिव, आपको कौन सा गाना पसंद है?
1: मुझे मां तुझे सलाम गाना पसंद है।
0: क्या बात है, वेरी गुड। उमर सुल्तान, आपको कौन सा पसंद है?
2: मुझे भी मां तुझे सलाम ही पसंद है गाना।

0: शनाया कटारिया हमारे साथ है जो कि 8th स्टैंडर्ड में है. शनाया, आप क्या बताना चाहते हो हमारे लिसनर्स को इंडिपेंडेंस डे के बारे में? आप कैसे सेलिब्रेट करते हो?
1: हम अपने स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे. फ्लैग होस्टिंग होती है, सभी में इतना उत्साह रहता है, खुशी का माहौल रहता है पूरे स्कूल में. हम इस आजादी महोत्सव को काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं.
0: वेरी गुड. हमारे लिसनर्स को क्या बताना चाहोगे, आप क्या सुनाओगे इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड?
1: आज मैं आप सबके समक्ष एक देशभक्ति गीत लेकर आई हूँ, अपनी माटी. वास्तव में भारत एक देश के भीतर एक दुनिया है जिसकी माटी का कण कण करुणा, प्रेम, बलिदान और शौर्य की मिसाल है. हमारी विविधता, हमारे लोग ही हमारी पहचान है. तो आइए इस गीत के माध्यम से देश की माटी के प्रति अपना समर्पण करें. तेरे

0: तो हमारे साथ प्यारी सी आस्था अदलका यहाँ पर है। आस्था, आप क्या सुनाना चाहते हो इंडिपेंडेंस डे पर हमारे लिसनर्स को?
1: आज मैं एक महान रानी के बारे में बताना चाहूंगी जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अंग्रेजों के खिलाफ जमकर युद्ध किया और उनको उनकी जड़ों तक से हिला दिया। रानी वेलु नचियार, जिन्हें आप में से कई तमिल श्रोता उन्हें वीर मंगई यानी एक बहादुर महिला के नाम से जानते हों। रानी नचियार को बचपन से ही युद्ध के कई तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया, इसमें युद्ध के हथियारों का उपयोग, वल्लरी, सिलंबम जैसी मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और तीरंदाजी शामिल थे। जब उनके पति मुथुवदुगुनाथ पेरिया वुडिया थेवर 1772 में कलैयर कोइल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के साथ लड़ाई करते हुए मारे गए तो वे संघर्ष में शामिल हो गईं और उन्होंने हैदर अली की मदद मांगी। हैदर अली ने उनकी 5000 सैनिकों और बारूदों के साथ मदद की। शुरू में हैदर अली ने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वे सैनिकों, हथियारों और प्रशिक्षण के साथ उनकी मदद करने के लिए सहमत हो गए। जब वेलु नचियार को वह स्थान मिला जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कुछ गोला बारूद संग्रह किया था, तो उनके कमांडर कुइली ने अपने शरीर पर घी लगाया, खुद को आग लगा ली और ईस्ट इंडिया कंपनी के शस्त्रागार में कूदकर आत्मघाती हमला कर लिया। रानी नचियार ने अपने पति के राज्य को फिर से ले लिया। प्रिय मित्रों, रानी नचियार की इस कहानी से हमें ये जानने को मिलता है कि महिलाएं हमेशा से ही सशक्त रही हैं और उनका हमारे भारत को स्वतंत्र बनाने में कितना अहम योगदान है। धन्यवाद।
2: आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन आन शान या की

बदले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल। तुम ये सोच लो रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो।

आई एम श्योर हमारे प्यारे प्यारे से बच्चों की प्यारी प्यारी सी बातें सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इंडिपेंडेंस डे वैसे अपने आप में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, हमारे लिए बहुत गर्वान्वित होने वाली बात है और हम सभी मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं और बच्चों के साथ इसे सेलिब्रेट करने का अपना ही मजा है। आप सभी को गोल्ड परिवार की ओर से आकाशवाणी दिल्ली की तरफ से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। इसी के साथ मुझे यानी सुरती को दीजिए इजाजत और साथ ही विदा लेना चाहेंगे हमारे प्यारे प्यारे से रेडियो किड्स। बाय, गुड बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। श्री शाह ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भागीदारी के दौरान ये बात कही। श्री शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
1: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
0: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। केंद्र सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति जताई है ताकि राज्य में धान की अधिक पैदावार की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति की उम्मीद है। जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 21वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर देश में तैयारी के चलते शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई। अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्रों से 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हुई। ताइवान के कुछ एयरलाइन ने भी चीन

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ हमारी स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है 4:11 और आपके साथ हूं मैं ज्योति भारती। आज शाम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम रहेंगे। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। 8:10 पर कार्यक्रम होगा फिल्म सॉन्ग्स और कार्यक्रम हर सिंगार आप सुन पाएंगे 10:30 पर और 11:40 पर कार्यक्रम होगा गीत मेरे मनमीत। फिलहाल इस समय आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से ये खूबसूरत गीत।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं। घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: to go on to www.dst.gov.in. Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, Ministry of Ayush, Government of India, invites applications for the post of an administrative cum accounts officer on deputation or short-term contract basis. The post carries pay level 10 as per the 7th CPC. Eligible Indian citizens meeting the prescribed qualifications and experience criteria may apply. Detailed eligibility requirements, terms and conditions and the prescribed application format is available on the CCRYN website. Kindly apply within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly look up the website at www.naturopathy.in. And now we have the Employment News in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, भारत सरकार का उपक्रम, आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। चिकित्सा अधिकारी दो पद, स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक रेडियोलॉजी दो पद, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 ऑर्थोपेडिक और रेडियोलॉजी, पदों की संख्या 2। इच्छुक उम्मीदवारों को देखनी चाहिए विस्तृत जानकारी के लिए नालको की वेबसाइट www.nalcoindia.com। वेबसाइट पर जाकर करियर सेक्शन में ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाती है कि निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और सही जानकारी के साथ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। किसी अन्य तरीके से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। भंडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को आवश्यकता है परामर्शदाता की। कुल पदों की संख्या 4 है और इन्हें तैनात किया जाएगा जोधपुर, चेन्नई, भोपाल और वडोदरा में। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए प्राधिकरण की वेबसाइट www.wdra.gov.in। जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग आमंत्रित कर रहा है उपाध्यक्ष और मुख्य अभियंता पदों के लिए आवेदन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट jalshakti-dowr.gov.in। भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण में सचिव की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विवरण और अन्य नियम और शर्तों के लिए देखिए गृह मंत्रालय की वेबसाइट mha.gov.in। इसके अतिरिक्त आप इस वेबसाइट से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ipai.gov.in। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कुल रिक्तियां हैं 24, भर्ती का माध्यम रहेगा प्रतिनियुक्ति। प्रशासनिक अधिकारी कुल 7 रिक्तियां, 100% पदोन्नति और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की जाएगी। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 3 पद, पदोन्नति द्वारा, किंतु ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर ये भर्ती की जाएगी। विस्तृत विज्ञापन, अनुदेश, पात्रता अपेक्षा, आयु सीमा, आवेदन पत्र आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए सफदरजंग अस्पताल की वेबसाइट vmmc-sjh.mohfw.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर में उपलब्ध हैं ये पद, नर्सिंग अधीक्षक समूह क 2 पद, उप नर्सिंग अधीक्षक समूह का 3 पद, सहायक लेखाधिकारी समूह ख 2 पद, कार्यालय अधीक्षक समूह ख 1 पद, सहायक समूह ख 1 पद, निजी सहायक 1 पद, तकनीशियन प्रयोगशाला 4 पद और वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक 2 पद। आवेदन का प्रारूप, पात्रता की शर्तें और अन्य जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट aimsnagpur.edu.in।

0: आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, परिक्रमा के आज के संक में प्रशांत के साथ आज मैं हूं नवीन सक्सेना।

0: प्रशांत, अगस्त का महीना आते ही हवा में कुछ अलग सी सरगर्मी महसूस होने लगती है। बाजारों में तिरंगे दिखाई देते हैं, स्कूलों में बच्चे देशभक्ति के गीत गाते हैं, सरकारी इमारतें तिरंगे की रोशनी में नहाती हैं और हर भारतीय के मन में बस एक ही भाव उमड़ता है, देश के प्रति गर्व का भाव। और इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने वाला अभियान है हर घर तिरंगा। इस अभियान का उद्देश्य केवल घर पर तिरंगा फहराना नहीं, बल्कि तिरंगे के साथ हर भारतीय की भावनात्मक रिश्ता को मजबूत करना है। प्रशांत, जरा सोचिए, एक छोटा सा तिरंगा, तीन रंग, केसरिया, सफेद और हरा, और बीच में नीले रंग का अशोक चक्र। बहुत कुछ कह जाता है प्रशांत, लेकिन इन तीन रंगों में इतनी बड़ी कहानी समाई है। जानते हैं, ये रंग साहस, त्याग, शांति, सत्य, समृद्ध जीवन का प्रतीक है और अशोक चक्र निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
1: एब्सोल्युटली नवीन।
0: और प्रशांत, यही तिरंगा कभी स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में था, यही तिरंगा आज हमारे सैनिकों के साथ सीमाओं पर लहराता है, और यही तिरंगा किसी खिलाड़ी के कंधे पर जब दिखता है ना, तो दुनिया के सामने भारत का गौरव बढ़ाता है।

हर घर तिरंगे का अर्थ है देश केवल संसद भवन में नहीं, देश केवल सरकारी कार्यालयों में नहीं, देश हमारे घर में भी और हमारे मन में भी है। और जानते हैं, जब कोई बच्चा अपने घर की बालकनी में तिरंगा लहराता है ना, तो वो केवल एक झंडा नहीं लगता प्रशांत, वो अपने भीतर देश के प्रति एक भावना को जगा देता है। जब कोई बुजुर्ग तिरंगे को सलाम करता है तो उसके सामने शायद स्वतंत्रता के वो दिन जीवंत तो हो उठते हैं जब देश के लिए असंख्य लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और गर्व है ये कहते हुए जब तिरंगा हमारी छाती पर होता है, मैं भारतीय हूँ और मुझे हर भारत पर, हर भारतवासी पर और इस भारत पर गर्व है। और यही है हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य।

0: Hello and good day everyone. We are tuned to Parikrama on 100.1 FM. I am Prashant Kumar Sinha and with me today is my co-host Naveen. And for you, we have a selection of news, our discussion segment Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. All these coming over the next 30 minutes. Naveen, we begin with the news headlines first. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country to celebrate patriotism and national unity.
1: Gṛh Mantri Amit Shah ne kaha ki apnivesik kal ke kanunon ki jagah laye gaye teen naye apradhik kanunon ka uddeshya pradyogiki ke madhyam se samaybaddh nyay pradan karna hai.
0: NIA arrests one more accused in connection with seizure of huge consignment of illegal explosives in Malappuram, Kerala.
1: ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका. उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी.
0: इन चाइना मोर देन 1,300 फ्लाइट्स कैंसल्ड एंड ओवर 3 लाख पीपल रिलोकेटेड अहेड ऑफ टाइफून डॉल्फिन.
1: और खेलों में अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीत लिया है.
0: And now, listeners, time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we're talking about International Day of the World's Indigenous Peoples, or World Tribal Day, and Nagasaki Memorial Day, and August Kranti Din, or Quit India Movement Day.
1: Prashant, 9 August, ek tarikh, lekin itihas ke kai bhavnatmak adhyay apne bheetar samete hue hain. एक और ये दिन दुनिया के उन स्वदेशी समुदायों को सम्मान देता है जिन्होंने सदियों से अपनी संस्कृति, भाषा, परंपराओं और प्रकृति से अपने रिश्ते को संभाल कर रखा. और दूसरी ओर यही तारीख भारत के स्वतंत्रता संग्राम की उस हुनकार की याद दिलाती है जब करो या मरो के संकल्प के साथ लाखों भारतीयों ने आजादी की लड़ाई को एक नई ताकत दी थी. और फिर यही दिन हमें नागासाकी की उस त्रासदी के सामने भी खड़ा करता है जहां युद्ध की विनाशकारी शक्ति ने हजारों जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल दी. पहचान, आजादी और शांति, 9 अगस्त की ये तीन कहानियां हमें इतिहास याद करने के साथ साथ ये भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि इंसानियत की असली ताकत आखिर है किसमें.
0: Let's begin today's discussion with a question. What does an indigenous midwife carry with her? Personal experience, of course, but perhaps something even more precious, that is generations of wisdom.
1: Indigenous midwife. सीधे-सीधे शब्दों में कहें प्रशांत, तो वो महिला जो घर की सदस्या ना होते हुए भी घर की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाती है. और जब तब उस घर की महिला अगर गर्भधारण करती है तो उसकी देखभाल करना और प्रसव तक उसको पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है. और तब ये और भी जरूरी बन जाता है कि जब दूर दूर तक चिकित्सालय या अस्पताल नहीं होता तब उसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है. और फिर सिर्फ प्रसव में नहीं, देखभाल ही नहीं, बल्कि उसे नवजात शिशु की देखभाल से लेकर पारंपरिक जड़ी बूटियों और उस समुदाय से जुड़ी वो तमाम जानकारी होती है जो उसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बुजुर्गों, अपने बड़ों से मिलती है.
0: And Naveen, that is precisely the message of the International Day of the World's Indigenous Peoples, observed every year on this day, that is the 9th of August. The theme for 2026 is Honoring Indigenous Midwives, Safeguarding Life and Well-being. A beautiful theme, isn't it? But why midwives and why indigenous midwives? Let's find out.

0: प्रशांत, एक भारतीय परिवार के बारे में सोचिए जहां एक महिला गर्भवती है और वहां हर कोई उसे सलाह देने लगता है, ये खाओ वो मत खाओ, आराम करो, तुम्हारी दादी नानी ऐसा करा करती थी, वगैरह वगैरह। और इन सभी सलाहों के बीच अक्सर एक बुजुर्ग महिला ऐसी होती है जिसका अनुभव कई दशकों का होता है और वो यही बता पाती है और सही बता पाती है कि क्या सही है और क्या गलत है।
1: And indigenous midwives especially become important in this scene, Naveen, as they are not merely helping with childbirth, they can also be carriers of traditional knowledge and custodians of community practices.
0: और 2026 का विषय भी हमें उस ज्ञान को समझने, उन्हें सम्मान करने को कहता है, और जबकि ये भी कहता है कि हमें महिलाओं को और नवजात शिशुओं को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और सांस्कृतिक जीवन को भी सहेज कर रखना चाहिए।
1: But who exactly are indigenous peoples? They are communities around the world with distinct cultures, languages, traditions, knowledge systems and historical connections with their lands and territories.
0: और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस तरह के लगभग 476 मिलियन लोग दुनिया भर के 90 देशों में रहते हैं और ये एक बहुत बड़ी संख्या है।
1: Yes, listeners, and on this day in 1982, the United Nations Working Group on Indigenous Populations held its first meeting. And more than a decade later, in December 1994, the UN General Assembly proclaimed 9th of August as the International Day of the World's Indigenous Peoples.
0: और इसका मकसद इन लोगों से जुड़े मुद्दों को एक वैश्विक मंच देना था, इसलिए हर साल 9 अगस्त का दिन खुद से ये पूछने का एक बेहतरीन मौका होता है कि

0: हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो ये सुनिश्चित कर सके कि हमारे फैसले उनकी जिंदगी पर बेहतर असर डालते हैं।
1: What exactly are we trying to protect in these indigenous communities? And the answer is much bigger than culture alone.
0: अब एक ऐसे बच्चे के बारे में सोचिए जो एक ऐसे समुदाय में बड़ा हो रहा है जहां उसकी पारंपरिक भाषा का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। दादा नानी को सैकड़ों शब्द पता थे, माता पिता को उनसे कम शब्द पता है और बच्चे उनको शायद बहुत कम शब्द बताएं उस कम्युनिटी के बारे में।
1: Absolutely, and one day some of these words may disappear completely. And when a language disappears, what disappears with it? Stories, songs, names of plants, traditional ecological knowledge, ways of understanding the world. In fact, listeners, an entire library can disappear without a single book being burnt. And now let's come home to India, because when we talk about indigenous and tribal communities, India has an extraordinary story to tell.
0: बहुत सारी कहानियाँ कहने को हैं प्रशांत। हमारा देश अनुसूचित जनजाति समुदायों की अद्भुत विविधता का घर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों से लेकर झारखंड और उड़ीसा की पहाड़ियों तक, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, कई क्षेत्रों तक आदिवासी समुदाय भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक अहम हिस्सा है।
1: नवीन, यू वुड रिकॉल एज रविंद्रनाथ टैगोर ब्यूटिफुली सेड, द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट व्हिच डज नॉट मेरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस, एंड परहैप्स दैट इज वन लेसन ट्रेडिशनल कम्युनिटीज कैन रिमाइंड टू द मॉडर्न वर्ल्ड।
0: प्रशांत, तो अब हम इस दिन को कैसे बना सकते हैं? बहुत छोटी सी बात है, एक बहुत छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। आदिवासी समुदायों के बारे में जानिए, उनके बारे में पढ़िए, सीखिए, उनका संगीत सुनिए, उनकी कला को जानिए। और अगर आप इस तरह के क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ के समुदाय के लोगों से मिलिए, उनकी संस्कृति को पहचानिए, परंपरागत तरीकों को उनको ढूंढिए और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए।
1: एंड व्हेन बाइंग हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स और अदर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, व्हेनेवर पॉसिबल सपोर्ट जेन्युइन ट्राइबल एंड इंडिजिनस आर्टिजंस एंड बिजनेसेस।
0: तो इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर तरक्की और विरासत, इनमें से किसी योग को चुनने की जरूरत नहीं बल्कि जरूरत है। हम आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं भी अपना सकते हैं और पारंपरिक ज्ञान का सम्मान भी कर सकते हैं।
1: And perhaps that is the real beauty of India. India doesn't merely have diversity, India lives diversity. And listeners, when diversity survives, the world becomes richer. The Nagasaki Memorial Day and the August Kranti Din or Quit India Movement Day.
0: और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि विश्व आदिवासी दिवस के अलावा आज के दिन दो और महत्वपूर्ण अवसर भी हैं, नागासाकी मेमोरियल डे और अगस्त क्रांति दिवस यानी भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। और आज का दिन इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये दोनों अवसर हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाते हैं।
1: Absolutely. One reminds us of the devastating cost of war, the other reminds us of the courage it takes to fight for freedom. On this day in 1945, at exactly 11:02 in the morning, an atomic bomb was dropped on the city of Nagasaki in Japan.
0: और कुछ ही सेकंड में एक आम दिन भयानक तबाही में बदल गया। हजारों जाने गई, घर और इमारतें नष्ट हो गईं और जो लोग बच गए उन्हें रेडिएशन के लंबे समय तक रहने वाले असर का सामना करना पड़ा।
1: And that is why remembering Nagasaki is not simply about remembering something that happened more than 8 decades ago. It is about asking a question that remains relevant even today. How much destruction are we capable of creating and how much peace are we capable of protecting? The human side of history is what Nagasaki Memorial Day asks us to remember.
0: और अब आइए जापान से भारत चले क्योंकि 9 अगस्त का दिन हमारे लिए एक और अहम मतलब रखता है। अगस्त क्रांति दिवस 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक है।

0: Listeners, the country at that time was under British rule. The Second World War was underway, and on the 8th of August in 1942, the All India Congress Committee passed the Quit India Resolution in Bombay, and Mahatma Gandhi gave the country a powerful call, do or die.
1: और ठीक अगले ही दिन 9 अगस्त को गांधी जी और कई अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। अब यहाँ एक खास बात सामने आती है, नेता तो जेल में थे लेकिन आंदोलन नहीं रुका।

0: 84 साल पहले 1942 में देश की सड़कों पर एक ऐसा जनसैलाब आया था जिसकी स्मृतियां प्रशांत आज भी भारतीयों को प्रेरित करती हैं। 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
1: Indeed, students, workers, farmers, women, people from towns and villages joined protests, processions and strikes. At that time, people had to physically travel, meet others, distribute pamphlets, organize meetings and spread the message themselves.
0: प्रशांत, ये आंदोलन देश के इतिहास का एक ऐसा अनोखा आंदोलन था जो उस वक्त के अग्रणी नेताओं के बिना चला, कि इसलिए ये आज भी जन आंदोलनों की एक मिसाल है और सबक भी कि आम जनता अगर कुछ ठान ले तो बहुत कुछ कर सकती है। उनमें से कई लोग जानते थे कि इसमें शामिल होने का मतलब गिरफ्तारी, हिंसा या मौत भी हो सकती है, और शायद यही बात अगस्त क्रांति को इतना प्रभावशाली बनाती है। आजादी का आंदोलन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था जिनके नाम हमारी किताबों में मिलते हैं, इसे हजारों आम लोगों ने भी आगे बढ़ाया जिनके नाम शायद हमसे ज्यादातर लोग कभी नहीं जान पाएंगे।
1: So perhaps on this day there is one question worth carrying with us. If previous generations gave us the gift of freedom and the lesson of peace, what are we going to pass on to the generations that come after us?
0: तो ये डेडलाइन के बाद अब वक्त है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास जाने का और ये समझने का कि क्या कुछ उनके पास खास है।
1: The Har Ghar Tiranga campaign begins today and will run through the 17th of this month. Listeners, the initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and to participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. Let's listen to a report.

0: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रशांत, दिल्ली में इस अभियान के अंतर्गत बीजेपी की लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और इसके बाद पिलंजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली। मीडिया से बात करते हुए सुश्री स्वराज ने कहा कि बीजेपी ने आज से एक हफ्ते का अभियान शुरू किया है, जिसके दौरान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राष्ट्रीय नायकों और शहीदों के स्मारकों पर जाएंगे।
2: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक, जितने भी हमारे शहीद स्मारक है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर, हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
3: West Bengal has made significant progress under the center's Gyan Bharatam mission, surveying and documenting more than 3.5 lakh manuscripts within about 1.5 months of joining the initiative. More from our correspondent.
4: West Bengal Information and Cultural Affairs, INCA department, has been functioning as the nodal department for the Union Ministry of Culture's Gyan Bharatam mission since May 14 last. According to official figures, a total of 3,50,394 manuscripts had been surveyed and documented across the state as of July 29th. State Information and Cultural Affairs Secretary Soumitra Mohan participated in a national workshop on manuscript

0: digitization under the Gyan Bharatam mission held at Hotel Ashok in New Delhi recently. The workshop focused on preserving and digitally documenting India's rich manuscript heritage. Officials said West Bengal's strategy of extending the survey beyond conventional repositories has played a key role in identifying valuable collections. In addition to libraries and archives, survey teams have covered monasteries, temples, royal collections, and other custodial institutions, leading to the discovery of rare Tibetan, Newari, and Sanskrit manuscripts. To widen public participation, the department has published advertisements in 19 newspapers inviting information on privately held manuscripts. Survey teams are also working in educational institutions and other potential repositories in coordination with district magistrates and district information and cultural affairs offices. Launched by the Union Ministry of Culture, the Gyan Bharatam mission aims to identify, document, preserve and digitize India's vast manuscript heritage, making these invaluable knowledge resources accessible for research and future generations. Sushmita Mondol, Akashvani News, Kolkata.
1: और अब रुक करते हैं गोवा का, जहां पे एक ऐसी प्रतियोगिता हो रही है जिसमें पेशेवर शेफ और कुलिनरी छात्र एक साथ आ रखे हैं और साथ ही स्वस्थ और टिकाऊ खान पान के तरीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में दक्षिण गोवा में इंडिया कुलिनरी चैलेंज 2026 आयोजित किया गया और जानकारी हमारे संवाददाता से।
2: द फर्स्ट प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ द इंडिया कुलिनरी चैलेंज 2026 वॉज ऑर्गेनाइज एट द वीएम सागावकर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन एट राय इन साष्टी। The Interstate Professional Culinary Competition was jointly organized by the Directorate of Food and Drug Administration, Goa, the Culinary Forum of Goa and the Food Safety and Standards Authority of India. 16 teams participated in the South Goa round. Guardian Angel Kursade and two teams from VM Sagarkar Institute have qualified for the final round to be held in Goa in September. The next preliminary round will be held in North Goa on August 19, followed by rounds in Mumbai, Indore, Ahmedabad, Bengaluru and Hyderabad. The competition, conducted in professional chefs and culinary student categories, aims to create awareness about the Eat Right India initiative and encourage safe, healthy and sustainable food practices. For Parikrama, Mahesh Sobre, Akashvani News, Panji.
1: परिक्रमा में पलटते हैं अब एक और पन्ना और खेल की दुनिया की ओर चलते हैं। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल कर लिया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की खिलाड़ी को पराजित किया।
3: इंडियाज मेडल टैली राइजेस टू 3 एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। बसंत कुमार मेघवाल वन अ सिल्वर इन हाई जंप व्हाइल शाहनवाज खान विंस अ ब्रॉन्ज इन द लॉन्ग जंप टुडे। इन द मेंस हाई jump, 19-year-old Meghwal cleared his personal best of 2.21 meters to win a silver medal. He became the first Indian to win a medal in the high jump at the World Under-20 Championships. In the men's long jump, Shahnawaz clinched bronze with a best effort of 7.84 meters.
1: और अब याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को, आजादी का सफर।
4: 9 अगस्त स्वतंत्रता सेनानी सैयद अहमदुल्ला कादरी की जयंती है। उनका जन्म 1909 में हैदराबाद में शमसुल्ला कादरी के घर हुआ था। शमसुल्ला कादरी प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने सैयद को काफी कम उम्र में साहित्यकारों से परिचित कराया।
5: सैयद अहमद कादरी ने प्रसिद्ध समाचार पत्र सल्तनत की स्थापना की। उन्होंने पैसा और तारीख नामक दो समाचार पत्रों के लिए भी लिखा। 1946 में कादरी हैदराबाद राज्य के पहले पत्रकार थे जिन्होंने उर्दू समाचार दैनिक सल्तनत में एक राष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में लिखा था। उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया और आंध्र प्रदेश राज्य विधान परिषद के सदस्य बने। वे आंध्र प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष भी रहे।
4: कादरी ने जीवन भर कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वे लुत्फुद्दौला ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। सैयद अहमदुल्ला कादरी को 1966 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। 5 अक्टूबर 1985 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता सेनानी सैयद अहमदुल्ला कादरी को

0: वे शिक्षा पूरी नहीं कर सकें।
1: क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के कारण त्रैलोक्यनाथ को 1914 में कलकत्ता में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और बारीसाल षड्यंत्र के मामले के कारण अंडमान भेज दिया गया।
2: और अब वक्त है उन तमाम हस्तियों को, उन पर्सनालिटीज को जानने का जिनकी आज जयंती या पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले बात हिंदी के जाने माने लेखक, व्यंगकार, पत्रकार और पटकथा लेखक मनोहर श्याम जोशी की। आज ही के दिन 1933 में उनका जन्म हुआ था। कई रचनाएं उन्होंने लिखी, लेकिन उनकी जो रचनाएं थी वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थी। भारतीय टेलीविज़न के शुरुआती दौर में जो सीरियल्स आए उनमें भी मनोहर श्याम जोशी की लेखनी ने अपना पूरा पूरा सहयोग दिया। हम लोग और बुनियाद एक ऐसे ही धारावाहिक हैं जिसकी पटकथा और लेखन से उन्होंने घर घर अपनी पहचान बनाई। सुनते हैं बुनियाद

0: जी मेरे को नाटक के रिहर्सल में जाना है।
1: इसी नाटक नौटंकी के शौक में बिगाड़ी है अपनी पोजीशन।
2: गाने बजाने और शेर व शायरी का शौक तो आपको भी बहुत ज्यादा था मास्टर जी।
1: ज्यादा तो मैंने कभी कोई चीज की ही नहीं लाजो जी। गाने में भजन कीर्तन से नहीं भटका और शेर व शायरी में गालिब और इकबाल से। लेकिन मैंने सुना है बरखुरदार तो अनारकली में उलझे।
3: Listeners, today is the birth anniversary of renowned Italian scientist Amedeo Carlo Avogadro, who played a vital role in the intersection of physics and chemistry. He is noted for his contribution to molecular theory known as Avogadro's Law, and in tribute to him, the ratio of the number of elementary entities in a substance to its amount of substance is known as the Avogadro constant, and is one of the seven defining constants of the International System of Units.
4: प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार और संपादक शिव पूजन सहाय की भी जयंती है। सरल भाषा, सामाजिक सरोकार और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई उनकी रचनाएं थी और बहुत कुछ उन्होंने ऐसा लिखा जो गांव, समाज और संस्कार को आज भी जोड़े हुए है।
3: Listeners, today is the birthday of Carnatic vocalist T.V. Ramachandran. He received the prestigious award of Madras Music Academy's Sangeet Kalanidhi in 2012. He is a recipient of the Sangeet Natak Academy Award in 2003 and was honored with the Padma Bhushan in 2003.
4: अब रुख करते हैं ओडिशा साहित्य की ओर या उड़िया साहित्य की ओर। गंगाधर मेहर, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, ओडिया भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। साधारण परिवेश से निकलकर उन्होंने अपने काव्य प्रतिभा के बल पर साहित्य में एक विशिष्ट स्थान बनाया था।
3: Listeners, today is the birthday of gymnast Deepa Karmarkar. Born in 1993, she first gained attention when she won a bronze medal at the 2014 Commonwealth Games in Glasgow, becoming the first Indian female gymnast to do so in the history of the Games. For her performance in Rio Olympics 2016, she was honored with the Rajiv Gandhi Khel Ratna in August of 2016.
4: और प्रशांतक शिक्षा के क्षेत्र में भी आज की तारीख एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को याद करने का अवसर देती है। एस आर रंगनाथन, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि उन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। आज के दिन 1892 में उनका जन्म हुआ था और आज देश के पुस्तकालयों की व्यवस्था और पुस्तकालय विज्ञान की चर्चा रंगनाथन के योगदान के बिना अधूरी मानी जाती है। और अब मैं और प्रशांत रुख कर रहे हैं बॉलीवुड का, जहां आज जयंती है हिंदी के मशहूर निर्देशक सावन कुमार टाक की।
3: Yes, listeners, renowned film director, producer and lyricist. He directed several successful films including Sajan, Bina Suhagan, Southern and many others.
4: और बहुत ही खूबसूरत गीत है किशोर कुमार की आवाज में, जिंदगी प्यार का गीत है। आइए उसके साथ छोड़े जा रहे हैं सावन कुमार टाक की एक बेहतरीन फिल्म का ये गीत है।

0: प्रतिभाओं को अपने साथ जोड़ी हुई है। कोई साहित्य की दुनिया में अपनी छाप छोड़ गया, किसी ने शिक्षा और किसी ने पुस्तकालय विज्ञान को नई दिशा दी। आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और प्रशांत को दीजिए इजाजत, लेकिन आप सुनते रहिए परिक्रमा।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल में हर घर तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नम शिवयम, कृषि और किसान कल्याण मंत्री जीएनएस राजशेखरन और पुदुचेरी भाजपा के अध्यक्ष वीपी रामलिंगम भी इस अवसर पर उपस्थित थे। हजारों लोगों ने इस रैली में तिरंगे के साथ हिस्सा लिया। इससे पहले श्री शाह गोरीमेदु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। पुदुचेरी पुलिस को बधाई देते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से एक है।
1: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
0: हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान में चीनी के भंडारण की स्थिति, उत्पादन और आवश्यकताओं का आकलन किया गया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन राज्यभर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर देश में तैयारी के चलते शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्रों से 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ

0: विश्व टूर खिताब हासिल किया। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity, and promote India's cultural heritage.

रेड एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ 5:11 हमारी स्टूडियो की घड़ी में और ये वक्त है कार्यक्रम गाते गुनगुनाते का और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं ज्योति भारती इस शाम के खूबसूरत कार्यक्रम में। दोस्तों अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो है फिल्म बॉर्डर से, क्योंकि हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है और 15 अगस्त आने ही वाला है। हम सबके अंदर देशभक्ति का जज्बा यूं तो साल भर खत्म नहीं होता, लेकिन ये महीना कुछ ऐसा है कि हमारे अंदर जोश दुगना हो जाता है अपने देश को लेकर।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: NCREPEC से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्तों, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गाते गुनगुनाते आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपको गीत सुनवाया फिल्म बॉर्डर से, अब एक और गीत आपको सुनवा रहे हैं मनहार और अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म राम लखन से।

0: चलो
1: हाय राम।
0: अब दिल क्यों थाम लिया, क्यों थाम
2: लिया। श्रोताओं, कार्यक्रम गाते गुनगुनाते को यही विराम देते हैं। मैं ज्योति भारती आपसे लेती हूँ इजाजत। अब आप सुनिए पूर्वोत्तर डायरी।
3: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
4: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
3: पूर्वोत्तर डायरी।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं हमारे संवाददाता की सिक्किम से भेजी इस रिपोर्ट के साथ। दरअसल हाल ही में ऐतिहासिक नाथुला दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार शुरू हुआ है। 6 वर्षों बाद ये व्यापार शुरू हो रहा है, तो इस संबंध में आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
5: प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा रहा नाथुला दर्रा लंबे समय से सिक्किम और तिब्बत को व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के आपसी संपर्क से जोड़ता रहा है। 6 साल बाद नाथुला के रास्ते सीमा व्यापार फिर शुरू होना इस ऐतिहासिक मार्ग के महत्व को दोबारा मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। 2026 के व्यापार सत्र की शुरुआत भारत और चीन के सीमा द्वारों के बीच नो मैंस लैंड में आयोजित समारोह से हुई। इस दौरान सिक्किम सरकार और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अधिकारियों ने एक दूसरे को उपहार भेंट किए। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम शेरथांग ट्रेड मार्ट में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री टीटी भूटिया मुख्य अतिथि रहे, जबकि क्षेत्रीय विधायक सह सलाहकार पामीन लेपचा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। मंत्री टीटी भूटिया ने नाथुला व्यापार की बहाली को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इससे सिक्किम की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि नाथुला के रास्ते सीमा व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली से यह क्षेत्र व्यापार, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आध्यात्मिक संपर्क का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।
6: The resumption of it is the reopening of new opportunities of our traders, entrepreneurs, transporters, local businesses and the people of Sikkim. It is also a symbol of friendship, cooperation and progress. Nathula has always been an important part of Sikkim's history. For centuries, it connected people, cultures and trade across Himalayas. Today, we are adding another important chapter to that proud history. The government of India has given special attention to the development of the northeast region and border areas under the visionary leadership of our honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Initiatives such as the Act East policy, PM Gati Shakti and the vision of Viksit Bharat have improved infrastructure, connectivity and economic opportunities across the region. These initiatives are helping border states like Sikkim become important centers for trade, tourism and investment.
5: वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की सचिव कर्मा डी यूत्सो ने बताया कि 6 साल के अंतराल के बाद व्यापार फिर शुरू हुआ है। इसके लिए बुनियादी ढांचे को युद्ध स्तर पर तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि व्यापार की बहाली से क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक विकास और स्थानीय कारोबारियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही नाथुला और शेरथांग को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है और लोगों को इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक कचरा अपने साथ वापस ले जाने के निर्देश दिए गए हैं।
7: Formal exchange of gifts and khadas between the state government officials, traders from both sides and government officials of the Tibet Autonomous Region, which took place at Nathula Gate just a moment ago. And this marked a formal beginning of the new trade season after a gap of 6 years.

0: कार्यक्रम के अंत में लाभार्थियों को बॉर्डर ट्रेड पास और कैफेटेरिया आवंटन आदेश वितरित किए गए। नाथूला सीमा व्यापार की बहाली से स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलने, रोजगार के नए अवसर पैदा होने और सिक्किम के व्यापार एवं पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भूमिका मजबूत होने की उम्मीद है। मोइनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए नेहा गोस्वामी।
1: श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी की अगली रिपोर्ट है हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा की, जो उन्होंने ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से भेजी है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि हाल ही में कामेंग जिले में जो फ्लैश फ्लड और बादल फटने से एक स्थिति देखने को मिली थी, इसका जायजा हाल ही में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने लिया और राहत और बचाव कार्यों की वहां समीक्षा की। तो आइए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट सुनते हैं।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले के पोसा और तीपको कॉलोनी में बादल फटने और फ्लैश फ्लड से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने गत 24 जून को आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद हुए नुकसान का जायजा लिया तथा राहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय निवासियों और आपदा प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की तथा उनकी समस्याओं और चिंताओं पर विचार किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है तथा क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और क्षेत्र में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, अन्य मंत्रियों, विधायकों तथा राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने आपदा की स्थिति का आकलन कर सभी संबंधित विभागों को राहत, पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि आपदा के बाद उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्रशांत कुमार।
1: त्रिपुरा हमारे देश का किस तरह से एक अभिन्न राज्य है और यहाँ की संस्कृति, परंपरा, कला, खान पान और यहाँ की जीवन शैली किस तरह की है, तो आइए सुनते हैं त्रिपुरा के बारे में ये खास विवरण।
3: त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा सबसे छोटा राज्य, अपनी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य विविधता और परंपराओं का एक ऐसा मेल है जो हर किसी को आकर्षित करता है। त्रिपुरा का नाम संस्कृत के त्रिपुर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है तीन शहरों का राज्य। ये राज्य कभी त्रिपुरी राजवंश का हिस्सा था, जिन्होंने लगभग 500 वर्षों तक यहां शासन किया। सन 1949 में त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना और तब से ये अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं।

त्रिपुरा की पहचान यहाँ की आदिवासी जनजातियों से भी जुड़ी है। यहाँ कुल 19 आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें त्रिपुरी, रियांग, जामतिया और चकमा प्रमुख हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, परंपरा, पोशाक और जीवन शैली है, जो राज्य को एक सांस्कृतिक रंगमंच बनाती है। इन जनजातियों के त्योहार, नृत्य और संगीत त्रिपुरा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। त्रिपुरा की कला और हस्तशिल्प भारत भर में अपनी अनूठी शैली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। बांस और बेत से बने उत्पाद जैसे टोकरियाँ, फर्नीचर और सजावट का सामान त्रिपुरा की शिल्प कला की अनमोल धरोहर है। यहाँ के कारीगर अपनी कला में माहिर हैं और हर वस्तु को हाथ से बनाते हैं, जो इसे खास बनाता है। त्रिपुरा का हथकरघा उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की रेशमी और सूती साड़ियाँ, खासकर रिसा और रिगनाई, न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय हैं। त्रिपुरा के लोक संगीत और नृत्य यहाँ की आत्मा है। यहाँ का होजागिरी नृत्य रियांग जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे मिट्टी के बर्तन और दिए लेकर अद्भुत संतुलन बनाते हुए नृत्य करती।

0: हैं। ये नृत्य फसल कटाई के बाद खुशी और उत्सव के अवसर पर किया जाता है। गौरिया नृत्य भी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इन नृत्यों में दिखने वाली ऊर्जा और जीवंतता त्रिपुरा की संस्कृति का प्रतिबिंब है। त्रिपुरा का ऐतिहासिक महत्व इसकी वास्तुकला और स्मारकों में भी झलकता है। उज्जयंत महल, जो अगरतला में स्थित है, त्रिपुरा के राजाओं का शाही निवास था। इस महल की वास्तुकला, बगीचे और भव्यता इसे त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं। नीर महल, जो रुद्रसागर झील के बीच में स्थित है, राज्य का एकमात्र महल है। ये महल त्रिपुरा के शाही वैभव और संस्कृति की झलक देता है। त्रिपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य इसे स्वर्ग के समान बना देता है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़ियाँ और झरने प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य और रोवा वन्यजीव अभयारण्य जैसे स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन अभयारण्यों में पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा ऊनाकोटी एक रहस्यमय स्थल है, जहाँ पहाड़ियों पर विशाल शिव मूर्तियाँ और शिलालेख हैं। इनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और ये स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए खास है। त्रिपुरा के खानपान में भी इसकी सांस्कृतिक विविधता का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यहाँ का मोस्टिंग सेवा, जो टमाटर की चटनी है, बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा बांस के अंकुर की करी और बांगुई चावल त्रिपुरा के पारंपरिक व्यंजन हैं। रियांग जनजाति की पोर्क डिशेस और फिश स्टू भी यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में शामिल हैं। यहाँ के खाने में ताजगी और स्थानीय मसालों का खास स्वाद होता है, जो हर किसी को पसंद भी आता है। त्रिपुरा के त्योहार और मेले यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। खारची पूजा, जो 14 देवताओं की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गरिया पूजा, जो आदिवासी जनजातियों के फसल कटाई से जुड़ा त्योहार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा पूजा, गंगा सप्तमी और कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन त्रिपुरा की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। त्रिपुरा आज के समय में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगरतला राज्य की राजधानी अब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और परंपरा का अद्भुत मेल है। यह छोटा सा राज्य अपनी अनोखी पहचान और विविधता के लिए जाना जाता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो त्रिपुरा जरूर आएं और इसकी खूबसूरती और संस्कृति को करीब से महसूस करें। ये राज्य न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है जो इसे जानने और देखने की चाहत रखता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची प्रिया।
1: श्रोताओं, अब हम वापस आपको त्रिपुरा लिए चल रहे हैं। त्रिपुरा में एक और विशेष पहल की आज हम बात करने जा रहे हैं। वहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और इस आजीविका मिशन पहल से ग्रामीण महिलाओं और विशेष तौर पर स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। और ऐसे में एक विशेष पहल है जिसमें महिलाओं को जूट शिल्प के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, उनके लिए आजीविका के अवसर खोले जा रहे हैं। तो विस्तार से हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में सुनते हैं।
2: सिपाही जला जिले के चरिलाम की कई महिलाओं के लिए घर की जिम्मेदारियां अब उनके सपनों के रास्ते में रुकावट नहीं बन रही हैं। संपदा दत्ता भौमिक और विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की अन्य महिलाएं त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन यानी TRLM की ओर से आयोजित जूट शिल्प प्रशिक्षण के जरिए नए अवसरों से जुड़ रही हैं। प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर पर्यावरण के अनुकूल जूट उत्पादों की मांग बढ़ रही है। ऐसे में महिलाएं इस प्रशिक्षण को आत्मनिर्भर बनने और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर के रूप में देख रही हैं। उनका कहना है कि इन नए हुनर से परिवार की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ भविष्य में रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे।
3: सबसे ज्यादा हम लोगों को ऐसा लग रहा है जो ये जो जूट बैग का काम है, अगर हम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बहुत सारा होगा। और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं जो हर कोई महिला अपने आप स्वनिर्भर हो, तो अगर हर कोई ऐसा

0: बनाए और जो डोरमेट है वो बनाए तो उन लोगों का भी बहुत प्रॉफिट होगा।
1: मास्टर ट्रेनर अनामिका बिस्वास के मार्गदर्शन में महिलाएं जूट से कई तरह के सामान बनाना सीख रही हैं। इनमें बैग, पाउच, फूलदान, सजावटी सामान और घर की सजावट से जुड़ी चीजें शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य केवल महिलाओं को हुनर सिखाना नहीं बल्कि उन्हें बाजार की जरूरत के अनुसार तैयार करना भी है, ताकि उनके बनाए उत्पाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इन उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचने और चरिलाम में एक उत्पादन केंद्र स्थापित करने की भी योजना है। ये जानकारी TRLM के समन्वयक पिंटू भौमिक ने दी।
2: जूट के जो तैयार होता है जो विभिन्न अलग अलग प्रोडक्ट, उसका ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट था, तो उसके हिसाब से हम लोग एक ट्रेनिंग कंडक्ट किया है यहाँ पर। और इसमें 30 SHG मेंबर है, इसके अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसके अंदर जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, इसके जूट बैग, फाइल कवर, पापोश, ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो इसका करने का मकसद है कि एक्चुअली जो दीदी लोग इसके अंदर आकर वो लोग आत्मनिर्भर बने, स्वनिर्भर बने। और हमारा जो ETLM की तरफ से एक जो प्लानिंग है, जो हमने आगे बढ़कर ट्रेनिंग के बाद हम लोग एक यूनिट बनाएंगे, यूनिट के अंदर हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट तैयार करेंगे जो प्रोडक्ट हम बाहर सेल करेंगे और दीदी लोगों का स्वावलंबन बनाएंगे।
1: चरिलाम में जूट से तैयार होने वाला हर उत्पाद ग्रामीण महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कहानी कहता है। ऐसे प्रयासों से महिलाओं को रोजगार के स्थायी अवसर मिलने और राज्य में महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा।
3: हम आपको मेघालय लिए चलते हैं। मेघों के इस राज्य यानी मेघालय में एक विशेष पहल के तहत शिलोंग में एक डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया और इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से नागालैंड की समृद्ध विरासत संस्कृति का प्रदर्शन किया गया और साथ ही नागालैंड की मौखिक परंपरा के विषय में नई पीढ़ी को जागरूक किया गया। तो आइए हमारी संवाददाता अनुमिता की ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
4: नागा समाज का इतिहास पीढ़ियों से बुजुर्गों की सुनाई कहानियों, लोकगीतों और लोक कथाओं के माध्यम से आगे बढ़ता आया है। यही परंपराएं उनकी समृद्ध संस्कृति और पहचान को आज भी जीवित रखे हुए है। इसी विषय पर बनी वीव्स ऑफ एम्पैथी, अ जर्नी इनटू नागा ओरल हिस्ट्री नाम की डॉक्यूमेंट्री का हाल ही में शिलोंग में प्रदर्शन किया गया। 25 जुलाई को असम राइफल्स ने लैथकौर स्थित अपने महानिदेशालय मुख्यालय में इसका आयोजन किया। यह डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट एम्पैथी की प्रस्तुति है। यह एक सामाजिक संस्था है जो असम राइफल्स और असम राइफल्स पब्लिक स्कूल के साथ मिलकर शिक्षा, कला, कहानी और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों में संवेदनशीलता, भावनात्मक स्वास्थ्य और आपसी समझ को बढ़ावा देती है। COVID-19 के दौरान शुरू हुई यह संस्था स्कूलों, कॉलेजों और समाज में सहानुभूति का संदेश फैलाने का काम कर रही है। संस्था कई परियोजनाओं पर काम कर रही है, इनमें से एक नागा ओरल हिस्ट्री स्टोरीज ऑफ एम्पैथी है। इसका उद्देश्य नागालैंड की संस्कृति और परंपराओं को लोगों तक पहुंचाना है। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि किस तरह छात्र अपने माता पिता और दादा दादी से बातचीत कर उनके जीवन के अनुभव और यादों को रिकॉर्ड करते हैं। इससे पुरानी और नई पीढ़ी के बीच संवाद बना रहता है और सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहती है। इस फिल्म की परिकल्पना प्रोजेक्ट एम्पैथी की संस्थापक विवा लेखड़ा ने की है और इसका निर्देशन पराशर बरुआ ने किया है। इसमें नागा समाज की परंपराओं, संघर्ष, जीवन के अनुभवों और मूल्यों को बुजुर्गों तथा युवाओं की आवाज के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। फिल्म सहानुभूति, मेल मिलाप और आदिवासी विरासत के संरक्षण का संदेश देती है। यह परियोजना बताती है कि मौखिक इतिहास केवल अतीत को याद रखने का माध्यम नहीं है, यह नई पीढ़ी को अपने बुजुर्गों से सीखने, सवाल पूछने और उनके अनुभवों को समझने का अवसर भी देता है। कार्यक्रम के दौरान असम राइफल्स पब्लिक स्कूल के गायक दल ने पहली बार वॉक विथ मी गीत प्रस्तुत किया। इसे एम्पैथी एंथम भी कहा जाता है। यह गीत करुणा, हौसले और बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे का साथ देने का संदेश देता है। इस अवसर पर मौखिक इतिहास को सुरक्षित रखने और कहानी सुनाने की परंपरा को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। विवक्ताओं ने कहा कि जब युवा अपने बुजुर्गों की बात सुनते हैं और समझते हैं, तभी संस्कृति और विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचती है। अनुमिता की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं निशा साहू।
5: श्रोताओं, पूर्वोत्तर क्षेत्र विविध जनजातियों

का क्षेत्र है और यहाँ की जनजातियाँ अलग अलग संस्कृति, परंपरा और कला का प्रतिनिधित्व करती हैं, न सिर्फ पूर्वोत्तर क्षेत्र का बल्कि पूरे भारत का, दुनिया भर में ये विरासत और संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। बहुत बड़ी संख्या में बसने वाली इन जनजातियों की अपनी खासियत है, अपना खानपान है, पहनावा है और संस्कृति में भी बहुत विविधता है। लेकिन जो विशेष बात इस क्षेत्र को बनाती है कि इन विविध जनजातियों में एक सामंजस्य है और यही सामंजस्य जो भारत में विविधता में एकता का एक खूबसूरत मंत्र है, उस मंत्र को ये पूर्वोत्तर क्षेत्र परिभाषित करता है। और 8 राज्यों में बसने वाली इन विभिन्न जनजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जनजातियाँ क्या परंपराएं लेकर आगे बढ़ रही हैं और किस तरह से खुद में इन परंपराओं को जीवित किए हुए हैं, इस खास रिपोर्ट में हम विस्तार से सुनते हैं।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातीय विविधता पूरे देश में अपनी अनूठी संस्कृति, परंपराओं और भाषाओं के कारण विशेष स्थान रखती है। ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे 8 राज्यों से मिलकर बना है। यहाँ 200 से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान, रीति रिवाज और लोक कथाएं हैं। ये क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, जीवंत उत्सवों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक संरचना इसे और भी विशेष बनाती है। यहाँ घने जंगल, ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ और नदियाँ हैं, जो इन जनजातियों की जीवन शैली को प्रभावित करती हैं। अधिकतर जनजातियाँ पहाड़ी और जंगलों से जुड़े इलाकों में रहती हैं, जहाँ उनकी परंपरागत जीवन शैली कृषि, बागवानी, पशुपालन और शिकार पर निर्भर करती है। इन जनजातियों का इतिहास सदियों पुराना है और उनके सामाजिक ताने बाने में प्रकृति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश में अनेक जनजातियां रहती हैं, जिनमें आदि, नीशी, अपातानी, टैगिन, मोनपा, वांचो और मिसमी प्रमुख हैं। अपातानी समुदाय अपनी अनूठी कृषि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बिना बैलों के खेतों में धान की खेती की जाती है। मोनपा समुदाय का संबंध तिब्बती संस्कृति से है और इनका मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। इसी तरह वांचो और टैगिन जनजातियां अपने पारंपरिक वस्त्र, आभूषण और लोक कथाओं के लिए जानी जाती हैं।

असम की जनजातीय संरचना भी अत्यंत विविधतापूर्ण है। यहाँ बोडो, मिसिंग, देवरी, कार्बी, तिवा और सोनवाल कछारी जैसी प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। बोडो समुदाय असम के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक है और इनकी भाषा, नृत्य और संगीत इन्हें अलग पहचान दिलाते हैं। मिसिंग जनजाति ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अपनी विशिष्ट संस्कृति के साथ बसती है, जहां उनके बांस के बने मकान और परंपरागत हथकरघा उद्योग प्रसिद्ध हैं। मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया समुदायों की परंपराएं विशेष रूप से ध्यान खींचती हैं। खासी जनजाति मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का पालन करती है, जहां संपत्ति और वंश परंपरा मातृपक्ष से चलती है। खासी समाज में महिलाएं पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गारो जनजाति अपने अनूठे पारंपरिक पहनावे, संगीत और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। जयंतिया समुदाय खनन और कृषि से जुड़े हैं और इनकी सामाजिक व्यवस्थाएं भी मात्र सत्तात्मक स्वरूप की हैं।

मणिपुर में रहने वाली प्रमुख जनजातियां हैं मैती, नागा और कुकी। मैती समुदाय की सांस्कृतिक परंपराएं, नृत्य और संगीत देश भर में लोकप्रिय हैं। ये समुदाय अपनी विशिष्ट मार्शल आर्ट थांगता और

निवास करते हैं। लुशी समुदाय इस राज्य की प्रमुख जनजाति है जो यहाँ की राजनीति, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन जनजातियों की पारंपरिक पोशाकें, संगीत और नृत्य बेहद प्रसिद्ध हैं।

नागालैंड में नागा समुदाय की कई उपजातियां हैं, जिनमें अंगामी, एओ, सेमा, चांग, फोम और जेलियांग प्रमुख हैं। नागा जनजातियां अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती हैं। इनका पारंपरिक आभूषण और पोशाक इन्हें अलग पहचान दिलाते हैं। यहाँ के हॉर्नबिल महोत्सव में नागा जनजातियों की रंग बिरंगी परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुँचते हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरी, रियांग, चकमा और हलम समुदाय रहते हैं। त्रिपुरी समुदाय इस राज्य की प्रमुख जनजाति है, जिनकी सांस्कृतिक पहचान उनके पारंपरिक नृत्य और संगीत से होती है। चकमा जनजाति बौद्ध धर्म को मानने वाली प्रमुख जनजाति है, जो त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में निवास करती है। रियांग समुदाय की जीवन शैली जंगलों और पहाड़ियों से गहराई से जुड़ी हुई है।

सिक्किम में नेपाली, भूटिया और लेप्चा समुदाय प्रमुख हैं। लेप्चा जनजाति को सिक्किम का मूल निवासी माना जाता है, जो प्रकृति पूजा में विश्वास रखते हैं। भूटिया समुदाय तिब्बती संस्कृति से प्रभावित है और इनका पारंपरिक पहनावा और भोजन तिब्बती शैली का होता है।

0: पूर्वोत्तर भारत की जनजातियाँ अपनी भाषाई विविधता के लिए भी जानी जाती हैं। यहाँ की अनेक जनजातियाँ अपनी विशिष्ट भाषाएं और बोलियाँ बोलती हैं, जिनमें से कुछ लिखित रूप में संरक्षित हैं, जबकि कई बोलियाँ विलुप्ति के कगार पर हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाएं इन भाषाओं को संरक्षित करने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रख सकें। इन जनजातियों की पारंपरिक आजीविका कृषि, बांस कला, हथकरघा, उद्योग और वन संसाधनों पर निर्भर करती है। कई समुदाय झूम कृषि प्रणाली अपनाते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। हालांकि आधुनिक समय में जनजातीय समुदायों की पारंपरिक जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ने के कारण कई युवा अब शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर पर प्रभाव पड़ रहा है। सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों के विकास और उनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन जैसी योजनाएं विशेष रूप से जनजातीय समुदायों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। साथ ही आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए विशेष आवासीय विद्यालय, छात्रवृत्ति और स्वरोजगार योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए। अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में। अनुमति दें, नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।

हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इससे पहले गृहमंत्री पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सरफिरोजी। श्रोताओं, भारत आज ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेज गति से विस्तार किया जा रहा है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा अब केवल भविष्य की संभावना नहीं बल्कि वर्तमान की एक मजबूत वास्तविकता बन चुकी है। सौर और पवन ऊर्जा की बढ़ती स्थापित क्षमता, घरेलू विनिर्माण में विस्तार, ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन और नई तकनीकों के विकास ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र को नए चरण में पहुंचाया है। इसी क्रम में 31 जुलाई को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना यानी PMSSY को मंजूरी दी। ये योजना ऊर्जा भंडारण के साथ 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने पर केंद्रित है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता किस तरह तेजी से बढ़ रही है, सौर और पवन ऊर्जा इस परिवर्तन के प्रमुख आधार क्यों बन रहे हैं, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना किस तरह फ्लोटिंग सोलर और ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा दे सकती है और हरित हाइड्रोजन आधारित परिवहन में भारत ने किस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है। श्रोताओं, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में पिछले एक दशक के दौरान उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। वर्ष 2014 में भारत की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 2.82 गीगावाट थी। ये क्षमता 30 जून 2026 तक बढ़कर 162.15 गीगावाट हो चुकी है, यानी एक दशक से कुछ अधिक समय में सौर ऊर्जा क्षमता में 53 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। ये बदलाव केवल बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों तक सीमित नहीं है। सोलर पार्क, रूफटॉप सौर ऊर्जा, सौर कृषि पंप और अब फ्लोटिंग सौर ऊर्जा जैसी नई व्यवस्थाएं भारत के ऊर्जा परिदृश्य को व्यापक बना रही हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में वितरित सौर ऊर्जा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान जोड़ी गई 44.61 गीगावाट सौर क्षमता में लगभग 16.3 गीगावाट यानी करीब 36% वितरित सौर ऊर्जा से आया। इसमें रूफटॉप सौर ऊर्जा और पीएम कुसुम के तहत स्थापित क्षमता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इससे स्पष्ट है कि भारत का सौर परिवर्तन केवल बड़े बिजली संयंत्रों तक सीमित नहीं है, ये घरों, खेतों और स्थानीय स्तर तक पहुंच रहा है। अब बात करते हैं भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा के एक नए और महत्वपूर्ण आयाम फ्लोटिंग सौर ऊर्जा की।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना भारत में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक यानी FSPV परियोजनाओं को समर्थन देना है। योजना के तहत कम से कम 2 घंटे की ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी जिसकी कुल क्षमता 10,000 मेगावाट होगी। इससे पीक डिमांड के समय बिजली की अतिरिक्त मांग पूरी की जा सकेगी। फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं में सौर पैनल जलाशयों और जल निकायों की सतह पर लगाए जाते हैं। इससे बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता कम होती है और उपलब्ध जल संसाधनों के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन की नई संभावनाएं भी जन्म लेती हैं। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के लिए 5,070 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। योजना से हर वर्ष लगभग 1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है। इस योजना का महत्व केवल अतिरिक्त सौर क्षमता विकसित करने तक सीमित नहीं है। ऊर्जा भंडारण को सौर ऊर्जा के साथ जोड़ने से दिन में उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को आवश्यकता के समय इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है।
0: श्रोताओं, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में सौर ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुकी है। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में।
2: भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में पवन ऊर्जा क्षमता में 6.057 गीगावाट की अब तक की सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। इसके साथ ही 30 जून 2026 तक देश की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता बढ़कर 57.44 गीगावाट हो गई है। पवन ऊर्जा से वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 106 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष के 83 अरब यूनिट की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। भारत वर्तमान में स्थापित पवन ऊर्जा

0: क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है। मार्च 2014 में देश की पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 21.04 गीगावाट थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 56.09 गीगावाट हो गई। पवन ऊर्जा की खासियत ये भी है कि इसका उत्पादन सौर ऊर्जा के साथ बेहतर तालमेल बना सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पवन ऊर्जा उत्पादन का लगभग 45% हिस्सा पीक डिमांड के समय आता है। इससे ग्रिड की विश्वसनीयता मजबूत करने में मदद मिल सकती है। पवन टर्बाइन के घरेलू विनिर्माण में भी तेजी आई है। मार्च 2026 तक भारत की विंड टर्बाइन विनिर्माण क्षमता थी लगभग 24 गीगावाट, जबकि 2014 में ये करीब 10 गीगावाट थी। इस तरह सौर और पवन ऊर्जा मिलकर भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण को मजबूत कर रहे हैं।
1: श्रोताओं, नवीकरणीय ऊर्जा की कहानी केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, अब स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी नए अवसर पैदा कर रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण है भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन।
2: 17 जुलाई 2026 को भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को जीन सोनीपत रेल खंड पर हरी झंडी दिखाई गई। ये ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से ट्रेन के भीतर ही बिजली पैदा करती है। इसके संचालन के दौरान मुख्य उप उत्पाद के रूप में जल वाष्प निकलती है और टेल पाइप से कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। भारत की ये हाइड्रोजन ट्रेन स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 2 ड्राइविंग पावर कार हैं, जिनकी कुल क्षमता 2400 किलोवाट है। इसकी परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा और डिजाइन गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाइड्रोजन की आपूर्ति के लिए जींद में समर्पित हाइड्रोजन भंडारण और रीफ्यूलिंग व्यवस्था भी विकसित की गई है। ट्रेन के संचालन के शुरुआती चरण में ही ये 1200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुकी है और 3200 लीटर से अधिक डीजल की बचत दर्ज की गई है। ये उपलब्धि दिखाती है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा को केवल बिजली उत्पादन में ही नहीं बल्कि परिवहन क्षेत्र में भी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
1: श्रोताओं, सौर और पवन ऊर्जा के तेजी से विस्तार के साथ ऊर्जा भंडारण की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है, जबकि पवन ऊर्जा का उत्पादन हवा की गति पर। इसलिए भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था के लिए केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, हमें ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता होगी जो जरूरत के समय बिजली उपलब्ध करा सके और ग्रिड को स्थिर बनाए रखे। यहीं पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, पंप्ड स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड और फ्लोटिंग सौर ऊर्जा जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ जाती है। श्रोताओं, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति अब कई महत्वपूर्ण आयामों को एक साथ आगे बढ़ा रही है। पहला है अधिक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, दूसरा ऊर्जा भंडारण और ग्रिड की विश्वसनीयता, तीसरा घरेलू विनिर्माण और रोजगार, और चौथा परिवहन तथा उद्योगों में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग। वर्ष 2025-26 में भारत ने 55.3 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा की क्षमता जोड़ी, जो अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है। मार्च 2026 तक देश की कुल गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 283.46 गीगावाट हो चुकी थी। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की दिशा में सौर और पवन ऊर्जा के साथ साथ ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ परिवहन की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा अब उस चरण में प्रवेश कर रही है जहां सूर्य, हवा, जल, हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण मिलकर देश के भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था को आकार दे सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा से ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा से आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता से विकसित भारत, यही भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति की व्यापक दिशा है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक है अक्षत ममगई। नमस्कार।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls on your mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Along with my co-anchor Sonu Sood, I am Sarabjeet Kaur.
1: धन्यवाद सरब जी. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2371-0481 और 2371-1106. श्रोताओं, इससे पहले एसटीडी कोड 011 का भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है.
2: जी, धन्यवाद.
1: और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 12,900 करोड़ रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त. Global crude oil prices tumble last week, and domestic investors to focus on inflation data, corporate earnings results, and geopolitical developments for Qs next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त के पहले सप्ताह के दौरान भारतीय शेयर बाजार में 12,900 करोड़ रुपए से अधिक का किया निवेश. कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में पिछले सप्ताह आई गिरावट और घरेलू निवेशकों का ध्यान अगले सप्ताह संकेतों के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़ों, कंपनी आमदनी से जुड़े नतीजों और भू राजनीतिक गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा.
0: And before we go any further in the program, may we once again remind our listeners, views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सरब जी.
0: जी,
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई अगस्त के पहले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध खरीदार बने रहे. ताजा डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इस महीने अभी तक घरेलू शेयर बाजार में 12,921 करोड़ रुपए का निवेश किया है. जुलाई में खरीदारी में आई गति अगस्त में भी जारी रही है. ये तेजी घरेलू आर्थिक आंकड़े और कंपनियों की तिमाही आमदनी मजबूत रहने के बल पर आई है. इस बीच ऋण बाजार में निवेश का रुख मिला जुला रहा है. अभी तक अगस्त में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जनरल लिमिट की श्रेणी में ऋण प्रतिभूतियों में 622 करोड़ रुपए निवेश किए हैं. हालांकि फुली एक्सेसिबल और वॉलंटरी रिटेंशन श्रेणियों से आलोच्य अवधि के दौरान 350 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी हुई है. और अब आज के हमारे पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेन्नई से काशीनाथ. आपका स्वागत है मार्केट मंत्र में, सवाल पूछें.
3: गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा जी.
1: जी, गुड इवनिंग.
3: मेरा सवाल है, मेरा पास दो फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसे कि क्वांट फ्लेक्सी कैप और जेम फ्लेक्सी कैप, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, फंड अच्छा है कि बुरा है. धन्यवाद.
2: जी देखिए, कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं. फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किस टाइप के मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. और किसी भी फंड को अच्छे या बुरे आकलन के लिए आप बहुत छोटे अवधि के रिटर्न्स के ऊपर उस पर अपनी कोई भी धारणा ना बनाएं. थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखें, और अगर फंड थोड़ा हाल फिलहाल में

0: परफॉर्म करता भी है तो उससे बहुत ज्यादा हताश ना हो, उसको थोड़ा टाइम दें। तो आप इन दोनों फंड्स का आकलन करें, थोड़ा 3 साल 5 साल के रिटर्न्स देखें कि अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कैटेगरी में बाकी पीयर्स के अगेंस्ट कैसे कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपना निर्णय लें। बहुत जल्दी ना करें बेचने की, क्योंकि अब इक्विटी में भी टैक्स लगता है। तो अगर आप कोई भी जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं फंड स्विच करने का, तो आपके लिए एक टैक्स का बड़ा कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है, तो डोंट बी इन अ हरी।
1: सो आशुतोष जी, सेबी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें कुछ तथ्य आए हैं जिन पर हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे। उसमें कहा गया है कि SIP को ज्यादा से ज्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो एडॉप्ट कर रहे हैं, और जो अकाउंट्स हैं वो भी बड़े हैं, और जो वैल्यू है अगर हम पिछले वित्त वर्ष में देखें तो 40 लाख अकाउंट एड हुए टोटल नंबर में, और एवरेज नेट मंथली SIP इन्वेस्टमेंट भी 25.8% बढ़ी। तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये क्या भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भरोसा बढ़ रहा है निवेशकों का?
0: जी बिल्कुल, मेरी राय में म्यूचुअल फंड एक रिटेल इन्वेस्टर के इक्विटी मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने का, ब्रॉडली इक्विटी और डेट मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने का एक बेहतरीन साधन है। वेल रेगुलेटेड, वेरी ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये फंड्स आते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की अच्छे से यहाँ पे प्रोटेक्शन की व्यवस्था है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा सेटअप है। म्यूचुअल फंड्स एक काफ़ी रिलायबल और रोबस्ट वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, और इनमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ना हाल फिलहाल के सालों में ये एक अच्छा संकेत है। और SIP और भी अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में जिस तरह के उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, तो अगर इन्वेस्टर्स एक साथ अपना पैसा ना लगाकर रेगुलर डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो वो मार्केट के उतार चढ़ाव से बहुत जल्दी निराश या परेशान नहीं होते। तो SIP एक बेहतरीन साधन है मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का। दूसरा ये भी होता है कि जब भी मार्केट गिरती है, SIP निवेशक आमतौर पर देखा गया कि बहुत जल्दी मार्केट से भाग नहीं खड़े होते
1: जी
0: मार्केट फॉल में, और ये लंबे समय में इक्विटी मार्केट से रिटर्न बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डाउन मार्केट में सब कुछ बेचकर भाग ना जाएं। तो SIP उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है रिटेल इन्वेस्टर्स की बने रहने में मार्केट के उतार चढ़ाव के माहौल में। तो बहुत अच्छे ट्रेंड्स हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है अगर ये बरकरार रहता है तो भारतीय निवेशकों, रिटेल आम निवेशक के लिए ये काफ़ी लाभदायक हो जाने में सक्षम है।
2: Ashutosh, we'll come back to you on that. Meanwhile, we connect with our next caller from Mumbai. Amit ji, please ask your question.
3: Namaste madam, main Amit baat kar raha hu Maharashtra Baramati se.
2: Ji.
3: Mera sawal hai jo Bank of Baroda ka NFO new fund offer ek mutual fund hai, usme maine abhi investment kiya hai. To wo acha hai ya nahi zara bataiye. Aur dusra sawal, ab main India First ke bare mein puch sakta hu kya madam?
2: सॉरी,
3: हेलो, इंडिया फर्स्ट में भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 5 साल के लिए, हर साल मैंने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ और 5 साल तक वो पैसे भरना है, 7 साल के बाद मुझे मिलेगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अच्छा है या नहीं ये भी बताइए, थैंक यू।
1: आशुतोष जी, श्रेणी के हिसाब से आप बता सकते हैं।
0: जी तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के आपने NFO की बात करी, देखिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आम तौर पर आप NFO में निवेश करने से बचें। अभी आपने लगा दिया है तो देखिए नए फंड के बारे में कुछ भी जानकारी देना कहना मुश्किल होता है जब तक कि उसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बिल्ड होता कि फंड मैनेजर किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्या उनका पोर्टफोलियो बनाने का स्ट्रैटेजी रहता है। तो नए फंड के बारे में कुछ भी टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आम तौर पर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि बहुत सारे अच्छे रनिंग, वेल रनिंग फंड्स, लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स उपलब्ध हैं आपके पास। प्रेफर करिए कि नया फंड अगर कुछ ऐसा खास नहीं दे रहा है जो कि एग्जिस्टिंग फंड से आपको जो इन्वेस्टमेंट नीड पूरी नहीं हो रही है, तो ही आप NFO की तरफ जाएं, अदरवाइज आप लॉन्ग स्टैंडिंग फंड्स में ही अपना निवेश करें। बहरहाल इस फंड में क्योंकि आप निवेश अभी कर चुके हैं तो अब आप इसको देखिए, थोड़ा धैर्य से फंड मैनेजर को पोर्टफोलियो बनाने लीजिए किस टाइप का वो परफॉर्म करता है, कम से कम 1.5 साल बाद आप सोचिएगा इस बारे में कि ये फंड का क्या करना है।
1: दिल्ली से हमारे अगले श्रोता KK मदन जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें।
4: हाँ नमस्कार, मार्केट मंत्रा मैं
1: काफी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप यदि

0: अपना स्थान चेंज करें। थोड़ी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, अगर आप दोबारा हमें फिर फोन कर सकें फिर से।
1: आपकी आवाज मुझे बिल्कुल
0: हाँ जी,
1: क्लियर
0: हाँ जी, बताइए बताइए बताइए।
1: एक क्वेश्चन ये है कि मैंने दो तीन फंड में शिफ्ट किया हुआ, 5-5 हजार के मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो उसमें HDFC मिड कैप ऑपर्चुनिटी फंड, निपुण मल्टी कैप फंड, इन सब तो मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन एक्सिस लार्ज कैप फंड उसमें मेरे CAGR सिर्फ 7% 8% आ रहा है, तो पिछले 4 साल से मेरा शिफ्ट चल रहा है, मैं इसको कंटिन्यू करूँ या डिसकंटिन्यू करूँ, मेरा ये क्वेश्चन।
2: जी देखिए, पहली बात तो आपका ओवरऑल आपने आपकी स्ट्रैटेजी सही है कि आपने डाइवर्सिफाइड फंड्स को चुना है, आपके पास एक मल्टी कैप फंड है, एक लार्ज कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, तो ओवरऑल आपने बहुत ज्यादा सेक्टर थीमेटिक फंड्स की तरफ आप नहीं गए हैं, ये तो इसमें मैं आपकी सराहना करूंगा कि आपकी चॉइस ऑफ कैटेगरी ऑफ फंड्स अच्छा है। एक्सिस लार्ज कैप पिछले कुछ साल थोड़े निराशाजनक रहे हैं इस फंड के लिए जरूर, क्योंकि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं दे पाए हैं, तो अगर आप काफी निराश हैं इस फंड से तो आप अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सकते हैं।
3: वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली। दिनेश जी सवाल पूछें।
4: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
3: जी
4: मेरे दो क्वेश्चन हैं, एक तो ये है कि जब गोल्ड फंड और सिल्वर फंड बढ़ते हैं या कम होते हैं तो डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेज जो है वो गोल्ड या सिल्वर फंड या ETF के जो परसेंटेज इंक्रीज है वो अलग अलग क्यों दिखाते हैं जबकि इट शुड बी सेम। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गोल्ड फंड है वो उसको FOF कहते हैं, फंड ऑफ फंड्स, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि उस हम इन्वेस्टर जो है उसके भी एक्सपेंस बियर करता है और वो फंड जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है उसका भी एक्सपेंस होता होगा, वो भी बियर करता है, क्योंकि हमें जो पता चलता है केवल फर्स्ट फंड का ही एक्सपेंस रेशो पता चलता है, दूसरे फंड का एक्सपेंस रेशो नहीं पता चलता है। थैंक यू।
2: जी तो पहला सवाल आपका कि गोल्ड और सिल्वर फंड्स में जब सारे ही ये फंड्स गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो इनके प्राइस में या इनके रिटर्न्स में डिफरेंस क्या होता है। काफ़ी अच्छा सवाल है, आपने काफ़ी आपने ऑब्जर्व किया उस बेसिस पे आप ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, इनका जो आपको रिटर्न मिलता है वो डिपेंड करता है मार्केट के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। तो जो ETFs होते हैं वो ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में ये जरूरी नहीं है कि जो अंडरलाइंग NAV है फंड का क्लोजिंग प्राइस या फंड्स का ट्रेडेड प्राइस NAV के आसपास हो। काफी बार देखा गया है कि फंड्स प्रीमियम पे या कभी कभी डिस्काउंट पर भी ट्रेड करते हैं, तो जो इन्वेस्टर के रिटर्न्स होते हैं वो इन पर उनके ट्रेडेड प्राइस पर निर्भर करते हैं, ना कि अंडरलाइंग NAV पर, तो इस वजह से इनके रिटर्न्स डिफर कर जाते हैं। दूसरी बात, जो गोल्ड फंड ऑफ फंड्स होते हैं वो बेसिकली आप देखिएगा कि हर फंड कंपनी के पास एक ETF वेरिएंट होता है और एक FOF वेरिएंट होता है। FOF वेरिएंट सिंपली ये करता है कि आपका पैसा जो कलेक्ट करता है वो उठाकर ETF में लगा देता है, गोल्ड उन्हीं का जो गोल्ड ETF होता है। तो यहां पर भी जो आपको NAV डिक्लेयर होती है फंड ऑफ फंड्स की वो ETF के ट्रेडेड स्टॉक मार्केट प्राइस पर निर्धारित होती है, इसलिए इनके रिटर्न्स डाइवर्ज करते हैं अलग अलग फंड में। कुछ फंड्स में जिनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी अच्छे होते हैं, प्रीमियम या डिस्काउंट कम रहता है, NAV के क्लोज ट्रेड करते हैं, वो काफी इन्वेस्टर सेंट्रिक है, मतलब वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अच्छी बात है, और उनके रिटर्न्स NAV के रिटर्न्स के आसपास रहते हैं। लेकिन जो फंड्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होती है इसलिए प्राइस काफी वेरी कर जाता है, प्रीमियम या डिस्काउंट पे रहता है, उनके रिटर्न्स में आपको काफी बार कुछ उठापटक दिखेगी, NAV के क्लोज नहीं होगा। और आपका ये आंकलन बिल्कुल सही है कि क्योंकि ये FOFs ETFs में इन्वेस्ट करते हैं तो जो FOF के एक्सपेंस की लेयर होती है वो ETF के एक्सपेंस के ऊपर होती है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं होता है, एक मामूली सा एक्स्ट्रा लेयर होता है, क्योंकि FOF अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पैसे इकट्ठा कर आप जो पैसे उसमें निवेश करते हैं वो पैसा इकट्ठा करके ETF में लगा देता है, वहां पे और कोई काम नहीं हो रहा है, कोई और फंड मैनेजर का ऐसा कोई रोल नहीं होता है खास, तो वो एक्सपेंस की लेयर काफी थिन होती है लेकिन जरूर होती है। तो अगर आप एक्सपेंस देखना चाहते हैं तो आप किसी भी फंड कंपनी के ETF का और FOF का, आप दोनों का अगर एक्सपेंस देखेंगे और उनको ऐड कर देंगे तो आपको थोड़ा अंदाज लगेगा कि आप टोटल एक्सपेंस कितना दे रहे हैं। आपको कौन सा चुनाव करना चाहिए, देखिए अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में, आप वैसे भी स्टॉक्स में निवेश करते हैं, आपके पास डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप ETF

0: तरफ जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक गोल्ड फंड में निवेश करने के लिए, अगर आपके लिए कन्वीनियंट ज्यादा होगा कि आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्मेट में FOF ही खरीदें, लेकिन अगर आप आमतौर पर वैसे भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप जरूर ETF की तरफ भी जा सकते हैं। हाँ, ETF खरीदते हैं तो जरूर आप खरीदने से पहले देखिए कि क्या ये यूनिट्स NAV से बहुत ज्यादा डिस्काउंट या प्रीमियम पे हैं। अगर प्रीमियम पे हैं तो आप समझिए कि आप एक्स्ट्रा खर्चा उठा रहे हैं। अगर 10 रुपए की NAV की चीज मार्केट में 12 रुपए पर ट्रेड हो रही है तो आप ये मानिए कि 10 रुपए का सामान आप 20% महंगा खरीद रहे हैं। तो ये इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। NSE की वेबसाइट पे हर फंड की INAV बताई जाती है। INAV होता है रियल टाइम NAV इस फंड की क्या होनी चाहिए, उससे आप क्लोजिंग प्राइस को कंपेयर कर ये आप निर्धारित कर सकते हैं।
1: और अब शंकर भोपाल से हमें कॉल कर रहे हैं। शंकर जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें।
2: मेरा पहला सवाल बड़ा जनरल है, क्या एक फंड हाउस में हम दो बैंक डिटेल्स ऑपरेट कर सकते हैं क्या, सो दैट मेरी जब मर्जी हो जहां से मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ या जिधर मैं पैसा रखना चाहूँ, मेरा ही अकाउंट है दोनों, क्या दो अकाउंट एक ही म्यूचुअल फंड हाउस में जैसे कोटक या टाटा या कोई भी ऑपरेट कर सकते हैं क्या? दूसरा सवाल मेरा है सर, मेरा एक्चुअली कुछ इन्वेस्टमेंट टाटा में है, टाटा म्यूचुअल फंड, और कुछ एक्सिस में है, क्या इसमें कुछ अच्छे फंड हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे मिड कैप हुआ में की कैटेगरी में हुआ या लार्ज एंड मिड कैप हुआ एक्सिस में हुआ, तो इसमें कोई अच्छे फंड एक्सिस और टाटा इन दो में मेरा, तो बता सकते हैं क्या प्लीज? थैंक यू।
0: आपका पहला सवाल, क्या दो बैंक अकाउंट में ऑपरेट कर सकते हैं सेम AMC में? जी बिल्कुल। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में जो भी आपका इन्वेस्टर डिटेल होता है वो फोलियो लेवल पर मैप होता है। आपकी नॉमिनेशंस, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीजें पर फोलियो होती हैं। तो आप अगर सेम फंड में भी दो अलग अलग फोलियो से आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये पॉसिबल है कि आप दोनों फोलियो में अगर अलग अलग बैंक अकाउंट से आपने इन्वेस्ट किया है तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, आप बिल्कुल दो अकाउंट से मैनेज कर सकते हैं। बस ये आप ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी फोलियो में रिडम्पशन डालेंगे तो पैसा हमेशा उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो उस फोलियो पे मैप्ड है। ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, क्योंकि पैसा हमेशा निवेशक के खाते में ही जाएगा और उसी खाते में जाएगा जो आपने अपने फोलियो में मैप किया हुआ है। तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में मैप करना, तो ये फैसिलिटी आपके पास पॉसिबल है, ये फ्लेक्सिबिलिटी, और ये निर्णय आपका है। दूसरा, टाटा एक्सिस, देखिए मैं आपको राय दूंगा कि बहुत ज्यादा किसी एक AMC से आप के लिहाज में ना देखें। आप पहले देखिए कि आपका निवेश की जरूरत क्या है और किस तरह का फंड आपके लिए सूटेबल रहेगा, उसके बाद आप उस कैटेगरी के फंड्स में चुनाव करें। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं होना चाहिए कि टाटा या एक्सिस या कोई और AMC, स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि आपकी निवेश की जरूरत क्या है और उसके लिए सही फंड कौन सा है, वहां से अपने फंड के चुनाव की शुरुआत करें।
3: लेट्स आस्क जितेंद्र फ्रॉम जयपुर व्हाट हिज क्वेश्चन इज।
4: हाँ हेलो सर, जैसे इतना दिन मार्केट में सुनने के बाद ऐसा हमको लगा कि नए निवेशक के लिए सबसे पहले कोई इंडेक्स फंड ले या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले, तो क्या अगर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की जगह इक्विटी सेविंग ले वो भी चलेगा, और निफ्टी 50 या जैसे कोई भी इंडेक्स फंड की जगह मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ले तो क्या चलेगा क्या नए निवेशक के लिए?
0: जी, पहला आपने पूछा इक्विटी सेविंग्स। देखिए, इक्विटी सेविंग्स आप ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना होगा। इक्विटी सेविंग्स फंड में आप मानिए कि आपका करीब 35-40% पैसा ही इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर आपको मिलता है, बाकी जो इक्विटी का एक्सपोजर इन फंड्स में होता है वो डेरिवेटिव्स के जरिए हेज्ड रहता है, तो उसमें आपको मार्केट के रिटर्न्स, मार्केट गेन्स नहीं मिलते हैं। तो इक्विटी सेविंग्स फंड्स आमतौर पर कंजर्वेटिव निवेशक जो एक मॉडेस्ट रिटर्न विद मॉडेस्ट रिस्क की उनकी अभिलाषा रहती है, रेगुलर इनकम सीकर्स हैं, उनके लिए इक्विटी सेविंग्स को आमतौर पर देखा जाता है कि एक अच्छी कैटेगरी माना जाता है। तो अगर आपको मॉडेस्ट रिटर्न्स चाहिए तो आप इक्विटी सेविंग्स की तरफ जा सकते हैं। देखिए, शुरुआती निवेशक के लिए मेन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स इसीलिए ही रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि जिन नए निवेशक हैं जिनको इक्विटी मार्केट्स के उतार चढ़ाव का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनके निवेश करते ही अगर मार्केट 20-25% कभी गिर जाती है तो वो निवेशक काफी चांस होता है कि वो हताश होकर मार्केट को छोड़कर चले जाएंगे और फिर जिंदगी में शायद कभी वो इक्विटी मार्केट्स में वापस मुड़कर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस पॉसिबिलिटी से बचे रहने के लिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि इनमें 25% करीब पैसा आपका डेट में लगा रहता है, तो हमेशा ही जब भी मार्केट गिरती है फंड्स मार्केट से कुछ कम गिरते हैं तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है नए इन्वेस्टर्स को। बाकी ये एडवांटेज इक्विटी सेविंग्स फंड में भी मिलेगा क्योंकि उनमें तो इक्विटी और भी कम होता है, लेकिन हाँ फिर आपको रिटर्न्स भी उनसे कम मिलेगा। दूसरा आपका सवाल इंडेक्स फंड में, क्या मिड कैप इंडेक्स फंड

0: की तरफ जा सकते हैं। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए मेरी सलाह होगी नहीं, इसी रीजन से क्योंकि मिड कैप फंड्स में काफी वॉलिटिलिटी रहेगी, अगर मार्केट गिरती है तो काफी धड़ाम से गिर सकते हैं मिड कैप्स, तो सिर्फ इस रीजन से मैं आपको सलाह दूंगा कि एज अ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मिड कैप में इन्वेस्ट करने से बचें।
1: और असम से सुकृत है हमारे अगले कॉलर, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए।
2: गुड इवनिंग मैडम
1: जी। गुड इवनिंग
2: जी। मेरा सवाल ये है कि हमने चिल्ड्रेन बेनिफिट फंड मतलब SBI का वो म्यूचुअल फंड SIP किया था 4000 करके जी
1: जी,
2: तो उसमें से ये चिल्ड्रेन फंड ये मेरे लिए कैसे रहेगा, बच्चे के लिए मतलब सही रहेगा या नहीं रहेगा, और उसके लिए मेरे पास कोई बॉन्ड पेपर तो नहीं है अभी, तो उसके लिए कौन सा कैसे मेरे को बॉन्ड पेपर डाउनलोड करके मतलब हार्ड पेपर रखना है, यही मेरा सवाल है
0: जी। बच्चे के लिए निवेश किया है, लंबे समय का निवेश है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। लंबे समय के लिए आप धैर्य के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक इक्विटी फंड है, आप ये मानकर चलिए कि इक्विटी मार्केट्स के उतार चढ़ाव के साथ साथ ये जब मार्केट गिरेगी तब तब ये फंड भी गिरेगा, तो अगर आप वो उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं उससे आप बहुत हताश नहीं होंगे, लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए आप रख सकते हैं। आपको एक जैसे मैं समझ पाया हूं, देखिए म्यूचुअल फंड्स में कोई बॉन्ड पेपर इस तरह से या सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप आपको नहीं मिलता है जैसे कि बॉन्ड्स में होता है। आप म्यूचुअल फंड कंपनी जिसमें भी आपका SBI में है तो आप SBI के इन्वेस्टर सर्विसेज में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ईमेल कर दें, आपके पास ईमेल पे आता भी होगा, अगर आपने अपने फोलियो में अपना ईमेल मैप किया हुआ है तो काफी संभावना है कि आपका जब जब भी इसमें निवेश होता है SIP इंस्टॉलमेंट जाती है, आपको एक स्टेटमेंट ईमेल करी जाती होगी। लेकिन अगर वो नहीं आ रही है तो आप SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाएं, वहां आपको इन्वेस्टर सर्विस सेंटर का नंबर मिलेगा, वो नंबर डायल करके आप उनको अपना फोलियो या कुछ जानकारी वो मांगेंगे और आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आपको एक स्टेटमेंट इशू कर दें, आपको वो ईमेल पे मिल जाएगा।
1: हाँ, वो बॉन्ड मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी बॉन्ड आपको लगता है फिजिकली होना चाहिए?
0: तो म्यूचुअल फंड्स में ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं इशू किया जाता बॉन्ड्स की तरह, तो स्टेटमेंट आपका जो स्टेटमेंट होता है वही आपका ओनरशिप का एंटाइटलमेंट होता है।
3: लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली। विनोद जी सवाल पूछे।
4: पूरी मार्केट मंत्रा टीम को मेरी तरफ से नमस्कार।
3: जी नमस्कार।
4: मेरा एक्सपर्ट टीम से मेरा ये सवाल है कि रिबैलेंसिंग के बारे में, हम जैसे रिबैलेंसिंग करते हैं ना तो उसमें एक तो टैक्सेशन का इशू आ जाता है और दूसरा वो जो फंड फिर हमारे सेविंग अकाउंट में आ जाता है वहां से खर्च हो जाता है, तो इसका कोई दूसरा रास्ता है कि टैक्सेशन से कैसे बचा जाए, और अगर हम लंबे समय तक रिबैलेंस ना करें तो इसका हमारी रिटर्न पे क्या प्रभाव पड़ता है? और एक सवाल और है कि अगर एक पर्टिकुलर फंड हाउस का हम स्विच करते हैं तो उसी फंड हाउस के सारे बाकी स्कीम्स दिखाता है वो, अगर मुझे किसी दूसरी फंड हाउस में जाना है तो कैसे करते हैं, स्विच करने में दिक्कत आती है?
0: जी देखिए, पहला सवाल आपका टैक्सेशन को लेकर, देखिए टैक्सेशन एक हकीकत है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, आपको ये देखना है कि आप रीबैलेंसिंग अगर आप डिसिप्लिन से करते हैं तो आप टैक्स से बच सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो आप बहुत जल्दी अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस ना करें। शायद साल में आप अगर एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, रीबैलेंस करते हैं, तो मेरा ख्याल वो पर्याप्त है। और अपना कोई रूल बनाइए कि जब भी आपकी एसेट एलोकेशन 7-8-10% से डेविएट करेगा तभी आप रीबैलेंस करेंगे, और साल में एक बार करेंगे, और रीबैलेंसिंग के लिए फिर आप वही फंड्स यूज करिए जिनमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आते हैं, वही यूनिट्स वही फंड्स के साथ आप करें। आपके पास 1,25,000 तक का एनीवेज टैक्स एग्जम्पशन है इक्विटी में, तो अगर आप ये सारे टूल्स यूज करते हैं और उसके बाद आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अपनी रीबैलेंसिंग को आप अगर किसी एक साल में रीबैलेंस करना पड़ रहा है, मार्केट में इतना उठा पटक हुआ है कि आपको रीबैलेंस करना पड़ेगा, तो दो अगर आप फाइनेंशियल ईयर में कुछ आप मार्च में अगर यूनिट्स बेचते हैं कुछ अप्रैल में बेचते हैं तो आपको दो फाइनेंशियल ईयर का 1,25,000 रुपए का कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिल जाता है, तो 2,50,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप की चीजें आप फॉलो कर अपना टैक्स मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि अगर आप रीबैलेंस नहीं करते, तो देखिए आप रीबैलेंस अगर नहीं करते, मानिए आप 70% इक्विटी 30% डेट आपने अपने लिए एसेट एलोकेशन निर्धारित करी थी जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे थे, अब अगर इक्विटी मार्केट चल पड़ती है और ये 70% जो आपका वेटेज था ये बढ़कर 80% हो जाता है, तो वो आप थोड़ा सा एडिशनल रिस्क ले रहे हैं। बस इतना ही है कि आपका उसके बाद ज्यादा आप इक्विटी में ओवर एक्सपोज्ड हो गए हैं एज अ पोर्टफोलियो, आपकी जरूरत के लिए क्या वो सही है उचित है या आपको रीबैलेंस करना आवश्यक है, ये आपकी निजी

0: दिन सिप से आप जिस दिन भी आप रिडम्पशन डालिएगा, तो अगर आप 3 बजे से पहले रिडम्पशन डालेंगे तो उस दिन जो रात को एनएवी फंड डिक्लेयर करेगा आपके, उस एनएवी पर आपकी यूनिट्स रिडीम होंगी। अगर दोपहर तीन बजे के बाद अगर आप रिडम्पशन डालते हैं तो अगले दिन शाम की आपको एनएवी मिलेगी। और उसके बाद 1 से 2 दिन जो बैंक ट्रांसफर में पैसा लगता है, अगर बीच में छुट्टी आ जाती है, शनिवार इतवार आ जाता है, तो वो दिन इसमें ऐड होंगे। तो 2 से 3 दिन लगते हैं और ये नॉर्मल है।
1: All right, and now let's see how has been the movement of crude oil. Global crude oil prices declined last week following a deal between Iran and Oman to reopen the Strait of Hormuz. The two countries are also seeking to charge a fee on ships crossing the strait. During the week at the Intercontinental Exchange, ICE, Brent crude October futures plunged 5% to settle at $83.55 per barrel. West Texas intermediate crude September futures tumbled 7.7% to end at $78.18 per barrel.
2: स्टिल इन कमोडिटीज, सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में इस सप्ताह तेजी दिखाई दी। अमरीकी डॉलर में नरमी और अमेरिका के सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर में कमी के बीच सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखी गई। अमरीका के श्रम आंकड़े उम्मीद से कमजोर आने से अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में वृद्धि की आशंका कम हो गई और इससे भी निवेशकों की धारणा को बढ़ावा मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाले सोने की कीमत सप्ताह के दौरान 5.9% के उछाल से 1,51,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुई। इस बीच सितंबर अनुबंध वाली चांदी की कीमत 6.6% बढ़कर 2,31,466 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। उधर कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 7.1% की वृद्धि से $4,399.70 प्रति ट्रॉय आउंस पर पहुंचा। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी सप्ताह के दौरान लगभग 10% उछाल दर्ज करती हुई $63.49 प्रति ट्रॉय आउंस पर पहुंच गई।
1: All right, now let's take a quick look as to how the markets are expected to show up next week. The domestic investors are set to navigate a week packed with key market triggers, including macroeconomic data, quarterly earnings reports, and geopolitical developments. Markets are likely to take cues from foreign institutional investor inflows, commodity prices, and currency movements. Market participants will closely monitor monthly mutual fund data, the quarterly bulletin of the periodic labor force survey, and retail and wholesale inflation prints. Globally, investors will focus on geopolitical developments surrounding the West Asia conflict, along with oil market reports from the International Energy Agency and the Organization of the Petroleum Exporting Countries.
2: कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, सो चर्चा को भी अब हम यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आप आए और आपने हमारे सभी श्रोताओं के विस्तृत सवालों के इतने अच्छे जवाब दिए।
0: जी धन्यवाद।
1: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप टुडेज शो, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। Foreign portfolio investors infuse over 12,900 crore rupees into Indian equities during first week of August. Global crude oil prices tumble last week, and domestic investors to focus on inflation data, corporate earnings results, and geopolitical developments for cues next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: घर घर तिरंगा, आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है।
0: इस वर्ष यह अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ

0: मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुद्दुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। इससे पहले गृहमंत्री पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी के मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई दुर्घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलटों की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Prashant Kumar Sinha. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity, and to promote India's cultural heritage.

0: और संप्रभुता दर्शाने वाले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को गर्व और उल्लास से फहराएंगे। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान और भी खास है क्योंकि वह हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। हर घर तिरंगा 2026 अभियान के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
1: नमस्कार
0: अशोक जी। सरकार ने 2022 में हर घर तिरंगा के तहत जो हर नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर या अपने कार्यालय पर फहराने का जो अधिकार दिया है, उसे आप कितना महत्वपूर्ण समावेशी पहल मानते हैं और भावनात्मक रूप में ये कैसे सभी भारतवासियों को जोड़ता है?
1: जैसे आपने कहा कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को चलाया था, लोगों से आह्वान भी किया था, और इस बार भी अगर मैं कहूं तो 26 जुलाई 2026 को जो प्रसारित मन की बात के 136वें एपिसोड में भी प्रधानमंत्री ने फिर से भारतवासियों को, भारतवंशी जो विदेश में रहते हैं, उन सबको स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा अभियान को फिर से इस बार भी पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया था। और उन्होंने कहा था कि ये तिरंगा हमारे संविधान के आदर्शों को संजोए हुए है और ये देश को एकजुट करता है। तो इस आह्वान का अर्थ यही था कि लोगों को याद कराना कि जब इस बार 9 अगस्त आज से और 17 अगस्त तक ये जो हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस वर्ष अपने घरों पर तिरंगा फहराने और उत्सव को भव्य बनाने की अपील भी की थी कि लोगों से तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर करके और अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बदलने का भी आग्रह प्रधानमंत्री हर साल करते हैं। तो इस बार की कुछ विशेषताएं जिनकी ओर आपने भी ध्यान दिला वो ये है कि ये अभियान राष्ट्रव्यापी जो है 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा और इसको जैसे आपने भी कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ भी इसको जोड़कर इस बार मनाया जाएगा। तो गीत के बोल और धुन हमारी तस्वीर पर खुद ब खुद जुड़ जाएंगे, ये एक विशेष फीचर इस बार है। कुल मिलाकर जो 9 दिन ये चलेगा और उसकी जो सूत्रधार होते हैं वो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री जो होती है वो इसका अभियान करती है। और एक और महत्वपूर्ण पहलू इस बार जोड़ा गया है।
0: इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो आपने अभी जिक्र किया कि बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी तिरंगा के आसपास प्लान की गई है, यात्राज, रैलीज, कॉन्सर्ट्स, एग्जीबिशंस और क्विज भी है। सो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अभियान का जब शुभारंभ किया तो उन्होंने नागरिकों से इन गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेने का भी आह्वान दिया। सो आपको लगता है इससे एक जागरूकता फैलेगी सब नागरिकों में, जो अतीत का हमारा गौरव है, वर्तमान की जो कर्तव्य निष्ठा की आवश्यकता है और भविष्य के सपनों का जो एक प्रतीक बना है तिरंगा, उसके बारे में ज्यादा जागरूकता फैलेगी
1: कि देश के हर जिले और ब्लॉक में स्तर पर स्थानीय सांसदों, विधायकों और सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनमें युवाओं, जेंजी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का एक तरह से मौका मिलेगा। और इस बार इस बात का भी विशेष ध्यान दिया गया है कि झंडा फहराने के दौरान और अभियान खत्म होने के बाद तक झंडे को उतारते समय जो है हमको कई नियमों का पालन करना होगा। और इसीलिए जब हम इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन कहते हैं तो इसका मुख्य देश भारत की स्वतंत्रता दिवस के जो अवसर पर प्रत्येक नागरिक जो है वो इसमें उसका जुड़ाव हो। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल इस बार की गई है कि उसका नाम रखा गया है सूर्य पथ तिरंगा, यानी विदेश मंत्रालय के सहयोग से एक अनोखी एक पहल शुरू की जा रही है। दुनिया के 54 देशों में मौजूद जो भारतीय दूतावास या हाई कमीशन हैं या कॉन्सुलेट हैं, वो उगते सूरज की दिशा के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर एक के बाद एक तिरंगा फहराएंगे। यानी जो हमारा पूर्व में सबसे फिजी देश है, वहां पर जो हमारा एम्बेसी है वो झंडा फहराने की शुरुआत करेगी और जो जो सूर्य आगे बढ़ेगा तो सैन फ्रांसिस्को में जो अमेरिका का बिल्कुल पश्चिमी शोर है वहां पर सूर्य अस्त के समय तक ये झंडा फहराया जाएगा। तो ये एक हमारा जो डायस्पोरा है उनको साथ जोड़ने की भी बात है और हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो दुनिया भर के देशों को भी एक संदेश देना की कोशिश होगी कि जो हमारे देश में स्वतंत्रता का दिवस है उसको हम कितने ढंग से मनाते हैं और उस

0: उसका एक हिस्सा हमारा बन गया है हर घर तिरंगा। हमारे जो लोग जैसे संस्कृति मंत्रालय है उसका जो पोर्टल है उस पर पहली बार एक तकनीकी टूल को जोड़ा गया है। देश के नागरिक राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सही धुन में गाने के लिए उनको ऑनलाइन ट्यूटोरियल दिए गए हैं और वोकल गाइडेंस दिया गया है कि आपको राष्ट्रगीत सचमुच में ठीक ढंग से कैसे गाना चाहिए। तो इसके साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर अब दिल्ली, कलकत्ता और अमृतसर जैसे प्रमुख शहरों में मौन जुलूस निकाले जाते हैं, क्योंकि इसको विभाजन की त्रासदी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी स्क्रीन की जाती हैं, क्योंकि अब ये केवल दो ही इसके महत्व नहीं है, यानी हर घर तिरंगा हो और वंदे मातरम हो, साथ में जो विभाजन की विभीषिका थी
1: जी,
0: उसको भी लोगों तक पहुंचाकर कैसे जिस तरह से भारत का विभाजन हुआ और उसमें से कैसी विभीषिका हुई उसको भी इस बार से कुछ सालों से ये लोगों के साथ नई पौध के साथ नई जनरेशन के साथ उसको जोड़ने की दृष्टि से भी ये कार्यक्रम साथ में लिया गया है। तो ये लोगों की सक्रिय भागीदारी करना, उनके साथ उनको ये पता चलना चाहिए कि ये सब कुछ हम लोग क्यों करते हैं। हमारी नई पीढ़ी जो है उसको ये जानकारी रहनी चाहिए कि कितनी कठिनाइयों के बाद भारत ने स्वतंत्रता हासिल की थी, कितने लोगों ने बलिदान दिया था और कैसे विभाजन के दौरान एक बड़ी भारी विभीषिका हुई जिसमें लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी।
1: पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे भी मनाया जा रहा है 14 अगस्त को, ताकि प्रेरणा मिले कि हम किस संघर्ष और बलिदान से आजादी हमने प्राप्त की है उसका मूल्य हम समझें। तो आपको लगता है इससे प्रेरणा मिलेगी सब नागरिकों को, खासकर युवाओं को, कि राष्ट्र निर्माण में यथा योग्य जितना भी कर सकें योगदान करें और अलगाववाद से बचें?
0: बिल्कुल, देखिए पहले के कई दशकों तक न तो कभी तिरंगा का महत्व समझाया गया था हमारी पीढ़ी को स्वतंत्रता के बाद, और ना ही कोई जो विभाजन की विभीषिका है उसके बारे में बताया गया था। नई जनरेशन को मालूम ही नहीं था कि कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए और वो किस किस तरह के बलिदान थे, उसमें भगत सिंह की बात आती है, लेकिन ये जो विभीषिका हुई पार्टीशन की इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी। अब कुछ वर्षों से इसके बारे में इसलिए उसकी प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं, उसकी फीचर फिल्म बन रही हैं और लगातार एक अभियान के तहत इन सारी चीजों को नई पौध को नई जनरेशन को अगर हम बताते रहेंगे तो उनको भी और वो भी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम और ये आयोजन जो अभियान है ये सचमुच में अब एक जन आंदोलन बन चुका है। इसमें प्राइवेट सेक्टर, कारपोरेट, रिलीजियस, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको इसके साथ में भागीदारी करनी चाहिए और तभी ये जो हमारा अभियान है ये और ज्यादा तेजी से लोगों की समझ में आएगा।
1: बिल्कुल। सो अशोक जी, जैसा आप कह रहे हैं कि जन भागीदारी ऑलरेडी ये बन चुका है, लेकिन और भी ज्यादा से ज्यादा इसमें लोगों को आगे आना चाहिए। आपको लगता है कि इससे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेवारी भी आती है कि जो हमें आजादी हमें मिली है इतनी मुश्किल से, उसको हमें संभाल के रखना है और हमें अपनी समृद्धि को आगे बढ़ाना है, और जो हमारी फ्रीडम फाइटर्स हैं जैसा आपने कहा, स्वतंत्रता सेनानी या जो आंदोलनकारी रहे जिनके संघर्ष से हमें आजादी मिली, उनके अलावा जो वर्तमान सशस्त्र बल हैं जो रक्षा करते हैं हमारी, उनके प्रति भी एक आदर भाव सम्मान जागता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि जो स्वतंत्रता के बाद बलिदान हुए हैं वो युद्ध में, लड़ाइयों में हमारे जो वीर सैनिक जवान, उन्होंने जो शहादत दी है उसको भी याद करने का एक यही अवसर होता है। और इसीलिए ये जो हर घर तिरंगा है ये केवल आजादी के परवानों की याद नहीं दिलाता, बल्कि उसके बाद आजादी को बनाए रखने में इन वीर सेनानियों कि जो इसमें बलिदान होता है, जो शहीद होते हैं और लगातार आतंकवाद से लड़ते हुए भी शहीद होते हैं, तो उनके प्रति भी श्रद्धांजलि का एक प्रतीक बनता है। और इसीलिए हर घर तिरंगा के साथ साथ जो इसके साथ वंदे मातरम को जोड़ा गया है, क्योंकि वंदे मातरम भी स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत प्रोत्साहित करता था और एक जोश भरता था, और उसके साथ राष्ट्रीय गान के साथ जैसे उसको अब जोड़ दिया गया है तो इससे हमारे सेनानियों को भी एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि वो जो पहरेदारी कर रहे हैं वो देश को एक सुरक्षित रखने के लिए, और हम लोग भी अपने घरों में रात को इसीलिए सो पाते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये हमारे जवानों के प्रति भी एक श्रद्धांजलि का बहुत बड़ा अवसर है।
1: सो अशोक जी, एक सामूहिक पहचान है हम सभी की, प्रत्येक भारतवासी के लिए तिरंगा और हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्र ध्वज दोनों एक कहें

0: ड्यूल सेलिब्रेशन है। और अगर हम देखें कोई भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है या खेल आयोजित होते हैं तो हरेक देश जो उनका ध्वज है और उनका राष्ट्रीय गीत है वो बहुत महत्व रखता है। सो उस संदर्भ में भी एक अपनी पहचान बनाने के लिए और पूरा जो हमारा विविध देश है, इतना बड़ा देश है, उसको एक सूत्र में बांधने के लिए आपको लगता है कि इस तरह के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है?
1: बिल्कुल, देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब हम बात करते हैं तो उसमें वो जो एक भारत है तो उसमें एकता बहुत आवश्यक है। तो जितनी भी देश में विविधता है उनके रहते हुए भी अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ये जो एक मंत्र है और ये भारत के हर क्षेत्र को, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे दक्षिण राज्य हो, इन सबको एक माला में पिरोए रखता है। और इसी तरह भाषा और जाति और धर्म, इन सब को मिलाकर रखना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो उसके लिए देशभक्ति की भावना जगाने के लिए जो प्रतीक है वो राष्ट्रीय ध्वज ही है। तो उसके प्रति सम्मान को अगर हम और गहरा करेंगे, उसके साथ हम राष्ट्रगीत के साथ राष्ट्रगान को भी हम बढ़ावा देंगे, तो कोई कारण नहीं है कि ये जो अभियान है ये पूरे देश और समाज को एक सूत्र में पिरोने में और अधिक योगदान करेगा।
0: अशोक जी, पहले तो बहुत ही फॉर्मल और ऑफिशियल ही लहराया जाता था हमारा ध्वज, लेकिन अब जिस तरह से सब नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त हुआ है, जैसा आपने भी अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि जो ध्वज है उसकी गरिमा और उसको लहराने के कुछ नियम, अगर आप संक्षेप में जो प्रमुख गाइडलाइंस है वो बता सकें।
1: हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग अपने घरों, निजी प्रतिष्ठानों, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराएंगे और इसको फहराते समय जो एक ध्वज संहिता में संशोधन किया गया, यानी फ्लैग कोड जो है उसमें भी बदलाव किया गया है। यानी अब यदि झंडा खुले आसमान में हो या किसी घर पर हो तो उसे दिन और रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले ऐसे माना जाता था कि दिन में फहराकर उसको जो है रात को उतार लिया जाए, तो ये अभी बदलाव किया गया है कि नागरिक जो है वो आधिकारिक जो वेबसाइट पर डिजिटल रूप से भी अपना झंडा पिन कर सकते हैं, तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड कर सकते हैं और उससे उनको भागीदारी का प्रमाण पत्र भी मिलेगा, वो भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ एक चीजें इसमें जोड़ी गई है और मैं समझता हूँ कि जो ये अभियान है ये नागरिकों के दिलों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को और ज्यादा गहरा करेगा और जागरूकता बढ़ाएगा, विशेष तौर से नई पीढ़ी के मन में, क्योंकि उनको जब तक हम लगातार अपने देश की विविधता को भुलाकर सभी में राष्ट्रीय गौरव एक साझा प्रतीक के रूप में एकजुट करेंगे नहीं तो कोई कारण नहीं है कि ये जो हमारी नई पीढ़ी है वो इससे वंचित रहे। इसलिए उनको जोड़ के रखने के लिए ये आयोजन और ये अभियान बहुत ही आवश्यक है और उसी तरफ देश अब चल भी रहा है।
0: अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर घर तिरंगा अभियान 2026 के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हर घर तिरंगा, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना के उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:25 और 59 सेकंड हो गए हैं, और ये हो गए 7:26 और आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर। ये समय है कार्यक्रम सांझ ढले का। आज की शाम सांझ ढले में मैं हूँ आपके साथ रेशमा।

जी एफएम गोल्ड पर सुन रहे हैं आप कार्यक्रम सांझ ढले। और ये जो गीत आपने सुना, ये गीत था फिल्म बुजदिल से, जो आई थी 1951 में। और इस गीत में संगीत था एस डी बर्मन का और बोल लिखे थे ये कैफी आजमी ने। अब जो अगला गीत मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, उसमें भी संगीत एस डी बर्मन का है और बोल लिखे हैं कैफी आजमी ने। और हुआ कुछ यूँ था कि इस गीत की धुन बनाई गई पहले और उस पर सिर्फ अब तक मुखड़ा लिखा गया था, और गुरुदत्त फिल्म बना रहे थे कागज़ का फूल, उनको वो धुन मुखड़े के साथ सुनाई गई और गुरुदत्त ने ठान लिया कि ये तो गीत इस फिल्म में रहेगा ही। उन्होंने कैफी आजमी को लिरिक्स पूरे करने के लिए कहा, और ऐसी कोई सिचुएशन थी नहीं, लेकिन बोले कि ये गीत तो मैं लेके रहूँगा और मैं सिचुएशन बना लूँगा। तो उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की और ये गाना फिल्म में शामिल किया गीता दत्त की आवाज़ में।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: जी हाँ, 7:34 हो गए हैं और सांझ ढली सुन रहे हैं आप FM गोल्ड पर। और ये जो अगला गीत सुनेंगे आप, ये है फिल्म प्यासा से, जो आई थी 1957 में, आवाज गीता दत्त और मोहम्मद रफी की, संगीत एक बार फिर SD बर्मन का, और इस बार बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी FM गोल्ड है ये, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:40 और ये हुए 27 सेकंड, और सांझ ढले कार्यक्रम में अब समय रह गया है बस एक और गीत आपको सुनवाने का, क्योंकि 7:45 पर FM गोल्ड पर समय हो जाएगा प्रादेशिक समाचारों का। और उसी के साथ, यानी इस आखिरी गीत के साथ, मैं आपसे लूंगी विदा, और 8:15 पर आप

कार्यक्रम सुनेंगे स्वर धरोहर। फिलहाल ये आखिरी गीत आज सांझ ढले में फिल्म आर पार से, जो आई थी 1954 में, और इस गीत को गाया है एक बार फिर गीता दत्त ने, संगीत ओपी नैयर का, और बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: हम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें।

0: आयन पर
1: हर घर सूर्य घर।
2: पापा ये सब?
3: हाँ जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए।
2: ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD।
4: अरे ये कैसे रह गया?
2: पैसे गए?
4: नहीं नहीं नहीं, उपाय है उपाय है।
3: बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है।
4: ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें।
5: दादू ये
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सही कह रहा है।
8: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर लगभग 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताओं का आरोप लगाया। दिल्ली मेट्रो का परिचालन इस वर्ष अब तक 99.95% समय से रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और इसके दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी। और भारत ने गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता में 300 मेगावाट का आंकड़ा पार किया। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: ये अभियान हर घर तिरंगा पहल का पांचवा वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से ये देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस वर्ष अभियान ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रैली भी आयोजित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का दोबारा संकल्प लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा देश का गौरव है और देश के लिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देता है। दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलंजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि यह स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
1: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक, जितने भी हमारे शहीद स्मारक है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर, हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
0: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत सभी जिलों और कई मंडलों में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। जनकपुरी ढोली पियाव से तिलकनगर तक निकाली गई तिरंगा बाइक रैली में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद और मनिंदर सिंह सिरसा सहित अन्य भाजपा नेता तथा कार्यकर्ता शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य हर घर तिरंगे को पहुंचाना है।
2: 15 अगस्त और 26 जनवरी नेशनल इम्पोर्टेंस के फेस्टिवल्स हैं, ये कोई एक्सटेंडेड वीकेंड नहीं है। ऐसी भावना उत्पन्न करने का और देश में देशभक्ति के ज्वार को खड़ा करने का एक ये अभियान है। यहाँ तिरंगा यात्रा निकल रही है, बाइक रैली निकलेगी, एक जन सहभागिता और जन आंदोलन के रूप में हर घर पे तिरंगे को लगाकर देश के शहीदों और वीरों को नमन करने का समय है।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज पूर्ववर्ती सरकार पर वित्तीय अनियमित

0: अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रस्तुत पेश की गई 24वीं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये आरोप लगाए। नई दिल्ली स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने बताया कि 7 अगस्त को सामने आई 31 मार्च 2023 तक के रिपोर्ट में करीब 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई हैं।
1: सीएजी रिपोर्ट केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार का रिटर्न डॉक्यूमेंट है। केजरीवाल सरकार में ऑडिट नहीं होता था कामों का। 1.5 साल के अंदर में हमारी सरकार के आती 24 रिपोर्ट आ चुकी। हर रिपोर्ट में सैकड़ों हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हमारे सामने आया है। जो परसों रिपोर्ट आई इसमें भी 3,500 करोड़ रूपए की अनियमितताएं सीएजी ने हमारे सामने इस डॉक्यूमेंट में पेश करी है।
0: श्री सिंह ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में टैक्स बकाया, जीएसटी पंजीकरण, ई वे बिल, बिजली सब्सिडी और मैनुअल टेंडर से जुड़ी कई अनियमितताओं का उल्लेख हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार इन मामलों की जांच कराएगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी के अनुसार वर्तमान वर्ष में दिल्ली मेट्रो 99.95% समय से चली। डीएमआरसी ने रेल परिचालन की समयबद्धता और विश्वसनीयता के मामले में हांगकांग, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसी विश्व की प्रमुख मेट्रो प्रणालियों के बीच खुद को सबसे प्रतिष्ठित मेट्रो प्रणाली के रूप में स्थापित किया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली मेट्रो के करीब 23 वर्षों के परिचालन के दौरान नेटवर्क के लगातार विस्तार के बावजूद उच्च परिचालन दक्षता कायम रही है। वहीं शुरुआती वर्षों में दिल्ली मेट्रो के ट्रेनों के बीच लगभग 7 मिनट अंतराल घटकर आज सबसे व्यस्त कॉरिडोर पर मात्र 2 मिनट 18 सेकंड रह गया है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो 12 लाइनों और 303 स्टेशनों के साथ 416 से अधिक किलोमीटर के नेटवर्क पर संचालित हो रही है। वहीं दिल्ली मेट्रो करीब 29% नेटवर्क पर ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा के साथ भारत का सबसे बड़ा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क बन गया है। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह उपलब्धियां तकनीकी नवाचार, बेहतर रखरखाव और परिचालन उत्कृष्टता के निरंतर प्रयासों का परिणाम है तथा इसके लिए डीएमआरसी को हाल के वर्षों में कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने आज देवली विधानसभा के संगम विहार ए वार्ड में और देवली वार्ड में 37 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। आवंटित इस धनराशि के अंतर्गत लगभग 4 किलोमीटर लंबा डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग बनाया जाएगा और क्षेत्र में 2 बारातघर का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने आज शिवाजी महाराज मार्ग करमपुरा औद्योगिक क्षेत्र मोती नगर में राहगीरी दिवस का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों के बीच सड़क सुरक्षा, स्वच्छता और कचरा पृथक्करण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। एक रिपोर्ट।
3: कार्यक्रम में 300 से अधिक नागरिकों ने हिस्सा लिया। इसमें लगभग 150 स्कूली छात्र शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, सूखा और गीला कचरा अलग करने और जिम्मेदार कचरा प्रबंधन के संबंध में जागरूकता पैदा करने पर विशेष बल दिया गया। निगम ने नागरिकों से कचरे के स्रोत पर ही अलग अलग करने और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने की अपील की। साथ ही युवाओं और छात्रों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ दिल्ली के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वीरेंद्र कौशिक।
0: दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति विभाग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी द्वारा की गई प्रेस वार्ता के दौरान उनके विभाग पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया और इस पर आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और विधायक संजीव झा ने उनके खिलाफ बेबुनियाद, झूठी और मानहानिकारक आरोप लगाए हैं। उन्होंने दोनों नेताओं को 24 घंटे के भीतर आरोप वापस लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की और ऐसा न होने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज बताया कि मॉडल टाउन स्थित नैनी लेक के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है, जो सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मिश्रा ने कहा कि नैनी लेक के पुनर्विकास की योजना में झील के आसपास के क्षेत्र को बेहतर बनाने के साथ पर्यटन और मनोरंजन सुविधाओं जैसे एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलने के विस्तार पर भी बल दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair

0: दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में आवासन और शहरी कार्य सचिव सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 मेगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय परीक्षण वकालत प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने कहा कि भारत की न्याय परंपरा ने सदैव तर्क को शक्ति, संविधान को मर्यादा और न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि मॉनसून की बारिश के बावजूद मायापुरी चौक पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और सड़कें बिना किसी जलभराव के साफ हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विभाग ने कहा कि उनके बेहतर जल निकासी प्रबंधन और समय पर की गई तैयारियों के कारण लोग सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के आवाजाही कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों में बारिश के बाद लोगों को आज दिन भर तेज धूप और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने के साथ कुछ जगहों पर हल्की से बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ राजेश सिन्हा भाग लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर लगभग 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताओं का आरोप लगाया। दिल्ली मेट्रो का परिचालन इस वर्ष अब तक 99.95% समय से रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और इसके दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी। और भारत ने गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता में 300 मेगावाट का आंकड़ा पार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
2: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
1: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
3: टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल

0: शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। झारखंड सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शनकारी छात्रों की अधिकतर मांगों को लेकर समझौते पर पहुंच गई है। राज्य सरकार ने 14वीं जेपीएसएससी प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की पिछली परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति जताई है। परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। हालांकि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और इसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने की छात्रों की मांग पर सहमति नहीं बनी है। छात्रों ने कहा है कि उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से भारत के खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरु मुंगपंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलोग्राम का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वियतनाम के हुआंग थाच ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has appealed to the citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Tricolor is the pride of the nation and a constant source of inspiration to always give best for the country." The Prime Minister expressed happiness, saying that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram as it marks its 150th anniversary. Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. Sharing a video message, Mr. Modi urged the citizens to always cheer for Bharat. India finished at the fourth spot on the medal table at the Games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July and 2nd of August. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines. The

0: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you the program Swar Dharohar based on the archival inputs of Akashvani.
1: ये Akashvani है. प्रस्तुत है Akashvani Archives के सहयोग से निर्मित कार्यक्रम स्वर धरोहर.
0: नमस्कार श्रोताओं, मैं आशुतोष
1: और मैं श्वेता आपका स्वागत करते हैं आज के स्वर धरोहर के स्वतंत्रता दिवस के विशेष कार्यक्रम में, जो समर्पित है उन वीरों को जिन्होंने हमें आजादी दिलाई.
0: तो चलिए शुरू करते हैं वो यात्रा जिसने 200 साल की गुलामी को तोड़कर भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया.

0: महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य और अहिंसा से अंग्रेजों को झुकाया, सुभाष चंद्र बोस जिनकी आवाज तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आज भी गूंजती है, उन्होंने जापान की मदद से भारत में ब्रिटिश सरकार पर हमला करने की योजना बनाई। भले ही फौज सफल न हो पाई लेकिन नेताजी का जोश आज भी देशभक्त युवाओं के दिलों में जिंदा है।
1: जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं की दूरदर्शिता और संघर्ष को भी हम सलाम करते हैं।
0: लेकिन श्रोताओं, जब हम आजादी की बात करते हैं तो सिर्फ उन चेहरों को याद करना काफी नहीं जिनके नाम किताबों में दर्ज हैं।
1: इस देश की आजादी में हजारों ऐसे नाम भी शामिल हैं जिन्हें इतिहास ने ज्यादा जगह नहीं दी, लेकिन उनका योगदान किसी भी मशहूर सेनानी से कम नहीं था।
0: क्या आपने कभी सुना है श्यामलाल गुप्त पार्षद का नाम? वो कवि जिनकी कलम से निकले देशभक्ति के गीत आज भी परेड में गूंजते हैं।
1: श्यामलाल गुप्त पार्षद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी, पत्रकार, समाज सेवी और अध्यापक थे। वो 1916 से 1947 तक कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी रहे। उन्होंने नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये प्रसिद्ध गीत जिसे झंडा गीत के रूप में भी जाना जाता है, देश के महान स्वतंत्रता सेनानी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने ही इस गीत की रचना की। 13 अप्रैल 1924 को कानपुर के फूलबाग में जलियावाला बाग दिवस पर पहली बार सार्वजनिक रूप से सामूहिक गान किया गया था। 15 अगस्त 1952 को इसे लाल किले में गाकर देश को समर्पित किया गया।
0: झंडा गीत भारत के हर महत्वपूर्ण अवसर पर गाया जाता है और ये देश के गौरव और देशभक्ति का प्रतीक बन गया है। आइए सुनते हैं इस गीत की कुछ पंक्तियाँ।

0: इन आंदोलनों में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया। कई सेनानी ऐसे भी थे जो अज्ञात रह गए। आइए सुनते हैं उनमें से एक बहादुर सेनानी नैनीताल के रघुनंदन प्रसाद लोहिया जी के संस्मरण।
1: करो या मरो तथा अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया हमारा नारा था। 28 अगस्त सन 1942 को पुलिस श्री लोकमान सिंह त्यागी को गिरफ्तार करके जसपुर से काशीपुर लाई। मैं यहाँ उनसे मिला। पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा तथा एक हाथ भी तोड़ दिया। मुरादाबाद जेल में हम सभी को शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न दिया गया, लेकिन किसी भी साथी पर इसका कोई प्रभाव न हुआ और आंदोलन के प्रति अड़िग रहे।
2: ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे लखनऊ के शिव प्रसाद पांडे, जिन्होंने युवाओं को संगठित कर अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई। इनको भी जेल में बंद कर दिया गया। इनको और इनके साथियों को जेल में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
3: लखनऊ कैम्प जेल के अधीक्षक एक अंग्रेज, क्या कहें, बल्कि वो दानव लेडली साहब था। उसको भी हम लोगों ने अपनी बहादुरी से एक भी चलने नहीं दी। तकली जो सूत काटने हैं दी जाती थी, उसे डोरी पानी भरने वाली बना देते थे। आटा पीसने को देते थे तो उसे दरिया की तरह दर देते थे।

अभी हम लोगों को उसके लिए तनहाई पड़ी, बेड़ी पड़ी, मत भंगे पड़े। उसने कहा कि अगर आप लोग चक्की घर में आटा नहीं पीसोगे तो आटा रोटी बनने हेत नहीं दूंगा। हम लोगों ने भी 9 महीने तक उस जेल में रहे, किसी भी सत्याग्रही ने एक भी छटाक आटा नहीं पीसा, केवल चने व गेहूं की घुघरी खा खा कर पूरी सजा काट दी।

0: श्रोताओ, जहां गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग चुना, वहीं कई युवाओं ने सशस्त्र क्रांति की राह अपनाई। इनमें प्रमुख थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव।
1: इन्हें विश्वास था कि अंग्रेजी हुकूमत सिर्फ सशस्त्र संघर्ष से ही खत्म होगी। भगत सिंह ने संसद में बम फेंका, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उनका मकसद था केवल अंग्रेजों को चेतावनी देना। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई और वो इतिहास में अमर हो गए।
0: भगत सिंह से हुई आखिरी मुलाकात के बारे में उनकी माताजी ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
2: आखिरी मुलाकात मेरे नाल ये गल्लां कीतियां उसने, बेबे जी तुसी आउणा ना जिद्दन मेरी फांसी होगी लाश लैण, जे तू आई तैनू गश पै जानी आ, तू रोवेंगी, तू रोई ना, गश खा के ना पई, लोग कहणगे भगत सिंह दी मां गश खा के पै गई आ, फिर देखी मेरा नाम बदनाम हो जाऊगा, तू ना आई, जे आया तां कुलवीर तों आवे ते लाश लै जावे, अब्बल ताई नी लाश देनी नी, इनी मैनू उधर पाड़ के जेल कढ़ना, तू इथे ना रही लाहौर, तू बंगीन चली जाए, ते तेनू उथे सब कुछ आ जाया करूंगा।
1: भारत की आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, कस्तूरबा गांधी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, दुर्गावती देवी, इन जैसी महिलाओं ने सत्याग्रह किया और आंदोलन का नेतृत्व भी किया। उषा मेहता, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, दुर्गावती देवी ने आजादी के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: सन 1940 में जब मैं जेल गई थी तो मेरे साथ करीब करीब 60-70 आदमी जेल में गए थे। ये सब जेल पहुंच गए, जेल जाने के बाद सबको सजा हुई और सजा होने के बाद हम लोग रहे। इसके बाद हम लोगों ने जेल में सत्याग्रह करा, क्योंकि कुछ साथी हमारे ऐसे थे जिनको कुछ खाना ठीक से नहीं मिलता था, तो हम लोगों ने उनसे अनशन करा और अनशन पर हम लोगों को जेल वालों ने बहुत परेशान किया। 1942 में तीसरी बार जब जेल गए तब भी हमारे पति हमारे साथ में थे और हमारे साथ में 38 आदमी हमारे संग में थे। 38 चली और 38 में 38 लोगों को सजा हुई। उस सजा में 3-3 महीने की हम लोगों को सजा सुनाई गई, लेकिन हमारे शाहजहांपुर के और पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता ये सलाह किया करते थे कि भाई कुछ भी हो, हिंदुस्तान आजाद होना चाहिए और हम लोग अपनी तरफ से किसी बात की कमी नहीं रखेंगे।
4: हमारा महिलाएं अपने बहादुरी और अपना देश प्रेमी सब दिखाया है बार बार। हमारा इतिहास देखने से आपको मालूम है 1857 का उस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बेगम हजरत महल, अनेक अनेक साधारण महिलाएं भी हमारा फौज को, तो उन लोगों ने मदद दिया और बहुत सारी लोगों को मौत के घाट पे भी अंग्रेज ने पहुंचाया। और फिर महात्मा गांधी का तो आंदोलन में तो सामने ही है, तो बहुत महिलाएं भी उसमें है। और उसके अलावा भी हमारा बंगाल का तो टेररिस्ट मूवमेंट, हालांकि हम उसमें तो यकीन नहीं करते हैं, और इसमें भी नौजवान लड़कियां अपने जान कुर्बानी किया, तो इसलिए एकदम से नजरअंदाज करना बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात है, हमारा महिलाएं सिर्फ देश की आजादी नहीं है, अपने मुक्ति के लिए भी लड़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम सोचता है हमारा देश में हम सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा महिलाओं के ऊपर तो लगता है, और इसके हटाने के लिए सबसे पहले हमको आजादी चाहिए और उसके साथ ही साथ नारी मुक्ति भी होना चाहिए।
5: सन 1921 का कांग्रेस आंदोलन हम लोगों के जीवन का एक बड़ा मोड़ बना। शायद उस समय का देश का विद्यार्थी वर्ग कुछ अधिक स्वाभिमानी और चिंतनशील रहा हो, क्योंकि देखा गया कि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उस कांग्रेस आंदोलन को देश की आजादी की लड़ाई का सुअवसर समझा और वे उसमें जी जान से कूद पड़े।
0: कैप्टन राम सिंह का जन्म 15 अगस्त 1914 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था। राम सिंह गोरखा स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ गीतकार और संगीतकार भी थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे पहली गोरखा राइफल्स के बैंड में भर्ती हुए। वहां उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और पश्चिमी संगीत

0: की शिक्षा ली।
1: इन्होंने कई गीत लिखे, उनमें से काफी प्रसिद्ध गीत है कदम कदम बढ़ाए जा। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
2: कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा।
1: जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी और लोकनायक जनता के नेता के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ, सिद्धांतकार और स्वतंत्रता सेनानी थे।
0: देश को आजाद कराने के लिए किसी ने बंदूकें उठाई तो किसी ने कलम से क्रांति लाई, किसी ने कविता लिखकर तो किसी ने जेल में बंद रहकर देश को जिंदा रखा। उन गुमनाम नायकों को भी याद रखना हमारा कर्तव्य है, जिनका नाम तो नहीं छपा लेकिन जिनका त्याग हमारी आजादी की बुनियाद बना।
1: आइए इस 15 अगस्त को हम झंडा फहराते समय इन सभी वीर सेनानियों के बलिदान को भी नमन करें।

0: कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी के निर्माता थे आशुतोष कुमार, आलेख था दीपा कुमारी का और प्रस्तुति सहयोग था डिंपल का। कार्यक्रम में वाचन स्वर था आशुतोष और श्वेता का। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अनुराग उपाध्याय और विशाल ने। यू आर लिसनिंग टू द वीकली प्रोग्राम स्वर धरोहर बेस्ड ऑन द आर्काइवल इनपुट्स ऑफ आकाशवाणी। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की, कहा जो लोग खेलों में भाग लेते हैं वे समृद्ध होंगे। अश्मिता चालिहा ने किया ऐतिहासिक प्रदर्शन, जीता कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन का खिताब। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने रजत पदक जीता। एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पांडियन ने रजत पदक हासिल किया। निकी कालियांदा पुनाचा और गोंजालो एस्कोबार ने पुरुष डबल्स लैंगस्टन ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम

0: किया। टूरंट कप फुटबॉल में शिलोंग लाजोंग एफसी ने मुंबई एफसी को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 85वें संस्करण की अगुवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से भारत के खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते। और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां अश्मिता चालिहा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। महिला सिंगल्स फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान कियान शी को हराकर पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता। सुनते हैं इस मुकाबले पर खास रिपोर्ट।
2: मुकाबले की शुरुआत अश्मिता के लिए अच्छी नहीं रही, लेकिन पहला गेम हारने के बाद अश्मिता ने शानदार वापसी की और 53 मिनट तक चले मुकाबले में हान कियान शी को 14-21, 21-14, 21-14 से हरा दिया।
3: फर्स्ट टाइटल इन 2026 अश्मिता वर्ल्ड नंबर 50 हैज बीटन द वर्ल्ड नंबर 35 इन सेंसेशनल फॉर्म। दैट्स द फाइनल, दैट्स द रिजल्ट। 14-21, 21-14, 21-14।
2: अश्मिता ने पहले क्वालिफायर में रीरिना हिरामोतो और फिर किम मेनजी को सीधे गेम में हराया और क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त हिना अकेची को 20-22, 21-15 और 21-19 से मात दी। सेमीफाइनल मुकाबले में अश्मिता ने अपने ही देश की खिलाड़ी रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया था। वो इस वर्ष सुपर 300 खिताब जीतने वाली देविका सिहाग और तन्वी शर्मा के बाद तीसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। कुल मिलाकर कोरिया मास्टर्स फाइनल में जीत के साथ वो इस साल सिंगल्स BWF खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बनी हैं। उनसे पहले तन्वी ने ताइपे ओपन, पीवी सिंधु ने जापान ओपन और देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स का खिताब जीता है। इससे पहले अश्मिता ने 2018 और 2023 में खिताब जीतकर देश का मान बढ़ाया था।
3: She's come through, adds to her 3 titles she's picked up on the International Challenge Series since 2018. The last one was in 2023, the Maldives International. The 26-year-old is back on the podium. First in 2026.
2: इस जीत के साथ अश्मिता पहली बार रैंकिंग में टॉप 40 में जगह बनाएंगी। मई में 3 महीने तक चोट के कारण बाहर रहने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए BWF टूर में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात एथलेटिक्स पर। ओरेगन के यूजीन में अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने पुरुषों की ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 2.21 मीटर की अपनी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ कूद की बराबरी की। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसी प्रतियोगिता के पुरुष लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता शाहनवाज खान को बधाई दी है।
4: बसंत ने पहले 2.06 मीटर, फिर 2.12 मीटर और 2.17 मीटर की ऊंचाई पार की। इसके बाद 2.21 मीटर की शानदार जंप ने पोडियम पर उनकी जगह पक्की कर दी।
5: This is Basant's second attempt at 221. Yes! Oh, the cheers that came up there. He's got a lot of supporters in the crowd.
4: टॉप 3 एथलीटों में 2.21 मीटर की ऊंचाई पार की, लेकिन काउंटबैक नियम के आधार पर बसंत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके अंतर्गत अल्जीरिया के यूनिस अयाची ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि ब्रिटेन के ओटिस पूल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं शाहनवाज खान ने पुरुषों की लंबी कूद में 7.84 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद के साथ कांस्य पदक जीता। ये लंबी कूद में किसी भारतीय पुरुष का पहला विश्व स्तरीय पदक भी है। शाहनवाज ने पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए तीसरे राउंड में 7.84 मीटर की जबरदस्त जंप लगाई।

0: फिर पांचवें राउंड में 7.83 मीटर की जंप के साथ दुनिया के बेहतरीन एथलीटों के बीच अपनी जगह और पोडियम पर अपना स्थान बनाया। इटली के इंजोली ने 7.97 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मैक ग्रोडर ने 7.96 मीटर के साथ रजत पदक पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही भारतीय खिलाड़ियों ने 2021 की अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन कुल 3 पदकों की बराबरी कर ली है। प्रतियोगिता खत्म होने में अभी 1 दिन बाकी है और भारत के पास टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड कायम करने का सुनहरा मौका है। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलोग्राम का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर देश का मान बढ़ाया। वियतनाम के हुआंग थाच ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। लैंगस्टन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में भारत के निकी कालियांडा पुनाचा और इक्वाडोर के गोंजालो एस्कोबार की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पुनाचा और एस्कोबार की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने केंटकी के लेक्सिंगटन में अमरीकी जोड़ी आंद्रे इलागन और कार्ल पोलिंग को 6-7, 6-3, 11-9 से हराया। 1 घंटा और 42 मिनट चले इस मुकाबले में पहला सेट हारने के बाद पुनाचा और एस्कोबार ने बढ़िया तालमेल का परिचय दिया और दूसरा सेट जीतकर बराबरी हासिल की। तीसरे सेट के सुपर टाई ब्रेक में कोई भी जोड़ी 2 अंक से ज्यादा की बढ़त नहीं बना पाई और मुकाबला बराबरी पर बना रहा। हालांकि एक समय पुनाचा और एस्कोबार 7-9 के स्कोर के साथ हार के कगार पर थे। इसके बाद पुनाचा गोंजालो की जोड़ी ने लगातार 4 अंक हासिल करके मैच का पासा पलट दिया। इस दौरान उन्होंने 2 मैच पॉइंट बचाए और फिर शानदार वापसी करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुनाचा का ये 11वां एटीपी चैलेंजर डबल्स और 2026 सीजन का 5वां खिताब है। एटीपी चैलेंजर सर्किट में इस जोड़ी का ये पहला खिताब है। 31 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी पुनाचा ने जून में थाईलैंड के पुरचे इसारो के साथ जोड़ी बनाकर ओपन सोप्रा स्टेरिया दी लियोन का खिताब जीता था। इसके साथ ही इस साल की शुरुआत में साकेत मायनेनी के साथ बेंगलुरु ओपन 2 एटीपी चैलेंजर 50 और इसारो के साथ मिनोरका एटीपी चैलेंजर 100 और चेन्नई एटीपी चैलेंजर 50 भी जीतने की उपलब्धि उनके नाम है। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और अब बात हॉकी की भी कर लेते हैं। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 डिवीजन ए का खिताब अपने नाम कर लिया। इस टीम ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए रोमांचक फाइनल में हॉकी मध्य प्रदेश को 2-1 से हराया।
3: फाइनल में मनदीप केर केट्टा ने दूसरे मिनट में गोल करके ओडिशा को शुरुआती बढ़त दिलाकर मध्य प्रदेश पर दबाव बनाया। आखिरकार 37वें मिनट में सोहेल अली ने मध्य प्रदेश के लिए बराबरी का गोल किया। मुकाबले के 54वें मिनट में इस टीम ने कप्तान दीपक प्रधान के जरिए फिर से बढ़त हासिल कर ली। मध्य प्रदेश ने आखिरी पलों में एक और बराबरी का गोल करने के लिए जोर लगाया। हालांकि ओडिशा ने अपनी 2-1 की बढ़त बरकरार रखी। इस जीत के साथ हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा चैंपियन बन गया। वहीं तीसरे स्थान के मैच में हॉकी पंजाब ने शानदार अटैकिंग खेल दिखाते हुए हॉकी झारखंड को 6-3 से मात देकर कांस्य पदक अपने नाम किया। गुरविंदर सिंह ने 11वें मिनट में गोल दागकर पंजाब को बढ़त दिला दी थी। इसके बाद टीम के कप्तान जर्मन सिंह ने 34वें और 36वें मिनट में तेजी से 2 गोल किए। चरणजीत सिंह ने 52वें और 53वें मिनट में 2 गोल दागे, जबकि अजय पाल सिंह ने 41वें मिनट में गोल करके पंजाब के गोलों की संख्या पूरी की। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज गुजरात के हनोल से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 50वें संस्करण के अगुवाई की। ये कार्यक्रम नशा मुक्त भारत थीम और फिटनेस को हां कहें नशे को ना कहें संदेश पर केंद्रित था। संडे ऑन साइकिल को एक जन आंदोलन बताते हुए मनसुख मांडविया ने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री की फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने की पहल एक बड़े अभियान में बदल गया है। देशभर में 10,000 से अधिक स्थानों पर युवाओं ने साइकिलिंग के

0: माध्यम से ये संदेश पहुंचाया है।
1: संडे ऑन साइकिल की 85th एडिशन है। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी की फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सारे देश में 18,000 से अधिक स्थान पर युवाओं ने साइकिलिंग करके संदेश दिया है कि चलो नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के संदेश के साथ इस साइकिलिंग मूवमेंट आगे बढ़ रही है। देश के युवा उसके साथ जुड़ रहे हैं। आज मुझे खुशी है ग्रामीण क्षेत्र में भी साइकिलिंग का क्रेज आगे बढ़ रहा है।
0: इस दौरान खेल मंत्री ने खेल बजट और फुटबॉल के खेल में बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा की।
1: फुटबॉल बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। ISL इस बार भी होस्ट होगी। फुटबॉल क्लब नई बन रही है। सरकार ने 36,000 करोड़ का पैकेज दिया है, उसमें भी हमने एकेडमिक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए निर्णय करा है। अलग अलग डिसिप्लिन की एकेडमी को प्रोत्साहित करी जाएगी और ये एकेडमी में भी विशेष करके जो रिटायर्ड एथलीट है वही एकेडमी चालू करे, क्योंकि एथलीट स्वयं स्पोर्ट्स को जीता है और जो व्यक्ति स्पोर्ट्स को जीते है उसमें जज्बा होता है। इसका जज्बा को लाभ लेके हम मेडल टेली को आगे बढ़ाएंगे।
0: और अब बात फुटबॉल पर भी कर लेते हैं। 135वें डूरंड कप फुटबॉल के ग्रुप ई मैच में शिलोंग लाजोंग FC ने मुंबई FC को 5-0 से हराया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कल जीत से शिलोंग लाजोंग FC के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं। एवर ब्राइटसन साना ने 2 गोल किए, जबकि अभय गुरंग ट्रमेकी लामुरोंग और फिगो सिंडाई ने भी 2 गोल दागे। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत ने 3 दिवसीय अभ्यास मैच में श्रीलंका क्रिकेट एकादश को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 207 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 45 ओवर में 4 विकेट पर 214 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशेष जुड़ गए। विशेष, कैसा रहा टीम का प्रदर्शन? टीम कितनी तैयार है मुकाबले से पहले?
2: देखिए, अगर मुकाबले की बात करें प्रशांत, तो इस मुकाबला ये जो कोलंबो के मैदान पर खेला जा रहा है वहां पर श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, जहां उनके निशान मधुशंका और रविंदु रसंथा जैसे खिलाड़ियों ने ओपनिंग पार्टनरशिप करके ही उनको मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया था। 363 रन उन्होंने अपनी पहली पारी में बनाए थे
0: जी।
2: लेकिन जवाब में जब भारतीय टीम खेलने के लिए आई तो सिर्फ देवदत्त पडिक्कल एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत बड़ा स्कोर किया। हालांकि रविंद्र जडेजा ने उनका भरपूर साथ निभाया। तीसरी पारी में श्रीलंका सिर्फ 200 रन ही बना सकी 6 विकेट के नुकसान पर, और जवाब में भारत को 207 रन चेस करने थे, जो कि भारत ने बहुत ही आसानी से कर लिए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने शानदार खेल दिखाया।
0: रविंद्र जडेजा की आपने बात की, उनकी वापसी भी हो रही है और टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी भी हैं, कैसा रहा उनका प्रदर्शन और कितने तैयार है वो आगामी श्रृंखला के लिए?
2: जी, अब जिस हिसाब से उन्होंने प्रदर्शन किया है वो काफी तैयार नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहली पारी में 2 विकेट चटकाए थे। उसके बाद जब बल्लेबाजी करने का उनको मौका मिला तो उन्होंने 63 रन बनाए। साथ ही साथ रविंद्र जडेजा जो है दूसरी पारी में भी उन्होंने 2 विकेट लिए, हालांकि उनको बल्लेबाजी के लिए इतना ज्यादा मौका चौथी पारी में नहीं मिला और वो 22 रन पर रिटायर्ड हर्ट हो गए।
0: जी, उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम ने जिस प्रकार से इस अभ्यास मैच में प्रदर्शन किया है श्रृंखला में भी बेहतर प्रदर्शन करे।
2: जी बिल्कुल, और 15 अगस्त को भारत अपना ऐतिहासिक 600वां टेस्ट मुकाबला खेलेगा।
0: जी बिल्कुल, और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।

0: ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
2: To launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए आईआईटी आईएसएम आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को सीआईडी ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
1: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय निश्चित करना है।
2: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

0: यात्रा आज कम्बोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है, जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज़्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा, आंदोलन जारी रहेगा। JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड I am निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with medal winners of Commonwealth Games 2026, urges citizens to always cheer for Bharat. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country. Vice President and Prime Minister appeal to people to renew commitment to Viksit Bharat by joining this movement. Jharkhand government agrees to scrap JPSC preliminary exam over allegations of irregularities. Protesting students say agitation will continue. 3 JPSC members resign from their posts. Defence Minister Rajnath Singh asserts Operation Sindoor sent global message that India will go to any extent to protect its citizens with zero tolerance approach to terrorism. Pradhan Mantri Awas Yojana Urban has crossed major milestone with over 1 crore houses handed over to beneficiaries so far. And Typhoon Dolphin hits China's eastern coast, over 1300 flights cancelled while 3 lakh people relocated. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. Sharing a video message, Mr. Modi said that those who participate in sports will prosper in life and urge citizens to always cheer for Bharat.
3: Jo khelega, wo khelega. Always cheer for Bharat. Bharat Mata Ki. Jai. Bharat Mata Ki. Jai. Bharat Mata Ki. Jai.

0: We are here, all Indians, with a great spirit. We are going to support our nation, and I'm 100% sure we're going to make our nation proud.
1: Jai Hind.
2: The Indians world over have given their best to the nation of their profession and have contributed immensely to the growth of that particular nation.
3: On the Independence Day, the vibrant spirit of India resonates far beyond its geographical borders, pulsing through the hearts of millions of Indians scattered across every nook and corner of the globe.
2: From the bustling tech hubs of the Silicon Valley to the historic streets of Europe and the sands of the Middle East, the global Indian diaspora stands as a living testament to the nation's enduring legacy.
3: Distance only deepens their devotion. As the tricolor hovers proudly in foreign skies, it reflects the deep-rooted love, resilience and unity that binds every overseas Indian to their motherland.
2: The India's truest cultural ambassadors, seamlessly blending into new societies while fiercely preserving the sacred soil of their heritage in their souls.
3: No matter which part of the globe we Indians live in,
2: no matter what our age is, their collective voices join the symphony of a billion plus back home.
3: No matter where an Indian resides,
2: their heartbeat,
3: the heart of millions of overseas Indians,
2: will always echo the sacred rhythm of Jai Hind.
4: In the National Program features, you just heard the feature Echoes of Independence with Indians Around the Globe. Narration, Vaibhav Jyotsna Srivastav and Vidushi Watts. Script and production, Nitish Arora. A production of Akashvani Delhi for Central English Features Unit. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani. Please stay tuned in for our next broadcast that follows shortly.
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
6: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
7: जय।
6: भारत माता की
7: जय।
6: भारत माता की
7: जय।
5: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने

0: पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. Sharing a video message, Mr. Modi said that those who participate in sports will prosper in life and urge citizens to always cheer for Bharat.
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: India finished at the fourth spot on the medal table at the Games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July and the 2nd of August. Indian athletes won 39 medals including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage.

0: of the Har Ghar Tiranga campaign. On the occasion, he paid tribute to the brave freedom fighters. The vice president also attended the state function Tiranga concert on Vande Mataram, held at the auditorium of Dr. B.R. Ambedkar Institute of Technology. Raksha Mantri Rajnath Singh today said that Operation Sindoor sent a global message that India will go to any extent to ensure the safety of its citizens while protecting the Sindoor worn by the women of this country. The minister said this at the inaugural event of the Sindoor Maharaktadan Yatra blood donation camp at Base Hospital in New Delhi. The defense minister commended the Indian Defense Forces for eliminating terrorists and their handlers based in Pakistan and ensuring that those who dared to cast an evil eye on India faced their dire consequences. The Jharkhand government has reached an agreement on most of the demands of the students protesting against alleged irregularities in JPSC and JSSC examinations. State Minister Sudivya Kumar Sonu said the government has agreed to cancel the 14th JPSC preliminary examination and the 2023-25 backlog examinations. The minister stated this while talking to media following talks between the state government and protesting students today. The Ministry of Housing and Urban Affairs has said that over 1 crore and 25 lakh houses have been sanctioned so far under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban PMAYU and PMAYU 2.0. Of these, more than 1 crore houses have been completed and handed over to beneficiaries across the country, with around 1 crore of the houses allotted to women. During the Central Sanctioning and Monitoring Committee meeting chaired by the Housing and Urban Affairs Secretary Satyendra Singh, over 2,09,000 houses were sanctioned under the PMAYU 2.0 for economically weaker section families in 16 states and union territories. Indian weightlifter Maharajan Arumuga Pandian clinched the silver medal in the men's 65 kg category at the Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent, Uzbekistan today. Maharajan produced a new personal best total of 285 kg, lifting 128 kg in the snatch and 157 kg in the clean and jerk to secure the silver. Vietnam's Hong Thach claimed the gold medal with a total of lift of 291 kilograms, finishing 6 kilograms ahead of Maharajan. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार मुख्य समाचार ईरान ने कहा अमेरिका के साथ अभी सीधी बातचीत नहीं हो रही है केवल मध्यस्थों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है रूस और यूक्रेन ने रात भर एक दूसरे पर कई हमले किए कई नागरिकों की मौत और कई घायल इसराइल ने गजा के लिए अमेरिका की 15 सूत्री शांति योजना को खारिज किया डॉल्फिन तूफान चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा रेड अलर्ट जारी 1300 से अधिक उड़ानें रद्द 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक अपने नाम किया अब समाचार विस्तार से ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत नहीं हो रही बल्कि केवल मध्यस्थों के माध्यम से संदेश भेजे जा रहे हैं ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार श्री अराघची ने कहा है कि कई देश ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत फिर शुरू करने के लिए अनुकूल स्थिति बनाने के प्रयास कर रहे हैं उन्होंने यह भी कहा कि जब तक अमेरिका जून में दोनों पक्षों के बीच सहमति बने 14 बिंदुओं का पालन नहीं करता तब तक ईरान अमेरिका के साथ दोबारा बातचीत नहीं करेगा श्री अराघची ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से यातायात प्रबंधन के लिए एक कानूनी तंत्र पर ओमान के साथ समझौता लगभग पूरा होने वाला है हालांकि इस जलमार्ग को फिर से खोलना कुछ शर्तों के अधीन है इसमें अमेरिका द्वारा समझौते का उल्लंघन करने पर मुआवजे का भुगतान भी शामिल है रूस और यूक्रेन ने रात भर एक दूसरे पर हमले किए इन हमलों में दोनों देशों के कई नागरिकों की मौत और कई घायल होने की खबर है रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन के ड्रोन हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हो गए
2: क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया है कि हमले में 29 अपार्टमेंट भवन और 5 निजी मकान क्षतिग्रस्त हो गए यूक्रेन के खार्कियू में साल्तिवस के जिले में एक ऊंची आवासीय इमारत को रूस की मिसाइलों ने निशाना बनाया क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह साइनी हुबूब ने बताया कि इस हमले में 2 लोग मारे गए और 13 घायल हुए हैं स्थानीय अधिकारियों के अनुसार कालासागर में ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों में दर्जनों मिसाइल और

0: ड्रोन हमलों में 8 लोग घायल हो गए। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रात भर चले ड्रोन हमलों में यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में तेल डिपो तथा सैन्य आपूर्ति केंद्रों को निशाना बनाया गया है। मंत्रालय ने दावा किया कि रात भर में क्रीमिया, काला सागर और आजोव सागर के ऊपर यूक्रेन के 153 ड्रोन मार गिराए गए। विश्व दर्पण के लिए मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: दूसरी ओर यूक्रेन ने अमेरिका के साथ अपने पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली में मिसाइल इंटरसेप्टर की मासिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बेलग्रेड में संवाददाताओं को बताया कि अमेरिका मासिक आधार पर यूक्रेन को मिसाइल इंटरसेप्टर की आपूर्ति करेगा। उन्होंने कहा कि ये देश की हवाई सुरक्षा आवश्यकताओं से अब भी कम रहेगी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये बयान उनकी सर्बिया की पहली यात्रा के दौरान आया है। इस यात्रा का उद्देश्य आपसी सहयोग बनाना है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा के लिए 15 सूत्री योजना खारिज कर दी है। आज कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमास के पूरी तरह हथियार डालने तक इसराइल अपनी सेना वापस नहीं बुलाएगा। उन्होंने कहा कि इसराइल के अधिकारी आगे की कार्रवाई के बारे में अमरीका के साथ चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने पिछले महीने गाजा में हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण के उद्देश्य से एक समझौते पर सहमति जताई थी। हालांकि हमास ने कहा है कि हथियारों को सौंपने की प्रक्रिया इस शर्त पर आधारित है कि इसराइल अपनी सैन्य कार्रवाई रोके और गाजा से अपनी सेना वापस बुलाए। पिछले अक्टूबर में हुए प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते के बावजूद इसराइल का गाजा में हमला जारी है। रूस ने रणनीतिक समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए भारत और हिंद महासागर तक रेल मार्ग विकसित करने की संभावना तलाशने का प्रस्ताव किया है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराद खुसनुलिन ने कहा कि वैकल्पिक रेल मार्गों से होर्मुज और बास्फोरस जल डमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों से जुड़े जोखिम कम किए जा सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते भारत तक रेल संपर्क की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। प्रस्तावित रेल मार्ग से रूस को मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के रास्ते हिंद महासागर तक वैकल्पिक जमीनी संपर्क मिल सकता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की नीति परमाणु अप्रसार संधि NPT के दायरे में काम करने की है। नागासाकी के पीस पार्क में आयोजित स्मृति समारोह में 90 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सुबह 11:02 पर मौन रखा। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर फैट मैन नामक प्लूटोनियम बम गिराया था। इस हमले में उस वर्ष के अंत तक करीब 74,000 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले के बाद जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने तूफान के कारण देश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी, जबकि आसपास के क्षेत्रों में लगभग 3,00,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। ओरेगन के यूजीन में अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने पुरुषों की ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 2.21 मीटर की अपनी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ कूद की बराबरी की। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसी प्रतियोगिता की पुरुष लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता शाहनवाज खान को बधाई दी है। आइए सुनते हैं नवीन की रिपोर्ट।
2: बसंत ने पहले 2.06 मीटर, फिर 2.12 मीटर और 2.17 मीटर की ऊंचाई पार की। इसके बाद 2.21 मीटर की शानदार जंप ने पोडियम पर उनकी जगह पक्की कर दी। टॉप 3 एथलीटों में 2.21 मीटर की ऊंचाई पार की, लेकिन काउंटबैक नियम के आधार पर बसंत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके अंतर्गत अल्जीरिया के यूनिस अयाची ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि ब्रिटेन के ओटिस पूल ने कांस्य पदक

0: अपने नाम किया। वहीं शाहनवाज खान ने पुरुषों की लंबी कूद में 7.84 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद के साथ कांस्य पदक जीता। ये लंबी कूद में किसी भारतीय पुरुष का पहला विश्व स्तरीय पदक भी है। शाहनवाज ने पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए तीसरे राउंड में 7.84 मीटर की जबरदस्त जंप लगाई और फिर पांचवें राउंड में 7.83 मीटर की जंप के साथ दुनिया के बेहतरीन एथलीटों के बीच अपनी जगह और पोडियम पर अपना स्थान बनाया। इटली के एंजोली ने 7.97 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मैक ग्रोडर ने 7.96 मीटर के साथ रजत पदक पर कब्जा जमाया।
1: इसके साथ ही भारतीयों ने 2021 की अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन, कुल 3 पदकों की बराबरी कर ली है। प्रतियोगिता खत्म होने में अभी एक दिन बाकी है और भारत के पास टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड कायम करने का सुनहरी मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 39 पदक जीतकर तालिका पदक में चौथे स्थान पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ अभी सीधी बातचीत नहीं हो रही है, केवल मध्यस्थों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। रूस और यूक्रेन ने रात भर एक दूसरे पर कई हमले किए, कई नागरिकों की मौत और कई घायल। इसराइल ने गजा के लिए अमेरिका की 15 सूत्री शांति योजना को खारिज किया। डॉल्फिन तूफान चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, रेड अलर्ट जारी, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3,00,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता, शाहनवाज ने लंबी कूद में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashvani. I'm Abhineet Shukla with The World News. The headlines. Iran says it is not engaged in direct talks with US currently and exchanging messages only through intermediaries. Russia and Ukraine trade overnight strikes resulting in death of several civilians and injuries on both sides. Israel rejects United States 15-point peace plan for Gaza. Typhoon Dolphin hits China's eastern coast, red alert issued, over 1,300 flights cancelled, 3 lakh people relocated. And at World Athletics Under 20 Championships, Basant Kumar Meghwal wins silver in high jump while Shahnawaz Khan bags bronze in long jump. And now the news in detail. Iranian Foreign Minister Sayyed Abbas Araghchi today said his country is not currently engaged in direct negotiations with the United States while messages between the two sides are being exchanged through intermediaries. According to his statement carried by Iranian state media, Mr. Araghchi said several countries were continuing efforts to create conditions for the resumption of negotiations between Tehran and Washington. He said Tehran would not return to direct talks with the US until Washington ends its violations of the 14-point Memorandum of Understanding signed between the two sides in June. Iran-backed armed group Houthi in Yemen attacked a crucial port on the Red Sea, killing 7 people, including 4 troops, while 15 civilians were also injured. Meanwhile, Houthi also claimed responsibility for a drone attack on an Aramco refinery in Saudi Arabia's Jazan. Houthi spokesperson Yahya Sari said the group targeted the oil facility in Saudi Arabia in response to alleged violations of Yemeni airspace over the provinces of Hajja and Sada by Kingdom's drones. Russia and Ukraine have exchanged overnight strikes, resulting in deaths of several civilians and injuries on both the sides. In Russia's Belgorod region, Ukrainian drone strikes killed 5 people and injured around 2 dozen others. The regional authorities said the strikes damaged 29 apartment buildings and 5 private houses. In Ukraine, Russian missile strikes

10:31 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम हर सिंगार आपके साथ, मैं विकास।

जी, यहाँ पर बात हो रही है भूलने की और भुला देने की, लेकिन इंसानों के लिए यानी हमारे और आपके लिए कई दफा ये भूलना और भुलाना इतना आसान नहीं होता। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ चीजें हमारे जहन में वापस लौट कर आ ही जाती हैं। कुछ चीजों का वापस आकर लौटना भी कभी कभी जरूरी होता है, और कभी कभी जरूरी होता है कि हम उन चीजों को भूल जाएं। तो आज बात इसी भूलने और भुला देने की, कुछ चीजें याद दिलाने की, क्योंकि भूलना और भुलाना, जैसे कि मैंने कहा, कि इंसानी जिंदगी का तालमेल बिठाने के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे बचपन में हम बहुत कुछ भूलना हमारे लिए आसान होता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं बहुत कुछ हमारे लिए भुला पाना मुश्किल होता है। जैसे किसी का हमारे बारे में कुछ कह देना, बहुत सारे लोग इस चीज को भुला नहीं पाते, उन्हें इस बात को भुलाने में अक्सर वक्त लगता है।

जी, आज प्रोग्राम में कुछ ऐसे ही गाने जो शायद कहीं ना कहीं हमसे भूलने भुलाने की बात करते हैं। कुछ बातें ऐसी भी करते हैं कि कोई सामने वाला हमें इतनी आसानी से कैसे भूल सकता है।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े आप और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार। बात हो रही थी भूलने की। वैसे सोचिए ना, हम जब घर पर होते हैं और घर में रखी हुई कोई छोटी सी छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज रख कर भूल जाते हैं, तो कई दफा घर का सामान इधर से उधर उथल पुथल कर देते हैं। सिर्फ सामान की बात नहीं है, बात अगर गाने की भी करूं तो हमारा जहन कई दफा उस गाने के पीछे दौड़ता रहता है कि आखिरकार ये धुन किस गीत की थी जिसे हम भूल चुके हैं, और कोशिश करते हैं उस धुन को बार बार याद करने की ताकि वो जो भूला हुआ अंश है वो हमें याद आ जाए। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार कुछ भूलना नकारात्मक ही हो, कई दफा बहुत अच्छा भी होता है कुछ चीजों का भूल जाना। जैसे अगला गीत जहां लता मंगेशकर ये कह रही हैं कि वो कुछ ऐसा भूल चुकी हैं और उसके पीछे की वजह क्या है, हम और आप खुद सुन लेते हैं।

रिश्तों में भी बहुत कुछ भूलना और ना भूलना बहुत जरूरी होता है और उनका तालमेल रखना भी बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों की छोटी छोटी शरारतें अगर हम सारी याद रखने लग जाएं तो आफत मच जाएगी, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि उन बच्चों की कुछ कुछ छोटी छोटी शरारतों को भुला दें। लेकिन कुछ चीज़ों को याद दिलाना भी हमारे इन्हीं रिश्तों की एक खूबी होती है। जैसे कोई अचानक से आपका अपना आपको ये याद दिलाए कि आज तुम्हारी फ्लाइट है, कहीं तुम दवा खाना तो नहीं भूले। जी, भूलना तो है यहां पर भी शब्द, लेकिन वो भूलना याद दिलाने के लिए है।

लता जी की आवाज थी और इस आवाज के सामने न जाने क्यों बहुत कुछ मौन हो जाता है। कई बार कुछ लोग हमारे जिंदगी में आते हैं और अचानक से धीमे कदमों से चले भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जब जिन्हें हम भूलने की कोशिश करते हैं उन लोगों को उनका नंबर मिटा देते हैं, तस्वीरें हटा देते हैं, पुराने संदेश तक डिलीट कर देते हैं, लेकिन एक मौका ऐसा आता है जब मान लीजिए वो सड़क, एक खुशबू या कोई गाना हमारे जहन में आ जाए तो वो इंसान एक बार फिर हमारे सामने खड़ा हो जाता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़ से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे

0: चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. India finished at the 4th spot on the medal table at the Games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July to 2nd of August. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage.

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls on your mutual fund-related queries. But do remember that we do not address fund-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Along with my co-anchor Sonu Sood, I am Sarabjeet Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106. श्रोताओं, इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी, धन्यवाद.
1: और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 12,900 करोड़ रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त. Global crude oil prices tumbled last week, and domestic investors to focus on inflation data, corporate earnings results, and geopolitical developments for Q's next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त के पहले सप्ताह के दौरान भारतीय शेयर बाजार में 12,900 करोड़ रुपए से अधिक का किया निवेश. कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में पिछले सप्ताह आई गिरावट और घरेलू निवेशकों का ध्यान अगले सप्ताह संकेतों के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़ों, कंपनी आमदनी से जुड़े नतीजों और भू राजनीतिक गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा.
0: And before we go any further in the program, may we once again remind our listeners, views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence.

0: intelligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सरब जी.
0: जी,
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई अगस्त के पहले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध खरीदार बने रहे. ताजा डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इस महीने अभी तक घरेलू शेयर बाजार में 12,921 करोड़ रुपए का निवेश किया है. जुलाई में खरीदारी में आई गति अगस्त में भी जारी रही है. ये तेजी घरेलू आर्थिक आंकड़े और कंपनियों की तिमाही आमदनी मजबूत रहने के बल पर आई है. इस बीच ऋण बाजार में निवेश का रुख मिला जुला रहा है. अभी तक अगस्त में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जनरल लिमिट की श्रेणी में ऋण प्रतिभूतियों में 622 करोड़ रुपए निवेश किए हैं. हालांकि फुली एक्सेसिबल और वॉलंटरी रिटेंशन श्रेणियों से आलोच्य अवधि के दौरान 350 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी हुई है. और अब आज के हमारे पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं चेन्नई से काशीनाथ. आपका स्वागत है मार्केट मंत्र में. सवाल पूछे.
2: गुड इवनिंग मार्केट मंत्र जी.
1: जी गुड इवनिंग.
2: मेरा सवाल है, मेरा पास दो फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसे कि क्वांट फ्लेक्सी कैप और जेम फ्लेक्सी कैप, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए. फंड अच्छा है कि बुरा है? धन्यवाद
3: जी. देखिए, कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड्स काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं. फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किस टाइप के मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. और किसी भी फंड को अच्छे या बुरे आकलन के लिए आप बहुत छोटे अवधि के रिटर्न्स के ऊपर उस पर अपनी कोई भी धारणा ना बनाएं. थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखें, और अगर फंड थोड़ा हाल फिलहाल में अंडर परफॉर्म करता भी है तो उससे बहुत ज़्यादा हताश ना हो, उसको थोड़ा टाइम दें. तो आप इन दोनों फंड्स का आकलन करें, थोड़ा 3-5 साल के रिटर्न्स देखें कि अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कैटेगरी में बाकी पीयर्स के अगेंस्ट कैसे कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपना निर्णय लें. बहुत जल्दी ना करें बेचने की, क्योंकि अब इक्विटी में भी टैक्स लगता है. तो अगर आप कोई भी जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं फंड स्विच करने का, तो आपके लिए एक टैक्स का बड़ा कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है. तो डोंट बी इन अ हरी.
1: सो आशुतोष जी, सेबी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें कुछ तथ्य आए हैं जिन पर हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे. उसमें कहा गया है कि एसआईपी को ज्यादा से ज्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो एडॉप्ट कर रहे हैं, और जो अकाउंट्स हैं वो भी बड़े हैं, और जो वैल्यू है अगर हम पिछले वित्त वर्ष में देखें तो 40 लाख अकाउंट एड हुए टोटल नंबर में, और एवरेज नेट मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी 25.8% बढ़ी. तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये क्या भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भरोसा बढ़ रहा है निवेशकों का?
3: जी बिल्कुल. मेरी राय में म्यूचुअल फंड्स एक रिटेल इन्वेस्टर के इक्विटी मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने का, ब्रॉडली इक्विटी और डेट मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने का एक बेहतरीन साधन है. वेल रेगुलेटेड, वेरी ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये फंड्स आते हैं. रिटेल इन्वेस्टर्स की अच्छे से यहाँ पे प्रोटेक्शन की व्यवस्था है. तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा सेटअप है. म्यूचुअल फंड्स एक काफ़ी रिलायबल और रोबस्ट वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, और इनमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ना हाल फिलहाल के सालों में ये एक अच्छा संकेत है. और एसआईपी और भी अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में जिस तरह के उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, तो अगर इन्वेस्टर्स एक साथ अपना पैसा ना लगाकर रेगुलर डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो वो मार्केट के उतार चढ़ाव से बहुत जल्दी निराश या परेशान नहीं होते. तो एसआईपी एक बेहतरीन साधन है मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का. दूसरा ये भी होता है कि जब भी मार्केट गिरती है, एसआईपी निवेशक आमतौर पर देखा गया कि बहुत जल्दी मार्केट से भाग नहीं खड़े होते मार्केट फॉल में, और ये लंबे समय में इक्विटी मार्केट से रिटर्न बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप डाउन मार्केट में सब कुछ बेचकर भाग ना जाएं. तो एसआईपी उसमें भी काफी हेल्प करता है रिटेल इन्वेस्टर्स की बने रहने में मार्केट के उतार चढ़ाव के माहौल में. तो बहुत अच्छे ट्रेंड्स हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, अगर ये बरकरार रहता है, तो भारतीय निवेशकों, रिटेल आम निवेशक के लिए ये काफी लाभदायक हो जाने में सक्षम है.
0: आशुतोष, वी विल कम बैक टू यू ऑन दैट. मीनवाइल वी कनेक्ट विद आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम मुंबई. अमित जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
4: नमस्ते मैडम, मैं अमित बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र बारामती से.

0: जी
1: मेरा सवाल है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का NFO न्यू फंड ऑफर एक म्यूचुअल फंड है, उसमें मैंने अभी इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो अच्छा है या नहीं जरा बताइए। और दूसरा सवाल, अब मैं इंडिया फर्स्ट के बारे में पूछ सकता हूँ क्या मैडम?
0: सॉरी,
1: हेलो, इंडिया फर्स्ट में भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 5 साल के लिए, हर साल मैंने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ और 5 साल तक वो पैसे भरना है, 7 साल के बाद मुझे मिलेगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अच्छा है या नहीं ये भी बताइए, थैंक यू।
2: आशुतोष जी, श्रेणी के हिसाब से आप बता सकते हैं।
3: जी, तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के आपने NFO की बात करी, देखिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आम तौर पर आप NFO में निवेश करने से बचें। अभी आपने लगा दिया है तो देखिए नए फंड के बारे में कुछ भी जानकारी देना कहना मुश्किल होता है जब तक कि उसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बिल्ड होता कि फंड मैनेजर किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्या उनका पोर्टफोलियो बनाने का स्ट्रैटेजी रहता है, तो नए फंड के बारे में कुछ भी टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आम तौर पर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि बहुत सारे अच्छे रनिंग, वेल रनिंग फंड्स, लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स उपलब्ध हैं आपके पास। प्रेफर करिए कि नया फंड अगर कुछ ऐसा खास नहीं दे रहा है, जो कि एग्जिस्टिंग फंड से आपको जो इन्वेस्टमेंट नीड पूरी नहीं हो रही है, तो ही आप NFO की तरफ जाएं, अदरवाइज आप लॉन्ग स्टैंडिंग फंड्स में ही अपना निवेश करें। बहरहाल इस फंड में क्योंकि आप निवेश अभी कर चुके हैं तो अब आप इसको देखिए, थोड़ा धैर्य से फंड मैनेजर को पोर्टफोलियो बनाने दीजिए, किस टाइप का वो परफॉर्म करता है, कम से कम साल डेढ़ साल बाद आप सोचिएगा इस बारे में कि ये फंड का क्या करना है।
2: दिल्ली से हमारे अगले श्रोता के मदन जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें।
4: नमस्कार, मार्केट मंत्रा ठीक हूँ, मैं
2: आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप यदि अपना स्थान चेंज करें। थोड़ी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, अगर आप दोबारा हमें फिर फोन कर सकें फिर से।
4: आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर।
2: हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए बताइए।
4: हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि मैंने 2-3 फंड में शिफ्ट किया हुआ 5-5 हजार के, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो उसमें HDFC मिड कैप ऑपर्चुनिटी फंड, निप्पॉन मल्टी कैप फंड, इन सब तो मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन एक्सिस लार्ज कैप फंड उसमें मेरा CAGR सिर्फ 7% 8% आ रहा है, तो पिछले 4 साल से मेरा शिफ्ट चल रहा है, मैं इसको कंटिन्यू करूँ या डिसकंटिन्यू करूँ, मेरा ये प्रश्न।
3: जी देखिए, पहली बात तो आपका ओवरऑल आपने, आपकी स्ट्रेटजी सही है कि आपने डाइवर्सिफाइड फंड्स को चुना है, आपके पास एक मल्टी कैप फंड है, एक लार्ज कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, तो ओवरऑल आपने बहुत ज्यादा सेक्टर थीमेटिक फंड्स की तरफ आप नहीं गए हैं, ये तो इसमें मैं आपकी सराहना करूंगा कि आपकी चॉइस ऑफ कैटेगरी ऑफ फंड्स अच्छा है। एक्सिस लार्ज कैप पिछले कुछ साल थोड़े निराशाजनक रहे हैं इस फंड के लिए जरूर, क्योंकि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं दे पाए हैं, तो अगर आप काफी निराश है इस फंड से तो आप अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सकते हैं।
5: वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, दिनेश जी सवाल पूछें।
6: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
5: जी,
6: मेरे दो क्वेश्चन हैं, एक तो ये है कि जब गोल्ड फंड और सिल्वर फंड बढ़ते हैं या कम होते हैं तो डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेज जो है वो गोल्ड या सिल्वर फंड या ETF के जो परसेंटेज इंक्रीज है वो अलग अलग क्यों दिखाते हैं जबकि शुड बी सेम। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गोल्ड फंड है वो उसको FOF कहते हैं, फंड ऑफ फंड्स, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि उस हम इन्वेस्टर जो है उसके भी एक्सपेंस बियर करता है और वो फंड जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है उसका भी एक्सपेंस होता होगा, वो भी बियर करता है, क्योंकि हमें जो पता चलता है केवल फर्स्ट फंड का ही एक्सपेंस रेशो पता चलता है, दूसरे फंड का एक्सपेंस रेशो नहीं पता चलता है। थैंक यू।
3: जी, तो पहला सवाल आपका कि गोल्ड और सिल्वर फंड्स में जब सारे ही ये फंड्स गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो इनके प्राइस में या इनके रिटर्न्स में डिफरेंस क्या होता है, काफ़ी अच्छा सवाल है, आपने काफ़ी आपने ऑब्जर्व किया उस बेसिस पे आप ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, इनका जो आपको रिटर्न मिलता है वो डिपेंड करता है मार्केट के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। तो जो ETFs होते हैं वो ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में ये जरूरी नहीं है कि जो अंडरलाइंग NAV है फंड का, क्लोजिंग प्राइस या फंड्स का ट्रेडेड

0: प्राइस एनएवी के आसपास हो। काफी बार देखा गया है कि फंड्स प्रीमियम पे या कभी कभी डिस्काउंट पर भी ट्रेड करते हैं, तो जो इन्वेस्टर के रिटर्न्स होते हैं वो इन पर उनके ट्रेडेड प्राइस पर निर्भर करते हैं, ना कि अंडरलाइंग एनएवी पर, तो इस वजह से इनके रिटर्न्स डिफर कर जाते हैं। दूसरी बात, जो गोल्ड फंड ऑफ फंड्स होते हैं वो बेसिकली आप देखिएगा कि हर फंड कंपनी के पास एक ईटीएफ वेरियंट होता है और एक एफओएफ वेरियंट होता है। एफओएफ वेरियंट सिंपली ये करता है कि आपका पैसा जो कलेक्ट करता है वो उठाकर ईटीएफ में लगा देता है, गोल्ड उन्हीं का जो गोल्ड ईटीएफ होता है। तो यहां पर भी जो आपको एनएवी डिक्लेयर होती है फंड ऑफ फंड्स की, वो ईटीएफ के ट्रेडेड स्टॉक मार्केट प्राइस पर निर्धारित होती है, इसलिए इनके रिटर्न्स डाइवर्ज करते हैं अलग अलग फंड में। कुछ फंड्स में जिनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी अच्छे होते हैं, प्रीमियम या डिस्काउंट कम रहता है, एनएवी के क्लोज ट्रेड करते हैं, वो काफी इन्वेस्टर सेंट्रिक है, मतलब वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अच्छी बात है, और उनके रिटर्न्स एनएवी के रिटर्न्स के आसपास रहते हैं। लेकिन जो फंड्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होती है इसलिए प्राइस काफी वेरी कर जाता है, प्रीमियम या डिस्काउंट पे रहता है, उनके रिटर्न्स में आपको काफी बार कुछ उठापटक दिखेगी, एनएवी के क्लोज नहीं होगा। और आपका ये आंकलन बिल्कुल सही है कि क्योंकि ये एफओएफ्स ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो एफओएफ के एक्सपेंस की लेयर होती है वो ईटीएफ के एक्सपेंस के ऊपर होती है। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं होता है, एक मामूली सा एक्स्ट्रा लेयर होता है, क्योंकि एफओएफ अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पैसे इकट्ठा करकर, आप जो पैसे उसमें निवेश करते हैं वो पैसा इकट्ठा करके ETF में लगा देता है, वहां पे और कोई काम नहीं हो रहा है, कोई और फंड मैनेजर का ऐसा कोई रोल नहीं होता है खास, तो वो एक्सपेंस की लेयर काफी थिन होती है, लेकिन जरूर होती है। तो अगर आप एक्सपेंस देखना चाहते हैं तो आप किसी भी फंड कंपनी के ETF का और FOF का, आप दोनों का अगर एक्सपेंस देखेंगे और उनको ऐड कर देंगे तो आपको थोड़ा अंदाज लगेगा कि आप टोटल एक्सपेंस कितना दे रहे हैं। आपको कौन सा चुनाव करना चाहिए, देखिए अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में, आप वैसे भी स्टॉक्स में निवेश करते हैं, आपके पास डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप ETF की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक गोल्ड फंड में निवेश करने के लिए, अगर आप आपके लिए कन्वीनियंट ज्यादा होगा कि आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्मेट में FOF ही खरीदें, लेकिन अगर आप आमतौर पर वैसे भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप जरूर ETF की तरफ भी जा सकते हैं। हाँ, ETF खरीदते हैं तो जरूर आप खरीदने से पहले देखिए कि क्या ये यूनिट्स NAV से बहुत ज्यादा डिस्काउंट या प्रीमियम पे हैं। अगर प्रीमियम पे हैं तो आप समझिए कि आप एक्स्ट्रा खर्चा उठा रहे हैं। अगर 10 रुपए की एनएवी की चीज मार्केट में 12 रुपए पर ट्रेड हो रही है, तो आप ये मानिए कि 10 रुपए का सामान आप 20% महंगा खरीद रहे हैं। तो ये इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एनएससी की वेबसाइट पे हर फंड की INAV बताई जाती है। INAV होता है रियल टाइम एनएवी इस फंड की क्या होनी चाहिए, उससे आप क्लोजिंग प्राइस को कंपेयर कर ये आप निर्धारित कर सकते हैं।
1: और अब शंकर भोपाल से हमें कॉल कर रहे हैं। शंकर जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें।
2: मेरा पहला सवाल बड़ा जनरल है, क्या एक फंड हाउस में हम दो बैंक डिटेल्स ऑपरेट कर सकते हैं क्या, सो दैट मेरी जब मर्जी हो जहां से मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ या जिधर मैं पैसा रखना चाहूँ, मेरा ही अकाउंट है दोनों, क्या दो अकाउंट एक ही म्यूचुअल फंड हाउस में, जैसे कोटक या टाटा या कोई भी, अपरॉड कर सकते हैं क्या। दूसरा सवाल मेरा है सर, मेरा एक्चुअली कुछ इन्वेस्टमेंट टाटा में है, टाटा म्यूचुअल फंड, और कुछ एक्सिस में है, क्या इसमें कुछ अच्छे फंड हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे मिड कैप हुआ में की कैटेगरी में हुआ या लार्ज एंड मिड कैप हुआ एक्सिस में हुआ, तो इसमें कोई अच्छे फंड एक्सिस और टाटा, इन दो में मेरा, तो बता सकते हैं क्या प्लीज, थैंक यू।
0: आपका पहला सवाल, क्या दो बैंक अकाउंट में ऑपरेट कर सकते हैं सेम AMC में, जी बिल्कुल। देखिए म्यूचुअल फंड्स में जो भी आपका इन्वेस्टर डिटेल होता है वो फोलियो लेवल पर मैप होता है, आपकी नॉमिनेशंस, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीजें पर फोलियो होती हैं। तो आप अगर सेम फंड में भी दो अलग अलग फोलियो से आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये पॉसिबल है कि आप दोनों फोलियो में अगर अलग अलग बैंक अकाउंट से आपने इन्वेस्ट किया है तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, आप बिल्कुल दो अकाउंट से मैनेज कर सकते हैं। बस ये आप ध्यान रखें कि जब भी आप किसी फोलियो में रिडम्पशन डालेंगे तो पैसा हमेशा उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो उस फोलियो पे मैप्ड है। ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, क्योंकि पैसा हमेशा निवेशक के खाते में ही जाएगा और उसी खाते में जाएगा जो आपने अपने फोलियो में मैप किया हुआ है। तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में मैप करना, तो ये फैसिलिटी आपके पास पॉसिबल है, ये फ्लेक्सिबिलिटी, और ये निर्णय आपका है। दूसरा, टाटा एक्सिस, देखिए मैं आपको राय दूंगा कि बहुत ज्यादा किसी एक AMC से आप के लिहाज में ना देखें, आप पहले देखिए कि आपका निवेश की जरूरत क्या है और किस तरह का फंड आपके लिए सूटेबल रहेगा, उसके बाद आप उस कैटेगरी के फंड्स में चुनाव करें। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं होना चाहिए कि टाटा या एक्सिस या कोई और AMC, स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि आपकी निवेश की जरूरत क्या है और उसके लिए सही फंड कौन सा है, वहां से अपने फंड के चुनाव की शुरुआत करें।

0: लेट्स आस्क जितेंद्र फ्रॉम जयपुर व्हाट हिज क्वेश्चन इज.
1: हाँ हेलो सर, जैसे इतना दिन मार्केट में सुनने के बाद ऐसा हमको लगा कि नए निवेशक के लिए सबसे पहले कोई इंडेक्स फंड ले या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले, तो क्या अगर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के जगह इक्विटी सेविंग ले वो भी चलेगा, और निफ्टी 50 या जैसे कोई भी इंडेक्स फंड के जगह मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ले तो क्या चलेगा क्या नए निवेशक के लिए?
2: जी, पहला आपने पूछा इक्विटी सेविंग्स. देखिए, इक्विटी सेविंग्स आप ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना होगा. इक्विटी सेविंग्स फंड में आप मानिए कि आपका करीब 35-40% पैसा ही इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर आपको मिलता है. बाकी जो इक्विटी का एक्सपोजर इन फंड्स में होता है वो डेरिवेटिव्स के जरिए हेज्ड रहता है, तो उसमें आपको मार्केट के रिटर्न्स, मार्केट गेन्स नहीं मिलते हैं. तो इक्विटी सेविंग्स फंड्स आमतौर पर कंजर्वेटिव निवेशक जो एक मॉडेस्ट रिटर्न विद मॉडेस्ट रिस्क की उनकी अभिलाषा रहती है, रेगुलर इनकम सीकर्स हैं, उनके लिए इक्विटी सेविंग्स को आमतौर पर देखा जाता है कि एक अच्छी कैटेगरी माना जाता है. तो अगर आपको मॉडेस्ट रिटर्न्स चाहिए तो आप इक्विटी सेविंग्स की तरफ जा सकते हैं. देखिए, शुरुआती निवेशक के लिए मेन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स इसीलिए ही रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि जिन नए निवेशक हैं जिनको इक्विटी मार्केट्स के उतार चढ़ाव का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनके निवेश करते ही अगर मार्केट 20-25% कभी गिर जाती है तो वो निवेशक काफी चांस होता है कि वो हताश होकर मार्केट को छोड़कर चले जाएंगे और फिर जिंदगी में शायद कभी वो इक्विटी मार्केट्स में वापस मुड़कर इन्वेस्ट नहीं करेंगे. तो इस पॉसिबिलिटी से बचे रहने के लिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि इनमें 25% करीब पैसा आपका डेट में लगा रहता है. तो हमेशा ही जब भी मार्केट गिरती है, फंड्स मार्केट से कुछ कम गिरते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है नए इन्वेस्टर्स को. बाकी ये एडवांटेज इक्विटी सेविंग्स फंड में भी मिलेगा क्योंकि उनमें तो इक्विटी और भी कम होता है, लेकिन हाँ फिर आपको रिटर्न्स भी उनसे कम मिलेगा. दूसरा आपका सवाल, इंडेक्स फंड में क्या मिड कैप इंडेक्स फंड की तरफ जा सकते हैं? फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए मेरी सलाह होगी नहीं, इसी रीजन से क्योंकि मिड कैप फंड्स में काफी वॉलिटिलिटी रहेगी. अगर मार्केट गिरती है तो काफी धड़ाम से गिर सकते हैं मिड कैप्स. तो सिर्फ इस रीजन से मैं आपको सलाह दूंगा कि एज अ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मिड कैप में इन्वेस्ट करने से बचें.
3: और असम से सुकृत है हमारे अगले कॉलर, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए.
4: गुड इवनिंग मैडम.
3: जी गुड इवनिंग.
4: जी मेरा सवाल ये है कि हमने चिल्ड्रेन बेनिफिट फंड मतलब SBI का वो म्यूचुअल फंड SIP किया था 4000 करके.
3: जी
4: तो उसमें से ये चिल्ड्रेन फंड ये मेरे लिए कैसे रहेगा, बच्चे के लिए मतलब सही रहेगा या नहीं रहेगा? और उसके लिए मेरे पास कोई बॉन्ड पेपर तो नहीं है अभी, तो उसके लिए कौन सा कैसे मेरे को बॉन्ड पेपर डाउनलोड करके मतलब हार्ड पेपर रखना है, यही मेरा सवाल है.
2: जी, बच्चे के लिए निवेश किया है, लंबे समय का निवेश है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है. लंबे समय के लिए आप धैर्य के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं. ये एक इक्विटी फंड है, आप ये मानकर चलिए कि इक्विटी मार्केट्स के उतार चढ़ाव के साथ साथ ये जब मार्केट गिरेगी तब तब ये फंड भी गिरेगा. तो अगर आप वो उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं उससे आप बहुत हताश नहीं होंगे. लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए आप रख सकते हैं. आपको एक जैसे मैं समझ पाया हूं, देखिए म्यूचुअल फंड्स में कोई बॉन्ड पेपर इस तरह से या सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप आपको नहीं मिलता है जैसे कि बॉन्ड्स में होता है. आप म्यूचुअल फंड कंपनी जिसमें भी आपका SBI में है तो आप SBI के इन्वेस्टर सर्विसेज में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ईमेल कर दें. आपके पास ईमेल पे आता भी होगा, अगर आपने अपने फोलियो में अपना ईमेल मैप किया हुआ है तो काफी संभावना है कि आपका जब जब भी इसमें निवेश होता है SIP इंस्टॉलमेंट जाती है, आपको एक स्टेटमेंट ईमेल करी जाती होगी. लेकिन अगर वो नहीं आ रही है तो आप SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाएं, वहां आपको इन्वेस्टर सर्विस सेंटर का नंबर मिलेगा. वो नंबर डायल करके आप उनको अपना फोलियो या कुछ जानकारी वो मांगेंगे और आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपको एक स्टेटमेंट इशू कर दें, आपको वो ईमेल पे मिल जाएगा.
3: हाँ, वो बॉन्ड मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी बॉन्ड आपको लगता है फिजिकली होना चाहिए?
2: तो म्यूचुअल फंड्स में ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं इशू किया जाता बॉन्ड्स की तरह. तो स्टेटमेंट, आपका जो स्टेटमेंट होता है वही आपका ओनरशिप का एंटाइटलमेंट होता है.
0: लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली. विनोद जी सवाल पूछें.
5: पूरी मार्केट मंत्रा टीम को मेरी तरफ से नमस्कार.
0: जी नमस्कार.
5: मेरी एक्सपर्ट टीम से मेरा ये सवाल है कि रिबैलेंसिंग के बारे में, हम जैसे रिबैलेंसिंग करते हैं ना, तो उसमें एक तो टैक्सेशन का इशू आ जाता है और दूसरा वो जो फंड फिर हमारे सेविंग अकाउंट में आ जाता है वहां से खर्च हो जाता है. तो इसका कोई दूसरा रास्ता है कि टैक्सेशन से कैसे बचा जाए? और अगर हम लंबे समय तक रिबैलेंस ना करें तो इसका हमारी रिटर्न पे क्या प्रभाव पड़ता है? और एक सवाल और है कि अगर एक पर्टिकुलर फंड

0: हाउस का हम स्विच करते हैं तो उसी फंड हाउस के सारे बाकी स्कीम्स दिखाता है वो। अगर मुझे किसी दूसरी फंड हाउस में जाना है तो कैसे करते हैं, स्विच करने में दिक्कत आती है?
1: जी देखिए, पहला सवाल आपका टैक्सेशन को लेकर, देखिए टैक्सेशन एक हकीकत है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, आपको ये देखना है कि आप रीबैलेंसिंग अगर आप डिसिप्लिन से करते हैं तो आप टैक्स से बच सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आप बहुत जल्दी जल्दी अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस ना करें। शायद साल में आप अगर एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, रीबैलेंस करते हैं, तो मेरा ख्याल वो पर्याप्त है। और अपना कोई रूल बनाइए कि जब भी आपकी एसेट एलोकेशन 7-10% से डेविएट करेगा तभी आप रीबैलेंस करेंगे, और साल में एक बार करेंगे। और रीबैलेंसिंग के लिए फिर आप वही फंड्स यूज करिए जिनमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आते हैं, वही यूनिट्स वही फंड्स के साथ आप करें। आपके पास 1,25,000 तक का एनीवेज टैक्स एग्जम्पशन है इक्विटी में। तो अगर आप ये सारे टूल्स यूज करते हैं, और उसके बाद आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अपनी रीबैलेंसिंग को, आप अगर किसी एक साल में रीबैलेंस करना पड़ रहा है, मार्केट में इतना उठापटक हुआ है कि आपको रीबैलेंस करना पड़ेगा, तो दो अगर आप फाइनेंशियल ईयर में कुछ आप मार्च में अगर यूनिट्स बेचते हैं, कुछ अप्रैल में बेचते हैं, तो आपको दो फाइनेंशियल ईयर का 1,25,000 रुपए का कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो 2,50,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप की चीजें आप फॉलो कर अपना टैक्स मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि अगर आप रीबैलेंस नहीं करते, तो देखिए आप रीबैलेंस अगर नहीं करते, मानिए आप 70% इक्विटी 30% डेट आपने अपने लिए एसेट एलोकेशन निर्धारित करी थी जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे थे, अब अगर इक्विटी मार्केट चल पड़ती है और ये 70% जो आपका वेटेज था ये बढ़कर 80% हो जाता है, तो वो आप थोड़ा सा एडिशनल रिस्क ले रहे हैं। बस इतना ही है कि आपका उसके बाद ज्यादा आप इक्विटी में ओवर एक्सपोज्ड हो गए हैं एज अ पोर्टफोलियो। आपकी जरूरत के लिए क्या वो सही है, उचित है, या आपको रीबैलेंस करना आवश्यक है, ये आपकी निजी नीड्स क्या है, इन्वेस्टमेंट की आपका रिस्क कैपिटाइट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आपका रिस्क रिटर्न थोड़ा वेरी करेगा, उसको आपको देखना है।
2: अगले कॉलर है फरीदाबाद से मनिंदर। मनिंदर जी अपना सवाल पूछे।
3: हाँ सर, ये मैं जानना चाह रहा था कि स्विच आउट करने में कितना टाइम लेना चाहिए कंपनी को। सपोर्ट 4th को हमने स्विच आउट किया है दूसरे फंड में, तो वो 2 दिन लगा देते हैं, तो क्या सही है?
1: जी, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में इसी तरह होता है, क्योंकि आप जिस दिन सिप से आप जिस दिन भी आप रिडम्पशन डालिएगा, तो अगर आप 3 बजे से पहले रिडम्पशन डालेंगे तो उस दिन जो रात को एनएवी फंड डिक्लेयर करेगा आपके, उस एनएवी पर आपकी यूनिट्स रिडीम होंगी। अगर दोपहर 3 बजे के बाद अगर आप रिडम्पशन डालते हैं तो अगले दिन शाम की आपको एनएवी मिलेगी, और उसके बाद 1 से 2 दिन जो बैंक ट्रांसफर में पैसा लगता है, अगर बीच में छुट्टी आ जाती है, शनिवार इतवार आ जाता है, तो वो दिन इसमें ऐड होंगे। तो 2 से 3 दिन लगते हैं और ये नॉर्मल है।
4: All right, and now let's see how has been the movement of crude oil. Global crude oil prices declined last week following a deal between Iran and Oman to reopen the Strait of Hormuz. The two countries are also seeking to charge a fee on ships crossing the strait. During the week at the Intercontinental Exchange, ICE, Brent crude October futures plunged 5% to settle at $83.55 per barrel. West Texas intermediate crude September futures tumbled 7.7% to end at $78.18 per barrel.
2: Still in commodities, सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में इस सप्ताह तेजी दिखाई दी। अमरीकी डॉलर में नरमी और अमेरिका के सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर में कमी के बीच सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखी गई। अमरीका के श्रम आंकड़े उम्मीद से कमजोर आने से अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में वृद्धि की आशंका कम हो गई, और इससे भी निवेशकों की धारणा को बढ़ावा मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाले सोने की कीमत सप्ताह के दौरान 5.9% के उछाल से 1,51,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुई। इस बीच सितंबर अनुबंध वाली चांदी की कीमत 6.6% बढ़कर 2,31,466 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। उधर कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 7.1% की वृद्धि से $4,399.70 प्रति ट्रॉय आउंस पर पहुंचा। वहीं सितंबर अनुबंध वाली हुई चांदी सप्ताह के दौरान लगभग 10% उछाल दर्ज करती हुई $63.49 प्रति ट्रॉय आउंस पर पहुंच गई।
4: All right, now let's take a quick look as to how the markets are expected to show up next week. The domestic investors are set to navigate a week packed with key market triggers, including macroeconomic data, quarterly earnings reports, and geopolitical developments. Markets are likely to take cues from foreign institutional investor inflows, commodity prices, and currency movements. Market participants will closely monitor monthly mutual fund data, the quarterly bulletin of the periodic labor force survey and retail and wholesale inflation prints. Globally, investors will focus on geopolitical developments surrounding the West Asia conflict, along with oil market reports from the International Energy Agency and the Organization of the Petroleum Exporting Countries.
2: कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, सो चर्चा को भी अब हम यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आप आए और आपने हमारे सभी श्रोताओं के विस्तृत सवालों के इतने अच्छे जवाब दिए।
1: जी धन्यवाद।
4: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप टुडेज़ शो, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। Foreign portfolio investors infuse over 12,900 crore rupees into Indian equities during first week of August. Global crude oil prices tumble last week, and domestic investors to focus on inflation data, corporate earnings results, and geopolitical developments for cues next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
6: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
7: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
8: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

11:41 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सबका एक बार फिर। प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत, आपके साथ मैं विकास।

0: मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

प्रोग्राम का ये आखिरी गीत और इस मुसाफिर यानी विकास को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल और उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: घर

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और

0: वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच करेगी और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। मणिपुर पुलिस ने राज्य के कई इलाकों में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। इम्फाल वेस्ट जिले के खोईरुम सबल में मणिपुर पुलिस और 33वीं असम राइफल्स ने एक संयुक्त अभियान में 8 बंदूकें, एक 9 mm पिस्तौल, एक दंगारोधी बंदूक और 4 हथगोला बरामद किए। एक अन्य अभियान में पुलिस ने इम्फाल ईस्ट जिले के पोर्ट शांगबंग खुनों की तलहटी में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान 1.32 पिस्तौल तथा बंदूक और 20 हथगोले बरामद किए। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। आईएमडी ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated across the country to promote patriotism, national unity, and India's rich cultural heritage.

0: आकाशवाणी दिल्ली के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। संग हूं मैं श्रेयसी और आइए सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, हम जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में हमारे बुनकर भाई बहनों का उत्साह वर्धन किया है और हथकरघा जो है उसका महत्व उन्होंने बताया है। साथ ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो कि समर्पित किया गया है बुनकर भाई बहनों को, उसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आइए सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाती हूं आज स्टूडियो में हमारी विशेषज्ञ से, और उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे मन की बात का वो हिस्सा जिसमें हमारे बुनकर भाई बहनों का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है। आज स्टूडियो में हमें समय दिया है हमारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एम बीना, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और विकास आयुक्त हैं हथकरघा से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
4: नमस्कार।
3: आइए अब हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं मन की बात का एक अंश।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाता है। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली

0: परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।
1: तो साथियों, आपने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उल्लेख करते हुए इसके संदर्भ में बुनकर भाई बहनों के विशेष हितों का भी एक तरह से उल्लेख किया है। तो इस बारे में हम और जानते हैं। आज इस कार्यक्रम में बात करते हैं उस धागे की जो सिर्फ कपड़ा नहीं बुनता, बल्कि भारत की विरासत, संस्कृति और लाखों परिवारों के सपनों को बुनता है। सामाजिक ताने बाने का हिस्सा वो धागा जो हमारी विरासत भी है और साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी है। स्वदेशी आंदोलन से लेकर वैश्विक पहचान तक ये धागा भारत में और भारतीयता भर देता है। महात्मा गांधी ने चरखा चलाते हुए जन जन को जोड़ा और साथ ही स्वदेशी का महत्व बताया। स्वदेशी आंदोलन आगे बढ़ा और उसके बाद एक से एक बढ़कर उपलब्धि जो हमें हासिल हुई है, और आज हम कहते हैं कि भारतीय वस्त्र की पहचान वैश्विक पहचान है, तो ये भी हमने हासिल की है अपने बुनकर भाई बहनों के परिश्रम से ही। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। डॉक्टर एम बीना, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी मैडम कि हमारा जो विभाग है और हमारा जो मंत्रालय है वो किस तरह से हमारे जो बुनकर भाई बहन हैं उनके लिए कार्य करता है।
2: ऑफिस ऑफ डीसी हैंडलूम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर काम करने वाला विभाग है एंड उसका पूर्णतः लक्ष्य ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द हैंडलूम सेक्टर। तो उसमें हमें हैंडलूम को भी बढ़ावा देना है और हैंडलूम के जो वीवर्स हैं उनकी भी मदद करना है, ये हमारा पूर्णतः लक्ष्य है
1: जी।
2: तो इसमें हमारे 2 प्रधान कार्यक्रम है। एक तो नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें हम देते हैं एंड टू एंड सपोर्ट वीवर्स को, स्किलिंग देते हैं उनको, मार्केटिंग असिस्टेंस देते हैं उनको, करखे नए करखे देते हैं उनको, वर्कशीट्स दिया जाता है, तो उस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। दूसरा, हम तभी बुनाई शुरू करेंगे जब हमारे पास धागा होगा
1: जी।
2: तो सबसे एक बड़ा चैलेंज है बुनकर को कि धागा रॉ मटेरियल को आपूर्तिकरण के लिए, तो इसके लिए हमारा दूसरा स्कीम है रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम, जिसके तहत हम देते हैं 15% प्राइस सब्सिडी और ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी। तो ये तो हमारे बड़े कार्यक्रम है जो हर स्टेट में चलाया जाता है, हर क्लस्टर में चलाया जाता है, तो इसी से हमारे वीवर्स को बहुत मदद मिलती है
1: जी। जब हम बात करते हैं मैम वीवर्स की, तो आमतौर पर देखा जाता है कि ज्यादातर बुनकर अपने पूर्वजों से सीखकर ये कार्य कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते कई बार, तो उन्हें पता नहीं चलता कि सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है। हम चाहेंगे कि आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से वो सीधे आपसे सुने कि ऐसी क्या योजनाएं हैं जिनका लाभ वो उठा सकते हैं।
2: तो हमारे जो भी स्कीम्स है वो अंततः वीवर का ही इसमें बेनिफिट होता है
1: जी।
2: जो वीवर ये नहीं जानते, काफी वीवर्स जानते हैं, लेकिन जो वीवर अभी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनसे मुझे ये बोलना है कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, देखो एक वीवर को नॉर्मली क्या चाहिए, उनको तो पहले धागा चाहिए
1: जी।
2: तो धागे के लिए अगर आपको मदद चाहिए तो हमारा रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के तहत 2 तरह की सब्सिडी दिया जाता है। तो एक तो है आपका प्राइस सब्सिडी। प्राइस सब्सिडी उन धागों को दिया जाता है जो नेचुरल फाइबर्स है
1: जी।
2: जैसे कि कपास हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, लिनन हो गया, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर्स है हम उनमें 15% प्राइस सब्सिडी देते हैं। जैसे कि अगर आप एक्रिलिक पे काम कर रहे हैं, आप सिंथेटिक पे काम कर रहे हैं, उसको भी हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसमें हम बस ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी देते हैं, माने आपको धागा मिल जाएगा मिल गेट प्राइस। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रधान कार्यक्रम
1: जी।
2: तो दूसरा, आपका जो हथकरघा है अगर वो पुराना हो गया या फिर अगर आप बहुत आउटडेटेड लूम पे काम कर रहे हैं तो आपको नया हथकरघा की जरूरत है तो वो हम आपको दे सकते हैं हमारे क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। दूसरा, बहुत सारे घरों में अब ये देखा जा रहा है कि घर नए बन रहे हैं तो घर में टीवी आ गया, सोफा आ गया, सब आ गया, अब हथकरघा के लिए जगह नहीं है
3: जी।
2: तो हम एक वर्कशेड का भी एक कार्यक्रम है जहां हम 1,20,000 तक वर्कशेड में मदद देते हैं, जिसका 90% सरकार की ओर से जाता है और 10% वीवर को बेयर करना पड़ता है। तीसरा है, हमारे बुनकर काम करते हैं तो उनको लाइट की जरूरत है
3: जी,
2: तो इसके लिए सोलार लाइटिंग का भी एक कार्यक्रम है जहां हम अप टू 15,000 सोलार लाइट के लिए भी देते हैं। तो ये अपने घरों में बैठकर ये तीन आपको मिल जाएंगे
3: जी।
2: लेकिन इसके अलावा हमें डिजाइन डेवलपमेंट करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है
3: जी।
2: तो इसके भी कार्यक्रम है। अब मार्केटिंग में हमारे बहुत सारे मेले लगते हैं, आपने सुना होगा गांधी बुनकर मेला जो जिला स्तर पर होता है, फिर राज्य स्तर पर होता है, और नेशनल हैंडलूम एक्सपो अपने दिल्ली खाड़ में भी देखा होगा, हमारे बुनकर भाई लोग आते हैं। तो इन सब के लिए मार्केटिंग असिस्टेंस के लिए एक तो अपना राज्य सरकार को भी हम पैसे देते हैं इसका आसूत्रण करने के लिए, तो आइदर राज्य सरकार द्वारा वो अप्लाई करे या फिर हमारा एक पोर्टल होता है दिल्ली हाट वगैरह, और जो भी नेशनल लेवल पे जो मेले होते हैं उसके एप्लीकेशन के लिए दे हैव टू अप्लाई थ्रू दी नेशनल पोर्टल। ये हो गया मार्केटिंग। नाउ अब ये है कि आपको अपना जो प्रोडक्ट है उसमें देखो आजकल ना बहुत सारे फेक हैंडलूम भी चलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब तक बुनकर अपने प्रोडक्ट पे हैंडलूम मार्क नहीं लगाएगा तो हैंडलूम मार्क लगाने से जनता ये जान जाएगी कि ये ऑथेंटिक है
3: जी।
2: तो हैंडलूम मार्क के लिए भी प्रावधान है हमारे स्कीम में, हमारे लिए टेक्सटाइल कमिटी हैंडलूम ब्रांड का वो कार्यक्रम चलाती है। एंड कुछ ऐसे भी वीवर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं एंड जो इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं
3: जी,
2: तो उसके लिए भी प्रावधान है हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग स्कीम। तो वहां हमारा हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा इनका चयन होता है और उनको बाहर भेजा जाता है। और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हमारा अवार्ड्स
3: जी।
2: एक्चुअली ये जो 7 अगस्त है सारे वीवर्स इसको मनाते हैं क्योंकि उनको अवार्ड्स मिल जाते हैं उस
3: जी।
2: हमारे दो अवार्ड्स है, एक तो संत कबीर अवार्ड और दूसरा है नेशनल अवार्ड। तो ये जो अवार्ड का कार्यक्रम जो बहुत हुनरशाली वीवर्स है उनके सपोर्ट के लिए ये अवार्ड वाला कार्यक्रम है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है वेलफेयर ऑफ द वीवर्स
3: जी।
2: अब वेलफेयर में भी हमारे 2-3 हिस्से हैं, हमारा एक अम्ब्रेला स्कीम है और हम ये कोशिश करते हैं कि एंड टू एंड वीवर को मदद मिले। अब वेलफेयर में एक तो है हम इंश्योरेंस में हम उनका सपोर्ट करते हैं, तो दो प्रधान हमारे इंश्योरेंस प्रोग्राम्स है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना
3: जी।
2: तो इन दोनों में हम जो जो वीवर को प्रीमियम देना होता है उसका एक इन सुरक्षा बीमा योजना हम पूरा केंद्र सरकार देता है एंड इन जीवन ज्योति बीमा योजना इट इज अ शेयरिंग बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट
3: जी।
2: तो ये एक और है। दूसरा, अगर आप अवार्डी वीवर है और अगर आपके पास वो इनकम कम है तो आपको प्रति मास 8,000 रुपीज का असिस्टेंस मिलता है ओवर 60 इयर्स
3: जी।
2: तीसरा है हमारा स्कॉलरशिप, अगर एक बुनकर के बेटे को टेक्सटाइल में पढ़ाई करनी है चाहे वो डिग्री लेवल पर हो, डिप्लोमा हो या फिर हायर स्टडीज हो, तो वी सपोर्ट अप टू 2 लाख पर ईयर फॉर अ वीवर स्टूडेंट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन पर वीवर। तो ये हो गया हमारा वेलफेयर कार्यक्रम। और लास्ट में एक और कार्यक्रम है हमारा मुद्रा स्कीम। तो वीवर्स मुद्रा स्कीम में हम देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग मार्जिन मनी, देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग इंटरेस्ट सबवेंशन, देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग क्रेडिट गारंटी। तो मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव से स्कीम्स है, अगर बुनकर को ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है हमारे हर राज्य में देयर इज अ बुनकर सेवा केंद्र वीवर सर्विस सेंटर, वहां पर उनको ज्यादा जानकारी मिल सकती
3: है जी। यानी एक बुनकर के जीवन में जितने पहलू हो सकते हैं सभी इन योजनाओं के माध्यम से आपने कवर करने की कोशिश की है और हर जगह कुछ ना कुछ मदद उपलब्ध करवाई जा रही है
2: जी।
3: ये रोचक जानकारी हमारे बुनकर भाई बहनों के लिए बहुत ही जरूरी थी और बातचीत हमारी जारी रहेगी। मैं यहाँ आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी ताकि हम श्रोताओं को सुनवा सकें।
2: मेरी मातृभाषा मलयालम है
3: जी,
2: लेकिन हिंदी के सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है। जब मैं छोटी लड़की थी तब से ये विविध भारती में जो भी गाने आते हैं तो एक्चुअली हिंदी जानने से पहले हिंदी के गाने। मैं सुनती हूँ
3: जी।
2: और आज के दिन आई थिंक मैं ये बोलूँ कि मोह मोह के धागे आज के

0: सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट है
1: सच में,
0: बिल्कुल आई विल रेकमेंड दैट।
1: और इससे हम ये भी समझ सकते हैं मैम कि जो विभाग आप संभाल रही हैं उससे आपका कितना मोह है ये धागे, लोगों के कल्याण के धागे।

0: तो इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक पहचान बनाने वाले उन धागों की जो हथकरघा से हम तक पहुंचते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के संदर्भ में ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम है और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया है हथकरघा दिवस का। बुनकर भाई बहन जो हैं उनके कल्याण के लिए क्या योजनाएं हैं, इस बारे में हम जान रहे हैं हमारे विशेषज्ञ से। आज की मेहमान इस कार्यक्रम में है डॉक्टर एम बीना, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और साथ ही डेवलपमेंट कमिश्नर हैं हैंडलूम में। तो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जब किसी भी चीज को प्रचलित करने की बात करते हैं तो भारत में हम युवाओं को जरूर अपने साथ जोड़ते हैं, क्योंकि व्यवहार में वो चीजें उन्हीं के माध्यम से प्रसार पाती हैं। ऐसे में क्या इस तरह की कुछ योजनाएं हैं जो कि शैक्षणिक स्तर पर हथकरघा से या बुनकरों से जोड़ रही हैं छात्रों को, विद्यार्थियों को?
1: ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया। देखो, हम हथकरघा हमारी विरासत है, हैंडलूम में से इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था एक जमाने में
0: जी,
1: लेकिन अब वो कम होता जा रहा है। लेकिन अगर ये लुप्त हो गया तो ये सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। तो ये नई पीढ़ी की ये जिम्मेदारी है कि इसको आगे लेके चले। तो उसके लिए हमें क्या कर रहे हैं कि उसको पॉपुलराइज करने के लिए, एक तो हमने अपने ओर से कुछ शिक्षा संस्थान हमने स्टार्ट किए हैं। दीज आर द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी
0: जी।
1: तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 6 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजीज है और स्टेट गवर्नमेंट और 5 IHDs चलाते हैं। तो यहाँ पे जो शिक्षा दिया जाता है वो हैंडलूम पे और टेक्सटाइल पे बहुत अच्छे से, डिप्लोमा भी चलता है, डिग्री भी का भी कोर्स है। तो ये एक ओर से हम ये कर रहे हैं। दूसरा, हमारा जो बुनकर सेवा केंद्र है तो उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि आसपास जो भी जनरल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, तो वहां के बच्चों को जाके वो क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ताकि वो देख सके। को बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कभी हथकरघा को देखा ही नहीं है, कैसे चलता है वो उनको मालूम ही नहीं है। लेकिन आई थिंक ये जो हम बात कर रहे हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस लेता है कि आज का जो जमाना है वो सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलरिटी के ओर चल रहा है। एंड आज के जेंसी एनवायरमेंटली बहुत कॉन्शियस हैं, तो ये चाहते हैं कि देखो हमारे जमाने में किसी का पहना हुआ हम पहने की वो सोच भी नहीं सकते थे
0: जी।
1: लेकिन आज ये ऐसा जमाना आ गया कि जेंसी इज थिंकिंग ऑफ रीयूजिंग, कंजर्वेशन, तो बहुत उनकी सोच में क्रांतिकारी चेंजेस आ रहे हैं। द मैसेज दैट वी आर गिविंग टू द यूथ इस हैंडलूम में जो बनता है इट इज कार्बन न्यूट्रल, बिकॉज वीविंग में तो हम पावर यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है इट इज वेरी सस्टेनेबल, इट इंटेग्रेट सर्कुलरिटी। तो ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं अपने यूथ को। खासकर हमारा एक प्रोग्राम भी ऐसा ही है, वीव द फ्यूचर
0: जी।
1: तो वीव द फ्यूचर में हम जो अपसाइक्लिंग रिसाइक्लिंग में जो ब्रांड्स हैं जो हैंडलूम में काम करते हैं हम उनको मिला के दिल्ली हाट में, कभी क्राफ्ट म्यूजियम में, ताकि ये लगातार ये कॉन्वर्सेशन चलता रहे कि हैंडलूम इज इंटेग्रल टू सस्टेनेबिलिटी। तो ये हो गया था सस्टेनेबिलिटी कंपोनेंट ऑफ अट्रैक्टिंग यूथ। बट दूसरा, जब तक हम साड़ी पर ही रहेंगे तो यूथ थोड़ा सा इसमें आने से कतराएंगे। तो इसलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करें। तो हमारे मेरे बुनकर भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप साड़ियां बहुत अच्छे बनाते हैं, मैं बहुत पसंद भी करती हूँ, लेकिन जमाना आ गया है कि आप अपना फैब्रिक को नए तरीके से प्रेजेंट करें, उसमें जो आज के जेंसी पसंद करते हैं
0: जी,
1: तो उस तरह का भी आप काम करें। हमारे विभाग से डिजाइनर्स मौजूद है क्लस्टर लेवल पे, तो उनकी मदद लेके आप नया काम करने की भी कोशिश करें
0: जी।
1: और दूसरा, मैं बुनकर भाइयों के बच्चों से, जो युवा पीढ़ी है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीविंग नहीं भी आती हो लेकिन अपने पिताजी से, अपने माताजी से उनका जो हुनर है वो अंडरस्टैंड करें और उसको एटलीस्ट इंस्टा पेज तो वो बना सकते हैं
0: जी,
1: वो एटलीस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग तो वो कर सकते हैं। तो ये मेरी विनती है देश की युवा पीढ़ी से
0: जी। और

0: कुछ समय पहले हमें एक छात्र से बात करने का अवसर मिला था, तो उन्होंने यही बताया कि NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, उन्होंने कहा कि इस तरह के संस्थान बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जब फैशन शोज होते हैं, हम फैशनेबल कपड़े बना रहे होते हैं, तो उनके पैटर्न्स में भी हम इस तरह की वीविंग्स यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपने कहा कि जो बुनकर हैं उनके बच्चे भी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
1: एक्चुअली आपने अच्छा, देखो देयर इज अ निफ्ट नाम की संस्था है, तो निफ्ट के साथ हमने एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हम चलाते हैं, यह है क्राफ्ट क्लस्टर इनिशिएटिव। तो निफ्ट का हर एक बच्चा किसी न किसी आइदर हैंडलूम क्लस्टर या हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर में जाते हैं, वो समझते हैं कि ये कैसे किया जाता है, एंड कुछ इनपुट्स वीवर को भी मिलता है, कुछ सीख बच्चे को भी मिलता है। एंड इस एसोसिएशन से हमने ये देखा कि एक बच्ची थी जो गुजरात में निफ्ट में पढ़ी थी, तो उसके बाद After studying, she has started an e-commerce portal for all the weavers.
0: जी,
1: and इतना अच्छा उसका turnover आज आ गया है, इतना successful हो गया है. This is such a lovely example कि बच्चे जब युवा, the young blood and innovation comes into the picture, it really transforms the entire sector.
0: जी, बिल्कुल. तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा साथी जो इस समय हमें सुन रहे हैं, वो ये समझेंगे कि उनकी ऊर्जा की जरूरत हमारे बुनकर भाई बहनों को भी है और उनके नए विचारों की जरूरत भी है। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एम बीना, IAS ऑफिसर हैं मैम और साथ ही डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, विकास आयुक्त हैं हथकरघा की, और आज हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक पहचान तक पहुंचे उन धागों की जो हमारे बुनकरों को समाज से जोड़ते हैं और समाज के अलग अलग वर्गों को भी आपस में जोड़ते हैं। अभी हम बात कर रहे थे मैम इस गाने से पहले कि किस तरह से हम ट्रेंड पे ला सकते हैं अपने हैंडलूम को। आजकल जब युवा आपस में मिलते हैं, या पहले भी हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, हमारे घर अतिथि आते हैं या हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ भेंट हम देते हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगी हम हथकरघा से बुने हुए उत्पादों को कैसे शामिल कर सकते हैं?
1: इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं।
0: जी,
1: वे जब भी बाहर जाते हैं या फिर बाहर से कोई लीडर्स इंडिया में आते हैं तो हमेशा उनका गिफ्ट जो है आइदर हैंडलूम का होता है या फिर हैंडीक्राफ्ट का होता है। तो हम तो बोलते हैं कि हमारा सबसे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर अपने प्रधानमंत्री जी ही है।
0: जी,
1: तो वो एक्चुअली अच्छा उदाहरण है। जब भी हमें तोहफा देना होता है
0: जी,
1: तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, बहुत सारे कंपनीज हैं इंडिया में जो दिवाली पर गिफ्टिंग करते हैं, कॉरपोरेट गिफ्टिंग करते हैं, तो अपना जो ट्रेडिशन है उसको पेंट करें। तो कुछ लोग करते भी हैं एंड कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने CSR के द्वारा कंपनीज खड़े किए हैं या फिर संस्थाएं खड़े किए हैं फॉर इंडियन हैंडलूम्स, चाहे वो आदियम हो चाहे तनेरा हो, तो ऐसे भी प्रयास हो रहे हैं। बट गिफ्टिंग के लिए दिवाली अब आने को है, तो अभी से आप अपना प्रोक्योरमेंट शुरू कीजिए, अपना हम जो भी करें अपने आइडेंटिटी को याद करें। जब हम आइडेंटिटी को याद करेंगे, अपने रूट्स को याद करेंगे, तो हथकरघा तो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है।
0: जी, ऐसे में मैम हमारे संस्थान का भी मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगी, हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत होते हैं लेकिन हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे जो भी अतिथि होते हैं उन्हें हम अंगवस्त्र जो है वो हैंडलूम से दें और सिर्फ पौधा भेंट करें, बाकी जो प्रतीक चिन्ह है उनके अतिरिक्त।
1: बहुत अच्छा,
0: तो ये भी हम आपस में ध्यान रख सकते हैं। और जेनजी जो है, जैसा कि मैम ने कहा कि बहुत तेजी से आप चीजों का प्रसार करते हैं, तो ऐसे में जो अपनी पहचान है, हर राज्य के अपने अलग ऐसे धागे हैं जिन पर हमें गर्व है, हर राज्य का अलग पैटर्न है, तो हम उसके बारे में जानें और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मैम हम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करते हैं, ऐसे में इस बात पर भी विशेष ध्यान देते हैं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचे और हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो। ऐसे में क्या इस तरह की नीतियां हैं कि हमारा हैंडलूम विदेशी बाजारों में भी अपनी पहचान भी बनाए रखे और ज्यादा विस्तृत पहुंचे?
1: हैंडलूम का जो सस्टेनेबिलिटी एंगल है वो मोर देन इंडिया, एक्चुअली फॉरेनर्स उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं।
0: जी,
1: लेकिन पहले हमारा ये इश्यू था कि हमारे पास ना कोई रिपोर्ट था ना कोई स्टडी था जो एक्चुअली ये बता सके कि हैंडलूम पे जब कपड़े बुनते हैं तो उसका कार्बन फुटप्रिंट क्या है।
0: जी,
1: सो लास्ट ईयर हमने इसी अराउंड दिस टाइम IIT दिल्ली द्वारा हमने एक स्टडी संचालित किया था, तो इसका ये रिजल्ट आ गया है कि अगर हम हैंडलूम पे कपड़ा बुने कंपेयर टू मिल मेड, इट इज अराउंड लेस देन 1/4 ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट। तो ये जो है, एंड इसका सर्टिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंटरनेशनल मार्केट्स अब पूरी तरह दे आर लुकिंग एट सर्कुलरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी।

0: खासकर यूरोप में जो देश है, यूके जो है, वो बहुत इस पर इंसिस्ट करने वाले हैं इन द कमिंग ईयर्स. तो अभी एक्सपोर्टर्स आर ऑल्सो कॉन्शियस. हाल ही में फार्मटेक्स हुआ था जो हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट था जो एक्सपोर्ट पे फोकस करता था, तो वहां पर भी ये बार बार हर मीटिंग में ये दोहराया गया कि सर्कुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द चैलेंज बिफोर अस इज टू इंटेग्रेट सस्टेनेबिलिटी इनटू द हैंडलूम. तो इनहेरेंटली सस्टेनेबल है, लेकिन उसको सर्टिफिकेशंस, क्वालिटी चेकिंग एंड वो एक्सपोर्टेबल लेवल तक उसको लेके आना है. तो हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसमें बहुत काम कर रहे हैं. एंड हम ये भी अभी एक नेक्स्ट ईयर फ्रांस में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, प्रीमियर विजन. तो इंडिया हैज द हैंडलूम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ अ पार्टनर फॉर प्रीमियर विजन एंड वी विल बी शोकेसिंग इट बिफोर एन इंटरनेशनल ऑडियंस कि हमारा हैंडलूम क्या है, विरासत क्या है, प्लस उसका सस्टेनेबिलिटी एंगल क्या है.
1: एक बड़ी समस्या आजकल व्यवहारिक तौर पर ये आती है मैम कि घर में आम तौर पर जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके पास भी, बच्चों के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं और ऐसे में फैशन भी तेजी से बदलता है तो हमारा वार्डरोब चेंज होता रहता है. एक चुनौती होती है कि जो पुराने कपड़े हैं, जो पहनने की स्थिति में है, उनका हम क्या करें. क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि अगर हथकरघा के उत्पाद हैं तो वो कहीं उचित माध्यम से पहुंचाए जा सके और उनका रीयूज हो सके बजाय इसके कि हम उन्हें फेंके या किसी को दें.
0: एक्चुअली ये रीयूज का कल्चर, रिसाइकलिंग का जो कल्चर है, तो हाल ही में हमने एक इवेंट किया था वीव द फ्यूचर. तो वीव द फ्यूचर में हमने क्या किया, वी केप्ट अ बॉक्स ताकि आपके जो यूज्ड कपड़े हैं आप वहां दे दीजिए. And we collected used कपड़े and we started, it is given to our recycling centers. तो अभी ऐसे प्रयास चल रहे हैं हमारे जो cities में, कुछ ऐसे चल रहे हैं. And हमने एक auction भी किया था जो हमारा कुछ senior officials ने कुछ कपड़े donate किए थे. तो उसका हमने online auction भी किया था जो भी बहुत successful था. तो ऐसे प्रयास हो रहे हैं. And खासकर handlooms का इससे जो मिलता है कि ऐसे अगर रिसाइकल धागे होते हैं वो नॉर्मली जो बड़े मशीन में वो चलेगा नहीं, द बिग मशीन्स में वो ज्यादा ब्रेकेज और श्रिंकेज होता है, तो उसके लिए हथकरघा ही मोर सूटेबल है. तो इसलिए हैंडलूम एंड ये रिसाइकलिंग सब साथ में लेके चलते हैं. एंड वीव द फ्यूचर के अभी तक हमने 4 एडिशन किए हैं. अब ये 5th एडिशन विल बी लॉन्च्ड अलोंग विद द नेशनल हैंडलूम डे.
1: जी, हमारी एक ऑब्जर्वेशन ये भी है, जैसे गांधी स्मृति और राजघाट पर जो संस्थान है वो चरखे का उपयोग अभी भी करते हैं खादी को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों को ये सिखाने के लिए कि कैसे काता जाता है, कताई क्या होती है, कतान किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. क्या इस तरह की एग्जीबिशंस होती हैं जहां पर वॉलेंटरली जाकर युवा जो हैं वो सीख सकें कि हथकरघा कैसे चलाना है भले ही वो उनका पेशा नहीं है.
0: एक्चुअली आपका सजेशन बहुत अच्छा है. एंड अभी सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम में हमारा एक एग्जीबिशन है द वीव्स ऑफ इंडिया. तो वहां पर वी हैव सेट दी स्मॉल लूम्स, हम उसको टॉय लूम्स या एक्सपीरियंशियल लूम्स हम बोलते हैं, बहुत छोटे से लूम्स है. तो हम वहां बहुत इंटरेस्ट भी है, छोटे बच्चे महिलाएं सब जाके ट्राई आउट कर रहे हैं. देखो वो इतना आसान भी नहीं है, द एक्चुअल जो हथकरघा है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. बट ये सिंपल थिंग ऑफ यू नो ज्वाइनिंग अ वार्प एंड वेफ्ट जिससे कपड़ा निकलता है वो एक्चुअली हम भी कर सकते हैं. तो उसके लिए ऐसे एक्सपीरियंशियल चीजें हम अपने जो एग्जीबिशंस या एक्सपोज होते हैं हम उसमें वो शामिल कर रहे हैं.
1: जी, उसमें शामिल किया जा रहा है. आमतौर पर ये होता है हैंडलूम पहनना सभी चाहते हैं और हैंडलूम की जो साड़ियां होती हैं बहुत ही गरिमापूर्ण, बहुत ही सुंदर होती हैं, लेकिन क्योंकि वो हाथ से तैयार की गई हैं और बहुत लंबा समय लगा है बुनकर को उसे तैयार करने में, तो इसलिए वो अक्सर महंगी भी होती हैं. अभी तक हमने जो बात की वो इस तरह की योजनाओं की है जिनका लाभ बुनकर उठा सकते हैं. क्या जो खरीदार हैं उनको भी हैंडलूम खरीदने पर कुछ विशेष प्रोत्साहन मिल सकता है?
0: एक्चुअली मिनिस्ट्री का ये थॉट है कि कस्टमर को, हालांकि कुछ राज्य सरकार सब्सिडी दे रहे हैं
1: जी,
0: बट हमारा ये यू नो व्हाट वी आर रिक्वेस्टिंग द कंज्यूमर्स इज टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट. देखो जब हम एक बार देखें कि ये कैसे बनता है
1: जी,
0: एक बार एक बुनकर के घर में जाएंगे आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, इस यू नो इंक्रीज प्राइस देने में कोई हिचक नहीं होगी
1: जी.
0: तो द स्टोरी ऑफ द वीवर, जब आप ये समझ सके एक प्रोडक्ट पे अगर इसमें QR कोड स्कैन करने पे आपको मालूम पड़ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन से गांव से आ रहा है, वहां से एक बुनकर की कारीगरी है. देखो हम सोचते हैं कि वीविंग इज इजी, इट इज नॉट इजी
1: जी,
0: इट इज एडवांस्ड मैथमेटिक्स. मैंने ये जो वार्प एंड वेफ्ट का जो किस्सा है एंड उसमें देखो वार्प एंड वेफ्ट तो हम कर सकते हैं लेकिन उसमें डिजाइन बनाने के लिए द

0: kind of mental mathematics that has to be done is really complex. So my point here would be ki hame kharidna chahiye. And jo actually weaver ko see it as a premium article.
1: Hmm.
0: So that we reach the premium market and taki weaver ko achha wages bhi mile. At the end of the day, weaver ko achha wages milna chahiye. Now, as far as a customer is concerned, अगर आप वीवर से डायरेक्टली खरीदेंगे तो यू विल गेट इट एट अ रीजनेबल प्राइस. अगर बीच में मिडल मैन आ जाए, बीच में एक मार्केटिंग एजेंसी आ जाए, तो प्राइसेस ज्यादा सा इंक्रीज होगा. तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि हम जो मेलाएं लगाते हैं, जब भी एक अपॉर्चुनिटी आ जाए, जब आप वीवर से डायरेक्टली खरीदेंगे तो आप उसका लाभ उठाए. दूसरा, मंत्रालय ने एक वेबसाइट बनाया है indiahandmade.com. इंडिया हैंडमेड एक ऐसा पोर्टल है जहां वीवर खुद अपना डालता है. वीवर पुट्स हिज प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, तो वहां पर भी आपको बहुत रीजनेबल रेट्स मिल जाएंगे.
1: जी,
0: तो इन सुविधाओं का आप इस्तेमाल करें.
1: जी, एक अनुभव मेरा इस बारे में बहुत अच्छा रहा कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं, बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं कि वो जो स्पॉट रखते हैं घुमाने के लिए, साइट सीइंग के लिए ले जाते हैं, उसमें उस जगह के बुनकरों को भी शामिल किया जाए. तो हमने एक इस तरह का दौरा किया और उसमें हमने ये जाना, जैसे अभी आपने कहा कि कितना कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, उसमें बुनकर ने हमें बताया कि जो हमारा राज्य का पेड़ है हम उसकी पत्तियां इसमें लगाते हैं, जो हमारा राज्य का पक्षी है हम उसकी छवि इसमें देते हैं, और इस तरह से हम अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं अपना काम करते करते. तो ट्रैवल एजेंसीज भी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती हैं. आप क्या सोचती हैं इस बारे में?
0: बहुत अच्छा सोच है, बिकॉज देखो टूरिज्म एंड हैंडलूम का बहुत अच्छा मेल हो सकता है. तो हमारा एक कार्यक्रम भी है, यह है क्राफ्ट टूरिज्म विलेज. तो क्राफ्ट टूरिज्म विलेज में हम ये करते हैं कि जहां टूरिस्ट फुटफॉल है, अगर अगल बगल में कोई हैंडलूम का क्लस्टर है, हम उसको लिंक करते हैं. लिंक करते हैं एंड वहां, ताकि टूरिस्ट वहां जा सके, वीवर के घर जा सके, वीविंग का कोई एक्सपीरियंस ले सके, एंड एक कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हो, उनका मार्केटिंग भी हो. तो अभी देश में हमारे 6 क्राफ्ट हैंडलूम विलेजेस ऑलरेडी चालू हैं और 3 में अभी काम चल रहा है. तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि टूरिज्म का इंटेग्रल पार्ट है ट्रेडिशन एंड हेरिटेज. आपने सही पहचाना कि देखो जो धागा यूज किया जाता है, जो मोटिफ करते हैं, जो रंगाई करते हैं, मतलब एवरीथिंग इज लिंक टू द कल्चर ऑफ दैट एरिया. तो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम उसको छोड़ ना दे, हम उसको मेंटेन करें, उसको चेरिश करें, उसको आगे लेके जाए.
1: जी, तो इसी मोड़ पर मैम आपकी पसंद का एक और गाना.
0: अभी एक रिसेंटली एक मूवी आया था कारवा.
1: जी,
0: तो जहाँ हमारा एक यंग स्टार है दुलकर, तो जो कि ममूटी जी, बहुत रिनाउंड मलयालम एक्टर है, उनका बेटा है दुलकर, एंड देयर इज अ वेरी नाइस सॉन्ग इन दैट, एक छोटा सा फसाना.
1: जी,
0: वो प्ले करिए.
1: जी बिल्कुल, यही गीत सुनवाते हैं.

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस गाने के बाद पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज कार्यक्रम में हम अपने बुनकरों की दिनचर्या को जान रहे हैं, उनके जीवन की उपलब्धियां भी समझ रहे हैं और उनके संघर्ष भी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक पहचान बनाने वाले हमारे देसी धागों की राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के संदर्भ में। और कार्यक्रम में आज हमारी मेहमान हैं आईएएस ऑफिसर डॉक्टर एम बीना, आप डेवलपमेंट कमिश्नर हैं हैंडलूम से। मैम, अभी हमने बात की कि किस तरह से हम युवाओं को जोड़ सकते हैं हैंडलूम से और किस तरह से जो बुनकर हैं वो भी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। यहां मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी टेक्नोलॉजी से हम बहुत सारी चीजें आसानी से पा रहे हैं, तो कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए?
1: एक्चुअली हैंडलूम जो है वो ट्रेडिशनल है, बट ये नहीं है कि उसमें टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन नहीं है। एक्चुअली हैंडलूम को स्ट्रेंथन करने के लिए वी शुड बी यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो उसमें एक दो प्रयास हमारे मिनिस्ट्री की ओर से चल रहा है। तो एक तो है कि हैंडलूम टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाने के लिए एक संस्था का अभी हाल ही में उसका इनॉग्रेशन हो रहा है
0: जी।
1: वो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन हैंडलूम टेक्नोलॉजी, जो हम IIT दिल्ली के साथ हम कर रहे हैं, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी में, बेटर लूम्स में, बेटर एर्गोनॉमिक्स में, नए डिजाइन में, नए डाइस में, इन सब में रिसर्च करे और उस रिसर्च का जो नतीजा है हमारे व्यूअर्स को दे। दूसरा, हम फ्रॉम द यूथ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हम एक लूम हैकाथॉन हमने अनाउंस किया था
0: जी।
1: काफी उसमें रिस्पॉन्स भी आया है एंड दैट इज ऑल्सो वन वे जहां हम अच्छे आइडिया समेट सके ताकि हम हैंडलूम सेक्टर में यूज करें
0: जी।
1: तीसरा है, हमने अभी एक पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया है। देखो, ये ट्रेसेबिलिटी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन हैंडलूम सेक्टर, कि एक्चुअली वो हैंडलूम पे बना है, कहां बना है, कैसे बना है। तो इसके लिए एक IoT डिवाइस है जो लूम पे लगाया जाता है एंड ये जो डिवाइस है वो एक तो वो GI टैग्ड है, तो ये कहां पे बुन रहा है वो ऑटोमेटिकली वो डेटा आ जाता है। दूसरा, जो लूम का जो मूवमेंट है वो उसको कैप्चर करता है। देखो, अगर पावर लूम में है तो मूवमेंट इज एंटायरली यूनिफॉर्म, अगर हाथ से बन रहा है तो एक मूवमेंट में ज्यादा फोर्स होगा, एक में कम होगा। तो इन अ वे इट इज ऑथेंटिकेशन, इन अ वे इट इज जियो टैगिंग एंड कितना धागा बन रहा है एक दिन, वो पूरा डेटा उसमें कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये भी हम एक बड़े स्तर पर पायलट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा एंड अब नए फेज में हम 10,000 ऐसे सच डिवाइसेस हम लेके आ रहे हैं
0: जी। हथकरघा घाट भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
1: हैंडलूम हार्ट इज आवर ड्रीम प्रोजेक्ट, जहां हम एक अच्छा सा एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स जैसे इन दिल्ली

0: वी आर वर्किंग फॉर दैट,
1: ताकि
0: एक अच्छा सा रिटेल स्पेस मिले जो हमारे हैंडलूम के बुनकर को, प्लस जो स्टार्टअप्स यहाँ काम कर रहे हैं, जो निफ्ट के यंग डिजाइनर्स पास आउट हो रहे हैं, उन सबको मिला के हम एक हैंडलूम हाट का भी आयोजन कर रहे हैं।
1: जी, क्या बुनकरों से संवाद का कोई सीधा तरीका है जहां वो अपनी समस्याएं भी रख सके? कोई ऐसा मंच उपलब्ध करवाया गया है?
0: देयर इज समथिंग कॉल्ड द चौपाल।
1: जी,
0: तो हमारे सारे वीवर्स सर्विस सेंटर्स फील्ड पे जाते हैं एंड क्लस्टर लेवल पे चौपाल कराते हैं। तो एक और तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, एंड जैसे कि आपने सुना कि बहुत सारे स्कीम्स हैं, लेकिन हर बुनकर को ये जानकारी नहीं है। तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो गांव में जाते हैं, चौपाल कराते हैं, स्कीम के बारे में बताते हैं, एंड कहीं कहीं तो वहीं से एप्लीकेशन भी ले लेते हैं। तो ये है एक एवेन्यू। दूसरा, हम जो भी हमारे बड़े ट्रेनिंग्स होते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग है समर्थ ट्रेनिंग। तो समर्थ ट्रेनिंग के तहत वीवर को एक अच्छा एक है कि उसको वेज कॉम्पेंसेशन मिलता है। कभी कभी ये लोग ट्रेनिंग पे नहीं आते क्योंकि एक दिन का उनका वेजेस चला जाता है। तो अंडर द स्कीम वी प्रोवाइड फॉर वेज कॉम्पेंसेशन। तो समर्थ हमारा एक बहुत सक्सेसफुल स्कीम है हैंडलूम सेक्टर में। तो वहां भी दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस विद दीज मैटर्स। एंड हैंडलूम दिवस जैसे जो बड़े सेलिब्रेशन होते हैं, तो वो तो हर क्लस्टर में, हर WOC लेवल पर, राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर, ये सब दीज आर प्लेसेस वेयर वी कम टूगेदर। अभी हाल ही में बजट में एक नया स्कीम अनाउंस हुआ है, नेशनल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम। तो उसको बनाने के लिए काफी चर्चाएं हुई एट द फील्ड लेवल, एट द स्टेट लेवल, जो इसमें विशेषज्ञ हैं उनसे भी काफी बातचीत हुई है। तो ये हमेशा एक ऐसे वार्तालाप का हम स्वागत करते हैं ताकि वीवर्स भी अपना मन रख सके हमारे पास।
1: जी, अभी तक हम बात कर रहे थे हथकरघा से जुड़े हुई जो आर्थिक पक्ष है उसकी भी, साथ ही सरकार ने जो योजनाएं उपलब्ध करवाई हैं उनकी, और सामाजिक पक्ष भी। अब बात करते हैं हथकरघा से जुड़े हुए स्वास्थ्य पक्ष की। हम कहते हैं कि हैंडलूम जो है, ये जो धागे हैं, ये स्किन फ्रेंडली है और स्किन डिजीज से हम बच सकते हैं अगर हम सही तरीके के कपड़े पहने, वो फैब्रिक जो है वो ठीक हो। इस बारे में मैम क्या कहेंगी?
0: हैंडलूम जो बनता है वो ज्यादातर नेचुरल फाइबर्स पे बनता है, एंड क्योंकि ये नेचुरल फाइबर्स पे बनता है एंड मोस्ट ऑफ देम यूज नेचुरल डाइस ऑल्सो। आजकल बहुत नेचुरल डाइस का भी यूज हो रहा है।
1: जी,
0: तो हमारा एक स्टार्टअप है जो साउथ में है, तो उन्होंने एक योगा मैट बनाया है हैंडलूम पे। तो नॉर्मली हम योगा मैट जो जो चाइनीज इम्पोर्टेड है वो यूज करते हैं, मैंने योगा करते हैं एंड उसी के फ्यूम्स हम इनहेल करते हैं, लेकिन ये कंपनी जो है वो हैंडलूम योगा मैट बनाते हैं ताकि जब हम योगा करें और पसीना निकले, जो हम फ्यूम्स इनहेल करें वो बहुत हर्ब्स जैसे है उसमें मिलाया जाता है। अगर हैंडलूम का भी बेडशीट यूज करें, हैंडलूम के कपड़े यूज करें, वो डेफिनेटली वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ये नेचुरल कलरिंग भी आ गया है ताकि वो और बेटर बन जाए।
1: जी, हम बात कर रहे थे कि युवा किस तरह से और ज्यादा यूज कर सकते हैं हैंडलूम प्रोडक्ट्स का। ऐसे में सोवनियर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर उस इंडस्ट्री से हमें लोग इस समय सुन रहे हैं तो उनके लिए क्या आपका मैसेज है?
0: तो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के बहुत अच्छे सोवनियर बन सकते हैं एंड उसको हमें ज्यादा यूज करना है। एंड यूथ के लिए एक्चुअली मैं अपने बुनकर भाइयों को भी बोलती हूँ कि अब यूथ के लिए जो कपड़े बनने हैं, तो हाल ही में हमने एक डिजाइनर कॉन्क्लेव के लिए एक कॉन्टेस्ट जैसे रखा। देश में जो 72 क्लस्टर्स से, जहाँ हम क्लस्टर डिजाइनर्स थे, हमने एप्लीकेशन मंगवाए एंड इतने अच्छे नए तरीके के ड्रेसेस आए हैं। मैंने जो हैंडलूम में पहले तो हम ओनली साड़ीज देखते थे, लेकिन अब इतना इनोवेशन अब चल रहा है ताकि युवा भी इसमें जरूर आकर्षित होंगे।
1: जी, और हम तो अपने सभी श्रोताओं से ये कहेंगे ही कि जैसा कि मैम ने भी कहा कि जब भी कभी कोई उपहार दे, कोई भेंट दे किसी को, उसमें हैंडलूम आइटम जरूर रखें। जब कभी दोस्ती यारी निभानी हो तब भी आप कोई अच्छा सा गिफ्ट लें तो उसमें भी ये याद रखें कि हमारी जेब से जो पैसा निकलता है वो देश में घूमे और सही हाथों में पहुंचे, तो हमारा छोटा सा उपहार भी बुनकर जो भाई बहन हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक बड़ा हिस्सा होता है, तो उनका भी ध्यान रखा जाए। चलते चलते मैम क्या संदेश आपका हमारे सभी श्रोताओं के लिए?
0: तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम 7 अगस्त को तो आपको पहनना ही है हैंडलूम, तो आपको हर भारतीय को 7 अगस्त को हैंडलूम पहनना है
1: जी।
0: और उससे ऊपर हम हैंडलूम को जीवन का हिस्सा बनाए, ये बुनकर की जो कला है उनकी जो जो सर्गात्मकता है उसको आप प्रोत्साहन दे, उनका हौसला बढ़ाए, एंड सबसे ऊपर हमारी विरासत को हम अपनाए, उस पर फकर करे, उसको पूरी तरह से अपनाए।

0: हमें पता चले, और साथ ही ऐसी योजनाओं के बारे में भी हमने जाना, हमारे श्रोताओं ने जाना, जो खास तौर से बुनकर जो हैं उनके लिए है, उनके कल्याण के लिए है। मैम, आप हमारे स्टूडियो आई, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की
0: जय। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनियाभर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आजादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की है। DMRC ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के तहत आयोजित हफ्ते भर चलने वाले कार्यक्रमों के हिस्से के तौर पर कल से इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने नागरिकों से गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने और डिजिटल कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का आग्रह किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें से करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 2025 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच करेगी और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। पाकिस्तान में दक्षिणी वजीरिस्तान के जारमिलान इलाके में हथियारबंद हमलावरों ने 2 बुजुर्ग आदिवासी नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ित गाड़ी से जा रहे थे, तभी डोरजांडा में अज्ञात बंदूकधारियों ने उन पर गोलियां चला दी। दोनों आदिवासी नेताओं को कई गोलियां लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक हाजी गुल और मलिक बादशाह सुलेमान खेल कबीले से थे। गोलीबारी

0: के तुरंत बाद हमलावर मौके से भागने में सफल रहे। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरु मुग पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में लगातार बारिश जारी है। आईएमडी ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated across the country to promote patriotism, national unity, and India's rich cultural heritage.

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। संघों में श्रेयसी और कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर आपके संग हाजिर हूँ। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और सबसे पहले ये गाना सुनते हैं।

बिल्कुल दोस्तों, जब इस जगह पर आती हूँ और यूं बैठ करके जब गानों को, एक से एक बेहतरीन गानों को आपके साथ साथ मैं भी गुनगुनाती हूँ, तो बस यही गाना मेरे जहन में भी गूंजता रहता है। ये गाना हमने लिया फिल्म दिल तेरा दीवाना से। आवाजें थी लता मंगेशकर और रफी साहब की, बोल सजाए शैलेंद्र ने और संगीत शंकर जयकिशन का। बढ़ते हैं अपने इस अगले गीत की तरफ। फिल्म प्रोफेसर से लिया है ये नगमा हमने, आवाज है रफी साहब की।

0: किसी से मोहब्बत ना हो जाए।
1: कभी कभी कई बार कुछ ऐसा ही एहसास मन में घूमता रहता है। कभी लोग पास होकर भी अजनबी से लगते हैं और कभी अजनबी भी अपने से करीब लगते हैं। जिंदगी की यही सबसे बड़ी सच्चाई है, रिश्ते खून से नहीं एहसास से जुड़ते हैं।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फर्ज फिल्म का ये नगमा अभी आपने सुना दोस्तों। वैसे ये तो कहना बहुत सही है कि हाले दिल बयां करना जरूरी होता है, अपना इजहार करना जरूरी है, लेकिन साथ ही इस बात का भी ख्याल करना जरूरी है कि दिल हम उसे ही दें जो बदले में जान दे दे। मेरे ख्याल से अब आप इस गाने के का इशारा समझ ही गए होंगे। जी हाँ, अंदाज फिल्म का ये अगला नगमा आपके साथ साझा कर रही हूँ। फिल्म अंदाज है और आवाज़ें हैं रफ़ी साहब, आशा भोसले की, बोल सजाए हज़रत जयपुरी ने और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर दोस्तों आप सुन रहे हैं गीत सुहाने कार्यक्रम और संग हूँ मैं श्रेयसी। जी हाँ, जो नगमा भी आपने सुना दोस्तों धरती कहे पुकार के की फिल्म से हमने लिया आवाज लता मंगेशकर और मुकेश की, मजरूह सुल्तानपुरी के सजाए बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। बढ़ते हैं अब अपने इस अगले नगमे की तरफ, फिल्म कुदरत का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपके लिए।

गीत और बातें तो अपनी ओर चलती ही रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। जैसे कि एक शेर बस यूं ही मेरे सामने से गुजरा और बहुत ही गहराई तक छू गया। तेरी अहमियत बयां कर पाऊं इतनी मेरे शब्दों में बात नहीं, तेरी अहमियत बयां कर पाऊं इतनी मेरे शब्दों में बात नहीं, और तू रूह तक बसा है मेरे, तुझे मुझसे अलग कर पाना इतना आसान नहीं।

कई बार ऐसा होता है कि जब हमें किसी के खास के साथ होने का एहसास होता है, तो ये सारे गाने हमारे उस जज्बात को शब्द दे जाते हैं। ये नगमा दोस्तों आपने सुना फिल्म हिमालय की गोद से। आवाज मुकेश की थी, बोल सजाए आनंद बख्शी साहब ने, और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। फिल्म द ट्रेन का ये नगमा लिया हमने, लता मंगेशकर की आवाज है, आनंद बख्शी साहब के बोल हैं, और आर डी बर्मन साहब का संगीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ये बेहतरीन सा नगमा दोस्तों हमने फिल्म लव इन टोक्यो से लिया, लता मंगेशकर की प्यारी सी आवाज और बोल हसरत जयपुरी के। संगीत सजाया शंकर जयकिशन साहब ने। बढ़ते हैं अब अपने इस अगले गीत की तरफ। फिल्म त्रिशूल से ये गाना लिया है हमने, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, बोल सजाए साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया खयाम साहब ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आजादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की है। DMRC ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के तहत आयोजित हफ्ते भर चलने वाले कार्यक्रमों के हिस्से के तौर पर कल से इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में वैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है। भारत ने बोलीविया की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षमता को मजबूत करने के लिए 8 मीट्रिक टन जीवन रक्षक और जरूरी दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत एकजुटता और साझा प्रगति के जरिए सहयोग बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन में हुई विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार मेघवाल और शाहनवाज खान ने इतिहास रचा है। बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता, जिससे चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई। बसंत विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में ऊंची कूद में और शाहनवाज लंबी कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने कुल 285 किलोग्राम भार वर्ग उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। घड़ी में ठीक 2:11 का वक्त हो चला है और ये वक्त है कार्यक्रम रात सुरमई का। तो आइए इस रात को थोड़ा और बेहतरीन बनाएं और इन कुछ चंद बेहतरीन नगमों से सजाएं। शुरुआत करते हैं इस गीत से।

कई बार कुछ ऐसी बातें दिल को यूं छू जाती हैं कि उन चीजों का एहसास भी याद करके लगता है कि कुछ पाया तो है, कुछ बूंद सा, और खोने से भी उसे डर लग रहा है। कुछ है तो मेरे पास एक एहसास सा, लेकिन बयां करने से भी डर लग रहा है।

देते आवाज हम अनसुना कर देते, तुम देते आवाज और हम अनसुना कर देते, तुम्हें लगता है हम ऐसी खता कर देते। बस जान ही तो उन्होंने मांगी थी हमसे, बस जान ही उन्होंने मांगी थी हमसे, चीज उसी की थी, हम कैसे मना कर देते।

साए में दुखों के ना जिया कीजिए, दर्द और गम तन्हा ना पिया कीजिए। हमने कब आपका साथ छोड़ा है जनाब, तकलीफ अपनी कोई हो तो हमसे बयां कीजिए।

ये तो एकमात्र ऐसा एहसास है जिसे हर रिश्ते से ऊपर रखा गया है, क्योंकि ये वो एहसास है जहाँ पर अगर बच्चे को एक खरोच भी आए तो पहले ही माँ का दिल धड़क उठे, अगर बच्चा नज़रों से ओझल हो जाए तो पहले ही माँ की सांस रुक जाए। और जब एहसासों की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, कोई बात बयां करने की बात करते हैं, तो माँ के पास आकर ही सारी बातें हम बयां कर पाते हैं। बढ़ते हैं अब अपने इस अगले गीत की तरफ।

और दोस्तों, अब जल्द ही घड़ी हमें ये कहना चाह रही है कि रात सुरमई कार्यक्रम को हमें यहाँ देना होगा विराम, लेकिन अभी भी कुछ लम्हे हमारे पास हैं। तो एक और नगमा जो मुझे मुझे बेहद पसंद है, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा, वो मैं आपसे साझा करना चाह रही हूँ। तो चलते चलते इस कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा आपके लिए।

0: 2019 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। मणिपुर भी देश के बाकी हिस्सों की तरह हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुआ। इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगजामेई में अपने घर से इस अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने लोगों से अपील की कि वे खुद को पहले भारतीय और फिर मणिपुरी कहें। उन्होंने कहा कि जब तक लोग खुद को अपनी जातीय पहचान से जोड़कर देखेंगे तब तक राज्य में शांति कायम करना मुश्किल होगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं, जिनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीबीआई जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री वत्स कृष्णा ने सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय में योजना और डिजिटल परिवर्तन के उपमंत्री अब्दुल अजीज अल मथानी से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए हज के अनुभव को बेहतर बनाने के मकसद से हज पोर्टल्स के तकनीकी एकीकरण पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने हज और उमराह मामलों के उपमंत्री अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहीम वज्जान से भी मुलाकात की और मदीना में हज यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान आवास, परिवहन, समन्वय और तीर्थयात्रा से जुड़ी अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर खास जोर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन में हुई विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार मेघवाल और शाहनवाज खान ने इतिहास रचा है। बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता, जिससे चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई। बसंत विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में ऊंची कूद में और शाहनवाज लंबी कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11 और 10 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम राही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी सफर में एक दूसरे के हमराही बनते हैं। इस सुरीले सफर के हमराही हैं हम सभी, और जब हमराही अच्छे हो तो सफर और जीवन कुछ भी हो, कुछ घंटे मिनट का हो या लम्हों का, कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की स्वरूसी सजा ये गीत आपने सुना अभी मस्ताना फिल्म से जो रिलीज हुई थी वर्ष 1970 में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, आनंद बख्शी की लिखी रचना। साथियों रात का समय कई बार नींद ना आने का समय भी ऐसा बन जाता है। कहने को तो सोने के लिए होती है रात, लेकिन कई बार नींद नहीं भी आती। कारण कुछ भी हो, उन्हीं में से एक कारण शायद ये भी हो सकता है।

ये सुना। फिल्म का नाम पोस्ट बॉक्स 999 जो रिलीज हुई थी वर्ष 1958 में। कल्याण जी वीरजी शाह का संगीत था, प्यारेलाल संतोषी की लिखी रचना थी। साथियों, हमराही में हमारे दिल के या कहीं जीवन भर के हमराही का विशेष महत्व होता है हमारे जीवन में। यदि वो आंखों से दूर हो तो दिल के और भी पास हो जाता है, जिसकी अनुपस्थिति हमें बेचैन कर देती है।

लता मंगेशकर हेमंत कुमार की आवाज उसी सजा ये गीत शंकर जयकिशन का संगीत था। हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी और फिल्म का नाम पतिता जो रिलीज हुई थी वर्ष 1953 में।

कल्याणजी आनंद जी के संगीत से सजी ये रचना भी आपने सुनी, गुलशन बाबरा की लिखी ये रचना थी। फिल्म का नाम परिवार, जो 1968 में रिलीज हुई थी। महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों से सजा ये गीत था। साथियों, रात के खामोश सफर में चांद का साथ रहना और उस पर भीगी रात का चांद और भी सुंदर हो उठता है। काली घटा से आंख मिचौनी सी खेलता ये चांद हम सबको भाता है।

शंकर जयकिशन का संगीत लिए ये रचना अभी आपने सुनी। शैलेंद्र ने ये गीत लिखा था। मन्ना जी लता मंगेशकर के स्वर थे। फिल्म का नाम चोरी चोरी, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1956 में।

मन्ना डे और लता मंगेशकर के संयुक्त स्वरों से सजी ये रचना हमदर्द फिल्म से अभी आपने सुनी। और जब मन की मुराद पूरी हो जाती है तो दिल मतवाला तो हो ही उठता है।

मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत छोटे नवाब फिल्म से अभी आपने सुना। 1961 रिलीज फिल्म आर डी बर्मन का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना।

आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत अभी आपने सुना, आनंद बख्शी की लिखी रचना, लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों का सुंदर जादू, फिल्म का नाम अपना देश, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1972 में।

और अब दिन सावन के बिल्कुल चल रहे हैं, बहार के दिन हैं। जी हाँ, सावन और बहार मिक्स मौसम चल रहा है। आइए मौसम का आनंद लें इस गीत को सुनते सुनते।

0: एक ही रास्ता इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना 1956 रिलीज ये फिल्म लता मंगेशकर हेमंत कुमार की आवाजों का सुंदर जादू था। हेमंत कुमार का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना। मित्रों रिश्ता कोई भी हो उसमें पारदर्शिता ईमानदारी सहजता धीरज और आपसी समझदारी सामंजस्य का होना अति आवश्यक है और तारीफ का अंदाज भी। जी हाँ तभी कोई रिश्ता जीवन अंत तक स्थापित रह पाता है।
1: चारों तरफ दूर दूर तक एक दिन वो सारा प्यार एक जगह सिमट कर इकट्ठा हो गया। मैंने पास जाकर गौर से जो देखा तो वो तुम थी।
2: ये तुम बिल्कुल सच कह रहे हो?
1: सच सिर्फ सच सच के सिवा कुछ नहीं।
2: तब ठीक है

यद्यपि आशा भोसले के स्वरों से सजी ये रचना आप सुन रहे हैं रूठा ना करो इस फिल्म से 1970 रिलीज ये फिल्म चितलकर रामचंद्र का संगीत हसरत जयपुरी की लिखी रचना और अब आज के हमराही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रही है ये रचना मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजें फिल्म का नाम आया सावन झूम के 1969 रिलीज ये रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी ने

नमस्कार, साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल

निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। मणिपुर भी देश के बाकी हिस्सों की तरह हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुआ। इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगजा मेई में अपने घर से इस अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने लोगों से अपील की कि वे खुद को पहले भारतीय और फिर मणिपुरी माने। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास आज से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और ईओडी टीमों के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। हरमुस जलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा। ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमेरिका के बीच हुर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated across the country to promote patriotism, national unity, and India's rich cultural heritage.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। सूरज की लालिमा ने अपने आने की दस्तक दे दी है। धरती पर सूर्य की सुंदर लालिमा अंधियारे के बाद उजाले का सफर, जीवन को संदेश देती हुई लाली, जीवन को गीत सुनाती इसकी रोशनी।

आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत अभी आपने सुना। गुलशन बावरा की लिखी रचना थी। आवाजों का जादू भूपेंद्र सिंह, किशोर कुमार, सपन चक्रवर्ती और आरडी बर्मन का। फिल्म का नाम सत्य पे सत्ता, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1982 में।

0: मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर के संयुक्त स्वरों का जादू इस गीत में अभी आपने सुना। 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, शंकर जयकिशन का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण किले की रचना, फिल्म का नाम धरती। साथियों, अरुणिमा में सजते हैं जीवन के सातों रंग। इन सभी रंगों से सजकर जब अरुणिमा अपना रंग बिखेरती है तो ऐसा लगता है मानो सात रंग के सुंदर सपने, ऐसे सपने जो हम सच कर सकें, ऐसे अनमोल सपने सच गए हों।
1: मैंने

0: आनंद फिल्म से ये रचना अभी आपने सुनी। 1971 रिलीज फिल्म। मुकेश की आवाज थी, सलील चौधरी का संगीत और गुलजार की लिखी रचना।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मोहम्मद रफी की आवाज से सजा ये गीत कैसे कहूं। इस फिल्म से अभी आपने सुना 1964 रिलीज ये फिल्म, सचिन देव बर्मन का संगीत, शकील बदायूं की लिखी रचना। जिंदगी तो बिल्कुल झूमेगी यदि हम जिंदगी को झूमवाने वाले काम करेंगे तभी। जी हाँ, वो ठीक है कि समय अपने हाथ में नहीं रहता, लेकिन कर्म तो अपने हाथ में होते ही है ना।

0: मोहम्मद रफी आशा भोसले की स्वरों से सजा। ये गीत अभी आपने सुना सच्चाई फिल्म से। 1969 रिलीज फिल्म शंकर जयकिशन का संगीत, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। साथियों, सावन की बहार इन दिनों चल रही है, झूलों का मौसम है, तीज का त्योहार भी आने ही वाला है। आइए याद करते हैं ये गीत, अवसर अनुकूल गीत बहू बेगम फिल्म से।
1: जिंदगी तो झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा।

0: रोशन की संगीत रचना से सजा ये गीत अभी आपने सुना बहू बेगम फिल्म से, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1967 में। लता मंगेशकर, आशा भोसले की आवाजों का सुंदर जादू था। साहिर लुधियानवी की लिखी रचना थी। और अब आलम यह है कि दिल की बात बताने का मन भी है और डर ये भी कि कहीं वो बात हमने कहीं कह दी, यानी अपनी सखी को कह दी, तो किसी को वो आगे ना बता दे। कुछ इसी तरह के भाव जज्बात से भरा सजा ये गीत आइए सुनते हैं।
1: दिल की बात बता दो, नहीं नहीं नहीं नहीं किसी को।

सुंदर हूँ इस फिल्म से ये नगमा अभी आपने सुना। 1971 रिलीज ये फिल्म लता मंगेशकर की आवाज थी, शंकर जयकिशन की लिखी, शंकर जयकिशन का संगीत और आनंद बख्शी की लिखी रचना थी।

आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों से सजा ये गीत आदमी और इंसान इस फिल्म से अभी आपने सुना। 1970 रिलीज ये फिल्म रवि का संगीत साहिर लुधियानवी की लिखी रचना। और अब सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं हम सभी ये।

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से अभी आपने सुना। 1978 रिलीज ये फिल्म। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, नरेंद्र शर्मा की लिखी रचना। और अब आज के अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रही है ये रचना।

किशोर कुमार की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम पिया का घर। 1972 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी की लिखी रचना। इसी रचना के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
0: इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन का अनावरण किया गया। निगम ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। मणिपुर भी देश के बाकी हिस्सों की तरह हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुआ। इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगजामेई में अपने घर से इस अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने लोगों से अपील की कि वो खुद को पहले भारतीय और फिर मणिपुरी माने। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों के अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद उन्होंने बताया कि कथित अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। इस कार्य योजना में 21 मुख्य विषय शामिल होंगे, जैसे कृषि, बागवानी, पशुपालन, वानिकी, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, पलायन और रोजगार पैदा करना। पहाड़ी और मैदानी इलाकों की खास स्थितियों के आधार पर अलग अलग रणनीतियां बनाई जाएंगी। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक EOD अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और EOD टीमों के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है प्रातः के 5:11 और 12 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। नवजीवन नव सुबह का शुभ आरंभ, सुहानी भोर का पदार्पण और सात रंगों से सजी सपनों को साकार करने की हम सभी की पुरजोर कोशिश।

अनुराधा पौडवाल की आवाज से सजी ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। और अब हरियाला सावन आ गया है, बिल्कुल उत्साह के साथ उमंग के साथ ढोल बजाता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, हम सबको खुशी देता हुआ।

मन्ना डे लता मंगेशकर की आवाजों से सजा ये गीत अभी आपने सुना दो बीघा जमीन फिल्म से 1953 रिलीज फिल्म सलिल चौधरी का संगीत शैलेंद्र की लिखी रचना।

आया सावन झूम के। इस फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे हैं। 1969 रिलीज ये फिल्म मोहम्मद रफी की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत, आनंद बख्शी की लिखी रचना। साथियों, जब जीवन के सपने सच होने लगते हैं तो खुशी तो महसूस होती है, और जब खुशी होती है तो होठों पर ये गीत सजने भी स्वाभाविक ही हैं।

कल्याण जी आनंद जी का संगीत लिए ये रचना गुलशन बाबरा की लिखी हुई थी। लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों का संगम था। फिल्म का नाम परिवार, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1968 में।